मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 47 सेकंड हुए हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन

ये आकाशवाणी लखनऊ है। सूर्य की सुनहरी आभा प्रकृति में नई ऊर्जा और ताजगी का संचार भर रही है। सुबह का सुहावना पल दिन भर की गर्मी से राहत तो पहुंचाता ही है और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी है। श्रोताओं, आप भी सुबह की सैर के साथ साथ अपनी दिनचर्या आरंभ कर चुके हैं। हम भी आ चुके हैं स्टूडियो लेकर आपके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। श्रोताओं, हम जानते हैं आपको इंतजार होगा देश दुनिया की खबरों को जानने का, क्योंकि आप ऑन कर चुके हैं अपना रेडियो सेट। तो देर कैसी, चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, प्रातः के 6 बजने ही वाले हैं। सुन लेते हैं समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने

0: गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में। आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ वैशाली, आप सभी के साथ। सुबह के 6:05 का वक्त हुआ है। समय है कृषि चर्चा का। श्रोताओं, आपको बता दें, आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं 747 किलो हर्ट्ज पर और साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी सुन सकते हैं। आज की कृषि चर्चा में आज हमारे किसान भाई सुनेंगे अगेती फूल गोभी की उन्नत खेती विषय पर डॉक्टर विनायक प्रताप शाही से की गई भेंट वार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, सब्जियों का व्यवसायिक उत्पादन जहां आप कर रहे हैं वहां अगेती फूल गोभी की तैयारी में होंगे। अगेती फूल गोभी की उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा अयोध्या से वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर विनायक प्रताप शाही साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अगेती फूल गोभी की खेती की क्या कुछ संभावना है अपने प्रदेश में?
3: नमस्कार किसान भाइयों, फूल गोभी की खेती करते हैं तो 12 महीने होता है, लेकिन अगेती अगर हम करते हैं तो उसमें अगर उत्पादन करते हैं तो उत्पादन के साथ साथ आपको अधिक आमदनी मिलती होती है, क्योंकि ठंड से पहले इसमें बरसात के मौसम में हम इसकी रोपाई करते हैं तो ये ध्यान देना पड़ता है कि खेत का चुनाव करें जिसमें जल भराव का न संभावनाएं हो,
2: यानी जल निकास का अच्छा प्रबंध हो और जल भराव न हो, इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, तभी बेमौसम यानी अगेती हो पाएगी।
3: हाँ किसान भाइयों, ये चूंकि आप देखते हैं कि बरसात मौसम में जहाँ भी जल भराव हो जाएगी तो हमारे जो पौधे हैं वो गल जाएंगे, तो ये खेत का जो चुनाव करते हैं वो जल निकास की सुविधा अच्छी हो कि हमारी पानी बाहर तुरंत निकल जाए।
2: डॉक्टर साहब, उन्नत प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं जो अगेती फूल गोभी की?
3: देखिए किसान भाइयों, जो प्रजातियों की सबसे महत्वपूर्ण होती है कि अगर हम अगेती की पिछेती लगाते हैं, पिछेती की अगेती में लगा देते हैं, तो हमारी प्रजातियों का

0: चुनाव करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें अगर हम देखें तो अर्ली पटना है, अर्ली कुंवारी है, पूसा कातकी है, पूसा दीपाली है, सबौर अग्रिम है और सबौर मुक्ता है, और डॉक्टर के नाम से समर वाइट भी बाजार में मिलते हैं, किसी की दुकान पे आप जाएंगे तो ये जून के महीने में नर्सरी अब पड़ेगी और अंतिम जून तक आप नर्सरी इसकी तैयार कर सकते हैं। तो ये जो प्रजातियां हैं लगभग 60 से 70 दिन में हो जाती हैं। जो सबौर अग्रिम एक प्रजाति है उसमें क्या होता है कि किसान भाई ये 60 से 70 दिन में नर्सरी से लेकर 70 दिन में हमारी तैयार हो जाती है फसल, लेकिन इसमें होता है कि इसका फूल व्हाइट होता है और ठोस होता है। जैसे जनरली आप देखते हैं किसान भाइयों कि जब हम अगेती फूल गोभी करते हैं उसमें प्रजातियां का फूल जो होता है वो हल्का पीला होता है और ठोस नहीं होता है। तो ये भी ध्यान देने की बात है कि हम प्रजातियों का चयन करते हैं तो अच्छी प्रजातियां ले लें, और ये सब जितनी प्रजातियां हैं और पूसा हाइब्रिड 2 भी है, जो संकर प्रजातियों की बात होती है तो हाइब्रिड 2 है, पूसा मेघना है, ये सब हमारी
1: इसको भी अगेती
0: ले सकते हैं इसको।
1: डॉक्टर साहब, नर्सरी प्रबंधन में क्या कुछ खास होगा क्योंकि अगेती फसल है?
0: किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण चीज है अगेती फसल के लिए नर्सरी का प्रबंधन आवश्यक है। नर्सरी के लिए किसान भाइयों, जो हम बेड बनाते हैं वो अगर 1 मीटर चौड़ा और जमीन से 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचा और करीब लंबाई आप 3 मीटर से लेकर के 5 मीटर तक कर सकते हैं, और एक नाली के बीच में 50 से 60 सेंटीमीटर नाली अवश्य बनाएं,
1: यानी 2 फीट लगभग
0: 2 फीट की दूरी पे एक एक बेड आप बनाते चलें, एक नाली दें फिर बेड बनाएं। इससे क्या होता है कि जब बारिश होती है तो जल भराव स्थिति होती है तो उसमें हम पानी उसके रास्ते निकल जाता है। इसमें अगर हम 1 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा हम बेड बनाते हैं तो उसमें 5 से 7 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद डालें, 25 ग्राम यूरिया, 30 ग्राम DAP और 25 ग्राम MOP म्यूरेट ऑफ पोटास का आप प्रति बेड के हिसाब से मिला करके आप इसको अच्छी जो बेड बनेगी वो बहुत ही भुरभुरी बनेगी, न कि उसमें ढेला कंकड़ पत्थर उसमें से निकाल दें। और बीज जनरली किसान भाई छिटक करके बोते हैं, तो किसान भाइयों से हमारा कहना है कि किसान छिटक करके बुआई न करके उसकी लाइनिंग में बुआई करें। अब बुआई करने के बाद सड़ी गोबर की खाद छनी हुई उसके ऊपर से हल्की से आप ढकाई कर दें, या पुआल से या गन्ने की पत्ती से उस पर ढक दें, जब हमारा जमा हो जाए तो उसको निकाल लें। चूंकि विशेष ध्यान होती है कि नर्सरी अगर आप ऊंची नहीं बनाएंगे तो हमारी फूल गोभी की नर्सरी खराब हो जाएगी।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे अगेती फूल गोभी की उन्नत कृषि तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: किसान भाई, मोबाइल नंबर 87550110 86 87550110 86।
1: डॉक्टर विनायक प्रताप शाही साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और अगेती फूलगोभी की उन्नत कृषि तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। आपके सुझाव पर किसान भाई बहन अवश्य ध्यान देंगे। डॉक्टर साहब, आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अगेती फूलगोभी की उन्नत खेती विषय पर अभी किसान भाई जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज की कृषि चर्चा में। इस विषय पर डॉक्टर विनायक प्रताप शाही से बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। जो हमारे भीतर और बाहर व्याप्त है असीम सागर, वही अनंत ज्ञान है। केवल किताबों में नहीं बल्कि सही दृष्टिकोण, निरंतर सीखने की इच्छा और अनुभव में बसता है अनंत ज्ञान। आइए सुनते हैं आज का सुविचार। एक युवक के पिता का देहांत हो गया। छोटी वय में ही उस पर गृहस्थी का बोझ आ पड़ा। वो युवक शोक से विफल होकर एक विद्वान के पास पहुंचा। विद्वान ने युवक को समझाया, देखो अमंगल में मंगल और मंगल में अमंगल निहित रहता है। तुम्हारे इस दुख के अंदर अवश्य ही कोई ना कोई सुख छिपा होगा। युवक ने संतोष कर लिया। इसके कुछ समय बाद उन विद्वान को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। समारोह हुआ। उसमें वो युवक भी निमंत्रित

0: था। विद्वान ने कहा, ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद है जो उसने मेरे आंगन में मंगल वर्षा की। इस पर युवक ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं, वास्तव में ये तो अमंगल ही है, मंगल में तो अमंगल छिपा ही रहता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार ये संसार भले बुरे का मिश्रण है। जहां बुराई देखो, समझ लो अच्छाई भी वहीं कहीं होगी। वेदांत कहता है, केवल अच्छे बुरे का अस्तित्व हो ऐसी बात नहीं है, इनके पीछे जो वस्तु है वास्तव में वो तुम्हारा आपा है, वो तुम हो जो सब प्रकार के शुभ अशुभ से ऊपर हो। तुम प्रकृति के दास नहीं हो, भले ही प्रकृति अनंत जान पड़े परंतु वास्तव में वो ससीम है, वो समुद्र की एक बूंद मात्र है, वास्तव में तुम ही समुद्र रूप हो। तुम सूर्य चंद्र और नक्षत्र सभी से परे हो, तुम्हारे अनंत स्वरूप की तुलना में वे सब केवल बुलबुलों के समान हैं। इसे जान लेने पर तुम अच्छे और बुरे दोनों कर्मों पर विजय प्राप्त कर लोगे। उस समय तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी और तुम कह सकोगे, मंगल कितना सुंदर है और अमंगल भी कितना अद्भुत है। तुम स्वयं ही अपना भाग्य बनाने वाले हो, तुम स्वयं ही अपने कर्मों से अच्छे और बुरे दोनों तरह के फल भोग रहे हो। तुम अपने ही हाथों से अपनी आंखें बंद करके कहते हो कि अंधेरा है, तुम हाथ को हटा लो, प्रकाश स्वतः दिखाई देगा, तुम स्वयं ज्योति स्वरूप हो, तुम पहले से ही सिद्ध हो। एक छोटे पौधे की रक्षा उसके चारों ओर तार बांध कर करनी पड़ती है, नहीं तो गाय और अन्य पशु पक्षी उसे नष्ट कर डालते हैं, किंतु जब वो एक बड़ा वृक्ष बन जाता है तब अनेक पशु पक्षी भी उसके वृक्ष के नीचे विचरण करते हैं और उसी के पत्तियों का आहार करते हैं। उसी प्रकार जब तक तुम में थोड़ी भक्ति है तब तक बुरी संगति और संसार के प्रपंच से उसकी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन जब उसमें दृढ़ता आ जाएगी, जब कुवासनाओं को हृदय में प्रवेश का साहस नहीं होगा और अनेक दुर्जन तुम्हारे पवित्र सहवास से सज्जन बन जाएंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस के अनुसार पानी में पत्थर सैकड़ों वर्षों तक पड़ा रहे परंतु पानी पत्थर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, इसके विपरीत चिकनी मिट्टी पानी के स्पर्श से ही घुलने लगती है। इसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति का दृढ़ हृदय कठिन से कठिन दुख पड़ने पर भी निराश नहीं होता, परंतु दुर्बल हृदय के व्यक्ति छोटी छोटी बातों से हताश हो जाते हैं। दूसरों के दोष देखने में आप जितना समय लगाते हैं उतना अपने दोष सुधारने में लगाइए। यदि आप अपना आचरण सुधारेंगे तो ये संसार अपने आप सुधर जाएगा।
1: तो श्रोताओं, ज्ञान कोई वस्तु नहीं है जिसे हम बाहर से खरीद सकते हैं, ये हमारे अपने अनुभव से जागृत होता है। अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार अनंत ज्ञान, वाचन स्वर शीला मिश्रा का था। और अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

दीप जले तो भक्ति जागे और सुर गूंजे तो मन भागे। माँ के भजनों की महिमा भक्तों के लिए विशेष है। भक्ति के इस सफर की शुरुआत करते हैं माँ के चरणों को नमन से।

गोविंद जो प्रेम भी है, लीला भी, नीति भी और संगीत भी, जिनकी बांसुरी में छिपा है मन को शांत करने वाला अमृत और जिनकी गीता में संपूर्ण जीवन का मार्ग। गोविंद में सिखाते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, मुस्कुराना सही निर्णय और धर्म का साथ देना कभी नहीं छोड़ना है। आइए गोविंद के चरणों में अपना हृदय अर्पित करें।

प्रभु नाम जप में और प्रभु की भक्ति में ही शक्ति है और उनके नाम में है अनंत साहस। कहते हैं कि जीवन में ऊर्जा, उत्साह और निर्भयता का संचार करना हो तो प्रभु भक्ति का आह्वान करना जरूरी है।

747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। अब आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनेंगे भाग 195।

दल बल समेत भरत के आगमन के समाचार से निषाद राज को आशंका होती है। क्या कारण है जो भरत वन में जा रहे हैं? यदि उनके मन में कपट भाव न होता तो साथ में इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों चलते? निषाद राज ने सेवकों तथा कुटुंबियों को सभी नावों को कब्जे में करके पानी में डुबो देने तथा सभी घाट रोक लेने के लिए सावधान कर दिया। कहा, सब लोग भरत से युद्ध में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं स्वयं भी स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देकर 14 भुवनों को अपने यज से उज्जवल कर दूंगा। निषाद राज की ललकार सुनकर निषादों की एक छोटी मोटी सेना तुरंत खड़ी हो गई। सभी शूरवीरों ने कमर में छोटे छोटे तरकस बांध धनुष पर वाण चढ़ा लिए। रण के लिए ढोल बजा ही था कि बाईं ओर से छींक सुनकर एक वृद्ध अनुभवी निषाद के मन में विचार आया कि भरत से मिल लेना चाहिए, शकुन शुभ है, अतः युद्ध नहीं होगा। भरत कदाचित राम को लिवाने जा रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे रविंद्र साठे, आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत संयोजक सतीश भाटिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ 747 किलोहर्ट्ज पर।
1: सुनो ना।
2: हाँ।
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: अर्पणाय अन्तिमा तिथिः अस्य मासस्य षष्ठः दिनाङ्कः एव आसीत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः सम्बलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् अद्य तटीय कर्णाटक माहे केरलेषु मूसलाधारवृष्टिः भविष्यति। पूर्वोत्तरराज्यानाम् अधिकतरभागेषु आभ्यन्तरीण कर्णाटके, गोवायां, तमिलनाडौ, पुदुच्चेर्याम्, अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहे च श्वः पर्यन्तं प्रबलवृष्टेः सम्भावना अस्ति। सम्प्रति क्रीडावार्तासु, जापाने भारतस्य अन्तरष्टादशवयोवर्गीय पुरुषदलेन एशिया चषक हॉकी स्पर्धा मालिका जिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन जापानं 4-1 इति अंकान्तरालेन पराजितम्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च उत्तम प्रदर्शनपरकम् एतं विजयम् अभिलक्ष्य भारतीय हॉकी दलं वर्धापितवन्तौ। गोवायां भारतेन सैफ महिला पादकन्दुकनायक स्पर्धा श्रृंखला विजिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन बांग्लादेशः 3-0 इति अंकान्तरालेन पराजितः। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् भारतेन षष्ठवारं एषा श्रृंखला जिता। अपरतः नवचण्डीगढे भारताफगानिस्तानयोः एकमात्र क्रिकेट निकषस्पर्धायाः प्रथमदिनस्य क्रीडासमाप्तिपर्यन्तं भारतेन क्रीडकत्रयस्य हानिपूर्वकम् 68-300 धावनाङ्काः अर्जिताः। अद्य भारतम् इतः अग्रे क्रीडिष्यति। इति वार्ताः।
1: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है अपने रेडियो सेट 747 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 7 बजे हैं और ये समय होता है श्रोताओं स्वास्थ्य चर्चा सेगमेंट का। तो आज की स्वास्थ्य चर्चा में नीना सोनकर हमारे श्रोताओं को बताएंगी स्वाद और सेहत का संगम सरसों के बीज विषय पर।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम बात करेंगे उस बीज की जिसकी सोंधी महक से हमारी रसोई महक जाती है, जिससे तड़के की शुरुआत होती है और जो न केवल भोजन को स्वादिष्ट बनाता है बल्कि शरीर को भीतर से मजबूत भी करता है। हम बात कर रहे हैं सरसों के बीज की, जिसे हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। सरसों एक ऐसा पौधा है जो सिर्फ खेतों को ही नहीं बल्कि हमारी थाली और स्वास्थ्य को भी रंगीन बनाता है, सेहतमंद बनाता है। इसके बीज छोटे छोटे, गोल और भूरे या काले रंग के होते हैं। तड़के में डाले जाने वाले ये बीज केवल महक के लिए ही नहीं बल्कि इन छोटे छोटे दानों में बड़े बड़े औषधीय गुण समाये हुए हैं। भारतीय रसोई में सरसों के बीजों का उपयोग न जाने कितनी पीढ़ियों से होता आ रहा है, लेकिन जब हम इसके स्वास्थ्य से जुड़े पक्ष को समझने लगते हैं तो ये केवल एक मसाला नहीं रह जाता, ये बन जाता है शरीर को संबल देने वाली शक्ति। आयुर्वेद में सरसों को गर्म तासीर वाला माना गया है, यानी ये शरीर में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यही वजह है कि सर्दियों में इसका सेवन विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। सरसों के बीज पाचन क्रिया को सुधारने वाले होते हैं। जब भोजन में सरसों का तड़का लगता है तो ये पाचन रसों को सक्रिय करता है, जिससे खाना जल्दी और सही तरीके से पचता है। खासकर जब कोई भोजन भारी हो या तेल युक्त हो तब सरसों का उपयोग उसे संतुलन में लाने का काम करता है। सरसों के बीजों में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी फंगल गुण होते हैं। ये गुण शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। अगर गले में खराश हो, जुकाम की शुरुआत हो रही हो या शरीर में अकड़न महसूस हो रही हो तो सरसों के बीजों से बना गर्म काढ़ा राहत दे सकता है। बहुत से पुराने घरों में सरसों के बीज को पानी में उबालकर उसमें नमक और थोड़ा सा शहद मिलाकर दिया जाता था। ये नुस्खा आज भी

0: उतना ही प्रभावी है। श्रोताओं, सरसों केवल एक बीज तक सीमित नहीं है, इसका तेल भी हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। सरसों का तेल त्वचा में मालिश करने से रक्त संचार तेज होता है, शरीर में गर्मी बनी रहती है और मांसपेशियों को राहत मिलती है। छोटे बच्चों की सरसों के तेल से मालिश करने की परंपरा भी इसी कारण से है, क्योंकि ये हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और शिशु को शीतल हवाओं से भी बचाता है। कई बार जब पेट फूलने की शिकायत होती है या गैस बनती है तो सरसों के बीज को जीरे के साथ मिलाकर उसका चूर्ण बनाकर गर्म पानी के साथ लेने से बहुत राहत मिलती है। ये आंतों में जमे अपशिष्ट को बाहर निकालने में मदद करता है और शरीर को हल्का बनाता है। यही कारण है कि कई आयुर्वेदिक दवाओं में भी सरसों को विशेष स्थान दिया गया है। अगर त्वचा की बात करें तो सरसों के बीजों का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से ब्लैक हेड्स, मुहासे और दाग धब्बों से राहत मिल सकती है। ये त्वचा को भीतर से साफ करता है और रोम छिद्रों को खोलता है। वहीं सरसों के बीजों से बना उपटन शरीर को निखारने और त्वचा को मुलायम बनाने के लिए पुराने समय से उपयोग में लाया जाता रहा है। सरसों के बीजों का एक और लाभ है, ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। जिन लोगों को अक्सर मौसम बदलने पर सर्दी जुकाम हो जाता है या बार बार थकावट महसूस होती है, उनके लिए सरसों का नियमित और सीमित मात्रा में सेवन शरीर को भीतर से ताकत देता है। सरसों में सेलेनियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व भी होते हैं जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। यही वजह है कि गठिया के मरीजों को सरसों का तेल मालिश के रूप में दिया जाता है। मगर जैसा कि हर औषधीय चीज के साथ होता है, सरसों का भी सेवन संतुलन में होना चाहिए। अधिक मात्रा में सरसों के बीज का प्रयोग शरीर में अतिरिक्त गर्मी उत्पन्न कर सकता है, जिससे जलन या एसिडिटी की समस्या हो सकती है। इसलिए दालों, सब्जियों, कढ़ी या अचार में सीमित मात्रा में प्रयोग करना ही बेहतर होता है। श्रोताओं, सरसों के बीज हमें ये सिखाते हैं कि स्वास्थ्य के लिए बड़ी बड़ी दवाओं या सप्लीमेंट्स की नहीं, बल्कि छोटे छोटे मसाले की समझदारी से जरूरत होती है। हमारी रसोई में मौजूद ये तत्व न केवल स्वाद के वाहक हैं, बल्कि शरीर के संतुलन और सुरक्षा के प्रहरी भी हैं। सरसों के बीज उन्हीं में से एक हैं जिनका सही उपयोग हमें ऊर्जा, स्वास्थ्य और गर्माहट प्रदान कर सकता है। आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और किसी देसी मसाले या औषधीय तत्व के साथ, जो आपके रसोई के स्वाद को और आपके स्वास्थ्य को दोनों को संवार सके। तब तक अपने खाने में संतुलन बनाए रखें, परंपरा से जुड़ें और खुद को भीतर से मजबूत बनाइए। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आपने जानकारी प्राप्त की आज की स्वास्थ्य चर्चा में। स्वाद और सेहत का संगम सरसों के बीज के बारे में जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, हमारे यानी वैशाली के साथ। और अब समय है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आज रात 11:10 पर सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला में सुनिएगा आज का विषय, वंचितों को वरीयता, सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। आज रात 10:00 रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 9:15 पर सामयिक चर्चा में आज सुनिएगा पीएम सूर्य घर योजना में उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के निदेशक रविंद्र सिंह से आकाशवाणी संवाददाता ओम अवस्थी की बातचीत। उर्दू कार्यक्रम के तहत सुबह 9:30 पर समात फरमाइएगा डॉक्टर बशीर बद्र पर मबनी खसूसी तमसीली प्रोग्राम जिसका उन्वान होगा जुगनू जो सितारों की महफिल में खो गया। तहरीर और आवाज होगी मोहम्मद फारूख जमाल की। पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की होगी। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे 7:31 पर। प्रस्तुति सुमोना एस्पांडे और नीना सोनकर की होगी। हिंदी कार्यक्रम में रात 8:00 सुनना ना भूलें अमन मणि त्रिपाठी की व्यंग वार्ता हवा में फड़फड़ाते शब्द। दिन में 3:30 पर फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आज विषय होगा किडनी रोग, कारण, लक्षण और बचाव। विशेषज्ञ होंगे अमित कुमार सिंह, संचालन सुभाष खन्ना का है। संस्कृत कार्यक्रम में दिन में 3:15 पर सुनिएगा डॉक्टर कन्हैया लाल

कथा की संस्कृत वार्ता रामायणे दूत कर्म हनुमतो चातुर्यम, प्रस्तुति डॉक्टर शिवा राकेश की होगी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर सुनिएगा स्वपन चौधरी का तबला वादन। दोपहर 12:00 बाल मंच कार्यक्रम में हमारे नन्हे मुन्ने सुनेंगे डॉक्टर हेमंत कुमार श्रीवास्तव की कहानी घर घर की आवाज। इसके अलावा बच्चे सुनेंगे विश्व कैंसर सर्वाइवर दिवस पर ओबी आधारित कार्यक्रम कैंसर सर्वाइवर बच्चों से बातचीत। प्रेजेंटर होंगी स्नेहिल श्रीवास्तव। ईएमआई का चक्कर, ये झलकी सुनिएगा आज इतवार है में दिन में 1:15 पर। मुमताज हसन की ये लिखी झलकी जिसका निर्देशन किया है अतिश कुमार श्रीवास्तव ने। दिन में 1:30 पर अक्षरवट कार्यक्रम में हमारे श्रोता सुनेंगे वरिष्ठ नागरिक रखें अपने आंखों का ख्याल। इस विषय पर डॉक्टर उपशम गोयल वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ से की गई भेंटवार्ता। भेंट करता होंगी डॉक्टर अलका चौधरी। गर्मी में पशुओं का खानपान और रखरखाव विषय पर सुनना ना भूलें डॉक्टर संजय कुमार मिश्र से की गई भेंटवार्ता। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। दिव्यांगजनों के लिए स्वरोजगार के अवसर, सुनिए सितांशु कुमार से की गई भेंटवार्ता। संकल्प कार्यक्रम में आज शाम 4:00 भेंट करता होंगे देवाशीष। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:45 पर आप सुनेंगे ओबी आधारित बातचीत सामाजिक नवाचार के युवा चेहरे बदलाव के चेहरे। 6:30 पर शाम लोकायतन कार्यक्रम में सुनिएगा लोक भाषा कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि होंगे इंद्र बहादुर सिंह इंद्रेश, रामकरण मिश्र सैलानी। संचालन रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी प्रलयंकर का होगा। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर सफलता की कहानी क्रम के अंतर्गत हमारे किसान भाई सुनेंगे डेयरी व्यवसाय विषय पर ओम बाबू वर्मा से की गई भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम जिन्हें आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से 747 KHz पर। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में कार्यक्रम विविधा लेकर।

नमस्कार दोस्तों, क्या आपने आज नाश्ता किया? अगर हाँ तो आप दुनिया के उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिन्हें ये सुविधा मिली, क्योंकि आज भी दुनिया में अनगिनत लोग रात को भूखे पेट ही सो जाते हैं। और ये तब है जब हर साल इतना अनाज उगाया जाता है कि असंख्य लोगों को खिलाया जा सके। तो फिर दोस्तों, समस्या क्यों है? कहाँ जाता है ये खाना और हम क्या कर सकते हैं? आज इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं आज की विविधा में। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की आज हम बात करेंगे विविधा में, जो हर साल मनाया जाता है 7 जून को, ताकि सुरक्षित भोजन के महत्व और खाद्य जनित रोगों की रोकथाम के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके। साल 2018 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा स्थापित और WHO तथा FAO के संयुक्त नेतृत्व में मनाया जाने वाला ये दिन इस बात पर जोर देता है कि खाद्य सुरक्षा उत्पादकों से लेकर उपभोक्ताओं तक सभी की जिम्मेदारी है। खाद्य सुरक्षा सिर्फ पेट भरने की बात नहीं है दोस्तों, बल्कि हर इंसान को वक्त पर पर्याप्त, सुरक्षित और पोषण युक्त खाना मिले, यही इसका उद्देश्य है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भोजन ही जीवन है, लेकिन सच तो ये है कि सुरक्षित भोजन ही स्वस्थ जीवन है। भोजन खेत से शुरू होता है और हमारी थाली तक पहुंचता है। जो

भोजन हम खा रहे हैं वो साफ हो, उसमें हानिकारक कीटाणु ना हो, रसायन की मात्रा खतरनाक ना हो, खाना सही तरीके से पकाया गया हो, सही तापमान पर रखा गया हो और सबसे अहम सही तरीके से परोसा गया हो। कई बार दोस्तों खाना दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, रंग भी सही, खुशबू भी ठीक, स्वाद भी अच्छा, लेकिन उसके अंदर छिपे बैक्टीरिया या वायरस हमें बीमार कर सकते हैं। यही वजह है कि खाद्य सुरक्षा दिखावे की चीज नहीं बल्कि सावधानी की आदत है। बोझ से समाधान की ओर, हर जगह सुरक्षित भोजन, ये थीम है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस साल 2026 की। WHO के अनुसार ये थीम इस बात पर जोर देती है कि खाद्य जनित बीमारियों के आंकड़े, लागत और उनका असर समझकर सही समाधान निकाला जाए और सही दिशा में कार्यवाही कर मार्गदर्शन किया जा सके। जानते हैं दोस्तों, कई शोध बताते हैं कि दूषित खाना खाने से हर साल करोड़ों की संख्या में लोग बीमार पड़ते हैं और लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। अब जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा स्कूल में टिफिन खाता है, एक मजदूर सड़क किनारे खाना खाता है, एक बुजुर्ग घर में दवा के साथ हल्का भोजन लेते हैं, एक गर्भवती महिला पौष्टिक खाना खाती है। इन सब के लिए भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं बल्कि स्वास्थ्य की सबसे बड़ी जरूरत है। और अगर भोजन सुरक्षित नहीं होगा तो बच्चा पढ़ाई में कमजोर भी तो हो जाएगा, मजदूर काम नहीं कर पाएगा, बुजुर्ग की सेहत बिगड़ सकती है और परिवार की चिंता बढ़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र की माने तो खाद्य सुरक्षा का संबंध मानव स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक समृद्धि, कृषि, बाजार पहुंच, पर्यटन, सतत विकास और देश की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा है। वो ऐसे कि जब लोग बीमार पड़ते हैं तो इलाज पर खर्च बढ़ता है, काम रुकता है, पढ़ाई बाधित होती है, उत्पादन घटता है। सुरक्षित भोजन से स्वास्थ्य बेहतर होता है, परिवार की बचत होती है और तो और समाज भी मजबूत बनता है। और आजकल फास्ट फूड, ऑनलाइन खाना मंगाने का चलन बढ़ गया है। हम ऐप पर फोटो देखकर खाना ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए और समझना चाहिए कि रेस्टोरेंट की रेटिंग कैसी है, पैकेजिंग साफ है या नहीं, खाना समय पर आया या नहीं और पैकिंग कहीं टूटी हुई तो नहीं है। बच्चों के टिफिन में भी खाद्य सुरक्षा बहुत जरूरी है। टिफिन में देर तक रखी जाने वाली चीजों का चयन सावधानी से करना चाहिए, जहां तक हो सके ना ही रखें। गर्मी में जल्दी खराब होने वाली खाद्य सामग्रियों को ना दें। पानी की बोतल रोज साफ करें, फल धोकर ही खाएं और सबसे जरूरी, बच्चों को सिखाएं कि खाना खाने से पहले हाथ धोना कोई औपचारिकता नहीं बल्कि सेहत की ढाल है।

याद रखें दोस्तों, खाने की असली कीमत स्वाद से नहीं सुरक्षा से तय होती है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर आइए संकल्प लें कि फूड सेफ्टी चेक करेंगे, खुले और दूषित भोजन को खाने से बचेंगे, पैकेट पर लिखी चीजों की गुणवत्ता और एक्सपायरी डेट जरूर जांचें, भोजन की बर्बादी कम करें और भोजन को सम्मान दें, क्योंकि भोजन सिर्फ अनाज नहीं है, ये किसान की मेहनत है, माँ के हाथों का प्यार है, प्रकृति का उपहार है और हमारे जीवन की ऊर्जा है। याद रखें, एक स्वस्थ परिवार की शुरुआत होती है सुरक्षित भोजन से। आज की विविधा में बस इतना ही। दीजिए अनुमति वैशाली को नमस्कार।

0: डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 265 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों से प्रदेश की बनी नई पहचान। मुख्यमंत्री ने की राजकीय रेलवे पुलिस के कार्यों की समीक्षा। रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को अधिक परिणामोन्मुख बनाने पर दिया जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदला भारत। और प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए कल से 10 जून तक आयोजित होगी परीक्षा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर परीक्षा की तैयारियों का किया गया पूर्वाभ्यास। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के माध्यम से ही प्रदेश की नई पहचान बनी है। मुख्यमंत्री कल गोंडा में 516 करोड़ रुपए लागत की 262 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास को लेकर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास विजन के तहत सरकार बिना भेदभाव घर घर तक विकास योजनाएं पहुंचा रही है।
3: हर पात्र व्यक्ति को, वह किसी जाति का हो, किसी मत संप्रदाय का हो, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। और यही तो मोदी जी ने कहा था, सबका साथ और सबका विकास।
2: इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कल ही तुलसीपुर में देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन किया और मां से सुखी स्वस्थ एवं समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राज्य की रेलवे पुलिस के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि प्रदेश में रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, तकनीक सक्षम और परिणामोन्मुख बनाया जाए। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा, महिला सम्मान, अपराध नियंत्रण और त्वरित पुलिस सहायता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अभियोजन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अपराधियों को त्वरित एवं प्रभावी दंड सुनिश्चित करने पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के सफल समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने कल वहां दीनदयाल हस्तकला

0: अंकुल का दौरा किया। सदस्यों ने भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा की समृद्ध विरासत को दर्शाने वाले संग्रह को देखा। इससे पूर्व प्रतिनिधिमंडल ने भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। बौद्ध तीर्थ स्थल के दर्शन के दौरान प्रतिनिधि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित नजर आए। ब्राजील से आए प्रतिनिधि लुकास ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह अनुभव उनके लिए बेहद प्रेरणादायक और अविस्मरणीय रहेगा। प्रतिनिधियों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया। इस अवसर पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक संस्कृति, धरोहरों और जीवंत परंपराओं से रूबरू कराना है।
1: ब्रिक्स मीटिंग, उसमें कई सारे ट्रैक्स होते हैं, उसमें ट्रेड है, इन्वायरमेंट है, कल्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रैक ऑफ ब्रिक्स मीटिंग्स। तो कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैक है और कल्चर के हम बातें तो करते हैं मीटिंग में, जब तक दिखाएंगे नहीं तो उनको शायद उतना समझ भी नहीं आए। हम चाहते हैं कि हम जो भी कल्चर के बारे में बात करते हैं उसको हम दिखाएं भी।
0: प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर कल बस्ती पहुंचे। मीडिया से बातचीत में श्री राजभर ने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है, इसलिए वो इतने लंबे समय तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री बन रहे हैं।
2: मोदी जी पर देश के 140 करोड़ जनता विश्वास कर रही और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाया। 10 जून को 12 साल कार्यकाल पूरा उनका होगा और देश में आजादी के बाद पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे जो लगातार लंबे समय तक देश में शासन करने वाले प्रधानमंत्री गिने जाएंगे।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। एक रिपोर्ट।
3: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच 3 दिवसीय दौरे पर एक दिन पूर्व लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल दौरे के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने हरदोई रोड स्थित मिलेनियम पैलेस में पश्चिम मंडल 2 के प्रबुद्ध नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ संवाद बैठक की। प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा कल से 10 जून तक प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार परीक्षा की तैयारियों का पूर्वाभ्यास किया गया। कानपुर में प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर गोष्ठी आयोजित की। साथ ही रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिवहन निगम रियायती दरों पर परीक्षार्थियों को सेवा उपलब्ध कराएगा। प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक शीघ्रता से पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वाराणसी में आयोजित PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा ने योजना की प्रगति, उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना की विस्तार से समीक्षा की। एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है।
4: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा और प्रोत्साहन से पूरे देश में 16 रिवोल्यूशन हो रही है, 100 क्रांति हो रही है। उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री

0: मंत्री जी के द्वारा ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा लगभग 2 साल पहले की गई थी और उस योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में काम हो रहा है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी हम लोग पीएम सूर्य घर को लेकर के प्रगति कर रहे हैं।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि विस्तारित कर दी है। विद्यार्थी अब आज मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल यानी 6 जून तक ही निर्धारित थी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर परिसर में स्थित शेषावतार मंदिर के शिखर पर आगामी 23 जून को ध्वजा स्थापना होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया, कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों से प्रदेश की बनी नई पहचान। मुख्यमंत्री ने की राजकीय रेलवे पुलिस के कार्यों की समीक्षा, रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को अधिक परिणामोन्मुख बनाने पर दिया जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदला भारत। और प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए कल से 10 जून तक आयोजित होगी परीक्षा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर परीक्षा की तैयारियों का किया गया पूर्वाभ्यास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: बढ़ते हुए यह धीमे से है सब परेशान,

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आप सुन रहे हैं 747 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी लखनऊ से। आप हमारे कार्यक्रमों का प्रसारण सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित सपन चौधरी का एकल तबला वादन। ताल है झपताल।

अभी आप सुन रहे थे पंडित सपन चौधरी का एकल तबला वादन, ताल था झप ताल। और अब आइए सुनते हैं पंडित सपन चौधरी का एकल तबला वादन, ताल है रूपक ताल।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित सपन चौधरी का एकल तबला वादन, राग था रूपक ताल। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आकाशवाणी लखनऊ से वैशाली के साथ। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को संपन्न करने का वक्त हो चला है, तो दीजिए अनुमति हमें आपको नमस्कार। बने रहिए 747 किलोहर्ट्ज़ पर और सुनते रहिए आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। ये आकाशवाणी लखनऊ है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
4: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के

0: झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
1: कोलैबोरेट क्लोजली टू मेंटेन सिक्योरिटी,
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: फुल पोटेंशियल ऑफ आवर टाइम।
0: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
3: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
4: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
0: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे।

0: विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
1: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
0: और अब अन्य खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर-18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
0: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुनुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जन्मदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है।

0: भारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं के बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। सवेर के 8:15 और 6 सेकंड हुए हैं। लीजिए अब प्रसिद्ध कार्यक्रम, जी हाँ, बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम अंकुर।

0: स्वागतम, वेलकम, खुश आमदीद भाई, बहुत बहुत स्वागत है। आ गया है रविवार का दिन और बच्चों आपकी छुट्टियां भी तो शुरू हो चुकी है ना।
1: जी जी दीदी नमस्ते। दीदी हमारा भी तो पर्चे करवा दीजिए।
0: अरे अरे भाई क्यों नहीं, हरीश भैया नमस्कार और देखिए आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी दीदी कैसे हैं आप?
0: आज तो बिल्कुल ठीक है और खूब तैयारी से हैं आप भी।
1: जी दीदी बिल्कुल,
0: बच्चों का प्रोग्राम खूब एंजॉय करके करेंगे है ना।
1: बिल्कुल दीदी, और प्यारे बच्चों आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।
0: बिल्कुल सही है, और हम बता दें आपको क्योंकि छुट्टियां तो शुरू हो चुकी है ना हरीश
1: जी दीदी,
0: तो और इन छुट्टियों में अगर थोड़ा घूमने फिरने का आनंद उठाना चाहिए है ना। घूमने फिरने से ना सिर्फ हमारा माइंड फ्रेश रहता है बल्कि हमें नई से नई जगहों को देखने को मिलता है और साथ ही जानकारियां भी हासिल होती हैं। तो बच्चों तैयार हो जाइए, हम आपको लिए चलते हैं लखनऊ के चिड़ियाघर। बच्चों ये चिड़ियाघर इतना बड़ा है कि आप चलते चलते थक जाएं, लेकिन चलने का फायदा ये है कि आप पशु पक्षियों और इनके रहने के स्थान को थोड़ा करीब से जान लेंगे है ना हरीश।
1: बिल्कुल सही कहा दीदी आपने।
0: और जो बच्चे पैदल नहीं चलना चाहते तो उनके लिए बाल रेल यानी टॉय ट्रेन की व्यवस्था है जो पूरे परिवार से लेकर परिवार को लेकर पूरा चक्कर लगाती हुई आपका मनोरंजन करवाती है। पता है बच्चों इसे बहुत पसंद करते हैं और जब इसमें बैठते हैं तो छुक छुक छुक छुक
1: चलती है गाड़ी,
0: खुद ही कहते रहते हैं।
1: बच्चों आप जैसे ही इसके प्रवेश द्वार में यानी कि लखनऊ जू में एंट्री करते ही आपको चारों और हरियाली दिखाई देगी। यही नहीं, चौड़े चौड़े रास्ते और सुंदर उद्यान आपका मन मोह लेंगे।
0: बच्चों आपको इस चिड़ियाघर के बारे में थोड़ी सी जानकारी और देते चले कि लखनऊ जू उत्तर प्रदेश की सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी और इसका नाम अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के सम्मान में रखा गया।
1: और दीदी जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ शेर है ना, सफेद बाघ, तेंदुआ, और आगे बढ़ेंगे तो बहुत बड़े बड़े, और हाँ इनके जो घर हैं वो बहुत बड़े हैं।
0: अच्छा,
1: और जो बच्चों और पर्यटकों के लिए ये सबसे आकर्षक स्थानों में से एक है।
0: अच्छा तो आपने देख रखा है, आप जा चुके
1: हैं?
0: हाँ
1: दीदी हम गए हैं, और दीदी वहाँ बच्चे जो

0: तरह ना उन्हें मूंगफली खिलाते हैं,
1: अच्छा,
0: उन्हें केले खिलाते हैं।
1: अरे तो लेकिन हरीश भैया ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें ज्यादा पास में नहीं जाना
0: हाँ,
1: चाहिए,
0: दीदी
1: है ना।
0: दीदी हम देखते हैं
1: और
0: घटनाएं होती हैं कि बच्चों किसी का पैर फिसल गया, वो जहाँ शेर है उसके माँ ने पहुंच गया बच्चा,
1: अरे
0: तो ये घटनाएं भी होती हैं, तो हमें ध्यान रखें जब हम जाएं थोड़ा सावधान रहे, है ना।
1: और आजकल क्या है कि बच्चे सेल्फी ले रहे
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, दूर से अपने माता पिता के साथ

0: करना चाहिए, दूर से अपने माता पिता के साथ रहें और सावधानी बरतें और साफ सफाई का भी ध्यान रखें
1: वहां
0: पर। और बच्चों फिर हम आपको बता दें कि आप और आगे चलेंगे, इससे आगे चलेंगे तो लंबे लंबे जिराफ, हाथी और कूदते फांदते हिरण दिखाई देंगे। ये सुंदर नजारा आप देखकर कुछ समय के लिए तो वहीं ठहर जाएंगे और सोचेंगे कि भाई बाद में चलेंगे, पहले थोड़ा और बंदरों की उछल कूद देख लें ना, और फिर आगे चल पड़ेंगे तो आपको दिखाई देगा दरियाई घोड़ा, और थोड़ा आगे चलेंगे तो लंगूर बंदर, और इनकी कई प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी जिनमें गिबन भी शामिल है।
1: दीदी अगर सरीसृप ग्रह की बात करें तो इनमें कोबरा जो है वो सांप आप देख पाएंगे, अजगर, मगरमच्छ, घड़ियाल देखने को मिलेंगे जो एक बड़े तालाब में आराम से बैठे रहते हैं।
0: जब बच्चे देखते होंगे तो बड़ा खुश होते होंगे।
1: बिल्कुल दीदी, बहुत खुशी होती है
0: जी। और बच्चों जब आप बटरफ्लाई पार्क में पहुंचेंगे ना तो बस आप देखते ही रह जाएंगे। वहां पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल और पौधों पर जो तितलियों को बैठे हुए देखेंगे, उड़ते देखेंगे तो आप कहे बगैर नहीं रह पाएंगे भाई क्या कहने हैं इस जगह के। और पता है बच्चों यहीं पर बहुत बड़ा एक्वेरियम है, इसमें रंग बिरंगी मछलियां, छोटे ऑक्टोपस और कछुए भी हैं जो आपको देखने को मिलेंगे तो बड़ा खुश होंगे आप।
1: और दीदी यहीं पर प्रकृति जो है शिक्षा केंद्र भी है।
0: अच्छा?
1: जहां बच्चों को पर्यावरण और वन्य जीवों के बारे में जानकारी मिलती है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है हरीश भैया, एक तो बच्चों का जो है मनोरंजन भी हो रहा है
1: जी।
0: और जानकारी भी मिल रही है चिड़ियाघर में। तो बच्चों लखनऊ जू में जो है राज्य संग्रहालय भी स्थित है जहाँ ऐतिहासिक वस्तुएं और पुरातात्विक संग्रह देखे जा सकते हैं। छुट्टियों को फुल एंजॉय करने के लिए अपने माता पिता के साथ जरूर जाएं, और वो भी अगर पूरा परिवार हो तो फिर क्या
1: कहने।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: तो हरीश भैया, ये बताइए, जब आपके स्कूल की छुट्टियां हुआ करती थी तो क्या क्या धमा चौकड़ी मचाया करते थे आप?
3: अरे दीदी, कुछ मत पूछिए। दीदी, हमारा तो बचपन हमारे गांव में बीता था छुट्टियों के दौरान। तो वहाँ हमारे एक बाग था, वहाँ पेड़ थे आम के। तो हमारे ताऊ के बच्चे, चाचा के बच्चे, हम लोग जो है मिट्टी के बर्तनों में है ना खाना बनाते थे वहाँ।
2: मतलब सारे बर्तन इकट्ठे करके
3: बाग में भाई खेलते थे। और घेरे में बैठकर घोड़ा बादाम खाई, पीछे देखो मार खाई।
2: अच्छा।
3: तो रूमाल का या गमछे का
2: जी, कोड़ा बना लिया,
3: जो देखा पीछे उसको मारा बहुत तेज पीठ में। तो दीदी ये सब खेलते, और जो साइकिल के होते पहिए होते टायर, तो उसमें दो लोग टायर थे और हम लोग
2: कंपटीशन
3: जी डंडी मार के भगाते थे कौन दूर जाएगा।
2: अरे भाई क्या बात है। और ये होता था कि हरीश भैया के जब
3: हाँ दीदी तालाब था वहाँ। अच्छा। तो वहाँ हमारे पास भैंस थी, तो उसे वहाँ गाय भी थी, तो उसे नहलाना और उसमें कूदना।
2: अच्छा, तालाब में। तालाब में तो कुछ तैरना वगैरह आ गया है?
3: दीदी दीदी भूल गए, पर पहले अभ्यास में था, पर अब शायद नहीं तो तैर पाएंगे।
2: अच्छा, तो चलिए कोई बात नहीं है। और क्योंकि देखिए छुट्टियां चल रही है, बच्चे पूरा एंजॉयमेंट के मूड में होंगे, और कोई अपने ननिहाल गया होगा तो कोई ननिहाल गया होगा।
3: और दीदी ऐसे मौसम में तरबूज, खरबूजा और ककड़ी, खीरा और तमाम तरह के जो मौसमी फल हैं, इनका भी आनंद खूब मिलता था दीदी।
2: हाँ भाई क्या बात है। तो हम अगले पड़ाव की ओर चलते हैं, है ना?
3: हाँ दीदी।
2: प्यारे बाल साथियों, क्या आप जानते हैं कि अंतर्गत अब हम जानेंगे कॉमनवेल्थ गेम के बारे में, क्योंकि खेलों की बात हो रही है।
3: हाँ दीदी, तो नाम सुना है मैंने भी, टीवी पे देखे थे ये गेम।
2: अरे बड़े एंजॉयमेंट होता है इसमें।
3: हाँ दीदी,
2: बच्चों शिक्षा के साथ साथ आपको खेलों की ओर भी रुझान देना चाहिए, क्योंकि खेल खेलने से हम हष्ट पुष्ट रहते हैं, तो दूसरी ओर हमारा मानसिक विकास भी बहुत अच्छा रहता है। तो बाल साथियों, हम बात कर रहे थे कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। बच्चों ये मल्टी स्पोर्ट यानी प्रतियोगिताओं में से एक है, और ये प्रतियोगिता प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित की जाती है। अगर सबसे पहले की अगर हम बात करें तो 1930 में कनाडा शहर में ये जो है मिल्टन में आयोजित हुई थी, और उस समय इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था।
3: हाँ दीदी, मैंने पढ़ा है कि पहले खेलों में 11 देशों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था।
2: सबसे पहले, बिल्कुल हाँ। सही आपने पढ़ा हरीश भैया। आपकी जानकारी में हम और इजाफा करते हुए बताएं तो कॉमनवेल्थ गेम्स प्रत्येक 4 वर्षों में होते हैं। इन गेम्स में एक खास बात और है बच्चों, वो ये कि इनमें दिव्यांग खिलाड़ियों को भी प्रतियोगिता में शामिल किया जाता
3: जी,
2: है।
3: दीदी, हाँ, देखा दीदी हमने।
2: और
3: बिल्कुल
2: सही आप बता रहे हैं कि इसमें कई तरह के खेल शामिल किए जाते हैं, जैसे एथलेटिक्स, तैराकी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, कुश्ती, हॉकी, स्क्वैश, साइकिलिंग, जिमनास्टिक और भारोत्तोलन।
3: दीदी इसमें टेबल टेनिस और बास्केटबॉल भी शामिल है।
2: हाँ बिल्कुल सही बताया आपने। और बताएं आपको बच्चों, 2010 में भारत की राजधानी दिल्ली ने कॉमनवेल्थ गेम्स की बड़ी जबरदस्त मेजबानी की थी, और बड़ा अच्छा लग रहा था जब दूरदर्शन पे हम इसे देख रहे थे हरीश भैया।

0: बड़ा आनंद आ रहा था। और पिछली लास्ट 2022 में इंग्लैंड में हुए थे ये गेम्स, अब 2026 में स्कॉटलैंड में होंगे।
1: और दीदी, इन गेम्स में सबसे अधिक पदक जीतने वाले जो देश हैं वो पता कौन कौन से?
0: कौन कौन से?
1: एक तो ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, कनाडा, और दीदी अपना भारत भी शामिल है।
0: भाई वाह, क्या बात है। बच्चों, आपके आपको हम बता दें कि इन गेम्स को फ्रेंडली गेम्स भी कहा जाता है। और पता है 2018 में पहली बार पुरुषों और महिलाओं के लिए पदक स्पर्धाओं की संख्या बराबर रखी गई थी।
1: अच्छा दीदी।
0: हाँ, और बच्चों बड़ा ही अच्छा लगता है ना कि जब अपने देश के खिलाड़ी जीतते हैं, अपने देश का नाम रोशन करते हैं, तो मानो लगता है हम किसी से कम नहीं।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: और हरीश भैया,
3: हाँ दीदी,
2: अब बच्चों को हम थोड़ा प्रकृति के करीब लिए चलते हैं।
3: हाँ,
2: है ना
3: जी दीदी।
2: तो प्यारे बच्चों, क्योंकि प्रकृति जो है बहुत सुंदर है, जैसे पेड़ पौधे, झरने, पहाड़, नदियाँ, हमें अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में से कुछ समय निकालकर प्रकृति के करीब रहना चाहिए, है ना हरीश
3: जी? बिल्कुल दीदी।
2: क्योंकि प्रकृति के करीब बिताया गया हर पल हमारे मन, शरीर और आत्मा को नई ऊर्जा देता है।
3: बिल्कुल।
2: स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तनाव कम होता है, मन को एक कुदरती तौर पर सुकून मिलता है। आप दिन भर अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं, है ना?
3: और दीदी, अब तो बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो सुबह उठने की आदत को बनाए रखें
2: जी।
3: और दिन भर के जो उनकी दिनचर्या शेड्यूल है उसमें अपने माता पिता के साथ अपने आसपास के जो गार्डन है या बाग बगीचा है वहां जरूर घूमने जाएं। इससे क्या है कि आपको जो व्यायाम का जो
2: चलने फिरने का जो व्यायाम है
3: वो चलती रहेगी,
2: आदत बनी रहेगी। और बच्चों आपको बता दें कि प्रकृति के करीब जाने से शुद्ध और ताजी हवा मिलती है, शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है,
3: बिल्कुल
2: ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है, और साथ ही आपको हम बताएं सकारात्मक सोच विकसित होती है। और हरीश भैया, बच्चों को जैसे मिट्टी है, अगर गार्डन में लेके जा रहे हैं तो मिट्टी में खेल रहे हैं तो खेलने दीजिए उन्हें थोड़ी देर
3: जी। आजकल दीदी मिट्टी की जगह पे किले, जो आपने सुना है
2: जी,
3: किले आ गई, बच्चे किले से ही सारे आइटम बनाते हैं, चाहे वो
2: किसी
3: मूर्ति हो, मूर्ति हो, बर्तन हो। दीदी हमारे जमाने में दीदी मिट्टी लाकर हम लोग मिट्टी को गूंदते थे पानी से, फिर गूंद के उसी से बर्तन, चूल्हा और ये सब चीजें खेल में हमारे शामिल थे।
2: आपकी इन बात से हमें एक बात याद आ गई, हमारे फिफ्थ क्लास में जो था, फोर्थ क्लास में भी हमें मिट्टी के बर्तन बनाने को कहा था, तो हमने मिट्टी के बर्तन बड़े सुंदर बनाए और जो पांच फल बनाए हमने उस पे पेंट किया।
3: जी, जी, जी, जी, जी।
2: अगर केला है तो केला पीले कलर का है और सेब है तो उसको उसी हिसाब से हमने जो है नेचुरली कलर देते हुए
3: जी।
2: तो हम बता दें आपको, वो बड़े पसंद किए गए और सभी बच्चे लाए बनाकर, तो उसमें सबसे अच्छे हमारे थे।
3: दीदी मालूम है आपको यही दुखद है, अब बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए स्कूल में कहा गया कि आपको फल लाने हैं, तो बच्चा अपने पापा को ले गया बाजार, पापा चलो ले आए, वहां से प्लास्टिक वाले खरीद लाए। अगर वही पिताजी मिट्टी कहीं से ले आए और प्रयास करें कि उससे बनवाएं, है ना, जो बच्चों की रुचि, उसे रंग करें, तो बात ही अलग है उसकी।
2: एक तो बच्चों को क्या होगा कि एक सीखने की उनके
3: जी जी ललक पैदा होगी,
2: और दूसरी बात ये है वो मिट्टी से जुड़े रहेंगे
3: जी।
2: और हरीश भैया, तो ये सब बातें आजकल कहाँ रही है, और करना चाहिए हम तो कहते हैं।
3: बिल्कुल दीदी, रेडीमेड सब जाते हैं और ले आते हैं, तो उसमें कोई सीखने की क्षमता नहीं बचती है।
2: इसी के साथ ही हम अंकुर कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने बड़े श्रोताओं और बच्चों के माता पिता से कहना चाहते हैं, बच्चों को प्रकृति से जोड़े। जब आप उन्हें गार्डन लेकर जाएं तो पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी दें, उनके लाभ बताएं, पेड़ पौधे ना होने से हमें कितना नुकसान हो सकता है इसके बारे में बताएं, है ना हरीश भैया?
3: दीदी मालूम है आपको, हमारी आकाशवाणी बरेली ने इस बार बहुत पौधे बांटे हैं।
2: हाँ, बहुत बांटे हैं, बिल्कुल सही।
3: तो आप लोग भी अपने आसपास पौधे लगाएं,
2: पौधे लगाएं जी,
3: बच्चों को प्रेरित करें सोर की, भाई वो भी पौधे लगाएं।
2: बिल्कुल सही कहा, और बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, आने वाला कल हैं, इसलिए इन्हें अच्छी अच्छी बातों से जोड़िए, इनकी सोच सकारात्मक बनाइए, बच्चों से अच्छी अच्छी बातें करें और उन्हें कहानियाँ सुनाएं। और हरीश भैया, हम तो कहेंगे कि बच्चों से कहें कि एक टॉपिक दे दें और इस पे 10 लाइनें लिखें।
3: बिल्कुल,
2: तो उनके जो है लिखने में उनके शब्दों की भरमार होगी, और दूसरी बात यह है वो बोलने में भी परफेक्ट होंगे। तो बच्चों को ये छोटे छोटे काम देते रहना चाहिए।
3: और दीदी कहानियां सुनाएं बच्चों को ना, पहले जो हमारे मामा थे वो पूरी जंगलों की कहानियां, कि जंगल में डाकू रहते थे, जंगल में पशु पक्षी बोलते थे आपस में,
2: तो
3: रानियां थी, परियां आती थी, तो इस तरह की कहानियां भी जहन में जो जंगलों से होकर लोग गुजरते थे वहां, काफी चीजें हैं जो आप जोड़ें बच्चों को पुरानी चीजों, तो बेहतर रहेगा।
2: बिल्कुल सही कहा।

0: और देखिए, जब कहानियाँ हमारे दादी दादा सुनाया करते थे तो एक तो हमें अपने बुजुर्गों के साथ रहने का समय मिलता था, है ना, उनसे अच्छी बातें जानने को मिलती थी। और पुराने वक्त की जब वो बातें किया करते थे तो मन करता था कि उनसे जुड़े रहें, उनसे बहुत सी बातें करते रहें, बहुत सी बातें सीखते रहें। तो इसीलिए अपने बुजुर्गों के पास भी बैठें, उनसे कुछ अच्छी बातें सीखें, है ना
1: जी दीदी।
0: तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: तो दीदी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: बिल्कुल हरीश भैया, और जो बच्चे होते हैं ना, बहुत प्यारे होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, तो इन छोटे छोटे बच्चों से हमें छोटे छोटे काम भी करवाते रहना चाहिए,
0: है ना? जरूरी है,
1: क्योंकि बचपन से ही आदत पड़ती है इस काम की। अगर बच्चे हैं, अब देखिए छुट्टियां चल रही हैं, तो हमें बच्चों से जो है छोटे छोटे काम, जैसे मम्मी साफ सफाई कर रही हैं, तो बच्चे उसमें हेल्प करें, है ना, अपने कमरे की सफाई करें, और सफाई करने के साथ साथ अपना जैसे कि

0: उनकी पढ़ाई का रूम है और अपने घर का लॉन भी है, तो उसमें
1: बिल्कुल।
0: साथ में लग जाए, साफ सफाई करें।
1: और यदि अभी हमने एक इंटरव्यू आ रहा था माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे
0: अच्छा
1: प्रदेश के जो मुखिया है मुख्यमंत्री जी,
0: जी
1: उन्होंने कहा कि बच्चों से आप स्कूल में भी काम करवाएं, वो
0: हाँ
1: गुनाह नहीं है। अगर आप मान लीजिए तो बच्चे क्या है उसमें सीखने की क्षमता बढ़ती है ना, ललक बढ़ती है।
0: बिल्कुल सही
1: तो
0: कहा,
1: अगर मान लीजिए क्लासरूम है ना, आप वहाँ कागज हैं या टुकड़े पड़े हैं कागज, तो वो साफ कर दें, या कोई दीवारों पर
0: साफ
1: मतलब
0: सफाई कर
1: जी
0: लेकर
1: कोई
0: है वो
1: चिंगा
0: भी
1: पोती
0: कर
1: कर
0: दें।
1: रहा है तो
0: हाँ
1: उसको
0: हाँ
1: आप हटा दें,
0: तो ये कोई बुरी बात
1: नहीं
0: नहीं
1: बुरी
0: है।
1: बात नहीं। यदि सफाई
0: और
1: का तो महत्व चाहे घर में हो या विद्यालय, जहां आप बैठते हैं वहां सफाई तो आवश्यक है ही।
0: बिल्कुल
1: और यदि आपके विद्यालय में प्रांगण है, खुला एक मैदान है, तो आप चाहे तो जामुन के पेड़ है ना, नींबू
0: हाँ,
1: का पेड़, नीम का पेड़, पागल का पेड़ आप लगाएं,
0: यानी कि
1: ताकि आप
0: छायादार
1: जी
0: वृक्ष
1: अब
0: लगाएं।
1: क्या होगा जब विद्यालय में वृक्ष होंगे तो वहां चिड़िया भी आएंगी, बंदर भी आएंगे और तमाम तरह के पक्षी भी आएंगे, तो उससे क्या है आपका विद्यालय का जो माहौल है वो हरा भरा रहेगा
0: हाँ
1: दीदी।
0: हाँ भाई क्या बात है हरीश भैया।
1: और
0: और
1: दीदी इस
0: जी
1: गर्मी के मौसम में पेड़ों की बहुत याद आती है
0: अरे एक बात याद आई हमें कि हमारे एरिया में एक पेड़ है,
1: जी।
0: अरे उसके नीचे बैठ करके इतनी ठंडी हवा आती है कि हम क्या बताएं। तो देखिए पेड़ जो होता है बड़ी ठंडी हवा देता है, और आजकल देखिए एसी वगैरह चल रहा है, इससे गर्मी हो गई है बहुत ज्यादा।
1: बहुत दीदी
0: तो हम तो कहते हैं अपने घर के आसपास एक बड़ा सा पेड़ लगाना चाहिए, छायादार वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है बच्चों। और
1: बिल्कुल
0: जब आप पेड़ लगा रहे हैं ना, तो उसकी बड़े होने तक उसकी देखभाल भी करें, उसे समय से पानी दें और उसका ख्याल रखें, है ना।
1: और दीदी अभी तो गर्मी के मौसम है, बहुत तेज धूप रहती है, तो बच्चे अगर चाहें, बच्चे फ्री हैं तो अगर छत पे मान लीजिए अभी पानी रखते हैं,
0: हाँ पानी है, दाना
1: चिड़िया
0: है,
1: पक्षी जो है ना वो बेचारे तड़प रहे हैं प्यास के लिए,
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और कहीं अब आप गाय देख लीजिए, गाय हैं या नंदी जो बैल हैं वो सड़कों पर मिल जाए, तो उन्हें भी आप पानी पिला दीजिए।
0: अपने घर के आसपास एक बड़े
1: हाँ
0: से तशले में पानी रख सकते हैं, और जो छत पर है अपने एक मिट्टी के कुंडे में
1: जी
0: पानी
1: जी
0: रखें, एक मिट्टी के बर्तन में दाना भी रख दें। और ऐसा होता है कि अक्सर हमारे हम खाना वाना बनाते हैं तो बहुत से
1: हाँ
0: चावल दाल बच
1: जी
0: जाते
1: दीदी
0: हैं, तो उन्हें बर्बाद ना करें,
1: हाँ उन्हें पन्नी में लोग बांध फेंक रहे हैं गटर में, उसको
0: बहुत
1: उसको ना
0: गलत है।
1: फेंके आप। अगर कोई आपको दिख रहा है आसपास कोई कुत्ता है या कोई बंदर है या गाय है, तो उसे आप खिला दे बर्तन में रखकर, कोई दिक्कत नहीं है
0: तो
1: उससे
0: आपको पुण्य भी मिलेगा,
1: जी।
0: और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हरीश भैया, और हम जो देख रहे हैं आजकल छोटे छोटे से बच्चे हैं वो फोन पर रहे लगे हुए
1: हाँ
0: हैं,
1: दीदी
0: अगर वो रो रहे हैं तो उनकी मम्मी ने उन्हें फोन दे दिया है, वो चुप हो गए,
1: चुप
0: तो
1: हो
0: ऐसे
1: गए
0: ना करें बल्कि खुद ही कविता सुनाए ना तो
1: जी दीदी।
0: बच्चे
1: नहीं दीदी, अगर बच्चा जैसे मान लीजिए 10th में है या 9th में है, तो अगर कुछ ऐसा समझ में आपको नहीं आ रहा है सवाल, तो आप फोन की सहायता ले लें अगर आवश्यक है तो। ऐसा ना हो कि काम निकल गया है तो आप दिन भर फोन चला रहे हैं, वो गलत है।
0: वो गलत है। और देखिए आपसे ही तो बच्चे सीखेंगे,
1: बिल्कुल
0: और अगर जब आप ही सही चलेंगे तो बच्चे भी हमारी अच्छी बातें सीखेंगे। तो इसीलिए फोन से बचाएं, बच्चों को अपने इधर उधर ले जाएं, कुछ कविताएं छोटी छोटी सी खुद भी लिखिए और बच्चों को
1: जी।
0: भी लिखने की आदत डालिए
1: अभी
0: उसमें।
1: ड्राइंग बनवाएं का अगर पेपर दे दें, आप कहें कि आप चित्र बनाइए, अच्छी अच्छी सी ड्राइंग कीजिए, सुबह के चित्र की है, शाम की चित्र की है।
0: और पता है सबसे अच्छी बात ये भी कर सकते हैं कि आप घर में जो आपका बेकार सामान पड़ा है उससे क्राफ्ट का सामान
1: हाँ
0: बना
1: दीदी
0: लें,
1: बिल्कुल दीदी,
0: कुछ नई नई चीजें बन जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास
1: गुलदस्ता है दीदी,
0: गुलदस्ता है जी,
1: फूलदान
0: कोल्ड
1: है
0: ड्रिंक
1: दीदी
0: की बॉटल होती
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: देखिए
1: जी
0: उनको ऊपर वाला हिस्सा काट
1: हाँ हाँ
0: करके और उसमें मिट्टी भर करके पौधा लगा सकते हैं और उसे टांग सकते हैं, तो
1: बिल्कुल
0: बच्चे भी
1: दीदी
0: सीखेंगे और घर में जो बेकार पड़ी चीजें हैं वो भी काम में आ जाएंगी। वॉल हैंगिंग है, पेन स्टैंड है, किश्ती है, ये चीजें जो हैं जो आप स्पून होते हैं लकड़ी
1: जी
0: वाले
1: जी जी जी
0: आइसक्रीम
1: जी
0: वाले
1: जी दीदी
0: स्टिक, तो उन्हें ला करके आप घर में बना सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो कितनी सारी चीजें बन जाएंगी, है ना
1: दीदी, करने का तो बहुत कुछ
0: जी।
1: है ना, और बच्चों को करना भी चाहिए छुट्टियों
0: और
1: में।
0: ये सब बातें अगर कर लेंगे या ये चीजें बनाएंगे और अपने क्लास में लगाएंगे तो उनकी कितनी तारीफ होगी
1: बिल्कुल
0: कि
1: बिल्कुल
0: भाई
1: दीदी,
0: हमारा छुट्टियों का सही उपयोग हुआ है ना।
1: उनका समय का सदुपयोग बहुत जरूरी दीदी। तो दीदी बच्चे हमारी बात को सुन रहे होंगे और जरूर अमल करेंगे, छुट्टियां भी काफी बची हैं तो उनका सदुपयोग भी करेंगे।

0: क्या मेडिकल?
1: पापा को दीपू से,
2: मम्मी को मुन्नी से प्यार है।
0: क्या मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
3: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
4: और हरीश भैया, हाँ, जैसे कि हम छुट्टियों पे बात कर रहे हैं और बहुत से बच्चे अपने माता पिता के साथ घूमने जा रहे होंगे,
5: हाँ, हाँ, दीदी।
4: तो सबसे बड़ी बात यह है, सफर कर रहे होंगे बस में ट्रेन में, तो अपने माता पिता के साथ रहें।
5: हाँ दीदी, साथ रहें और साफ सफाई का ध्यान रखें। दीदी, अभी हम पूर्णागिरी के मेले में गए थे,
4: अच्छा,
5: तो वहाँ अनाउंस हो रहा था कि ये इस नाम का बच्चा यहाँ खड़ा है और वो अपना नाम ये बता रहा है, ये गांव बता रहा है।
4: अरे,
5: तो दीदी बड़ा दुख हुआ,
4: बच्चा छूट गया।
5: हाँ,
4: अपने
5: छूट
4: माता
5: गया
4: से।
5: तो दीदी कई बच्चों के नाम आ रहे थे उसमें, तो आप जब भी बच्चों के साथ जाएं तो उनका हाथ पकड़े रहें,
4: हाथ पकड़े रहें। और एक क्या करें कि एक कागज पर लिख करके नाम और एड्रेस फोन नंबर वगैरह उनकी जेब में डाल दें।
5: जी जी जी,
4: ताकि आसानी रहे, है ना
5: जी। खैर बच्चा मिल गया बाद में, लेकिन फिर भी थोड़ा साधारण रहें, अपना घूमते रहें, तो अपने बच्चों हाथ थामे रहें, फिर कहीं घूमें।
4: और ऐसी जगहों पे जा रहे हैं आप, तो बच्चे क्या करते हैं कि टॉफियां खाली हैं, ये खाली हैं, तो उसके रैपर इधर उधर डाल दिए, तो
5: हाँ,
4: ऐसा भी ना करें। अपने बैग में रख लें, फिर देखें कोई डस्टबिन है तो वहां पर डाल दें, है ना
5: दीदी।
4: और बच्चों, अब बारी आ गई है आज के 5 सवालों की। तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी

0: नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है?
1: सवाल नंबर दो है बच्चों, आप लिख लें। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? जी हाँ, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है?
0: और तीसरा प्रश्न है बच्चों, हिंदी के कवि कबीरदास जी को कौन से काल का कवि कहा जाता है? हिंदी के कवि कबीरदास जी को कौन से काल का कवि कहा जाता है या माना जाता है, बताइए आप।
1: सवाल नंबर चार है, शतरंज खेल में कुल कितनी गोटियां होती हैं? जी हाँ, शतरंज खेल में कुल कितनी गोटियां होती हैं?
0: और बच्चों आखिरी प्रश्न में हम एक मुहावरा पूछ रहे हैं जिसका केवल आपको अर्थ बताना है। मुहावरा है, गागर में सागर भरना। और बाल दोस्तों, पिछले संडे जो आपसे सवाल पूछे थे उनके जवाब हम दिए देते हैं। भारत में दिए जाने वाले कोई दो वीरता पुरस्कारों के नाम बताइए बच्चों, परमवीर चक्र और अशोक चक्र। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, महाराष्ट्र की लोक कला का क्या नाम है बच्चों, तो इसका उत्तर है रंगोली। और तीसरा प्रश्न था, बेसबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बच्चों 11। और चौथा प्रश्न था, आदान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो बच्चों प्रदान। पांचवा और आखिरी प्रश्न था, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो बच्चों इसका उत्तर है गोवा। और क्योंकि आज तो भाई बहुत मनोरंजन हो गया है हरीश भैया, तो एक गीत और सुनेंगे भाई
1: जी दीदी।

0: और अब हमारे पास कुछ पत्र भी आए हुए
1: हाँ
0: हैं,
1: दीदी,
0: तो हरीश भैया हम आपके हाथ में देख रहे हैं, कहाँ से आया है जरा
1: दीदी
0: बताएं।
1: ये पत्र है ग्राम करली पानी मस्जिद बरेली से हैं। शाजिया भी अंसारी, शगुफ्ता भी अंसारी, मोबीन जहां अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, लालू भैया अंसारी और लाल मोहम्मद अंसारी, इनके पांचों सवाल दीदी सही हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही है। और हम बता दें यह अगला लेटर हमारे पास आया है छावनी अशरफ खान से, और लिखने वाले हैं हम आपको बता दें इनके परिवार के सभी सदस्य हैं, मनोरमा देवी हैं जिनमें और राम प्रसाद शर्मा हैं। इन्होंने इनके पांच में से पांच सवालों के जवाब बिल्कुल सही हैं।
1: दीदी ये पत्र है गंजनडुबारा से हैं मुनब्बल अल्लाह भाई, इनके भी सवाल सही हैं सभी।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखिए हरीश भैया इनके ये चित्र देखिए, मिक्की एंड डोनाल्ड बना हुआ है,
1: हाँ
0: कितना
1: बहुत
0: अच्छा पतंग
1: बढ़िया
0: भेजा है
1: पत्र
0: ना
1: भेजा
0: इन्होंने।
1: है जी दीदी।
0: और ये आया ग्राम शंकरपुर पोस्ट ओसावा दातागंज से, लिखने वाले हैं पुष्पेंद्र यादव, सरोज यादव, सोनी यादव और इनके परिवार के सभी सदस्य, और इनके पांच में से पांच सवालों के जवाब बिल्कुल सही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हरीश भैया हम
1: जी
0: चलते
1: दीदी
0: चलते कार्यक्रम का पता बताए देते
1: हाँ
0: हैं।
1: हाँ
0: कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम अंकुर द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली, पिन कोड है 2430001। और इसी के साथ हमें दीजिए

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 एफएम पर। सुबह के 9 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुति प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन।
1: प्रस्तुत है गंगवार बाल चिकित्सालय निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन।
2: गंगवार हॉस्पिटल निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली।
3: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा।
2: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी।
3: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड।
2: सांस नियंत्रण के लिए सीपैप वेंटिलेटर HFNC और ईयर वो मशीनें।
4: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए
2: खास तरह के वेंटिलेटर HFO ऑक्सीलेटर क्रिटिकल थेरेपी हाइपोथेरेमिया।
3: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM बेड साइड इको अल्ट्रासाउंड की सुविधा।
2: साथ ही बच्चों में पीलिया सेप्टिक इन्फेक्शन निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा। बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
1: गंगवार हॉस्पिटल
2: निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली।
4: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
5: कार्यक्रम है स्वस्थ बचपन। मैं हूं मुकेश कुमार पांडे और मेरे साथ मौजूद हैं बरेली के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका।
6: सभी श्रोताओं को पांडे जी आपको मेरा नमस्कार।
5: डॉक्टर साहब कई बार ऐसा होता है बच्चे का जन्म हुआ और जन्म सामान्य हो गया लेकिन बच्चा रोता नहीं है। माता पिता सोचते हैं थोड़ी देर में रोएगा। ये वाकई में है क्या? क्या कोई बीमारी का संकेत है या बच्चे के साथ कुछ असाधारण बातें हो रही हैं उस बात की ओर संकेत करता है?
6: देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है पैदा होने के तुरंत बाद बच्चा रोता है
5: जी,
6: ये एक नॉर्मल चीज। एक्चुअली क्या होता है, जब बच्चा माँ के पेट में है गर्भ में है
5: जी,
6: तो वहाँ पर उसको जो ऑक्सीजन मिल रही है
5: जी
6: और जो उसके लंग्स काम नहीं कर रहे होते
5: हाँ,
6: वो ऑक्सीजन उसको माँ के ब्लड के जरिए मिलती
5: है। अच्छा।
6: लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसके लंग्स ओपन होते, रोता है बच्चा
5: जी,
6: और उसके अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस चलना शुरू होती है।
5: अच्छा।
6: माँ के पेट में बच्चे को दिल की धड़कन होती है लेकिन सांस अपनी नहीं चल रही होती।
5: अच्छा अच्छा। उस समय डॉक्टर साहब वो सांस कहाँ से आती है?
6: सांस का जो हमारा मकसद है वो ऑक्सीजन लेना
5: जी,
6: कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को लेना
5: जी,
6: तो वो दोनों काम माँ के ब्लड के थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू होता है।
5: अच्छा,
6: है ना,
5: यानी जो गर्भनाल होती है उसके माध्यम से ऑक्सीजन मिलती है,
6: ऑक्सीजन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा रोता है तो उसके फेफड़े खुलते हैं और फेफड़े खुलने के साथ वो सांस लेना शुरू करता है और जब सांस लेना शुरू करता है तो वो जो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन पे आ जाता है।
5: अच्छा।
6: तो ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है वैसे तो अपने आप में, लेकिन कुदरत ने अपने हिसाब से मॉडिफाई करके इसको बना रखा है कि प्रत्येक बच्चा पैदा होने के बाद होता है।
5: अच्छा।
6: बच्चा पैदा होने के बाद कम नहीं रोता है
5: जी।
6: अगर बच्चा पैदा होते समय फंसा रह जाए।
5: अच्छा।
6: पैदा होने में टाइम ज्यादा लग जाए
5: जी।
6: या माँ का लाइकर है लिकर है तो वो जो फ्लूड जिसमें बच्चा होता है
5: जी जी।
6: वो निकल जाए और बच्चे की पैदाइश ना हो पाए।
5: अच्छा।
6: या बच्चे कई बार माँ के गर्भ में ही है ना अपना मल विसर्जन कर दे।
5: अच्छा।
6: है ना, पॉटी कर दे
5: जी।
6: तो वो पानी जिस पानी में बच्चा है वो पानी गंदा हो गया, फिर वो गंदा पानी कई बार सांस में ले लेता है जिसको हम लोग मिकोनियम एस्पिरेशन बोलते हैं
5: जी।
6: तो ये बच्चे भी कई बार पैदा होने के बाद ठीक से नहीं रोते या बिल्कुल नहीं रोते
5: जी।
6: तो इस कंडीशन को कहते हैं वर्थ एनोक्सिया या वर्थ एस्पेक्सिया, और जब ये तकलीफ बच्चों में होती है तो उसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी हाइपोक्सिक इश्चेमिक एंसेफ।

0: लग गई थी।
1: अच्छा।
0: इसमें जैसे बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया, फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चा नीले पड़ने लगता है, फिर उस बच्चे को किन्हाना शुरू कर देता है अगर थोड़ा बहुत उसमें हो, या फिर बच्चा बिल्कुल लिम्प होता है, कोई सांस वांस होती नहीं, तो बच्चे को तुरंत आपको इलाज शुरू करना होता है
1: जी,
0: है ना, उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन देना होता है, या आपके पास उस समय कृत्रिम सांस देने का कोई तरीका तो उससे सांस दी जाती है, और फिर बाद में उस बच्चे का जो सबसे आधुनिक इलाज है
1: जी जी
0: आज की तारीख में, जो बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोता है, जिसको दौरे पड़ने लगते हैं और जिसको ये लगता है कि बच्चे को हाइपोक्सिक इश्मिक एन्सेफेलोपैथी में बच्चा जा रहा है,
1: अच्छा
0: है ना
1: जी,
0: तो उस बच्चे के लिए 6 घंटे के अंदर एक अच्छे नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ के पास पहुंच जाना चाहिए
1: जी।
0: और उसका जो इलाज है वह होल बॉडी हाइपोथर्मिया, बच्चे के शरीर को पूरे शरीर को 72 घंटे के लिए ठंडा करते हैं। ठंडा करने से क्या होता है कि बच्चे का जो ब्रेन डैमेज है वो कम हो जाता है, बच्चे की जो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है, जिससे बच्चे को नुकसान कम होता है। अगर ये ना करें तो ये बच्चे अक्सर चल के बाद में सेरिब्रल पैल्सी होने का डर रहता है, इसको स्टैटिक एन्सेफेलोपैथी भी बोलते हैं
1: जी।
0: उसमें बाद में बच्चे का जो दिमाग का ग्रोथ है, डेवलपमेंट है
1: जी,
0: वो स्लो हो सकता है, बच्चा देर से बैठना, देर से चलना, देर से बोलना, कई बार बच्चे को दौरे पड़ना
1: जी,
0: या बच्चे को सुनाई नहीं पड़ना, या बच्चे के देखने में दिक्कत आना, ये सब तरह की परेशानी होती है, बच्चे को बाद में और मानसिक विकलांगता हो सकती है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़ी गंभीर बात है, इस बारे में आगे भी बात करेंगे, लेकिन पहले सुनना चाहेंगे आपकी पसंद का गीत,
0: जब दीप जले, यशोदास की आवाज़,
1: चित्तचोर फिल्म का गीत है, यशोदा और डॉक्टर कुलदीप गंगवार की पसंद पर।

0: परिस्थिति वो होती है जबकि बच्चा बिल्कुल नहीं रोता ये पैदा होने के तुरंत बाद। एक परिस्थिति ये भी आती है कई बार कि थोड़ा समय के बाद बच्चा रोया रोया तो, लेकिन थोड़ा समय लेने के बाद रोया, तो क्या ये भी?
1: हाँ, ये भी अपने आप में गंभीर स्थिति हो सकती है आगे चल के
0: जी।
1: इसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक तो बच्चा बिल्कुल नहीं रोया
0: जी,
1: उसको तो तुरंत इलाज मिलना जरूरी है। एक बच्चा शुरू में रोया फिर बच्चा शांत हो गया,
0: अच्छा
1: बच्चा नीले पड़ना लगा, बच्चा किनाना शुरू कर दिया, किनाना में ग्रंटिंग शुरू हो गई
0: जी जी,
1: तो इस बच्चे को भी तुरंत इलाज की जरूरत है।
0: अच्छा,
1: और अगर बच्चा पैदा होने के बाद थोड़ी देर बाद रो गया और बाद में फिर बहुत ज्यादा रोया
0: जी जी,
1: तो वो भी अपने आप में एक गंभीर बात है, क्योंकि एक्सेसिव क्राई इज इक्वलेंट टू सीजर्स।
0: अच्छा,
1: अगर कोई नवजात शिशु पैदा होने के बाद बहुत अधिक रोता है तो इसको मतलब एक तरह का वो हो सकता है उसको ब्रेन इरिटेबिलिटी हो रही हो, वो एक दौरे जैसी स्थिति होती है।
0: यानी दौरे पड़ जाते हैं?
1: दौरे पड़ जाते हैं, कुछ बच्चों को दौरे नहीं पड़ते, सिर्फ वो रोते ही रोते हैं।
0: जी,
1: तो उसको ब्रेन इरिटेबिलिटी होती है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज्यादा रोता है, बच्चा दूध नहीं पीता या दूध बहुत कम पीता है, या बच्चा खिनाना शुरू कर देता है, बच्चा नीला पड़ना शुरू हो जाता है
0: जी।
1: तो ये सब इस तरह की परेशानियां होती हैं।
0: इलाज के बारे में डॉक्टर साहब आपने कहा कि हाइपोथर्मिया एक इलाज की तकनीक है जिसके माध्यम से ऐसे बच्चों का आप लोग इलाज करते हैं
1: जी,
0: तो ये किस तरह की तकनीक है और क्या इलाज के बाद की परिस्थिति क्या होती है, बच्चे की स्थिति क्या होती है?
1: देखिए, जो बच्चे पैदा होने के बाद नहीं रोते उनके लिए जो आज की तारीख में सबसे उत्तम इलाज है वो थेरेपेटिक होल बॉडी हाइपोथर्मिया।
0: अच्छा।
1: वो एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसमें बच्चे का टेम्परेचर हम लोग 34 डिग्री या 34.5 डिग्री जो नॉर्मल तापमान से 2.5 से 3 डिग्री कम रखते हैं।
0: अच्छा।
1: ये 72 घंटे के लिए करते हैं। इसमें जरूरी होता है कि बच्चे का वजन 2 किलो से ऊपर हो।
0: अच्छा।
1: और ये जरूरी है कि बच्चा 6 घंटे के अंदर आपके पास पहुँच जाए
0: जी।
1: तो इसको शुरू करते हैं और 72 घंटे तक इसको चलाते हैं और उस टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर रखते हैं। तो उसके लिए ये भी जरूरी है कि आपके पास मॉनिटरिंग सिस्टम हो।
0: बिल्कुल।
1: तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो मॉनिटर है वो है सेरेब्रल फंक्शन मॉनिटर।
0: अच्छा।
1: जिसको हम लोग CFM बोलते हैं।
0: अच्छा, अच्छा।
1: तो उससे आपको ब्रेन की स्थिति क्या है, बच्चे को दौरे पड़ने हैं नहीं पड़ने, ब्रेन कितना एक्टिव है, आपको वो आइडिया लग जाते हैं। और साथ में आपको और कॉम्प्लिकेशन देखने पड़ते हैं, कई बार इन बच्चों को आपको वेंटिलेटर्स भी लगाना पड़ता है क्योंकि बच्चे की हालत बहुत खराब होती है
0: जी।
1: और बाकी हार्ट रेट है, SpO2 है, टेम्परेचर है, ये सब चीज़ तो जरूरत है ही है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर ये जो इलाज आप बता रहे हैं बच्चे को मिल जाता है, ऐसे बच्चे को जो जन्म के बाद तुरंत बाद नहीं रोया है, तो कौन सी जो मुसीबत आने वाली थी उससे हम बचा लेते हैं बच्चे को?
1: देखिए, वैसे हो सकता है वो बच्चे को आगे चल के कुछ मेंटल डिसेबिलिटी हो जाए, बच्चे को दौरे पड़े, बच्चा सेरेब्रल पैलसी डेवलप हो जाए, उसे बाद में बच्चा देर से चले, देर से बोले, देर से रोए, और कई बार बच्चे कई कई साल तक चल नहीं पाते हैं, दौरे पड़ते रहते हैं,
0: ब्रेन की ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है।
1: ब्रेन ग्रोथ?
0: अच्छा, ब्रेन ग्रोथ स्लो,
1: ब्रेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों, विकास भी और उसकी ग्रोथ भी।
0: अच्छा,
1: है ना। तो उस चीज की होने की संभावना अगर हम होल बॉडी हाइपोथर्मिया देते हैं तो
0: कम हो जाती है। बिल्कुल। और इस समस्या से बचाना प्रत्येक गार्जियंस की, हर एक माता पिता की जिम्मेदारी है, साथ ही एक डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है। बच्चा अगर सामान्य नहीं है तो इसकी जानकारी तुरंत बच्चे के गार्जियंस को, माता पिता को या जो भी अभिभावक हैं उन्हें दी जाए
1: जी।
0: अब एक और गीत का समय है डॉक्टर साहब, तो क्या सुनवा रहे हैं हमारे श्रोताओं को आप?
1: एक गाना है, अकेले बैठकर चाय का मजा लीजिए, सूफी कव्वाली है।
0: सूफी कव्वाली सुनते हैं, जो नहीं मिला उसे दफा कीजिए, अकेले बैठकर चाय का मजा लीजिए। बिल्कुल मजा लीजिए श्रोताओं, और अगले प्रोग्राम में दोबारा हम फिर आएंगे आपके पास डॉक्टर कुलदीप गंगवार को साथ लेकर के।

0: चिकित्सालय निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से प्रसारित किया गया और अब आपको जोड़ रहे हैं विविध भारती कार्यक्रम से, जिन्हें रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

जैस्मिन संडलास और सतेंद्र सरताज की ये आवाज़ें आपने सुनी। सतेंद्र सरताज और जैस्मिन

लिखा ये ना हुआ था शाश्वत सचदेव का संगीत था धुरंधर द रिवेंज, इस फिल्म का गीत आपने सुना। श्रोताओ, आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा इस दिन की शुरुआत की गई ताकि खाद्य सुरक्षा के वैश्विक महत्व को उजागर किया जा सके। खेतों से लेकर हमारी थाली तक पहुंचने के बीज का की जो प्रक्रिया

में भोजन को उचित तापमान पर संरक्षित किया जाए। खाद्य सुरक्षा केवल हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी तो है ही, साथ साथ भारत में जो भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए FSSAI जैसी संस्थाएं काम करती हैं। सुरक्षित भोजन का सेवन हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, बीमारियों से हम दूर रहें, न सिर्फ स्वास्थ्य हमें जीवन प्रदान करता है बल्कि एक कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी भी बहुत कुछ महफूज रहती है। तो खाद्य सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहें।

0: अरमान मलिक की आवाज थी, साथ ही नीति मोहन को भी आपने सुना। रश्मि विराग के बोल थे, अरमान मलिक का संगीत था। हेट स्टोरी 3 फिल्म का ये गीत आपने सुना।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

श्रोताओं, चित्रलोक कार्यक्रम की यही है आखिरी पेशकश। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ लेते हैं इजाजत कार्यक्रम चित्रलोक से। आज का ये प्रोग्राम आपने सुना संगीता श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध
1: आप
0: भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। आप सभी को नमस्कार।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम।
0: साथियों, आज मुझे कुछ नहीं बहुत कुछ कहना है। निर्देशक, लेखक, पटकथाकार, पत्रकार और उपन्यासकार ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में।

7 जून 1914 को पानीपत हरियाणा में जन्म हुआ ख्वाजा अहमद अब्बास का। ख्वाजा अहमद अब्बास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। फिल्म, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका एक समान दखल था, इसलिए ये बड़ी मुश्किल सी बात है कि हम आज उनकी प्रतिभा के किस पहलू

0: सुनना मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना, वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल।
1: बात शुरू करते हैं अब्बास साहब के जन्म के समय की, जबकि वो अंग्रेजों के शासन का समय था। तब 1914 में अब्बास साहब का जन्म पानीपत के एक मशहूर उर्दू शायर ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली साहब के यहाँ हुआ, जो कि मिर्जा गालिब के शिष्य थे।

ख्वाजा अहमद अब्बास यानी के ए अब्बास के दादा ख्वाजा गुलाम अब्बास ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा हाली मुस्लिम हाई स्कूल में ली और फिर 1933 में अंग्रेजी में बीए और 1935 में एलएलबी की डिग्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ली।

के ए अब्बास साहब ने अपने करियर की शुरुआत पत्रकार के रूप में की और फिर 1936 में वो पार्ट टाइम पब्लिसिस्ट के रूप में जुड़ गए बॉम्बे टॉकीज से, और इसी प्रोडक्शन हाउस के लिए उन्होंने 1941 में पहली बार स्क्रीन प्ले लिखा। फिल्म थी नया संसार।

0: रात बदलते।
1: फिल्मों से जुड़ने के साथ साथ अब्बास साहब उस दौर के लगभग सभी बड़े अखबारों में कॉलम लिखा करते थे और साथ ही उन्होंने फिल्मों में भी काम अपना शुरू कर दिया था। चेतन आनंद की पहली होम प्रोडक्शन फिल्म नीचा नगर और वी शांताराम की फिल्म डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी उन्हीं ने लिखी थी।
2: मरीजों में एक नई बीमारी फैल रही है फोड़े की तरह, अगर ये ज्यादा फैल गए तो इसका नतीजा निहायत खौफनाक होगा। जिसमें दाखिल करूंगा जिससे पता चल जाएगा कि मेरी तबीयत पर इसके जहर का कैसा असर होता है।
3: ची, ची, मेरा जख्म अच्छा हो रहा है, नई दवा कारगर साबित हुई, मिल गया, मिल गया, जालिम फोड़े का इलाज मिल गया।

ख्वाजा अहमद अब्बास ने 1945 में पहली फिल्म निर्देशित की धरती के लाल। 1951 में ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपना बैनर स्थापित किया नया संसार, जिसके अंतर्गत लगातार फिल्मों का निर्माण किया जाता रहा। 1953 में अनहोनी, मुन्ना और राही ये फिल्में बनी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली उनकी 1964 की फिल्म थी शहर और सपना। 1969 में

0: अजय अहमद अब्बास ने बनाई फिल्म सात हिंदुस्तानी, जिसने जीता नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। और यहां हम अपने सभी श्रोताओं को याद दिला दें कि यही वो फिल्म थी जिसके जरिए आज के महानायक अमिताभ बच्चन का फिल्मी सफर शुरू हुआ था।
1: ख्वाजा अहमद अब्बास साहब से मेरी पहली मुलाकात मुंबई में हुई, ये उस सिलसिले में हुई जिसमें वो कुछ नए कलाकारों को ढूंढ रहे थे, नए चेहरों को ढूंढ रहे थे अपनी आने वाली फिल्म सात हिंदुस्तानी के लिए। मैं उन दिनों कलकत्ते की नौकरी छोड़ करके दिल्ली आया हुआ था, और जब मुझे ये सूचना मिली तो मैं अब्बास साहब से मिलने यहाँ बम्बई आया, जुहू तारा रोड पर उनके अपार्टमेंट में जहाँ पर वो अपना लेखन वगैरह किया करते थे, वहाँ उनसे मिलने गया। एक आधा घंटा मिलने के बाद मैं जब नीचे आया तो उनके असिस्टेंट थे तीनू आनंद, जो कि बाद में जा करके सत्यजीत रे के असिस्टेंट बने, उन्होंने आकर के मुझे नीचे बताया कि अब्बास साहब ने आपकी जो तस्वीर देखी और आपसे जो मुलाकात हुई वो उनको पसंद आई, और मेरी शुरुआत जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ हुई। उनकी सोच जो थी वो एक बहुत ही आम आदमी की सोच होती थी। उनके मन में ये था कि ये जिस तरह से उनके किरदार या जो चरित्र उन्होंने लिखे थे इस फिल्म के बारे में, जिस तरह से वो गुजरे होंगे या जिस तरीके से उन्होंने अपना ये जीवन व्यतीत किया होगा, उसी तरह से उनके कलाकारों को भी फिल्म में जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से एक थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट में गाड़ी में बैठ करके हम लोग गोवा गए, और रास्ते में जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता गया, अगर किसी सर्किट हाउस में जंगल के बीच कहीं एक मकान मिल जाता था तो वहाँ पर हम लोग रहते थे। एक ही हॉल में पूरा कास्ट और पूरे वर्कर्स सब एक साथ वहाँ ज़मीन पे हम लोग सोते थे, और सभी एक किस्म का खाना खाते थे, एक ही कमरे में सब लोग रहते थे, एक ही साथ, कोई भेदभाव नहीं था। एक उनका एक बहुत ही सोशलिस्टिक और मॉरल इशू था ये उनके जीवन में।
0: राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम पुरस्कारों से ख्वाजा अहमद अब्बास साहब को नवाजा गया। 1969 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। ख्वाजा अहमद अब्बास ने फिल्मी दुनिया में जहां अनेकों फिल्मों के लिए लेखन किया, उन्हें पायनियर ऑफ इंडियन पैरेलल सिनेमा या न्यू रियलिस्टिक सिनेमा कहा जाता है, वहीं ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि अब्बास साहब की ट्यूनिंग फिल्मकार राज कपूर के साथ बहुत अच्छी थी।
2: मुंबई में सब बहरे बसते हैं क्या?
3: बहरे भी और अंधे भी, इनके कान कुछ नहीं सुन सकते सिवा रुपयों की झनकार के। मेरे भाई बम्बई, यहाँ बिल्डिंगें बनती हैं सीमेंट की और इंसानों के दिल पत्थर के। यहाँ एक ही देवता पूजा जाता है और वो है पैसा। मगधरा सामने से हटके खड़े हो, मेरे भाई धंधे का टाइम है। माई
2: धंधा यानी कि काम ना है? काम जो भाई, तुम्हारे शहर में पेट भरने के लिए क्या करना चाहिए?
3: जो मैं करता हूँ, भीख मांगनी चाहिए।
2: नहीं काम बताओ, मुझे काम बताओ।
3: तो सोचना पड़ेगा, कुछ पढ़ा लिखा है?
2: ये पास सच कह, ये देखो मेरी डिग्री साथ साथ लिए फिरता हूँ मैं, ये देखो, ये देखो।
3: ईमानदार हो?
2: सच्चाई और ईमानदारी का सबसे पहला इनाम मुझे मिला है, सोने का मेडल, ये देखो।
3: जवान हो, मेहनत कर सकते हो?
2: डबल जवान, 24 घंटे दिन में काम कर सकता हूँ, कोई करा के देख ले।
3: तो तुम्हें काम नहीं मिल सकता?
2: काम नहीं मिल सकता? पढ़े लिखे ईमानदार मेहनती जवान को काम नहीं मिल सकता? क्यों नहीं?
3: ये कि ये बम्बई है मेरे भाई, बम्बई बड़ा शहर, यहाँ सच बोलकर पेट भरने का रास्ता ढूंढने से नहीं मिलता, और झूठ बोलकर पैसे बनाने के रास्ते हैं 420।
2: थैंक यू बॉस, थैंक यू।
4: ओए

के ए अब्बास ने राज कपूर की चर्चित फिल्मों में से जागते रहो, आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, बॉबी और हेना फिल्में लिखी।

ख्वाजा अहमद अब्बास की कलम कभी रुकी नहीं। अपने जीवन के अंतिम समय तक वो मुंबई के लोकप्रिय अखबारों ब्रिट्स और क्रॉनिकल के लिए कॉलम लिखते रहे। 1 जून 1987 को 72 वर्ष की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया।

0: लेखक, निर्देशक, पटकथाकार, उपन्यासकार ख्वाजा अहमद अब्बास पर केंद्रित इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख और स्वर था अमरकांत का, प्रोड्यूसर रमेश गोखले। अब इजाजत दीजिए, नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। सुबह के 10 बज चुके हैं और लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी के दीवाने कार्यक्रम में कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में विशेष कार्यक्रम। तो सुनते हैं हमारे श्रोता हैं निर्भय यादव।
2: नमस्कार, मैं निर्भय वीरू यादव फरीदपुर बरेली से, और हम ऑल इंडिया रेडियो को 90 साल पूरे होते हुए देख रहे हैं। तो हमारा जो जब बचपन गुजरा था तो तब से लेकर आज तक ऑल इंडिया रेडियो ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। तो जब हम छोटे थे तब हम एक FM आती थी 60 रुपए की, 80 रुपए की, ऐसी छोटी सी मिलती थी, तो उससे हम सुनते थे। कई लड़के जो साथ के दोस्त थे साथ में सुनते थे, तो उस समय मनोरंजन का कोई और दूसरा साधन ही नहीं था, केवल यही एक आकाशवाणी था। तो इसी को सब सुनते थे, पूरे गांव में लोग गर्मियों में छतों पर रेडियो लेके बैठ जाते थे। तो किसी किसी के कभी कभी सेल डाउन होते थे तो वो दूसरे वाले बराबर वाले को आवाज़ लगाते थे कि अपने रेडियो की जरा सी आवाज़ बढ़ा दो तो हम भी सुन लें। तो उनका रेडियो का सेल डाउन हो गया, पहले सेल वाले चलते थे। तो वहीं कुछ लोग ऐसे कंजूस होते थे जो खेत पर जा रहे हैं तो कंधे पर रेडियो रख लिया तो इतनी धीमी आवाज़ कर ली सिर्फ उनके ही कान में सुनाई दे रही है, या आप उनकी चारपाई पे बैठे हैं तो इतना स्लो रेडियो चलता होगा सिर्फ उसी बंदे को सुनाई दे रहा होगा क्या बज रहा है, क्योंकि उसे 1 महीने की जगह 2 या 3 महीने सेल चलाने होते थे। तो तुम आप बराबर में बैठे तो आपको सुनाई नहीं देगा ये क्या सुन रहा है रेडियो पर, इतनी धीमी आवाज़ी में कोई कोई चलाता था और कोई कोई तेज़ आवाज़ में चलाता था दूसरे को सुनाने के लिए। तो ये अलग अलग तरह के ऐसे होते थे गांव में। पहले हर घर में रेडियो होता था, लेकिन जब से मोबाइल फ़ोन आया तब से कहीं ना कहीं रेडियो कम हो गया है। मोबाइल के शोर में रेडियो का शोर थोड़ा हल्का हो गया है, लेकिन ऐसा मत समझिए कि दोबारा नहीं, इसकी अभी भी चल रहा है अच्छा खासा, लेकिन इसका एक दौर और आएगा। जब आएगा, अभी आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और ईरान इजराइल में युद्ध चल रहा है, बहुत से देशों में युद्ध, छोटे स्तर पर बड़े स्तर पर हर जगह युद्ध चल रहा है। और जब भी आपको पता होना चाहिए बड़े स्तर पर युद्ध होगा तो ना ही मोबाइल फ़ोन चलेगा ना ही कोई और सिस्टम, सारे सिस्टम ठप हो जाएंगे, तब केवल एकमात्र रेडियो ही आपका सहारा होगा जिससे आप किसी भी तरह की सूचना प्राप्त कर पाएंगे या आप किसी भी तरह की मनोरंजन भी ले पाएंगे। वो केवल एकमात्र आपका सहारा रेडियो ही होगा जो आपको समय समय पर सूचना देगा कि अभी आपको कहाँ जाना है, कहाँ पर आपको खाना मिलना है। अगर भयंकर स्थिति होती है युद्ध के दौरान तो आपका एकमात्र सहारा ऑल इंडिया रेडियो ही होगा। तो आप समझ सकते हैं रेडियो क्या चीज़ है, और रेडियो का एक दौर और भी जल्दी ही आने वाला है। और अगर मेरे सबसे फेवरेट प्रोग्राम की बात की जाए तो मुझे बचपन से लेकर अभी तक सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा एक ही प्रोग्राम था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता था, वो था हेलो फरमाइश, क्योंकि उसमें मैं ये सोचता था कि पता नहीं कहाँ से कॉल लगेगी और वो बंदा जो बोलता था कि हम वो काम करते हैं ऐसे ऐसे काम सा, कोई बीड़ी बनाने का काम कर रहा है, कोई कहीं कुछ, तो अलग अलग तरीके के अलग अलग राज्य के लोगों को सुनने को मौका मिलता था और पता लगता था ये बंदा क्या करता है, और फिर वो अपना फरमाइशी गीत सुनता था। तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हेलो फरमाइश ही था मेरा जो, और उसके अलावा बहुत से कार्यक्रम हैं, किसानवाणी है, युवाणी है, जो जानकारियों से भरपूर होते हैं, लेकिन मेरी पसंद तो हेलो फरमाइश ही था।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने में निर्भय यादव को। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। आपके बहुत सारे कमेंट हमें हमारे फेसबुक पेज पर मिल चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनवाने जा रहे हैं आपको, फिल्म का नाम है

डॉन, और इसे गाया है किशोर कुमार ने। बोल है अनजान के संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, और पसंद आप सभी की है। आप हैं पद्मा टॉकीज नेपाल नगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। और आप हैं बागपत उत्तर प्रदेश से नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया और संजय ढिंगिया। ये पसंद मिल रही है हमें जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। ये हैं कस्बा हाफिजगंज जिला बरेली उत्तर प्रदेश से शकील अहमद इदरीसी, और आप हैं ग्राम खेजरपुर पोस्ट सेथल नवाबगंज जिला बरेली से गुलाब हुसैन, रिजवान हुसैन, इमरान हुसैन, शबाब हुसैन और फरहान हुसैन। आप हैं ग्राम पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुख नूर अंसारी साहब, फराज हुसैन अंसारी, शकील अहमद दरीशी, मोहन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान और सभी साथी इनके। ये हैं एवरग्रीन रेडियो क्लब ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन। आप हैं नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महजाबी निसार अंसारी, नुरत फातिमा, अवरार अहमद अंसारी, इस्तार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी और साथ में हैं इस्लामुद्दीन और बन्ने भाई। सब्जी मंडी कस्बा उसावा वार्ड नंबर एक जिला बताइए उत्तर प्रदेश से हैं धर्मवीर कश्यप, उषा कश्यप, धनपाल, संजय, अनमोल, अंश, कुमारी करिश्मा और कुमारी मुस्कान कश्यप। मोहम्मद अकरम अंसारी लिख रहे हैं हमें नगरिया कला बरेली से, और ये पसंद हमें मिल रही है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल। धमधमा ग्राम सुक्रिकला से हैं अमित जंघेल, शकुन, अरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और साथ में हैं अंजलि जंघेल, और ये पसंद है दुर्ग से हैं संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव। अब है साधु शहर से राजस्थान से हैं राम कुमार रेवाड़ और साथ में हैं चंद्रकला रेवाड़। ये हैं साथी हमारे कृष्णा पार दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सिटी दीवाना। चंदोसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन गौतम और बुधनगर खंडवा से हैं नदीम भाई, बहजोई से हैं राजू जी घड़ीवाले। पूजा डिशंग से हैं पलरट हाल टिकमगढ़ एमपी से राजेश कुमार केला, यशोदा यादव, राजीव यादव, संजीव यादव। ये हैं कलानौर से है नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा और नितिन, साथ में है मयंक शर्मा। आप हैं बिजनौर मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव और साथ में है यूनुस खान और सोफिया खान। आप हैं नागपुर महाराष्ट्र से कमल शावने, अफजाल मलिक, संदीप मक्कड़, रामगढ़ कैंट से हैं निपी सावने। ग्राम शंकरपुर पोष उसावा जिला बदायूं से सुमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद यादव, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, सुनीता और सूरश्री यादव। पूरा यादव परिवार में लिख रहा है ये अपनी पसंद। और आप हैं रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान हमें लिख रहे हैं ये राजस्थान से, और इनका पता हनुमानगढ़ टाउन से लिख रहे हैं हमें। आप हैं गांव दुबरी थाना हजरतपुरी तहसील दादागंज जिला बदायूं से हैं पुष्पेंद्र यादव, ऋतिक कुमार, अभिषेक, हर्षित, अनूप, रिंकी और सलोनी यादव का। आप में लिख रहे हैं दुराकाल हंसी से राजू मिगलानी, अभिता मिगलानी, सुभाष, योगी, डब्बू और बब्बू। जिला नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से हैं शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुम प्रसाद जायसवाल और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता कीसु, तासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद। बोगड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। ज्योतिनगर न्योखा राजस्थान से हैं पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का। ग्राम वीरपुर पोस्ट बिलसड़ से हैं तहसील अलीगंज एटा से हैं मिस्त्री विपिन कुमार शाके, सपना शाके, रविंद्र शाके, राजेश मिस्त्री, रमेश चंद्र शाके, राजीव टेलर, प्रदीप शाके, रंजीत।

शाक्य, सिद्धार्थ शाक्य, सुजाता शाक्य, कुमारी संगीता शाक्य, कुमारी प्रज्ञा शाक्य, कुमारी प्रतिज्ञा शाक्य, इनके माता पिता गांव फरासी जिला हिसार से हैं राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी और पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी। और बहिर से अंजुम भाई हैं, खालदा बेगम हैं और सभी साथी इनके। ये हैं नितिश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशान देवांगन हमें लिख रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से। ये हैं कस्बा बराड़ा जिला आंवला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीत और गुरछप सिंह।

राधे श्याम की जय हो सिया राम की और जय हो बंबई धाम की। ई है

देखो आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे?

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। आकाशवाणी बरेली हरदम आपके साथ। अब कहीं भी कभी भी आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। और इस समय कार्यक्रम चल रहा है आपकी पसंद, तो आप सुनवाने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में ये अगला गीत। फिल्म का नाम है मेला। इसे गाया है लता मंगेशकर ने, बोल है मजरूह के, संगीत है RD बर्मन साहब का। पसंद आप सभी की है। आप हैं खुर्जा से, उत्तर प्रदेश से अंकुश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा और साथ में हैं तिलक राज अरोड़ा। और ये हैं साथी हमारे दीदा रेडियो संघ से हैं, बिल्लाव गेट कासगंज से अहम असलम सैफी और जयबोनशा बेगम है, सद्दाम सैफी है, सोनी सैफी है, जाहिद सैफी और आवाद खान साहब। आप हैं निकट बैंक सेंटर चनेटी बरेली से हैं, विनेश कुमार और रागिनी साथ में हैं मुस्कान। आप हमें पसंद भेज रहे हैं अपने गांव लोडाडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि है, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन और पैरी पोतीर की है भुवेश्वरी देवी। करावल नगर दिल्ली से हैं रामनाथ प्रजापति और श्रीमती सुमन देवी। और ये हैं साथी हमारे सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से हैं पावन गौड़, सुयश गौड़, आशीष गौड़, तन्मय और अपूर्वा। और ये हैं साथी, जी हाँ, ये लिखते हैं हमें जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया और दिशानी साथ में है निमित आहूजा। आप लिख रहे हैं अलीगंज जिला एटा से दीपक शाके, ज्योति शाके और सक्षम शाके। आप हैं चरडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से लिख रहे हैं दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जयकिशन साहू, श्रीमती कुमार साहू, श्रीमती इंद्राणी साहू, माया साहू। और ये हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद बंडलकर, वीणा और विविधा बंडलकर। ये हैं राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, विट्टू कुमार, मित्रगण और परिवारजन। आप हैं ग्राम पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मणिराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। ये साथी हमें भेज रहे हैं जसपुर उत्तराखंड से साथी हैं माहिरा नूर, समरीन परवीन, मोहम्मद रेहान, रियाज, रिफाकत, नाजन सिद्दीकी और साथ में है रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब। और ये पसंद हम तक पहुंची है साथी हमारे हैं ग्राम पुरनापुर पोस्ट बालीपुर जिला बरेली से प्रवीण पटेल, अतुल पटेल और साथ में हैं वीरेंद्र पटेल। ये हैं प्राण तालाब डुमराव।

से बलीउल्लाह अंसारी, उस्मान राज अंसारी और शबनम बानो, जेल रोड बक्सर से हैं राज एच डी अंसारी और फातिमा नाज, चमनपार दिल्ली से हैं डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा। आप हैं अशोकनगर मणिनाथ बरेली उत्तर प्रदेश से हैं राकेश दिवाकर, उर्मिला दिवाकर, शिवा दिवाकर, लवी दिवाकर, गरिमा दिवाकर और सक्षम दिवाकर। ये हैं

ये हैं साथी हमारे आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और मैंडी शर्मा। आप हैं ग्राम हिंगड़ी अलोट जिला रतमाल एमपी से जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती रंजू बाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। नींदवारा से हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीर अलग अंसारी, मोहम्मद ऐन अंसारी और मोहम्मद उस्मान अंसारी। आप हैं मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफी नवाज, बेबी चाहत और साथी लिख रहे हैं हमें नदाबू रोड गिरडीह झारखंड से। और आप हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से हैं सुभाष चंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरहान, मोहम्मद सलमान, इरफान, इसरार और साथ में हैं नरगिस खातून। ये हैं साथी हमारे हैं जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद सोनम, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, सैयद नोयान और धोतर जोड़ा आष्टी से हैं दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते। ये हैं साथी हमारे श्रोता रघुवीर नगर दिल्ली से हैं दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायाब और लड्डू। ये हैं साथी हमारे पलिया टिकमगढ़ एमपी से विजेंद्र विश्वकर्मा, तारादेवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोना विश्वकर्मा और आशीष कुमार विश्वकर्मा। और आप हैं शनि बाजार के सभापति से प्रभाकर गुप्ता, अवधेश गुप्ता, सचिन गुप्ता, देव गुप्ता, प्रियाल गुप्ता और साथ में हैं कायरा गुप्ता। सुनते हैं गीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और कार्यक्रम में सुनवाने जा रहे हैं फिल्म का नाम है ताजमहल। इसे गाया है मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर साथियों ने, संगीत दिया है रोशन ने, और पसंद है आप सभी की। आप हैं राजमाता नगर बुलडाना महाराष्ट्र से, हैं नरेंद्र राज नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार। आप हैं बनियापारा तंत्री छत्तीसगढ़ से, राज से हैं रामचंद्र मखीजा काफिर भाई, और ये हैं बाबा कोठी रायगढ़ से शिव कुमार मिश्र, शक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान। ये हैं राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिज्ञा गोंडाने। आप हैं मौलागढ़ नई बस्ती भोजीपा जिला बरेली तरन से हैं तरन्नुम अंसारी, तराना अंसारी, भाई फजुद्दीन अजरुद्दीन मोहम्मद हसन अंसारी, और ये हैं कटरा चांद खां पुराना शहर बरेली से हैं जना प्रसाद मौर्य, हैं किरण मौर्य, दृष्टि मौर्य और मानवी मौर्य। पुराना शहर बरेली से हैं कटरा चांद खां से अनुखलाल मौर्य, प्रकाश मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य का। ये हैं रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। ये हैं शेरवानी स्कूल गंजुड़वार उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। और ये साथी हमें पसंद अपनी भेज रहे हैं। आप हैं सागर एमपी से हैं चंद्रेश गौहर, शिवती वंदना गौहर और जयपाल यादव, और ये हमें पसंद मिली है नारायण माफ कीजिए अटल रेडियो संघ से हैं संघ सांकरा सोमनी से जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और साथ में रुद्रांश प्रताप। और ये हैं जुबानी जिला दुर्ग से हैं सुरीत रमेश शाहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र किशन, सुनीता और रिसीवन, नीलकंठ चंद्रहास, हीरेंद्र संजीवन, त्रिलोक कुमार मास्टर और अरजीत सिंह साहू। रामपुरा किसान मजरिया समरिया से हैं तस्लीम रियंस बरेली से राम कुमार वर्मा और भगवान दास वर्मा, साथ में हैं रविंद्र वर्मा, तेज प्रकाश वर्मा, सोमपाल वर्मा और सभी इनके साथी। ये हैं साथी हमारे सलापुरा जिला बारा राजस्थान से हैं सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, श्रीमती हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव। नमस्ते बल्ली में ये साथी हमारे हमें पसंद भेज रहे हैं अपनी मुकेश राजपूत, ग्राम कुमारपुर से राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं आप, खैर। और ये साथी ये हैं वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास, जितेंद्र ऋषि और राहुल लिख रहे हैं हमें हजारीबाग झारखंड से। ये पसंद हमें

यह ग्राम चांदर बिस्वा, जिला बुलडाडा महाराष्ट्र से किशोर वानखेड़े, उषा वानखेड़े और विशाल वानखेड़े। ग्राम राजपुर तहसील मोताला महाराष्ट्र से हैं राज गवई, राज वीर गवई और धन सभी सतीम के। ये हैं हिंगोली महाराष्ट्र से साजी बोखड़े, श्रीमती नंदा बोखड़े और हनुमान बोखड़े। अम्बेडकर नगर चौक बागोटी से हैं उत्तम जमदावे और स्वराज जमदाडे। और आप साथी हमारे हमें लिख रहे हैं फलका पंजाब से शुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंद्र पर्वती और हिमांशु गोदारा सभी साथी हमें ये पत्र भेज रहे हैं। माफ कीजिए, ये पसंद हमें कमेंट में मिली है। और आप साथी हमारे हैं चमनपुरा उदयपुर से नजीब खान, जब्बार मोहम्मद, अशरफ खान और सबिया खान का। आप हैं लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कोशकी वर्मा, दीपाली वर्मा और युवान साथ में हैं आर के राजा। ये हमें पसंद मिली है। फजलका पंजाब से खेड़ा परिवार लिख रहा है, साथ में हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा और साथ में हैं इनके सभी दोस्त। और ये हैं साथी हमारे गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार। तासगांव सांगली से हैं दिलीप कांबले, विश्वजीत कांबले, कार्तिक और सुकेशनी। और आप हमें लिख रहे हैं मोहल्ला गढ़ैया बरेली मस्जिद के पास से कैसर मियाँ, अजीम शमसी, सलीम शमसी, रजय शमसी, गुलनाह शमसी और साथ में हैं बेबी। और आप हैं बुलडाडा इस्लामपुर महाराष्ट्र से हैं सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमार साधना और सुमेध कुमार दामोदर। ये हैं बर्ड सिंगी बुलडाडा से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर और श्लोक दीपाली। ये हैं मंजूगढ़ से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकाश मलिक और माही मलिक हमें ये पसंद अपनी भेज रहे हैं। आप हैं खर्स सांवा झारखंड से शुक्र नायक, मंजू नायक, कलेश्वर नायक, गौरव नायक। तो सुनवाते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

0: इतनी रात में SMS, KYC अपडेट कीजिए, नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
1: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। कार्यक्रम में आप सुनवाने जा रहे हैं आपको फिल्म का नाम है आंखें। इसे गाया है लता मंगेशकर ने, बोल हैं साहिर के, संगीत है रवि का, और पसंद है आप सभी की। आप हैं कोटवा नारायणपुर बापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया निवादक जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रियंजल राय। आप भोपाल राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार। आप लिख रहे हैं गांव खोखरा वाली श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा और शगुन बारासा। और ये पसंद हमें मिल रही है। साथी हैं हमारे बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, यशरी मेहरत्रे, अंजलि कारवा, बाला साहेब कारवा और राम निवास अग्रवाल, साथ में हैं धनंजय और पीवी कुल थे। ये पसंद मिली है हमें। साथी हमारे हैं वारिस अली खान, इस्लाम मुनिशा और शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश लिख रहे हैं हमें संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। और ये पसंद हमें मिली है मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगिसापुर से, मोहम्मद शाकिर मंसूरी, कमरुन्नशा, शाविस्ता मोहम्मद, नसीब पलक और लोभ नसाद में यश मंसूरी। जमानिया गाजीपुर से हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल का ये पसंद मिली है हमें। ये हैं बिचपुरी लखनऊ से हैं करण मौर्य, अर्जुन मौर्य, प्रेमपाल मौर्य, गोधन मौर्य, साक्षी मौर्य, खुशू मौर्य। और ये है मारा दरवाजा ईटा से हैं नवी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नवी हसन अब्बासी, अनस अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, साथ में यशव अब्बासी और रशीद वारसी। साथी हैं हमारे ये गांव है कवनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से रेवड़ अनिता और राहुल भाविष्टे। आप हैं गांव वांडी वाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, साथ में हैं गरिमा और रजत बगड़िया। और आप हैं साथी रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु प्रिया लिख रहे हैं हमें जिला किशनगंज बिहार से। आप हैं पटना रोड मडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग का ये हमें पसंद कमेंट जो है प्राप्त हुआ है। और ये हैं साथी हमारे उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और साथ में भारतीय बघेल लिख रहे हैं लघान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। और ये हैं साथी हमारे आसिफ चौधरी, अराफा चौधरी, अदीब चौधरी और कवि चौधरी लिख रहे हैं हमें जिला बिजनौर से। और आप हैं अनारकली बाजार ग्राव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपक मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा, साथ में हैं शशि सिंह पाठक और जयपाल यादव, साथ में हैं विनोदपुरी। और ये पसंद हमें मिली है मनकारा मंदिर बीडी कॉलोनी करगना से हैं, बरेली उत्तर प्रदेश से हैं बेनी सिंह सागर, पंडीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश कुमार उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्य भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमपति भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा और साथ में शिवांश और प्रताप सिंह। ये पसंद हमें मिली है बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन MP से विनोद मूडत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूडत, चेतन नाहटा और सभी साथी इनके। ये हैं देवी परी पाटापारा से KR साहू, आकाश कमलेश, कन्नू लाल, रजक और मुरली क्षत्रिय। ग्राम ढकिया केसरपुर जिला पीलीभीत UP से हैं AK राजपूत, अनिल कुमार राजपूत, कैलाश राजपूत, रमेश्वर दयाल वर्मा, सत्यपाल वर्मा, भगवान दास, रवि कुमार, श्रीपाल, मनोज, छोटी सी गुड़िया और साथ में चंचल कुमारी। ग्राम पारवाला बित्रोई जिला बताइयों से सुपाली सिंह राजपूत, महपाल सिंह राजपूत, शिवम कुमार राजपूत, लेखराज

वर्मा, रिंकू वर्मा, निर्मल वर्मा और कुमारी रानी वर्मा। आप हैं बटिंग खेड़ा से, पंजाब से, मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती खेड़ा के ये मैसेज हमें मिले हैं। ये कमेंट हम तक पहुंचा है एयरपोर्ट रोड बंदना नगर इंदौर से, नारायण भाव खड़ से, ललिता आशारानी खड़ से, संजना परी खड से, आराध्या खड से, कार्तिक वैष्णवी खड से, देवका चौधरी खड से, स्वाति प्रज्ञा चौधरी और सभी साथी इनके। ये हैं कुडी सेक्टर 5 सूरनगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बाय हिमाक्ष। आप हैं गांव बड़ा बांधा भटापारा से हैं प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू। ये पसंद मिल रही है हमें गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से सुवर सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, पोत्रे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। आप हैं सांगली महाराष्ट्र से हनुमंत शिंदे और ऋषिकेश सिंधे। ये हमें पसंद मिली है सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से गजानन यल्ले, नवदीप यल्ले, विश्वदीप यल्ले और स्वाति यल्ले का। आप हैं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा और प्रहलाद अजंद वर्मा। ये हमें लिख रहे हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। रामदेवरा से हैं दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बापड़ी से हैं, माफ ये पता है खलीफों की बावड़ी से हैं खुदा बख्श खलीफा। और आप हैं साथी हमारे गांव कुम्हार खेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शायना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम और सद्दाम साथ में है अदीब भाई। और ये मेरठगंज से हैं दिदर्शन और कपिता गौड़। आप हैं अंडार नानघाट छत्तीसगढ़ से साथी हमारे हैं माखन वर्मा, चांदनी भूपेश और दीपेश वर्मा। आप हमें लिख रहे हैं ग्राम नाहरा कोहरा जिला रजानंद गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम पूजा दुष्यंत, प्रांजल समीक्षा, बेबी आराध्या और साहू। और ये हैं छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सिंह, सुरेखा सेन और सभी सिंह मिलने वाले। आप हैं बेरडी एमपी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर। और ये कमेंट हमें मिला है छत्तीसगढ़ से डोर गांव से हैं राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनुष्का और तन्मय गजबिये। उगती बधाइयों से हैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज गुप्ता, पंकज कुमार, प्रिंस प्रशांत और कार्तिक गुप्ता साथ में हैं निर्भय गुप्ता। और ये साथी हमें लिख रहे हैं रेलवे रोड गंजबारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवनेश प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नाजा बेगम अनाज और भाभी सरिता। ये हैं गंजबारा से शमसुल कमर राही, साहिन फातिमा, अनु खान, अदनान खान और फैजान खान।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की 1 बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: शुदो कार्यक्रम के आखिर में सुनवाने जा रहे हैं आपको फिल्म का नाम है कल की आवाज़, इसे गाया है कुमार सानू और आशा भोसले ने, बोल हैं समीर के, संगीत है नदीम श्रवण का और पसंद है आप सभी की। आप हैं साथी हमारे, गांव जलालपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम प्रजापति, आरन प्रजापति, लविश प्रजापति और मुनेश देवी प्रजापति। और आप हैं लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, और ये साथी हमें लिख रहे हैं ग्राम पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा, पूरम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। आप हैं गांव नंगखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा। ये पसंद मिल रही है हमें मुबारकपुर उच्चतकिया से आजमगढ़ से हैं दिलशाद भाई, फातिमा सोगरा, बकार हैदर, कनिजा सकीना, हसीना दिलशाद और वसीम फातिमा। ये हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, मायादेव वर्मा, राहुल वर्मा, साथ में है विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। ये हैं सिद्धार्थ गोंडा से हैं किशोर नगर अमरावती के साथी हमारे लिख रहे हैं हीरामन शेंडे और शिला देवी शेंडे और सिद्धार्थ। ये हैं ग्राम पंचायत बागंज तहसील फतेहपुर जानी की टक्की से हैं मास्टर सुनील बाबू, शिवम सिंह, अभय मीत, भगवान देव, स्वाति सिंह और तारण्य साथ में सभी के साथी परिवार लोग के लोग। और ये हैं साथी हमारे गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से हैं जसवीत सिंह अरोड़ा। ये हैं बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी और आप हैं मयंक भाई साथ, ये साथी हमारे हैं मदार चौक उदयपुर जिला बरेली से हैं नाजी मली साहब। और आप हैं अहिलानगर खोपटी से नेवासा महाराष्ट्र से हैं संकेत सकट, नंदा सकट, रामदास सकट, जुबेदा शेख, कोमल पाटिल और स्वाति गोरे। ये हैं साथी हमारे ईश्वरलाल मेहर, सुमित्रा मेहर, रियांश मेहर, सृष्टि मेहर और पूरा परिवार लिख रहे हैं मंदसौर MP से। ये हैं कवर कॉलोनी बढ़ा से जिला खरगोन MP से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली। और आप हैं

विराट नगर नेपाल से अरुण चंद्र शर्मा, रेणुका शर्मा और उनके सभी साथी लिख रहे हैं। ये हैं साथी हमारे प्रदीप सलूजा, संगीत सलूजा, प्रथम सलूजा और जनकपुरी न्यू दिल्ली से लिख रहे हैं। आप हैं भटापारा से हैं सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरिप्रद सिंह चावला, श्रीमती बाणी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, बेबी बैदे जोशी और बेबी हंसिका जोशी, कुमार साथ में लिख रहे हैं, अंकित जोशी अनूपपुर एमपी से हैं, श्रीमती जयवंती केवट खंडवा एमपी से हैं, अब्दुल गफ्फार डावर साहब और गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से हमें लिख रहे हैं। और ये हैं भोजपुर बरेली से हसमुख जी, हसाम और समस, इनाया, शानूर, पलक नूर, ताज और मोहम्मद अफनूर और साथ में हैं गुप्ता जी समोसे वाले। ये हैं साथी हमारे अजीत सक्सेना, माफ कीजिए अजीत कसाना जी लिख रहे हैं हम। और साथ में हैं माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना साथ ये लिख रहे हैं कांठ रोड लदावली से। और आप तो सभी लोग हमें लिख रहे हैं रामपुर रोड किला छावनी बरेली से प्रदीप कुमार पाल, नमन, प्रिया सिंह, मुस्कान, पिंकी, रिंकी और परख हैं, नाया पाल हैं, पूजा पाल हैं और अलका जी हैं और महेश वर्मा हैं, गरीब भाई हैं, श्री राम राठौर हैं और सभी इनके साथ ही लिख रहे हैं। ये पसंद अपनी भेज रहे हैं। और आप हैं नई बस्ती गंडौरा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजा बेगम हाशमी, तौसीफ हाशमी, तैमूर हाशमी और कलीम अंसारी। ये पसंद मिली है हमें मदरसा गेट भाऊपुर मड़ियाओ जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद और अजरा तबस्सुम। रायपुर नए अनई जिला बनारस से हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी और आफिया परवीन। ये हैं साथी हमारे डाबकी रोड केला से लिख रहे हैं सुया देवी, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव और साथ में हैं सभी परिवार के लोग। और आप हैं गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड, मंजुला राठौड, विशाल और निशा। आप हैं गांव जाकी से समुद्र खटक, बना देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, रश्मि झरना, भरत कुमार लिख रहे हैं हमें। इन्होंने पता अपना नहीं लिखा है। और ये हैं अमर अकबर अंथनी, इन्होंने पसंद भेजी है, लिखने वाले हैं रमेश, साथी हमारे रमेश जी हैं और इनके सभी साथी लिख रहे हैं हमें। आप हैं श्रीगंगानगर राजस्थान से सरबजीत सिंह जोसन, सरबजीत सिंह कौर जोसन और गुरमैन मेलबर्न से हैं ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल सिंह और बेकूबर कनाडा से हैं रोबन सिंह जोशन। और आप में लिख रहे हैं आकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए, के संजीव बाडे राव। और आप हैं यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़ से। ये हैं साथी हमारे भावना गरिमा हिमांशी शर्मा लिख रहे हैं रघुनाथपुरा से, साथ में सतीश जी हैं और रोशनी हैं। और ये हैं मालवा रेडियो संघ से हैं अलोट जिला अर्थनमाल एमपी से कुमार कृपाल सिंह, विक्रम सिंह, दिलीप सिंह, नरेंद्र सिंह, समस्त इनका परिवार है। और आप हैं रावर करनाल से विनोद लखनपाल। और ये साथी हमें लिख रहे हैं सूर्यवाड़ी छत्रपति समाजनगर से हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद विराज स्वीट, अंशुमन बेबी और पूरा परिवार इनका लिख रहा है। और ये हैं गोविंदपुरा सीकर से हैं राजस्थान से दाता सिंह शेखावत, संगीत कंवर तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। और आप हैं धाड़ी नादुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाडे, संदीप बाडे और अमूल्य बाडे। ग्राम खकल तहसील कोंच जालौन उत्तर प्रदेश से हैं दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंश राज सिंह गुर्जर और समस्त परिवार। आप हैं ओखला नगर संगम बिहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबिता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदर गुप्ता। ये हैं गांव थाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवी जस्सी और सीता और गीता। आप हैं मुजफ्फरपुर बिहार से हैं राजू, बिट्टू, अर्चना कुमारी, कल्पना, मुन्नी, चांदनी और नंदिनी कुमारी। ये हैं संबलपुर काकेर से भागुराम यादव, ज्योति यादव और साथ में ओयस्सी यादव। होली चौक उत्तर नगर दिल्ली से हैं जयराम खोरबाल, सचिन खोरबाल, अमन खोरबाल, दीपांशु खोरबाल। और आप हैं आकांक्षा कारवां, साथ में हैं गीतांजलि कारवां और आकाश कारवां और बाला प्रसाद कारवां लिख रहे हैं हमें।

बीड महाराष्ट्र से। ये हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह और साथ में हैं सुनीता सिंह, और आप हैं जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा और अनस साथ में है रेहान। आप हैं दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी तनुश्री गुप्ता, नन्हे मुन्ने अंबिका बेबी, अभय कुमार साथी हैं, और आप हैं गली शुक्लापुर बरेली मरबंदर से रतनलाल माला मौर्य, मुकेश मौर्य, प्रिंस मौर्य, प्रियांशी मौर्य, पुष्पा मौर्य, गौरव मौर्य और साथ में चंद्र प्रकाश मौर्य। ये हैं आसिफ अली खान, मोमिनाजा खान, मुस्कान आसिफ, सारिका अली खान, साथ में सादिक अली खान, और आप हैं नागचुन रोड खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और अरविंद कटारे। भटापारा से हैं सोन जोशी और पायल जोशी, और ये हैं मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइडे, वसंतराव भोजने, पी एस नोहाकर और तुषार करांगले। आप हैं विशंस आर्ट कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमस खत्री, मोहम्मद शादाब खत्री, और ये साथी हमें लिख रहे हैं। साथी हमारे हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण। आप हैं साथी सोंगा मगल रोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देव चंदन, मोहित कुमार, देवका रानी चंदन, साथ में हियांश और गजेंद्र कुमार चंदन। और ये हैं शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल चेतना मनवर और साथ में रोशनी मनवर, और ये हैं बेबी प्रियांशी। आप हैं ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लाब्या आरवा खुराना, एस के पप्पी, और हरियाणा से हैं बिट्टू भाटी, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया, और ये हैं साथी हमारे सरोज चौक कमरापति से हैं कमरा ठेकेदार नसीब बेगम, आयशा खान, हादिया खान और आफिया खान, पूरा खान परिवार है। ये हैं हर साथी हमारे हरज्ञान सिंह सुथार और फतेहाबाद हरियाणा से लिख रहे हैं, और ये हैं साथी हमारे ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, प्रियल, प्रियांशी और समस्त परिवार। तो सुनते हैं ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से प्रसारित किया गया है। 11 बज चुके हैं इस वक्त और अब समय है कार्यक्रम, जी हाँ, साप्ताहिक कार्यक्रम जिसका रहता है आपको इंतजार। इसका नाम है आपका पत्र मिला। प्रस्तुति है मिथिलेश श्रीवास्तव की और पत्र वाचन है गजेंद्र सिंह का।
1: श्रोताओं नमस्कार। आपका पत्र मिला कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है और स्टूडियो में स्वागत है। मिथिलेश श्रीवास्तव जी आपका, आपको भी नमस्कार।
2: नमस्कार गजेंद्र जी, सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में, और हम उम्मीद करते हैं कि मौसम के तमाम उतार चढ़ाव का आनंद ले रहे होंगे तमाम श्रोता, और हमारे
1: बिल्कुल
2: कार्यक्रमों से भी बहुत शिद्दत से जुड़े होंगे, क्योंकि आकाशवाणी के 90 वर्ष इस साल पूरे हो रहे हैं। तो हम लोग काफी कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं और श्रोताओं के भी आमंत्रित कर रहे हैं।
1: अच्छा, एक चीज है मिश्रे
2: जी
1: जी,
2: जी
1: जब सब तरफ से खुशियां ही खुशियां हों तो दिल तो गार्डन
2: बाग
1: गार्डन
2: बाग
1: हो ही
2: हो गए।
1: जाता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: अब
2: बिल्कुल।
1: जैसे आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरे कर चुका है और ऐसा जो सेलिब्रेशन हम लोग भी कर रहे हैं इसको पूरी
2: बिल्कुल।
1: तरह
2: हम
1: से
2: लोगों ने
1: श्रोताओं के
2: कवि
1: साथ।
2: सम्मेलन, मुशायरा कराया,
1: हाँ
2: फिर वृक्षारोपण और पौधा वितरण भी कराया
1: जी,
2: 5 जून को।
1: और
2: तो
1: हमारी ओर से आपको भी बहुत बहुत बधाई।
2: शुक्रिया।
1: तो ये राज की बात राज रहने दे या फिर अपने श्रोताओं के साथ इस।
2: राज कहाँ रह गई है, गई सबको पता हो गया है।
1: जी
2: लेकिन ये दायित्व ही है।
1: बिल्कुल,
2: हाँ,
1: तो मुझे लगता है इन
2: तो
1: खुशियों के बीच ये
2: दायित्व को
1: बड़ी
2: मैं बहुत सहर्ष स्वीकार करता हूँ।
1: इस खुशखबरी के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई, और दायित्व के पथ पर, अपने कर्तव्य पथ पर और भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं आपकी।
2: जिम्मेदारी बढ़ गई है।
1: तो
2: बिल्कुल
1: हमें लगता है कि आपका जो सानिध्य है और भी बेहतर ढंग से हम को और हमारे श्रोताओं को मिलेगा।
2: बिल्कुल मिलेगा, जरूर मिलेगा। हो सकता है थोड़ा, क्योंकि अब फाइलों का अंबार बढ़ गया है।
1: हाँ
2: अभी तक केवल कार्यक्रम था, बाकी प्रशासन और दूसरे जो विभाग अनुभाग हैं हमारे, उनके भी काम देखने पड़ते हैं, तो फाइलों का अंबार लगा रहता है।
1: तो ऐसा ना हो कि फाइलों के अंबार में गुम हो जाएं आप और फिर
2: नहीं,
1: हमें भूल
2: हम
1: जाएं।
2: गुम नहीं होंगे। हम पूरी कोशिश करते हैं फटाफट फाइलें निपटाएं,
1: जी
2: फटाखट देख के हम निपटाते हैं फाइलें। और क्योंकि मेरा प्राइम कंसर्न, मेरा जो मुख्य, मेरी रुचि जो होती है
1: जी
2: कार्यक्रम में ही है, क्योंकि कार्यक्रम करना, इंटरव्यू करना, गाने, सब चीज।
1: बिल्कुल, तो ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि आप जो है फाइलों के साथ साथ हमारे साथ वही वक्त बिताएंगे और कार्यक्रमों के लिए भी निर्माण में, प्रस्तुतिकरण में उसी तरह से आपका सहयोग हमें मिलेगा।
2: जी जी जी
1: और आगे बढ़े और आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं
2: जी जरूर। क्या लिखा है
1: कि जहां
2: इन्होंने?
1: रहेगी रोशनी वहां नाम आपका होगा,
2: क्या बात।
1: हर दिल में प्यार और सम्मान आपका होगा, यूं ही महकता रहे सफर सफलता के फूलों से, हर श्रोता की दुआओं में मुकाम आपका होगा।
2: क्या बात है, बहुत खूब पंक्तियां हैं, किसकी हैं?
1: अब इन्होंने तो लिखा है कि वसीम बरेलवी साहब की लाइनें हैं ये।
2: क्या बात।
1: तो लिखते हैं, एकता क्लब कस्बा सिंधौली मीरगंज बरेली की ओर से आपका पत्र मिला कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले सभी अधिकारियों, कार्यक्रम निर्माताओं और उद्घोषकों को हार्दिक शुभकामनाएं, प्यार भरा नमस्कार।
2: नमस्कार आपको भी ढेरों।
1: आकाशवाणी बरेली के सभी कार्यक्रम निरंतर ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और समाजोपयोगी ढंग से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से श्रोताओं को नई नई जानकारियां प्राप्त होती हैं तथा उनका स्वस्थ मनोरंजन भी होता है। आपकी पूरी टीम श्रोताओं के लिए जिस समर्पण और लगन से कार्य कर रही है वो वास्तव में सराहनीय है। विशेष रूप से आदरणीय श्री मिथिलेश श्रीवास्तव जी को स्थानीय अध्यक्ष बनने पर हमारी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि आपके कुशल नेतृत्व में आकाशवाणी बरेली नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे और श्रोताओं का स्नेह और विश्वास सदैव आप सभी के साथ बना रहे। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं निरंतर सफलता प्रदान करें।
2: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। और देखिए, जिस तरह से नया दायित्व मिलता है तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उसी अनुपात में अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं।
1: बिल्कुल,
2: तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी श्रोताओं की जो उम्मीदें हैं उन पे मैं खरा उतरूं, और जो भी हमारे कार्यक्रम हैं वो पहले से और बेहतर हों, जो भी तकनीकी खामियां हैं वो भी जल्द से जल्द दूर हों, यही पूरी कोशिश रहेगी हमारी।
1: अपने ईमेल में आगे कार्यक्रमों के बारे में लिखते हुए कहते हैं,
2: अच्छा,
1: 31 मई 2026 को आपका पत्र मिला कार्यक्रम सुना जो अत्यंत शानदार लगा। इस कार्यक्रम में मेरी खुशी को भी शामिल किया गया जिससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और आकाशवाणी परिवार के प्रति मेरा स्नेह और अधिक बढ़ गया। 1 जून को इन्होंने आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम सुना, इनको अच्छा लगा, विचार और जानकारियां श्रोताओं के लिए उपयोगी रही। 2 जून को आपकी पसंद कार्यक्रम भी इनको पसंद आया, चुने गए गीतों ने कार्यक्रम को और भी अधिक आकर्षक बना दिया। इसी दिन आयोजित कवि सम्मेलन का प्रसारण भी सुना, ये कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय रहा। कवियों की रचनाओं ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। इस कार्य

0: कार्यक्रम से संबंधित अनेक वीडियो भी हमने फेसबुक के माध्यम से देखे जो बहुत पसंद आए। युवा मंच कार्यक्रम में शिवम पाल के विचार और शब्द विशेष रूप से प्रेरणादायक लगे। उनके विचारों से विद्यार्थियों और युवाओं को निश्चित रूप से नई दिशा और प्रेरणा मिलेगी। 3 जून का इन्होंने कृषि गोष्ठी कार्यक्रम सुना। पशुपालन से अधिक लाभ कैसे प्राप्त किया जाए, इस विषय पर बड़े विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त हो, इस विषय पर भी जानकारी दी गई। नमस्ते बरेली कार्यक्रम में भावना जी के साथ प्रस्तुत सामग्री भी अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक लगी। कार्यक्रम की प्रस्तुति शैली ने विशेष रूप से प्रभावित किया। 4 जून को इन्होंने किसानवाणी कार्यक्रम सुना। भूजल संरक्षण और जल बचत के लिए किसानों की भूमिका पर जो जानकारी दी गई थी वो महत्वपूर्ण थी और आज के समय में ये विषय बहुत ही प्रासंगिक और उपयोगी है। 5 जून को इन्होंने फिल्मी फ्राइडे सुना। अच्छा लगा, मनोरंजक लगा और प्रभावशाली आवाज है इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता की। श्रोताओं को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। उनकी आत्मीय प्रस्तुति शैली, बेहतरीन संवाद अदायगी और गीतों के बारे में रोचक जानकारी कार्यक्रम को और भी यादगार बना देती है।
1: बिल्कुल,
0: तो ऐसी प्रस्तुति के लिए और सभी कार्यक्रमों के लिए आकाशवाणी बरेली की पूरी टीम बधाई की पात्र है। आखिर में मैं आकाशवाणी बरेली परिवार का विशेष धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे 31 मई 2026 को श्रोता मंच कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। मुझसे विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में विचार और अनुभव साझा किए गए और मैं अपनी ओर से यथासंभव अच्छा बोलने का प्रयास भी किया। मैंने आशा है कि मेरे विचार श्रोताओं को अवश्य पसंद आए होंगे। ये अवसर मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है। इसके लिए आकाशवाणी बरेली की पूरी टीम को और श्रोताओं का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे ये जो साथी हैं वो एकता क्लब सिंधौली वीरगंज बरेली उत्तर प्रदेश से, इमरान शेख मोहम्मद सुहेल काशीपुर उत्तराखंड से और जीशान वारसी जी हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप तो बहुत पुराने श्रोता हैं, श्रोता मंच में भी आपका आमंत्रित किया गया था और निश्चित रूप से आपने अपने कई सारे अनुभव भी पुराने हमसे साझा किए और उम्मीद है कि तमाम श्रोताओं को भी अच्छा लगा होगा। कैसे लगते हैं प्रोग्राम, श्रोता मंच कैसा लगता है ये भी बताइए। तमाम श्रोताओं से हमारी अपील है, श्रोता मंच है, जनमंच है, अक्षयवट भी है, बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिनके बारे में श्रोता अभी थोड़ा कम ही लिख रहे हैं।
0: जी
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, काफी लंबा चौड़ा पत्र आते हैं, शुक्रिया।
0: आगे बढ़ते हैं और अगला जो ईमेल है ये हमें भेजा है विनेश कुमार जी ने बैंक सेंटर चनेटी बरेली से। आप लिखते हैं कि जागरूक रहने, सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग करने तथा गति को नियंत्रित रखने से हम कई दुर्घटनाओं को टाल सकते हैं। प्रस्तुतकर्ताओं को हमारा सप्रेम नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: इंसानों को क्या दोष दें? आजकल तो मौसम ने भी रंग बदलने की PhD कर रखी है, कभी बारिश तो कभी धूप। गलतियां तो इंसान से होती ही हैं। गलती करके अगर गलती को मान ले और किसी प्रकार की सफाई ना दे, वास्तव में वही इंसान हीरा कहलाने लायक है। आपके कुछ उद्घोषक आपकी पसंद प्रोग्राम में कमेंट लेने में कंजूसी दिखा रहे हैं और कुछ उद्घोषक तो प्रोग्राम में कमेंट भेजने वालों की संख्या तक उनके लिए कम पड़ जाती है। बधाई। फिल्मी फ्राइडे में अगर जो प्रश्न आपने एक बार कह दिया क्या वही माना जाएगा? जी बिल्कुल। अब प्रोग्राम की समीक्षा की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मिथिलेश जी को बरेली आकाशवाणी का केंद्राध्यक्ष बनाए जाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। 30 मई को आपकी बात आकाशवाणी के साथ में नेकी कर दरिया में डाल, ये विषय अच्छा था। 31 मई को अंकुर में तोरा मन दर्पण कहलाए, ये गीत नाजमा दीदी और नेमचंद भैया की प्रस्तुति अच्छी थी। युवाणी में IPS अंशिका वर्मा जी के साथ वैभव जी की साइबर ठगी से कैसे बचे, इस विषय पर जो बातचीत थी वो काबिले तारीफ थी। ग्राम जगत में तंबाकू निषेध पर धारा सिंह जी की जो मास्टर भूप सिंह साहब से बातचीत की वार्ता थी वो ज्ञानवर्धक थी। 2 जून को आपकी पसंद प्रस्तुति अच्छी लगी। कभी कभी आकाशवाणी के पेज पर 2 स्टेटस लगा दिए जाते हैं, कृपया इसे एक ही रखिए। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में एक आम नागरिक के क्या कर्तव्य हैं, इस विषय पर बातचीत अच्छी थी। यंग बरेली में यंग अचीवर शिवम जी से बातचीत अच्छी थी। 3 जून को आपकी पसंद अच्छा लगा। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में क्या शुभकामनाओं और बद्दुआओं का हमारे जीवन पर असर पड़ता है, इस विषय पर बातचीत अच्छी लगी। युवाणी में शिवारानी से NCC के बारे में जानकारी अच्छी दिलाई गई और सभी प्रस्तुतकर्ताओं को शानदार प्रस्तुति देने के लिए बधाई।
1: आपको भी इतना शानदार पत्र लिखने के लिए बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सभी खासतौर पर आपकी बात आकाशवाणी के साथ आपको विषय अच्छे लग रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। चाहे तो आप भी कुछ विषय सुझा सकते हैं, जैसे विषय पिछले हफ्ते भेजा था उन्होंने, तिलक राज अरोड़ा जी ने शायद।
0: जी बिल्कुल
1: जी जी, तो उसको हमने शामिल भी किया था। बहुत बहुत शुक्रिया विनेश जी।
0: मौला हलवाइयां शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू, हिना कौसर और इनका पूरा परिवार लिखते हैं, आपको हमारा प्यार भरा सलाम।
1: सलाम,
0: कैसे हैं आप मिथिलेश जी?
1: बढ़िया हैं,
0: हम आप सबके रेगुलर लिसनर हैं, सभी प्रोग्राम सुनते हैं, पसंद भी आते हैं। 4 जून का अनुरोध गीत जो शिप्रा जी ने

0: पेश किया था, बेहद पसंद आया। इसके अलावा 3 जून को आपकी पसंद और अनुरोध गीत मोहम्मद परवेज जी ने पेश किए थे, ये भी अच्छे लगे। 2 जून को अनुरोध गीत अमृता जी ने पेश किया था। 1 जून को अनुरोध गीत सुदेश जी ने पेश किया था, ये भी बहुत पसंद आया। शिप्रा मिश्रा जी का अनुरोध गीत भी अच्छा लगा। एक शिकायत है आपसे, जब से ब्रजेश तिवारी जी और हरीश मौर्या जी की शिकायत लिखी है, वो हमारा कमेंट और खत शामिल नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों?
1: नहीं, ऐसी बात तो नहीं, मैंने खुद सुना है ब्रजेश तिवारी जी का भी, उन्होंने शामिल किया था आपका नाम। बिल्कुल, आपका नाम ही नहीं, सब कुछ जो आपका एड्रेस है या और भी आपके दोस्त हैं उनके भी नाम उन्होंने शामिल किए थे। तो हो सकता है आपसे सुनने में कुछ चूक हो गई हो, नहीं सुन पाए हो
0: जी,
1: तो ये जरा थोड़ा और ध्यान से सुनिए,
0: क्योंकि
1: मैंने खुद सुना है। कोई और अगर मैं किसी और पे कहूँ तो नहीं, मैंने खुद सुना है। मैं अक्सर ज्यादा कई सारे प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, तो मैंने खुद आपका नाम सुना है।
0: अच्छा, एक चीज और भी है, नाराजगी, रूठना, इन सबसे बहुत ऊपर है।
1: सही बात,
0: क्योंकि हम आपके लिए हैं और आपको ही हम नहीं बोलेंगे, आपके नाम बोलेंगे तो फिर किसके बोलेंगे?
1: हाँ, आज आपके नहीं बोलेंगे, कल किसी और की शिकायत होगी तो फिर तो लोग सुनना ही छोड़ देंगे, है ना? तो इसलिए ये तो करके हम आगे बढ़ ही नहीं सकते।
0: आप बात, शिकायत भी लिखिए, तारीफ भी लिखिए, अगर आपको शिकायत नजर आती है तो जरूर कीजिएगा।
1: बिल्कुल लिखिए,
0: और बाकी तो और कुछ कह नहीं रहे हैं।
1: हाँ, बढ़िया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ऐसे ही शिकायत भी करते रहिए, है ना, क्या पता अभी हम सुन रहे हैं कि हाँ भाई नाम पढ़े जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन क्या पता हो सकता है कभी कभी मिस हो जाए। हालांकि हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि पूरी तरह निरपेक्ष रहें।
0: बिल्कुल,
1: और एक हाँ ये जरूर होता है, आपने भी बताया था मुझे कि बीच में कुछ लोग फोटो डाल देते हैं, वो आदमी पढ़ते पढ़ते आता है, बीच में फोटो खुलता नहीं है ठीक से
0: जी।
1: तो अब जाहिर सी बात है, अगर किसी ने फोटो डाल दिया तो उसका नाम नहीं पढ़ पाएंगे कुछ लोग, कुछ लोग हो सकता है पढ़ लें हम में से, और कुछ लोग नहीं पढ़ पाएंगे, कह रहे ये तो खुल ही नहीं, आगे बढ़ो।
0: बिल्कुल, क्यों, ऐसे में दो श्रोता का नाम छूट जाता है,
1: छूट जाता है। और हम ये भी हम कह के रखते हैं भाई, चुनिंदा श्रोताओं का नाम शामिल होंगे
0: जी,
1: तो भाई चुनिंदा में हो सकता है आपका नाम छूट जाए।
0: बिल्कुल,
1: हाँ।
0: ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी और अबरार हुसैन अंसारी जी लिखते हैं।
1: क्या लिखते हैं?
0: सबसे पहले तो कहते हैं, आपका पत्र मिला पेश करने वाले मित्रेश जी और सहयोगी को हमारी तरफ से बहुत प्यार, आदाब।
1: आदाब, बहुत बहुत प्यार आपको भी।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर सभी स्टाफ को, श्रोताओं को हमारी तरफ से बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
1: आपको भी शुभकामनाएं, आप हमारे नियमित श्रोता हैं।
0: आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर आकाशवाणी बरेली ने जो अपने कार्यक्रमों में धूम मचाई है, वो काबिले तारीफ है।
1: क्या बात है,
0: रेडियो के दीवाने, आपने गांव और शहर शहर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेश के श्रोताओं को भी जोड़ा है, उनके विचार, उनकी दीवानगी रेडियो के माध्यम से प्रसारित की, इसके जरिए श्रोताओं को बहुत प्रसन्नता हुई, सभी श्रोताओं ने खुशी महसूस की है। इसके अलावा आकाशवाणी के परिसर में शेर नशिस्त और कवि गोष्ठी के जरिए 90 वर्ष पूरे होने की जो धूम मचाई गई है वो भी काबिले तारीफ है। सभी कवियों ने, शायरों ने खूबसूरत रचनाएं प्रस्तुत की जिनका कोई जवाब नहीं। इसके अलावा आपकी पसंद के बीच बीच में कवियों की रचनाएं, झुमका गिरारे में 90 वर्ष का जश्न, आपकी बात आकाशवाणी के साथ में भी खूबसूरत विषय के साथ अच्छी प्रस्तुति, और भी बहुत से विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी बरेली 90 वर्ष पूरे होने पर प्रसारित कर रहा है।
1: बिल्कुल,
0: इसके लिए हम सब श्रोताओं की तरफ से आपका धन्यवाद।
1: बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद, आप सभी श्रोताओं के बिना ये मुमकिन नहीं था।
0: बिल्कुल,
1: आप सभी श्रोता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हमारी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।
0: जिस तरह आकाशवाणी ने ये 90 साल पूरे किए हैं, उसी तरह आने वाले समय में हम आकाशवाणी के 100 साल का भी जश्न मनाएंगे।
1: बिल्कुल, 100 साल क्या, हम 1000 साल मनाएंगे, हम रहे या न रहे, आकाशवाणी रहे
0: और
1: हम
0: जाएंगे, आप सभी चाहने वाले रहे।
1: बिल्कुल,
0: आगे बढ़े।
1: जरूर,
0: अगला जो ईमेल है वो किसान रेडियो क्लब ग्राम पोस्ट ललहुआ खीरी, विजय पाल यादव जी, शुभम यादव, रिचा, शिखा गुड़िया और बबलू यादव, विजय पांडे जी भेजते हैं, जिला खीरी के हमारे ये साथी हैं, और कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले भैया जी को मेरी ओर से सादर प्रणाम।
1: प्रणाम आपको भी यादव जी।
0: नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं,
1: क्या बात,
0: कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं,
1: क्या बात।
0: मित्रेश जी, सबसे पहले आपको हमारी ओर से आकाशवाणी बरेली के स्थानीय केंद्राध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
1: थैंक यू, शुक्रिया,
0: आपके
1: धन्यवाद।
0: यहाँ से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
1: क्या बात।
0: जो भी कार्यक्रम आप तैयार करते हैं सभी को ज्ञान प्राप्त होता है। मैं आकाशवाणी लखनऊ से भी जुड़ा हूँ। पिछले महीने हमने डॉक्टर सुशील कुमार राय जी से सफलता की कहानी के लिए हमें बुलाया गया था।
1: क्या बात है।
0: डॉक्टर साहब से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। बहुत ही सज्जन मिलनसार व्यक्ति हैं। उनके स्वभाव की जितनी भी प्रशंसा करें वो कम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, 100% सही कहा है आपने, और मुझे भी सौभाग्य मिला है उनके साथ काम करने का।
0: जी
1: मैं पहले

0: लखनऊ में ही था और वाकई बहुत ही सज्जन और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं, और इसी वजह से उनके स्वभाव की वजह से ही दूर दूर तक उनको जानने वाले हैं।
1: जी
0: और ओबरा हमारा स्टेशन है
1: जी
0: तो सोनभद्र के जंगलों में उन्होंने काम किया है, आदिवासियों के बीच काम किया है,
1: जी
0: तो एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके उन्होंने काम किया है।
1: कार्यक्रमों के बारे में जिक्र करते हुए कहते हैं 2 जून को नारी संसार कार्यक्रम में वार्ता महिला सशक्तिकरण का महत्व तो बड़ी अच्छी लगी। 3 जून को ग्राम जगत में कृषि गोष्ठी में खेती और पशुपालन से अधिक उत्पादन कैसे ले, इस कार्यक्रम की प्रस्तुति सुरेंद्र भैया और राकेश भैया ने बहुत अच्छी की।
0: क्या बात है।
1: और 4 जून को आपकी बात आकाशवाणी के साथ में, क्या आपने भलाई का काम किया है जिस पे आपको हमेशा गर्व होता हो, इस विषय पर कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा।
0: क्या बात
1: इसी
0: है।
1: दिन किसान वाणी में कृषक गोष्ठी खरीफ फसलों में
0: ये तो
1: अधिक,
0: कि अरोड़ा जी की तिलक राज अरोड़ा जी ने विषय दिया था
1: जी बिल्कुल,
0: तो
1: हमारे और
0: वो
1: भी
0: बधाई
1: श्रोता
0: के
1: दे सकते
0: पात्र
1: हैं।
0: हैं। बिल्कुल तमाम श्रोता दे सकते हैं।
1: हाँ
0: और एक श्रोता गंगा सिंह रावत हैं,
1: जी
0: उन्होंने मेल किया था कि क्या कमेंट जो अपने विचार हैं वो मेल पे दे सकते हैं, तो उन्हें बता दें कि विचार तो कॉल करके या फिर फेसबुक पे जो पोस्ट पड़ती है उस पर कमेंट करके दे सकते हैं,
1: जी
0: बाकी आप विषय दे सकते हैं, मेल पे
1: तो
0: भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
1: आगे लिखते हैं कि खरीफ फसलों से अधिक उत्पादन कैसे लें, ये जानकारी भी दी गई थी। क्षमा बहन और रघु भैया जी की प्रस्तुति अच्छी थी, ये सभी कार्यक्रम अच्छे लगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, स्वीकार्य हो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी स्वीकार हो, और ऐसे ही आप सुनते रहें, लिखते रहें, हमसे जुड़े रहें, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जिनका जिक्र आपने 2 बार किया,
0: हाँ
1: तीसरी बार उनका ईमेल हमारे सामने है,
0: हाँ हाँ
1: यानी कि हम
0: हाँ
1: उनका नाम तीसरी बार पुकारने वाले हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आप हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा जी। लिखते हैं कि सप्रेम नमस्ते जी,
0: नमस्ते।
1: 31 मई का आपका पत्र मिला, सुना कार्यक्रम मधुर आवाजों के साथ, अच्छा लगा कार्यक्रम। प्यार पूर्वक पत्र शामिल किए गए, उत्तर भी संतोषजनक और सम्मान सहित दिए गए। 31 मई का आपकी बात देवेंद्र रावत जी की बेहतरीन प्रस्तुति के साथ सुनकर दिल खुशी से झूम उठा। कार्यक्रम में कोई तंबाकू का सेवन करता है तो उसे कैसे रोकते हैं, इस विषय पर श्रोता साथियों से बातचीत बेहतरीन अंदाज के साथ की गई। कार्यक्रम की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। 2 जून का नमस्ते बरेली अमृता जी ने पेश किया, पसंद आया। कार्यक्रम में जानकारी महत्वपूर्ण सुनवाई गई, गीतों ने भरपूर मनोरंजन किया। 3 जून का यंग बरेली में मोहम्मद परवेज जी ने शानदार पेशकश दी। कार्यक्रम में खिलाड़ी से जो बातचीत की गई, इसके अलावा सभी जानकारियां बेहद अच्छी लगी। 3 जून का ही आपकी बात का विषय था, क्या शुभकामनाओं और बददुआओं का हमारे जीवन पर असर पड़ता है, इस विषय पर सुदेश सैनिक जी की श्रोता साथियों से बातचीत बेहद अच्छी लगी। कमेंट में विचार भी अच्छे थे। 4 जून को आपकी बात में जो शिप्रा मिश्रा जी ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया, अच्छा लगा। क्या आपने कोई भलाई का काम किया है जिस पर आपको गर्व हो, इस विषय पर श्रोता साथियों के भलाई के कामों को सुनकर गर्व हुआ।
0: क्या बात है।
1: शीशपाल जी, मुनव्वर जी और ब्रजेश तिवारी, इन सभी के कार्यक्रम सुने, पसंद भी आए। मिथिलेश श्रीवास्तव जी को आकाशवाणी बरेली में केंद्राध्यक्ष बनने पर
0: शुक्रिया,
1: पदोन्नति की बहुत बहुत बधाई।
0: पदोन्नति नहीं है, ये जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी शुभकामनाओं के लिए और आपके इतने बेहतरीन पत्र के लिए अरोड़ा जी।
1: हमारे बहुत सारे साथी लगातार अपने ईमेल के माध्यम से हमें अवगत कराते रहते हैं,
0: हाँ।
1: तो अब चलते हैं हम। मिथिलेश जी, अब तो हमें लगता है कि ईमेल्स का जो सिलसिला है यहाँ पर रोकना पड़ेगा।
0: हाँ, क्योंकि और भी लोग हैं जो दूसरे माध्यमों से जुड़ते हैं,
1: हाँ
0: तो सोशल मीडिया के कमेंट्स ले लीजिए अब।
1: बिल्कुल, आपका
0: जी
1: पत्र मिला, कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट पर हमारे कुछ श्रोता साथियों ने अपने कमेंट किए हैं, उनको भी पढ़ देंगे, वरना वो ये कहेंगे कि इस बार कमेंट तो एक भी ना पड़ा। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे इन सभी दोस्तों के कमेंट के साथ,
0: हाँ
1: और ये जो पहला कमेंट पढ़ने वाले हैं हम, ये अनोखे लाल जी का है।
0: हाँ हाँ क्या लिखते हैं।
1: अनोखे लाल मौर्या जी हैं कटरा चांद का, पुराना शहर बरेली से। आप लिखते हैं, आपका पत्र मिला, कार्यक्रम पेश करने वालों को प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार।
1: शुक्रवार सुबह 10 बजे आपकी पसंद कार्यक्रम सुना, जो हमारी पसंद का गाना सुनवाया गया, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। इसी दिन शाम 5:30 पर लकी 3 कार्यक्रम सुना, हम श्रोताओं की पसंद पर गाने भी सुनवाए गए, शब्दावली भी अच्छी थी, भाई शीशपाल जी ने कार्यक्रम पेश किया था। शनिवार शाम 5:30 पर हेलो बरेली कार्यक्रम सुना, हम श्रोताओं से पसंद पर जो गाने सुनवाए और बातें बहुत अच्छी की। रविवार को सुबह 8:15 पर इन्होंने अंकुर कार्यक्रम सुना, इसमें नेमचंद भैया और नाजमा जी के साथ जो बातचीत सुनवाई गई, बाल गीत सुनवाए गए, वो अच्छे थे। बच्चों से जानकारियां बच्चों को दी जाती हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। और सोमवार को नमस्ते बरेली कार्यक्रम इन्होंने सुना, शहर के ऊपर जो जानकारी दी गई थी अच्छी थी। और इसी दिन शाम को 4 बजे आपकी बात आकाशवाणी के साथ में, हम श्रोताओं की कॉल पर जो गाने सुनवाए गए, गाने भी अच्छे थे, बातचीत भी अच्छी थी।
0: क्या बात।
1: लिखते हैं कि शाम 6:30 पर इन्होंने उसी दिन एक और कार्यक्रम सुना जो किसानों के लिए कार्यक्रम था, जो

जानकारी दी गई ये अच्छी थी। और दोपहर मंगलवार को अनुरोध गीत इनको अच्छा लगा, परवेज जी ने पेश किया था, और 6 बजे शाम को इन्होंने युवाणी कार्यक्रम सुना और लाल मोहम्मद अंसारी और निसार अंसारी की बातचीत सुनी। अपने अनुभव उन्होंने हमें बताए, ये बहुत अच्छे लगे। हम श्रोताओं की पसंद पर जो गीत सुनवाए गए वो अच्छे थे। शाम 7:31 पर अनुरोध गीत कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा पत्र शामिल किए गए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतरीन कार्यक्रम।

0: व्यस्तता की वजह से हम हर कार्यक्रम नहीं सुन पाते हैं, मगर जो भी सुनते हैं उसे तहे दिल से सुनते हैं।
1: क्या बात है।
0: बरेली के प्रोग्राम बेहद बेहतरीन होते हैं, आरजेज पेशे अंदाज लाजवाब होते हैं, तो बाकी इन्होंने भी फरमाइश लगाई दी
1: ठीक
0: है।
1: ठीक ठीक बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोदी जी।
0: आगे बढ़ते हैं। सभी उद्घोषकों की आवाज में बहुत मिठास है,
1: क्या
0: उनकी
1: बात
0: मधुर वाणी में लाजवाब प्रस्तुति प्रोग्राम में चार नहीं बल्कि हजारों चांद लगा देती है।
1: क्या बात
0: सभी
1: है।
0: प्रोग्राम एक से बढ़कर एक हैं। सभी आरजे उद्घोषकों की जितनी भी तारीफ करें कम होगी, हमें किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है।
1: क्या बात
0: ये
1: है।
0: हमारे साथी हैं अजीत कसाना जी, ग्राम बपोस्ट लदावली, जिला मुरादाबाद से।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे
0: अगला कमेंट पढ़ते हैं।
1: जी।
0: आप नमन ढींगिया जी हैं, साथ में हैं संजय ढींगिया, अपार ढींगिया, बागपत, उत्तर प्रदेश से। सबसे
1: हाँ।
0: पहले आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। आकाशवाणी बरेली से प्रसारित आपकी पसंद लकी 3, मन भावन, नारी संसार, आपकी बात, आकाशवाणी के साथ सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, कोई शिकायत नहीं है।
1: क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और शुभकामनाएं आपको भी। आप सभी श्रोता बहुत मन से कार्यक्रम सुनते हैं।
0: सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ जी कहते हैं,
1: हाँ।
0: आकाशवाणी बरेली से प्रसारित हर कार्यक्रम सुनते हैं और पसंद भी आता है,
1: क्या बात
0: खास
1: है।
0: तौर पर दोनों आकाशवाणी के 90 साल के उपलक्ष्य में जो आपने श्रोताओं को जोड़ रखा है। स्थानीय स्तर पर केंद्र के
1: हाँ।
0: रूप में देखा
1: आकाशवाणी
0: जाए।
1: बरेली का जो स्थापना दिवस है वो 17 जून है
0: जून है।
1: और बाकी 8 जून को आकाशवाणी की स्थापना क्या ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से बदल के नाम जो है ऑल
0: बिल्कुल
1: इंडिया रेडियो हुआ था 1936 में,
0: जी।
1: तो वही 90 साल हो रहे हैं।
0: तो अच्छा, जब उसके 90 साल हो रहे हैं तो आकाशवाणी नाम के भी 90 साल हो रहे
1: हाँ
0: हैं, है
1: बिल्कुल।
0: ना?
1: नहीं उस समय ऑल इंडिया रेडियो हुआ
0: ऑल
1: था,
0: इंडिया
1: बाद
0: रेडियो
1: में
0: हुआ था,
1: आकाशवाणी
0: जी
1: हुआ।
0: जी। तो
1: हाँ।
0: इन्होंने कहा है कि जो आपने इस अवसर पर श्रोताओं को जो जोड़ रखा है और प्रोग्राम में उनकी सहभागिता और शुभकामनाएं प्रसारित करते हैं, इसके लिए हम आपका विशेष तौर पर बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद करते हैं।
1: धन्यवाद आपका भी कि आप सभी लोग जुड़ रहे हैं, साथ दे रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं एक जाहिर सी बात है हम अकेले बैठे रहेंगे आपस में ही बात करेंगे तो मजा नहीं आएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि दुनिया भर के तमाम श्रोता हमसे जुड़ें
0: हाँ
1: और विचारों का आदान प्रदान हो और कुछ मजा आए।
0: बिल्कुल सही कहा मिथिलेश
1: जी।
0: जी। अभी सिर्फ हमारे भारत के श्रोता ही हमारे साथ हैं, कुछ एक श्रोता हैं जो विदेश में हैं
1: हाँ
0: और वो हमें कार्यक्रमों
1: बिल्कुल।
0: में
1: भेजते हैं दुबई
0: भेजते
1: में,
0: हैं,
1: ऑस्ट्रेलिया में भी
0: जी।
1: कुछ लोग हैं,
0: हमारे
1: कई
0: पड़ोसी
1: सारे।
0: देशों के
1: हाँ
0: भी कुछ श्रोता जुड़े हैं,
1: उजबे अरे जो आपका
0: नेपाल से,
1: बलूचिस्तान से एक श्रोता रहते हैं, लाइव
0: बिल्कुल
1: लाइव हमने किया था उसमें भी जुड़े
0: जी
1: थे,
0: जी
1: तो ये तो है। पाकिस्तान से भी कुछ लोग कमेंट करते हैं बलूचिस्तान
0: बिल्कुल।
1: तो।
0: और तो उम्मीद करेंगे कि ये
1: हाँ
0: विश्व एक परिवार के रूप में आकाशवाणी के साथ जुड़े सब,
1: बिल्कुल
0: और खास तौर पर हम भी जाएंगे बरेली के साथ
1: बरेली। हाँ हमारी पूरी कोशिश है कि
0: जी
1: पूरी शिद्दत से हम लोग लगे हुए हैं
0: जी
1: कि अच्छे से अच्छा आप लोगों को मनोरंजन और जानकारियां दें। जी
0: गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर जी लिखते हैं,
1: हाँ
0: आकाशवाणी बरेली के सभी प्रोग्राम लाजवाब होते हैं, खासकर फरमाइशी फिल्मी गानों के कार्यक्रम हम नियमित सुनते हैं, हमारी फरमाइश हमेशा पूरी करते हैं, इसके लिए केंद्र को केंद्र नियामक सर का दिल से आभार व्यक्त करते
1: केंद्र
0: हैं।
1: नियामक, चलिए कोई बात नहीं, आपके शब्द चाहे जो हो भाव हम समझ गए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: आगे बढ़े।
1: जरूर।
0: आदर्श नगर मलोड पंजाब से 90 सालों का ये जो सफर है उसके बारे में शुभकामनाएं देते हुए आकाशवाणी बरेली से कहते हैं, आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, मैंडी शर्मा और इनके सभी साथी, बधाई देते हैं 90 वर्ष पूर्ण होने की, तो आप क्या
1: बिल्कुल।
0: कहेंगे?
1: हाँ बहुत बहुत बधाई आपको भी 90 वर्ष पूरे होने के, और आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप सभी लोग सुनते रहें, लिखते रहें और मेल करें, कमेंट करें, हर तरह से जुड़ें।
0: तो अगला कमेंट पढ़े।
1: हाँ हाँ कमेंट पढ़ें, अब समय बहुत कम बचा है तो
0: हाँ
1: फटाफट सबके कमेंट्स जितने लोगों के हो सकते हैं
0: बिल्कुल।
1: शामिल कर लिए जाएं। हाँ
0: अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी और
1: हाँ
0: इनके सभी साथी कहते हैं कि आपके प्रोग्राम हमारे दिल को छू जाते हैं।
1: क्या बात है, आपके भी कमेंट छू जाते हैं।
0: सही कहा।
1: हाँ
0: लाडला जी चौबे और लाडली जी चौबे, रिमझिम और सक्षम चौबे, सागर, लखनादौन, मध्य प्रदेश से। आकाशवाणी बरेली के बहुत कार्यक्रम हम सुनते हैं, समय अनुसार सभी प्रोग्राम में भाग भी लेते हैं, सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, किसी प्रोग्राम से हमें कोई शिकायत नहीं, सभी अनाउंसर एक से बढ़कर एक हैं,
1: क्या
0: बहुत
1: बात
0: बहुत
1: है।
0: बधाई।
1: बहुत बहुत बधाई आपको भी, और ऐसे ही जुड़े रहिए, हम उम्मीद करते हैं।
0: सैयद मसरूर साहब गांव कुमारहेड़ा सहारनपुर से आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रमों के बारे में कहते हैं, सभी कार्यक्रम एक से एक बढ़कर एक हैं।
1: क्या बात है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही हम सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक करते रहेंगे, और बल्कि एक से बढ़कर एक नहीं 11 कर लेंगे कभी कभी, क्योंकि एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं। तो एक हम हैं और एक आप सभी श्रोता हैं।

0: मिलके 11 हो जा रहे हैं।
1: तो देखते हैं कि अगले हफ्ते एक और एक 11 होते हैं या कितने ढेर सारे
0: 111 होते हैं,
1: 111
0: होते हैं,
1: ये भी सही है। तो अगले हफ्ते आप सबकी प्रतिक्रियाओं, सुझावों और शिकायतों का हमें इंतजार रहेगा। श्रोताओं, पत्र लिखने के लिए पता लिख लीजिए, कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन कोड 243001। आप अगर चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आपका पत्र मिला bareilly@gmail.com पर। इसके अलावा पेज पर आइए, वहां आपका पत्र मिला कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट है, उस पोस्ट में अपने फीडबैक हमें लिख डालिए।
0: वहां पूछा जाता है कि आपको इस हफ्ते कार्यक्रम कैसे
1: लगे,
0: तो इस हफ्ते के कार्यक्रम बताइए कि इस हफ्ते ये कार्यक्रम सुना और ये ऐसा लगा।
1: तो ठीक अब है? तो मैसेज जी चलना पड़ेगा,
0: बिल्कुल चलना पड़ेगा, और क्योंकि फोन की घंटी भी लगातार बज रही है,
1: अगला कार्यक्रम शुरू होने को है।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोताओं, हम आप सबके सुख की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप सब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ आज के आपका पत्र मिला कार्यक्रम से गजेंद्र
0: और मिथिलेश को दीजिए अनुमति,
1: कीजिए स्वीकार, हम दोनों की ओर से सब प्रेम नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम आपका पत्र मिला, प्रस्तुति थी मित्र श्रीवास्तव की, और पत्र पढ़ रहे थे गजेंद्र सिंह और आपके पत्रों का जवाब दे रहे थे मिथिलेश श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30
1: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।
2: FM 100.4 MHz यानी आकाशवाणी बरेली आपके सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com।
0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
3: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। पूर्वाह्न के 11:30:18 हो चुके हैं। आप सुनवाते हैं आपको लोकगीत। आइए सुनते हैं ये लोकगीत। सुस्वर दिया है बीना शर्मा और सखियों ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से लोकगीत। आइए सुनवाते हैं एक बार फिर से आपको बीना शर्मा और सखियों के सुर में एक और लोकगीत।

आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। आकाशवाणी बरेली हरदम आपके साथ, और इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक गीत। अब सुनवाते हैं आपको अंशुल हसना के स्वर में ये लोक गीत।

आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम आकाशवाणी बरेली। आकाशवाणी बरेली हरदम आपके साथ। इस वक्त लोग ही सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। आइए सुनवाते हैं आपको ये लोकगीत। स्वर है बाल किशन भारती का।

आप सुन रहे हैं लोकगीत आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। आइए सुनते हैं ये लोकगीत डोरीलाल गोला की आवाज में।

लीजिए सुनवाते हैं इस कार्यक्रम का ये अंतिम लोकगीत, स्वर दिया है बीना शर्मा और सखियों ने।

शुभम, अभी आप सुन रहे थे लोकगीत आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, और अब आपको जोड़ रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। बातें करके हम FM रेनबो के।

नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के माध्यम से ही प्रदेश की नई पहचान बनी है। मुख्यमंत्री कल गोंडा में 516 करोड़ रुपए की लागत की 262 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास को लेकर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास विजन के तहत सरकार बिना भेदभाव घर घर तक विकास योजनाएं पहुंचा रही है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कल ही तुलसीपुर में देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन किया और मां से सुखी स्वास्थ्य और समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के सफल समापन के बाद विदेशी

प्रतिनिधि मंडल ने कल वहां दीनदयाल हस्तकला संकुल का दौरा किया। सदस्यों ने भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा की समृद्ध विरासत को दर्शाने वाले संग्रह को देखा। इससे पूर्व प्रतिनिधि मंडल ने भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। बौद्ध तीर्थ स्थल के दर्शन के दौरान प्रतिनिधि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित नजर आए। प्रतिनिधियों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया। इस अवसर पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक सांस्कृतिक धरोहरों और जीवंत परंपराओं को से रूबरू कराना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG 2026 के पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की दावों को खंडन किया है। NTA ने कहा कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। NTA ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। लखनऊ में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 950 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 979.50 रुपए हो जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार,
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
2: है, रते आश के जगावत।
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
3: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ।
5: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी,
6: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: नमस्कार, हेल्थ एंड फिटनेस में स्वागत है। मैं आपकी होस्ट समरीन। और दोस्तों, अक्सर स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो अचानक सामने आती हैं, और उस समय घबराहट में उठाया गया एक गलत कदम मरीज की स्थिति को और गंभीर बना सकता है। ऐसी ही एक स्थिति है दौरा यानी कि फैट्स, जिसे देखकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं और अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो खतरनाक साबित हो सकती हैं। इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, यानी कि दौरा पड़ने पर घबराएं नहीं बल्कि सही कदम उठाएं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बाल रोग एवं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर दीक्षा गुप्ता, जो हमें बताएंगी कि दौरा क्या होता है, इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन परिस्थितियों में तुरंत अस्पताल जाना आवश्यक हो जाता है। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: हमारे स्टूडियो में।
1: थैंक यू, धन्यवाद।
0: इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, मैं आप सबको बता दूं, जो अभी हमारे साथ हेल्थ एंड फिटनेस में जुड़े हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं 0522238852 2238845 पर। ये वो मैजिकल नंबर है जहां पर आपकी हर प्रॉब्लम या इस तरह की प्रॉब्लम से अगर आप गुजर रहे हैं तो उसका सलूशन आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर फोन लाइंस बिजी हैं और आप हमें कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर। डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले जानना ये चाहेंगे कि फिट्स क्या होते हैं, दौरे होते क्या हैं और ये क्यों होते हैं।
1: दौरों का डर भी बहुत ज़्यादा है आजकल सब में, और जी बहुत सारी बातें ऐसी भी फैली हुई हैं जो सही नहीं है। तो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि जो दौरे होते हैं वो हमारे ब्रेन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई कीटाणु हो, कोई गांठ हो, कोई जेनेटिक नुक्स हो या कोई बनावटी नुक्स हो, तो वो हिस्सा हमारा ब्रेन का जो होता है वो दूसरे हिस्सों के मुताबिक एक्साइटोटॉक्सिक हो जाता है। मतलब उसमें एक तरह की तेजी आ जाती है जो करंट जैसा फ्लो करके बाकी ब्रेन में करंट फ्लो करता है, जिसकी वजह से कभी हाथ पैर टाइट हो जाना, हाथ पैर लूज हो जाना, जोर जोर से हाथों पैरों का झटकना, मुंह से झाग आना, आंखें ऊपर हो जाना, कभी कभी जीभ कट जाना, इवन बहुत सटल दौरे, मतलब बहुत हल्के दौरे भी हो सकते हैं
0: जी,
1: जैसे एक ही जगह बच्चे का बैठे रहना, एक ही जगह देखते रहना, गुमसुम हो जाना, उस समय रिस्पांस ना करना, आप बुलाओ तो उस समय कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनटों के लिए आपको ऐसा लगता है कि बच्चा हमारे पास सुनता नहीं है, और फिर एकदम से ठीक हो जाता है। अच्छा। इस प्रकार के भी दौरे हो सकते हैं,
0: मतलब उसमें जैसे टिपिकल दौरे में देखते हैं कि बॉडी हिलने लगी, वो नहीं होता है, आप चुपचाप बैठे हैं एक जगह तक रहे हैं, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। ओके, तो डॉक्टर साहब ये तो हो गया कि क्या क्या संकेत हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर बच्चे को अचानक से दौरा पड़ जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए?
1: अगर आपके सामने ऐसा होता है कि आपके घर में या आपके आसपास किसी को भी अचानक से दौरा पड़े, तो सबसे पहले आपको अगर बच्चे के हाथों पैरों में कुछ भी टाइट कपड़ा बांधा हुआ है तो वो लूज कर देना चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे मसल टोन और बॉडी बहुत टाइट होती है तो फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। तो आपको सब कपड़े, ज्वेलरी वो सब लूज कर देना चाहिए, और आपको एक करवट पे लिटा देना चाहिए, क्योंकि उस समय हो सकता है कि मुंह से पानी आए, झाग आए, तो वो सब चीजें जो है वो बाहर निकल जाए, फेफड़ों में ना जाए। उसके अलावा हमें मुंह में कोई कोई चम्मच, दवाई, पानी, सॉक्स, जूता कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि वो चीज जो है वो हमारे गले से लंग्स में जा सकती है, और हमें तुरंत इमरजेंसी में लेके जाना है। अगर आपके बच्चे को पहले से ही दौरे की शिकायत है और आपके पास नाक में डालने वाला स्प्रे है तो वो आप डाल सकते हैं, लेकिन आप अदरवाइज मुंह में कुछ नहीं डालिए, कोई चम्मच नहीं डालिए, और कोई दवाई उस समय देने की कोशिश ना करें।
0: अक्सर देखा जाता है कि इधर इंसान बेहोश होके कुछ भी उसका हो रहा है तो सबसे पहले कहते हैं पानी डालो, पानी डालो, मुंह डालो, तो वो चीज अवॉइड करनी चाहिए।
1: मुंह के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उस समय बच्चा होश में नहीं है, तो जो भी आप डालोगे वो फूड पाइप की जगह फेफड़ों में, ट्रेकिया में जा सकता है, लंग्स में जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है, उनको लिखते हैं और देखते हैं कि क्या समस्या है उनकी। हेलो,
2: हेलो,
0: हाँ जी, नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं और सवाल पूछिए आप।
2: मैडम गुड आफ्टरनून, संजय बोल रहे हैं लखनऊ से।
0: जी जी संजय, बताइए क्या समस्या है।
2: डॉक्टर साहब नमस्ते।
1: नमस्ते
2: डॉक्टर साहब, हमको ये क्वेश्चन पूछना है, जैसे जो बेबी होते हैं, जैसे वो छोटे बेबी होते हैं, 1 ईयर से होते हैं या 2 ईयर से होते हैं, कभी ऑन द बेड से नीचे गिर जाते हैं गलती से, तो क्या मैडम उसमें भी बहुत रिस्की रहता है आगे के लिए उनकी लाइफ जो है?
1: आपका सवाल बहुत सही है, लेकिन जैसे यूजुअली क्या होता है कि अगर जैसे बच्चा गिरा तो उस समय अगर कुछ खास दिक्कत नहीं हुई, कि बच्चा अगर बेहोश नहीं हुआ है, उस समय दौरे नहीं पड़े हैं, सीटी स्कैन में कुछ नहीं आया है, तो आप यूजुअली आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर जब गिरा था, जब चोट लगी थी, तो सीटी स्कैन में नुक्स आया, काफ़ी कुछ मतलब वहाँ खून बहा या दौरे ज़्यादा हुए थे, तो फिर ऐसा हो सकता है कि हमें कुछ समय के लिए दौरों की दवाई देनी पड़े और आगे चल के शायद कुछ तकलीफ बने। लेकिन हर बच्चे को गिरने के बाद ऐसी दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं होता है।
2: मैडम ये पूछना है, जैसे अगर बच्चा गिर जाता तो क्या जरूरी है कि उसमें स्कैनिंग कराई जाए या उससे एक्सरे कराया जाए?
1: एक बार करा लेने में क्या रहता है ना, मन की शंका निकल जाती है। अगर बिल्कुल बस बच्चा बस हल्का सा बेड से नीचे गिरा और थोड़ा सा रोया और चुप हो गया और कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, तो फिर हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं, रुक सकते हैं। लेकिन अगर गिरने के बाद भी होश हुआ या खून निकला कान या नाक से या फिर दौरा पड़ा, तो हमें ज़रूर एक स्कैन करवा लेना चाहिए।

0: जी, थैंक यू, थैंक यू मैडम,
1: धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जो दौरा है वो थोड़ी उसकी जो टाइमिंग है वो बढ़ जाती है, उस दौरान क्या करें, क्योंकि फिर हाथ पैर आपके काम नहीं कर रहे होते, आप खुद बहुत घबरा गए होते हैं, तो पहली चीज जो इस तरह की सिचुएशन में हमें करनी चाहिए, एक तो आपने बताया कि करवट लिटा दें, और क्या ऑप्शंस हैं जिससे मरीज को थोड़ा रिलीफ मिले?
2: एक्चुअली एक बार जब सीजर्स शुरू होते हैं और ये जो दौरे लंबे पड़ते हैं, क्योंकि ब्रेन अपने आप ही पूरा एक्साइटोटॉक्सिक हो चुका होता है, उस समय या तो अपने आप दौरे कंट्रोल होंगे या फिर दवाई देने पे कंट्रोल होंगे।
1: अच्छा,
2: अगर एक बार जैसे आप समझ रहे हैं दौरा पड़ गया और वो करंट हमारा ट्रांसमिट होने लग गया है, तो ब्रेन खुद ही सेल्फ एक्साइटोटॉक्सिक हो जाता है। उस टाइम पे एक टाइम के बाद या तो खुद एक्टिविटी कम होती है, अदरवाइज अगर हम मेडिसिन देंगे तो ही कम होगी। सो इसके लिए मेन चीज जो हमें समझनी चाहिए, जो हमने फर्स्ट मेजर्स ले लिए, साइड में लिटा दिया, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हमने प्रिवेंट कर लिया, जैसे हमने सिक्रीशंस को हैंडल कर लिया, उसके बाद हमें जो भी सबसे पास में हॉस्पिटल हो वहां पे लेके जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुरंत एक इंजेक्शन लगा के दौरे को कम करना, रोकना वो जरूरी है। अगर आप किसी दूर के अस्पताल में यूजुअली दिखाते भी हैं तो भी मेरा एडवाइस ये होगा कि आप एक बार किसी भी आसपास के अस्पताल में चले जाए जो आपके घर से 10-15 मिनट की दूरी पे हो।
1: फिजिशियन को भी दिखा सकते
2: हैं, किसी को भी दिखाइए। अच्छा। जी, ऑलमोस्ट सब डॉक्टर्स को पता रहता है दौरे की रोकने की जो दवाई होती है वो दवाई देके एटलीस्ट एक बार दौरा रुक जाए, उसके बाद आप एम्बुलेंस से आसपास के किसी भी हॉस्पिटल में जाना चाहें आप जा सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली जल्दी रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आधे घंटे से ऊपर दौरा पड़ जाता है तो उसके काफी लंबे डैमेज हो सकते हैं जो फिर कोई भी आगे चल के नहीं ज्यादा रिवर्स कर सकते। सो फर्स्ट स्टेप शुड बी बिल्कुल पास के अस्पताल में जाइए, दौरा रुकवाइए, उसके बाद जहां आपको अच्छा लगे वहां आप लेके जाइए।
1: जी डॉक्टर साहब, अब हम लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद इस संजीदा मुद्दे पे जो कई लोगों के लिए जानलेवा भी साबित होता है अगर आप किसी तरह की कोताही, लापरवाही या गलतियां करते हैं। लेकिन अभी माहौल को थोड़ा सा लाइट करते हुए एक कमर्शियल ब्रेक के बाद एक म्यूजिक ब्रेक। थैंक यू।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: 12:19 मैं हूं आपके साथ समरीन। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप हेल्थ एंड फिटनेस, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बाल रोग एवं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर दीक्षा गुप्ता, जो हमें आज जानकारी दे रही हैं कि दौरा क्या होता है और इसके क्या नुकसान आपकी जिंदगी में हो सकते हैं अगर आपने इसको सीरियसली नहीं लिया। तो सबसे पहले डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि अगर किसी को दौरा है और वो गांव, चूंकि अपने आसपास 70% हमारी आबादी जो है वो गांव में है, दौरे जैसी सिचुएशन आती है और वो उसको ओझा या बाबा या मौलवी के पास लेके जाते हैं, इन दैट सिनेरियोस के क्या साइड इफेक्ट्स, क्या कुछ और बुरा हो सकता है पेशेंट के साथ?
3: ये बात बिल्कुल सही है। हम यहाँ पे काफी बार दौरों को यही समझा गया कि कुछ जिन बच्चे के ऊपर भूत प्रेत का साया हुआ है, लेकिन हमें अब हम 2026 में आ चुके हैं, हम जानते हैं कि ये सब चीजें हमें नहीं सोचनी, और आजकल प्रिसीजन मेडिसिन का जमाना है,
2: बिल्कुल
3: बीमारी की जड़ तक जाके उसका इलाज करने का जमाना है। जीन्स के ऊपर हम बात करते हैं, तो हमको ऐसे नहीं सोचना है कि कोई भूत प्रेत आया है, तांत्रिकों के पास जाएं, उनसे गलत सलाह लें और अपने बच्चे को और नुकसान करें।
2: जी जी।
3: क्योंकि देखिए, जितनी बार दौरे पड़ते जाएंगे वो दिमाग पे असर छोड़ता जाएगा।
2: अच्छा, उसका उसका नुकसान भी होता है हर दौरे का?
3: हर दौरा अपना नुकसान छोड़ के जाता है। तो आप अपने बच्चों को सही दवा देके एक बेहतर जिंदगी दे सकते हैं, और कहाँ दौरों का नुकसान होता रहेगा और हमें रियलाइजेशन भी नहीं होगा कि हमने कितना बच्चे के लिए डैमेज कर दिया है।
2: मैम, हर दौरे के बाद क्या नुकसान होता है हमारे जहन को?
3: जब हमारे ब्रेन में एक जब भी लंबा दौरा आता है तो उस टाइम पे ब्रेन में ऑक्सीजन कम पहुंचता है।
2: ओके।
3: तो वो उस वजह से कहीं ना कहीं जो सेल्स होते हैं ब्रेन के वो मरते जाते हैं। तो हमको ये हर दौरा जितना हम बचाएंगे उतना ही हमारा ब्रेन बचा रहेगा।
2: अच्छा, तो आपसे एक चीज और भी जानना चाहेंगे, जिन बच्चों को या बड़े लोगों को दौरा होता है उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो किस तरह की चीजें अपने बैग में रख के ले जाएं कि इंस्टेंट अगर कुछ हो रहा है तो वहां पर लोग उन,

0: को मदद कर सकें, जैसे पेरेंट्स अगर टीचर को इन्फॉर्म कर दें कि बच्चों को ये दिक्कत है तो टीचर्स को क्या एक्शन लेना चाहिए? इसके अलावा क्या जिनको दौरा आता है उन्हें ड्राइविंग करनी चाहिए या वो अपनी रूटीन लाइफ जी सकते हैं जैसे एक नॉर्मल इंसान जीता है पेशेंट?
1: सही बात है, जैसे मतलब एक बार जब दौरे आते हैं तो स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं दोबारा दोबारा दौरे आने के लिए।
0: अच्छा।

0: दोबारा दौरे आने के लिए।
1: अच्छा
0: और अगर जैसे दौरों की दवाई देने के बाद दौरे कंट्रोल हैं, 2 साल तक दौरे नहीं आए हैं
1: जी,
0: फिर हम धीरे धीरे जैसे दवाई कम करके बंद कर देते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि 5 साल तक बच्चे को दौरे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं।
1: ओके
0: अगर स्टार्टिंग के टाइम पे जब एक्टिव सीजर्स हैं, दौरे आ रहे हैं, उस समय स्पेशली बहुत जरूरी है कि बच्चे के साथ कोई ना कोई रहे। इवन हम एडवाइस करते हैं कि रात को सोते समय कोई साथ में सोए, ताकि अगर रात में दौरा पड़ रहा है तो वो लंबा या अननोटिस्ड ना जाए। हमेशा आपको साथ में होना चाहिए। इवन अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो साइकिलिंग करके ना जाए, अकेले ना जाए, क्योंकि दौरा आएगा तो कोई होगा नहीं आसपास। और मेजर दौरा ना होते हुए साइकिल से गिरने की वजह से मेजर इंजरी हो सकती हैं, इसलिए साथ में एक कंपनी होना बहुत जरूरी है।
1: प्रिकॉशंस
0: बहुत जरूरत है। स्कूल में टीचर्स को बताएं, प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करें, टीचर्स को पता रहे कि हमारे बच्चे को दौरा पड़ने के चांसेस हैं, तो हमारे पास जो स्प्रे होता है जिससे हम दौरे कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम हमेशा बच्चे के बैग में रख सकते हैं। दौरा आने पर वो स्प्रे डाल सकते हैं दौरा कंट्रोल करने के लिए। एंड स्कूल में टीचर्स भी अवेयर रहेंगे, एंड इवन The other kids will also know. And as a doctor, हमारे लिए वीडियो भी बहुत जरूरी होता है कि कैसा दौरा था, क्या हुआ था। तो टीचर्स को अगर इन्फॉर्मेशन है तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं आगे के ट्रीटमेंट के लिए। ड्राइविंग, स्विमिंग इज वेरी रिस्की अगर आपको सीजर्स आए हैं, लेकिन अगर आप 5 साल से ऑफ एंटी एपिलेप्टिक्स से आपकी दवाइयाँ नहीं चल रही हैं और ईजी भी आपका बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, तब हम नॉर्मल रूटीन प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या समस्या है उनकी। हेलो
2: हेलो,
1: नाम बताइए अपना।
2: जी, मेरा नाम मृदुल कुमार है, मैं लखीमपुर खीरी से बात कर रहा हूँ।
1: मृदुल, आपकी क्या सवाल है डॉक्टर साहब से, आप पूछ सकते हैं?
2: मैम, मेरा ये सवाल है कि मेरे बच्चा है 1.5 साल का है।
0: हाँ जी।
2: तो ये इसका जन्म हुआ था, रोया नहीं था, तो मैम डॉक्टर ने बताया था, मतलब सीपी चाइल्ड है ये। तो शुरुआत में तो इसको दौरे नहीं पड़े थे, मतलब उसके बाद ये जब 6-7 महीने का हुआ, जिसको जुकाम उखाम हुआ, उसके बाद से इसको मतलब सोके उठता था, एकदम से जैसे चौंक जाते थे, अकड़ जाता था।
0: जब जब सोके उठता था तो ऐसे झटके लेता था, ऐसे एकदम आगे को होके, और फिर रोने लग जाता था।
2: जी
0: हाँ जी।
2: हाँ, फिर इसको मैंने दिखाया था तो डॉक्टर साहब ने 2 दवाइयाँ लिखी थी।
0: हाँ जी।
2: एक लेवेरा और एक वो गार्डन।
0: अच्छा
2: जी।
0: हाँ जी।
2: तो उससे भी मतलब शुरुआत में तो कम हो गए, बच्चा बंद हो गया, उसके बाद फिर हो गए। तो उन्होंने एक फेनाटोनिन नाम की दवाई यहाँ से जस्ट की थी, तो उससे भी फिर कुछ दिन फर्क पड़ा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ गया।
0: ठीक है। इसमें क्या रहता है ना, जब बच्चे को पैदा होने पे दिक्कत हुई होती है, रोए नहीं होते, ये वेस्ट सिंड्रोम बोलते हैं हम इस चीज़ को, कि सुबह सो के उठ के इस तरह से झटके आते हैं। तो जो आपने पहले जो दवाइयाँ दे रहे हैं सही है, उससे कुछ उसमें गलती नहीं है, पर इसके लिए और भी स्पेसिफिक मेडिसिन हैं इन्हीं वाले दौरों के लिए, जो हम अगर देंगे, जैसे ओमनाकॉटिल है, विगाबैट्रिन है, ऐसी दवाइयाँ देने से ये वाले झटके भी हमारे कंट्रोल हो जाते हैं, इसका इलाज है। और ये झटके पूरे 0% हमें करने होते हैं, बिल्कुल एक भी झटका नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर ही जो डेवलपमेंट है, गर्दन संभालना, बैठना, फिर ही वो बेहतर हो पाता है। जब तक हम इन दौरों को कंट्रोल नहीं करेंगे, आपने नोटिस किया होगा कि बच्चा ठीक से गर्दन भी नहीं संभालता और बैठ भी नहीं पाता है। जब हम इन दौरों को कंट्रोल कर लेंगे तभी वो चीज़ भी ठीक हो पाएगी। एक बार इसलिए ईजी भी करवाना बहुत ज़रूरी है, एमआरआई ब्रेन भी कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एक बार हम दौरों को अच्छे से देख लें, फिर हम उसके हिसाब से दवाई दें। तो ऐसे इसमें घबराने की बात नहीं है, आप मिल सकते हैं, फिर इसकी दवाई देके ज़रूर बच्चा बेहतर हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, एक कॉलर और हमारे साथ हैं, उनसे हेलो। हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है, नाम बता दीजिए और अपना सवाल पूछ लीजिए। संजना लहरपुर से बोल रही हैं आप, सवाल क्या है आपका?
3: मैम, हमारा सवाल है कि मैम दौरा आने से मौत भी हो सकती है।
0: आपका सवाल बहुत सही सवाल है, बिल्कुल यूजली एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ऐसे सवाल, पर ऐसा है, बिकॉज स्पेशली इसलिए मैंने अभी जस्ट जो बताया था कि बहुत ज़रूरी है कि रात को बच्चे के साथ कोई सोए, बिकॉज वैसे भी अगर दौरा रोड पे आ गया, एक्सीडेंट हो गया, वो तो है ही, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें जिसको हम सुडेप बोलते हैं, के दौ

0: और आते हुए डेथ भी हो सकती है। इसमें क्या रहता है कि जब बच्चा रात को सो रहा होता है और कोई देखने वाला नहीं होता है, दौरा लंबा पड़ जाता है, सांस एकदम रुक जाता है, तब ऐसा हो जाता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है हम पेरेंट्स के लिए, ऐसा पॉपुलेशन के हमें पता हो कि अगर हमारे बच्चे को या हमारे घर में किसी को भी दौरे आ रहे हैं, उस समय कम से कम जब तक दौरे आ रहे हैं 2 सालों के लिए, हम उनको अकेला ना छोड़ें।
1: डॉक्टर साहब, हम अकेला ना छोड़ें ये बात तो आपने बताई, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ
0: हाँ
1: कि
0: जी,
1: जो बच्चे
0: और दौरे की दवाई कभी छोड़े नहीं। ये
1: जी
0: एक मैं मैसेज भी देना चाहूँगी, बहुत गलत हो जाता है कि जब एक पेरेंट्स को, बच्चे को या इवन अडल्ट्स को दौरे की दवाई चल रही होती है, फिर वो एकदम से दवाई छोड़ देते हैं और एकदम से बहुत बड़े दौरे आ जाते हैं। तो कभी भी अब्रप्टली दवाई ना छोड़ें।
1: जैसे हर मर्ज के लिए अब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हो चुके हैं, चाहे वो ऑन्कोलॉजिस्ट हों, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हों, बहुत अलग अलग कैटेगरीज हैं. तो अगर किसी को दौरे आ रहे हैं तो वो किस स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाए फिजिशियन के अलावा?
0: हाँ जी, तो जैसे दौरे जब भी पड़ते हैं, काफ़ी बार पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि हम कहाँ जाएं, वो इस वेट में ही सोचते हुए ही काफ़ी हमारा टाइम निकल जाता है।
1: जी
0: तो सबसे अच्छा, अगर आपके एरिया में पॉसिबिलिटी है, जैसे बच्चों के जो न्यूरो के, जैसे हम हैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी के, तो अगर आप बच्चों के न्यूरो के डॉक्टर को दिखा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो जितने भी बच्चों के डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए वो आपके कांटेक्ट में नहीं है, तो आप बड़ों के न्यूरोलॉजिस्ट को भी मिल सकते हैं।
1: अच्छा,
0: लेकिन एटलीस्ट आप किसी ना किसी डॉक्टर को ज़रूर रीच आउट करें,
1: इन तीनों में से
0: इन
1: कैटेगरीज
0: तीनों
1: में
0: में
1: से.
0: से सोचे नहीं और आगे चल के मिलिए। ज़रूर आपको हर डॉक्टर कुछ ना कुछ अच्छा ही बताना चाहेंगे, और हम टाइम, प्रिशियस टाइम ना लूज़ कर दें, सोचते ही रह जाए।
1: बिल्कुल. तो एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था जब मैं आपसे बात कर रही थी कि अगर लगातार बच्चे को फिट्स आ रहे हैं, दौरे आ रहे हैं, तो उसकी ग्रोथ पे क्या असर पड़ता है?
0: यही यही जैसे अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि अगर दौरे जो हैं वो लंबे पड़ रहे हैं
1: जी.
0: या फिर मल्टीपल पड़ रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात होती है। जैसे अगर एब्सेंस इशू, जैसे मैंने बताया कि बच्चा बैठा रह गया, उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। या अगर एक छोटा दौरा आया, एक ही बार आया,
1: जी
0: चला
1: जी
0: गया, दवाई दी, बच्चा ठीक हो गया, तो बहुत ज़्यादा असर उसका यूजली नहीं पड़ता है। लेकिन अगर लंबे दौरे आए हैं, बार बार दौरे आए हैं, तो यूजली उसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, जो ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, वो ब्रेन के एरियाज़ को हमारे डैमेज कर सकती है, जिसके चलते बच्चे की ग्रोथ का, बुद्धि का, विकास होने का, इवन डेवलपमेंट का असर पड़ सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहला दौरा पड़ते ही मेडिकल अटेंशन सीख करें और ट्रीटमेंट स्टार्ट करें।
1: डॉक्टर साहब, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक कॉलर और कनेक्ट हुए हैं. हेलो. हेलो. हाँ जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप, और आपका
0: नमस्ते,
1: सवाल क्या है, आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं. आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो आप नेटवर्क में. ओह, उनकी लाइन कनेक्ट हो गई है. डॉक्टर साहब डिस्कनेक्ट हो गई है. अभी हम फिर से एक कॉमर्शियल और म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, और जो लोग हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमसे नहीं कनेक्ट हो पाए हैं उन्हें मैं बता दूं कि 0522-22-3885, 0522-22-3884 वो नंबर हैं जिसपे आप कॉल करके अगर आपके आसपास, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसे इस वक्त मदद की ज़रूरत है और सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर हमसे इस बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं. और अगर कॉल आपकी कनेक्ट नहीं हो रही है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं. fmakashwadilakhnow@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं. फिलहाल हम आपसे लेंगे एक छोटा सा कॉमर्शियल और म्यूजिकल ब्रेक.
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है.
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज. एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ.
2: चरक हॉस्पिटल, @ हरदोई रोड, दुबग्गा.

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।

0: हेल्थ एंड फिटनेस सुन रहे हैं आप समरीन के साथ, और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं बाल रोग एवं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर दीक्षा गुप्ता, जो कि बात कर रही हैं कि अगर आप के घर में या आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो दौरे से या फिट से जूझ रहा है, तो किस तरह से आप उसकी मदद कर सकते हैं, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से उसको इलाज के लिए लेके जाना है और क्या स्पेशलाइज डॉक्टर आप चुन सकते हैं उसके लिए, इस पर हमने अभी तक चर्चा की है। हमारे पास एक डॉक्टर साहब मेल आया है, उनको हम शामिल कर लेते हैं। मेल हमें भेजा है राज जी ने, लिखते हैं, अगर किसी मरीज को मिर्गी का दौरा हर तीसरे चौथे दिन या महीने में दो बार आ रहा हो और उसका दवा इलाज शुरू हो गया हो और उसके बाद कितने समय तक दौरा ना आए, तो हम ये मान सकते हैं कि मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया है।
1: जी, अगर हमारे जैसे पेशेंट को इतने ज़्यादा स्टार्टिंग में दौरे आए हैं, फ्रीक्वेंट सीजर्स 3 से 4 बार, तो एक बार हमने जब दवाइयाँ टाइट्रेट कर दी हैं, बढ़ा दी हैं और एक डोज पे दौरे रुक चुके हैं, फिर हमें दवाई को छेड़ना नहीं चाहिए। और अगर हमारा बच्चा ठीक चल रहे हैं, है ना, कोई दौरे नहीं आ रहे हैं और इम्प्रूवमेंट होती जा रही है, देन वी वेट। एक बार जैसे 2 साल तक अगर कोई दौरे नहीं आते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि डेफिनेटली काफी हद तक दौरे की परेशानियों को हमने कंट्रोल कर लिया है। पर डेफिनेटली ईजी करवाना, ईजी का नॉर्मल हो जाना, बच्चे का बिल्कुल नॉर्मल हो जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम दौरे की दवाई कम करके बंद कर सकते हैं। एंड देन ऑल्सो हम सब में जनरली भी सीजर का रिस्क रहता है, दैट रिस्क डेफिनेटली रिमेन्स, वो एक डर जरूर रहता है। लेकिन अगर 2 साल तक बच्चे को दौरे नहीं आए हैं, तो हम मेंटली काफी एक सेफ फील कर सकते हैं।
0: एक और सवाल जो मैं आपसे जानना चाह रही थी, स्पेशल चाइल्ड्स की अगर हम बात करें जो ऑटिस्टिक हैं, ऑटिज्म से जूझ रहे हैं, उनके पेरेंट्स पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन होता है या मतलब मुश्किल लाइफ होती है, ऐसे में अगर बच्चे को फिट्स आते हैं तो वो किस तरह से हैंडल करें सिचुएशन को?
1: हाँ जी, सो अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है या डेवलपमेंटल डिले है, मतलब बच्चा पीछे चल रहा है, चीजें उस हिसाब से नहीं कर रहा है जैसे आपके दूसरे बच्चे या आम तौर पे बच्चे करते हैं, और फिर उसमें दौरा आ जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में इन चीजों में काफी ज्यादा ऐसा होता है कि कोई अंदरूनी दिक्कत हो, जिस तरह से MRI में ब्रेन में कुछ बनावटी नुक्स हो जिसकी वजह से ये सब लक्षण आ रहे हो, या फिर कोई जेनेटिक नुक्स हो जिसकी वजह से ये सारे लक्षण आ रहे हो, ऐसी कंडीशन में दौरे की दवाई के साथ साथ, थेरेपी के साथ साथ और भी मेडिसिन और दवाइयाँ आ गई हैं जो हम दे सकते हैं, जिससे हम बच्चे की बीमारी को उसकी रूट कॉज जो जड़ है वहां पे जाके हम उस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हमें घबराना नहीं है, दौरे की दवाई देना है और सही कारण पता करना है।
0: थैंक यू डॉक्टर साहब इस जवाब के लिए। और हमारे साथ एक कॉलर और कनेक्ट हो गए हैं। हेलो
2: जी सर, मैम।
0: हाँ, अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए और क्या सवाल है?
2: मैं बबलू यादव, ग्राम धनवा खान, मोहन लालगंज, लखनऊ से बोल रहा हूँ।
0: जी, सवाल पूछिए अपना डॉक्टर साहब से।
2: मैम, डॉक्टर साहब को मेरा नमस्ते है।
0: नमस्ते
2: मैम। मैं डॉक्टर साहब, मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे रिलेशन के बेटे को पहले उसको झटके जरा सा आता है, तब उसका शिशु आता है।
1: झटके आते हैं किससे पहले?
2: करने से पहले।
1: अच्छा अच्छा,
2: कमर हिलती है उसकी, तब उसका सूसु निकलता है।
0: ऐसा मुमकिन है? ये बता रहे हैं कि ये वॉशरूम जाने से पहले बच्चा पहले उसको फिट्स आते
1: हैं। काफी सारे ट्रिगर्स होते हैं जिसके चलते इस तरह से दौरे आ सकते हैं, बट यूजली जिस तरह से वो लाइट होती है या फोकस करना होता है या फिर नींद अगर ठीक से नहीं हुई है तो ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप एक बार वीडियो ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो झटके लग रहे हों वो झटके ना हो, तो हम पानी अच्छे से दें, यूरिन वगैरह की एक बार जांच भी करा लें, और जो बच्चे को हो रही है प्रॉब्लम उसकी एक वीडियो जरूर बनाएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि वो झटके हों, पर जब आप हमें या डॉक्टर को दिखाएं तो वो झटके ना हों।
0: अच्छा, और सब एक और हमारे साथ कॉलर कनेक्ट हुए हैं। अच्छा, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपने जिक्र किया कि नींद पूरी नहीं हुई हो, तो क्या ओवर स्ट्रेस या लाइफस्टाइल से भी, अगर अच्छी नहीं है आपकी लाइफस्टाइल, तो भी आपको फिट्स आ सकते हैं?
1: लाइफस्टाइल पूरा होने से या फिर ओवरऑल आपका
0: स्ट्रेस,
1: हेल्थ एंड स्ट्रेस इश्यूज से स्पेसिफिकली आपको एपिलेप्सी नहीं आएगी।
0: अच्छा,
1: लेकिन आपको

0: अगर
1: ये
0: एपिलेप्सी,
1: टिपिकल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ही
0: यस
1: है.
0: यस,
1: अच्छा.
0: अगर आप, यस इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपको एपिलेप्सी है, फॉर
1: अच्छा.
0: एग्जांपल अगर आपको जुवेनाइल माइक्लोनिक एपिलेप्सी है, उस कंडीशंस में ऐसा हो सकता है कि अगर आपको लाइट बहुत एक्सेसिव हो, डिस्को लाइट्स हो, रात को आप सोए नहीं हो, आपने स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लिया है, तो उस कंडीशन में आपका सीज दौरा जो है वो प्रेसिपिटेट हो सकता है, आ सकता है.
1: रुक, एक और कॉलर
0: हाँ
1: हमारे
0: जी,
1: साथ हैं. हेलो
2: हेलो, नमस्ते मैम
0: नमस्ते.
1: जी, अपना नाम, जगह का नाम और सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से.
2: मैं महानगर से बोल रहा हूँ, ब्रजेश, लखनऊ
0: हाँ जी
2: से.
0: जी
1: जी सवाल पूछिए.
2: एक 17 साल की लड़की है, वो गुमसुम रहती है मैम.
0: गुमसुम रहती है.
2: जी, ना
0: अच्छा,
2: उसका पढ़ाई में मन लगता है, ना किसी काम में मन लगता है.
0: हाँ जी, और
2: और उसकी जांचें कुछ हुई हैं, और डॉक्टर को दिखाए, वो जांचें करवाए, वो सब नॉर्मल हैं.
0: हाँ, तो ये जो गुमसुम रहती है, आपने हाल फिलहाल में देखा है कि बच्ची गुमसुम रहती है, या मतलब हमेशा से ये बच्ची गुमसुम ही रहती
2: मैं
0: थी?
2: पहले पहले जो पढ़ने जाती थी तब ठीक थी,
0: तब ठीक थी,
2: 2 साल से लगभग है ऐसा.
0: बिल्कुल. तो अगर पहले बच्ची बिल्कुल ठीक थी और 2 साल से ऐसा हुआ है, और कोई दौरे भी नहीं आए हैं बच्ची को,
2: नहीं, दौरे वोरे नहीं है.
0: ऐसे नहीं आए हैं, तो इस कंडीशन में मेरा आपको ये पर्सनल एडवाइस होगा कि एक बार आपको हमें बच्चे से अच्छे से बात करना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत स्ट्रेस चलता है. पढ़ाई को लेके भी हमारी बच्चे से वो अपेक्षा होगी कि वो अच्छा करें, आसपास जो उसके साथ उसके फ्रेंड्स हैं वहाँ, तो एक बार हम अगर बच्चे से बात कर पाएँ तो हो सकता है कि काफ़ी सारी बातें हो जो बच्ची ने मन में दबा के रखी हो और उसके साथ ठीक से बात करी ना गई हो, इसलिए शायद अभी चीज़ों में मन ना लगना, पढ़ाई में मन ना लगना, ऐसा होना कि लक्षण ज़्यादा लग रहे हैं. तो एक बार सबसे पहले आप खुद अपने बच्चे से ज़रूर अच्छे से बात करें, उसके दोस्त बने, उसके दिल की सारी बातें समझें. फिर भी अगर आपको लगे कि ऐसा कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली आपको बच्चों के न्यूरो के डॉक्टर से या बच्चों के डॉक्टर से मिलना चाहिए. और दूसरे कारण भी होते हैं बच्चों के गुमसुम हो जाने के, फिर हम उसके लिए ज़रूर जाँचें करवा सकते
1: जी,
0: हैं.
1: सवाल बताइए. जी डॉक्टर साहब, हम अभी यहाँ पर एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे और अपने लिसनर से यही कहना चाहेंगे कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है
2: सवाल
1: जहाँ
2: बताइए, सवाल
1: पर आपके
2: बताइए,
1: सामने किसी को फिट्स आ रहे हैं, तो आपको उस वक्त
2: सवाल
1: घबराना
2: बताइए,
1: नहीं है,
2: सवाल
1: बल्कि
2: बताइए.
1: सही कदम उठाना है. और इसी बात के साथ आपके कॉल्स का इंतजार हमारे स्टूडियो में हम दोनों ही कर रहे हैं. आप लगातार कॉल कर सकते हैं 0522-223-8852 पर, 0522-238845 पर. डेफिनेटली थोड़ी देर बाद आपका कॉल जरूर कनेक्ट होगा, क्योंकि लगातार हमारे पास कॉल आ रहे हैं. कुछ कॉल डिस्कनेक्ट जरूर हो रहे हैं, बट अगर आप कॉल मिला रहे हैं और कॉल नहीं लग रही है, तो आपके पास मेल करने का ऑप्शन है. fmakashwani@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं. छोटा सा कमर्शियल ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होती है.
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर.
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर.
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए.
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ. कॉल 666-444-444.
1: तो लगातार आपसे बात हो रही है कि अगर आप फिट से या दौरे से आपके घर में कोई बच्चा जूझ रहा है या आसपास या फ्रेंड सर्कल में, तो आपको क्या करना चाहिए. डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हैं, आइए उनसे जानते हैं. हेलो.
5: हेलो
1: जी, अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए.
5: हाँ हेलो मैम.
0: हाँ जी नमस्ते.
5: हाँ नमस्ते मैम, नमस्ते. मेरा नाम दुर्गेश कुमार है, मैं सीतापुर का रहने वाला, क्षेत्र हर गाँव.
1: जी सवाल पूछिए.
5: सवाल ये था मैम कि हमारे भाई साहब हैं, तो उनको तो कभी कभी साल 2 साल में झटका, मतलब दौरा.
1: जी जी पूछिए.
0: जी
1: ओके. शायद कॉल ड्रॉप हो गई है. सवाल तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन एक मेल हमारे पास जरूर आया है और उन्होंने टॉपिक से इतर आपकी तारीफ की है कि बहुत ही बेहतरीन और सलीके से नाम द्वारा क्वेश्चन किए जा रहे हैं और डॉक्टर साहिबा के जरिए इतनी प्यारी सी आवाज से जानकारी दी जा रही है। हमें आप दोनों का प्रोग्राम सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम में मैंने मैम को पहले भी सुना है, बहुत ही जागरूक और ज्ञानवर्धक जानकारी डॉक्टर साहिबा।

0: रही
1: धन्यवाद, थैंक यू सो
0: हैं।
1: मच।
0: एक कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। ओ शायद वो भी लाइन ड्रॉप हो गई है। आपसे डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूंगी कि क्या ये पूरी तरह से क्योरेबल है, अगर आपको फिट्स आते हैं और आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर दवाएं बंद करते हैं, तो क्या ये मान लें कि अब ये दोबारा पलट के नहीं आएंगे?
1: बिल्कुल, एपिलेप्सी के जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, बहुत
0: जी।
1: सारे कारण हैं। उन जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि देयर आर सम बिनाइन और सेल्फ लिमिटेड एपिलेप्सीज, मतलब जो इतनी घबराने वाली दौरों की बीमारियां नहीं होती हैं और काफ़ी बार एक या दो दौरों के बाद ही कंट्रोल में हो जाती हैं। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये सेल्फ लिमिटेड एपिलेप्सी है मेरे बच्चे को, तो शायद दवाई दे के हम बहुत जल्दी इलाज कर सकते हैं और उसके बाद आपको फ्यूचर में इतना डरने की ज़रूरत नहीं है दौरों से। कभी कभी ब्रेन में सिर्फ एक कीटाणु होता है, जिस कीटाणु की अगर हमने दवा दे दी और दौरे की अगर दवाई दे दी तो ये भी क्योर हो जाता है। बट कुछ एपिलेप्सीज ऐसी होती हैं जिसके डिफिकल्ट और ड्रग रेजिस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं, वो लिमिटेड एपिलेप्सीज होती हैं जो दवाइयों पे देने के बाद भी कंट्रोल कभी कभी नहीं होती। पर उसके लिए भी आजकल बहुत सारी मेडिसिन्स आ गई हैं, तो हम दौरों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, दौरे से घबराना नहीं है। ज़रूरी ये है कि पहले ही इलाज शुरू हो जाए, इलाज में देरी ना हो।
0: ओके, तो अभी हमारे साथ एक और कॉलर ये आज क्या हो रहा है? हेलो। हाँ जी कॉलर, आप
1: जी
0: अपना नाम बताइए और कहाँ से
1: हाँ
0: बोल
1: जी,
0: रही हैं?
1: नमस्कार
0: जी
1: नमस्कार दीदी जी और डॉक्टर
0: नमस्कार।
1: साहबा भी नमस्कार। मेरा नाम है रौशन रावत, मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये कि दौरा पड़ने पर माता पिता को क्या करना चाहिए और कैसे पता चले कि बच्चे
0: फर्स्ट
1: को
0: स्टेप क्या
1: दौरा
0: होना
1: हो।
0: चाहिए,
1: जी
0: शुरुआती दौर में क्या करना चाहिए?
1: अगर पहला सीजर आया तो हमें क्या करना
0: जी
1: चाहिए?
0: जी
1: बिल्कुल सर, अगर जैसे एक बार भी अगर बच्चे को दौरा आ रहा है तो आपको तुरंत तुरंत डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ब्रेन में कोई भी कीटाणु हो सकता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, आगे चल के दूसरे दौरे का भी रिस्क हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन बहुत सारी बातें हमें देखनी होती हैं कि दौरा बुखार के साथ आया था या कितनी देर का आया था, जगे हुए सोते हुए आया था, उससे हम कारण पता करते हैं। अगर उस कारण के चलते हमें लगता है कि MRI या EEG की जाँच करवानी चाहिए, तो वो जाँच करवा के बच्चे के दौरे का कारण पता करके फिर हमें इलाज करना चाहिए। बिकॉज जैसे हमें इस बार मैंने बार बार ये बात बोली है कि अगर मल्टीपल काफ़ी बार दौरे पड़ते हैं तो हम खुद ही अपने बच्चे को एक रिस्क में डाल रहे हैं। तो जल्दी कंट्रोल करना, सही दवाइयों से कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो इवन अगर एक दौरा आ जाए तो भी आपको दिखाना है।
0: रुख साहब, अभी आपने बार बार जिक्र किया कीटाणु का, तो ये कीटाणु जहन तक कैसे पहुंचता है अगर आपने प्रॉपर कुकिंग नहीं की है या फिर किसी और जरिए से? तो एक
1: जी
0: कीटाणु जो जहन तक पहुंचता है उसे कैसे रोका जा सकता है? अगर हम शुरुआत में यही कहें कि हम बहुत हाइजीन तरीके से
1: जी
0: खाना दें, तो क्या कीटाणु नहीं पहुंचेगा जहन तक?
1: जो ये कीटाणु है, जैसे पहले लगता था लोगों को कि जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं
0: हाँ
1: उनमें ही ऐसा होता है, लेकिन जैसे सबने सुना है कि पत्ता गोभी में भी होता
0: एग्जैक्टली
1: है, अगर अच्छे से नहीं धोया है तो वेजिटेरियंस में भी हो
0: सुशी में
1: सकता
0: भी।
1: है।
0: हाँ
1: यस डेफिनेटली। सो ऑल्दो ये जो है ये एक ही कीटाणु के लिए है स्पेसिफिकली,
0: अच्छा
1: तो आपको ये तो इसमें यू गोज विदाउट सेइंग कि आपको सारी सब्जियां अच्छे से धोनी है, हाइजीन रखनी है, लेकिन उसके अलावा दूसरे भी बैक्टीरिया और कीटाणु है, जैसे TB है, उसकी भी गांठें हो सकती हैं। तो
0: अच्छा
1: बेसिक प्रिवेंशन होना, सारी
0: हाँ
1: वैक्सीन्स लगवाना,
0: जी जी
1: अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना, डाइट अच्छा रखना, आसपास कोई भी पेशेंट्स, जैसे कभी कभी आपके आसपास किसी को टीबी होता है तो कांटेक्ट कम से कम रखना। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स अगर हम करते हैं तो हम काइंड ऑफ प्रिवेंट कर सकते हैं। बट स्टिल अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, दवाइयों का कोर्स देके कंट्रोल किया जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब, फिर से समय है एक कॉमर्शियल ब्रेक का, और उसके
1: जी
0: बाद इसी विषय पर चर्चा जारी रहेगी।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
0: तो 12:51 और 34 सेकंड आप सुन रहे हैं हेल्थ एंड फिटनेस, और आज हमारा

0: जो मौजू है, विषय है, वो है कि किस तरह से आपका बिहेवियर होना चाहिए, पहला क्या एक्शन होना चाहिए अगर आपके सामने कोई बच्चा फिट से या दौरे से गुजर रहा है। डॉक्टर साहब, इसी मौजू पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक कॉलर है, आइए जानते हैं कि उनका क्या सवाल है। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए।
1: मेरा नाम राम सचित है, लखनऊ से बोल रहे हैं।
0: जी जी,
1: हमारे दौरे पर जाते हैं।
2: हाँ जी,
1: ब्रांच कीपर का ऑपरेशन भी करवा चुके हैं, तब भी दौरे आ रहे हैं।
0: अच्छा, इन्होंने पूरा प्रॉपर इलाज कराया है, पर फिर भी इनके दौरे आ रहे हैं।
2: किसी चीज का इन्होंने, आपने कुछ चीज बोली, कोई सर्जरी भी हुई है आपकी?
1: ब्रांच ट्यूमर का,
0: ब्रेन ट्यूमर।
2: ओके ओके,
1: आईकॉन में।
2: ओके ओके ओके, नहीं, सर्जरी के बाद भी, क्योंकि जैसे सर्जरी हुई है तो वो जो ब्रेन का हिस्सा रहता है, वहाँ पे जो आसपास का हिस्सा रहता है उसमें डैमेज हो जाता है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब एक हिस्सा गल जाता है या दिक्कत होती है, तो वो जो है दौरे डेफिनेटली लेके आ सकता है। पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आपने दवाई तो नहीं छोड़ दी थी। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको जो दवाई बताई गई हो वो कभी ख़त्म हो जाती है, छूट जाती है, तब दौरे आने का रिस्क डेफिनेटली बढ़ जाता है। तो मेरा आपको ये एडवाइस होगा कि आप दौरे की दवाई जो आपको चल रही है वो बिल्कुल भी ना छोड़ें। उसके बाद भी अगर दौरे आते हैं तो हमें दौरे की दवाई बढ़ानी होगी। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सर्जरी हो गई वो बहुत अच्छी बात है, पर दवाई ज़रूर टाइम टू टाइम लें, और फिर भी आए तो हम जांच करके दवाई बढ़ाएं।
0: डॉक्टर साहब, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में आया, अभी तो उन्होंने बताया कि सर्जरी के बाद इनको फिट्स आ रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा भी कीटाणु से आपने बताया, और कितने किस्म के रीजन हो सकते हैं फिट्स आने के, स्पेसिफिकली अगर हम पूछें तो?
2: बच्चों में बहुत कॉमन होता है कि बच्चे जब पैदा होने पे रोए नहीं होते हैं, या पैदा होने पे इन्फेक्शन हो गया होता है, शुगर कम हो गया होता है, उसके चलते बहुत कॉमन है दौरे आना
0: जी।
2: उसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे जब बच्चों का विकास हो रहा होता है
0: जी,
2: तो बिना किसी कारण के भी बच्चों को जो एपिलेप्टिक एनकेफलोपैथीज या जेनेटिक एपिलेप्सिस होती हैं, वो अंदरूनी, जैसे जो ये हमारे जीन्स में जो नुक्स हो जाता है उसके चलते भी हो सकती हैं। फिर जैसे हमने कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो हमारे ब्रेन में, मेनिंजाइटिस हुआ हो, एनकेफेलाइटिस हुआ हो, वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, टीबी हुआ हो, या इवन जो आम भाषा में जो हम नॉर्मल देखते हैं कि डेंगू वगैरह हो जाता है, उनमें भी दौरे पड़ सकते हैं। तो आपको जब भी लगे कि दौरा पड़ रहा है, आप एक बार जाके डॉक्टर से मिलिए, सारी डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद, कभी कभी बच्चों के शरीर पे आप देखेंगे काले भूरे रंग के निशान होते हैं, तो वो निशान भी हमें दिखाते हैं कि ब्रेन में कुछ बनावटी नुक्स हो सकता है, उसके चलते भी दौरे आ सकते हैं। तो एक डिटेल में बच्चे की पूरी हिस्ट्री लेना कि क्या क्या हुआ था बर्थ से, और पूरी बॉडी को एग्जामिन करना बहुत जरूरी है,
0: तो कॉज पता चल जाता है। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी, सवाल पूछिए अपना।
1: सवाल ये पूछ रहे की हमारी बहन की छोटी सी बच्ची हुई है,
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप? आपकी बहन की छोटी सर्जरी हुई है जहन की, दिमाग की? अच्छा, तो अभी कोई समस्या क्या है?
2: बहन के बच्चे के दौरे पड़े हैं, आई थिंक। बहन के बच्चे को, बच्चे की उम्र कितनी है?
1: चार दिन की हुई है।
2: ठीक है, तो हाँ जी, तो आपको मोस्टली आपके डॉक्टर ने बताया होगा, लेकिन ये बहुत काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि जो अगर बच्चा पैदा होने पे नहीं रोया है, या उसका शुगर कम हो गया था, या फिर उसको पीलिया बहुत ज़्यादा हो गया है, या इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसा हो सकता है। स्टार्टिंग में भी दौरे आ सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी डॉक्टर देख रहे हैं उन्होंने दवाई बढ़ा दी होगी, तो अभी आपको घबराना नहीं है, दौरे की दवाई। हाँ हाँ जी, तो अभी दौरे बेहतर हैं, कंट्रोल्ड हैं। बच्ची को दिखाई नहीं देते,
1: बच्चे को मतलब देखने नहीं देते है ना?
2: अच्छा,
1: आईसीयू में रखे हैं ना, आखिर में दिखाई नहीं देते हैं।
2: जी
1: जी, मतलब दिखाते नहीं है।
0: ओके, तो आई एम श्योर कि आपको आपका जवाब मिल गया। कोई एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे और उसके बाद ये हमारे साथ आज के लास्ट कॉलर थे।

0: सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: और इसी के साथ हम लेते हैं आपसे हेल्थ एंड फिटनेस से इजाजत। डेफिनेटली आज डॉक्टर साहिबा के जरिए दी गई जानकारी से आपको पता चला होगा कि आपको पहला जो एक्शन लेना है उस वक्त, जिस वक्त बच्चे को इस तरह का फिट आ रहा है, क्या करना है। सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी। और हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम की मंशा भी यही है कि आप कैसे, मतलब प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर का जो हमारा कोशिश है वो डेफिनेटली आज सार्थक हुई होगी। इसी के साथ हम इस प्रोग्राम से आपसे लेते हैं इजाजत। डॉक्टर साहिबा, आप आई, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
3: थैंक यू।
4: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
5: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
4: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा, लखनऊ।
4: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
5: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
4: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
6: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तां, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
7: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
8: समझे जनाब अली।
7: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

0: नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं। आप सुनिए मुख्य समाचार।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 एफएम पर। अपराह्न का 1 बजा है, लीजिए प्रस्तुत है अनुरोध गीत कार्यक्रम। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी, इसे गाया है महेंद्र कपूर ने, और अनुरोध है आप सभी का। आप हैं साथी हमारे ये हैं साथी जो हमें लिख रहे हैं, राम प्रसाद शर्मा जी हैं और इनके सभी साथी, और ये हैं रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, और आप हैं मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन और सुनीता शर्मा हैं, जगमोहन प्रजापति हैं इनके सभी साथी हैं, दौलतबाग मुरादाबाद से हैं जाफर हुसैन, नेमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। आप हैं पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, और पटेल नगर मलोट से हैं डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीतारानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, और साथ में हैं आरजू जजोरिया, और ये साथी

हमें लिख रहे हैं नंद कुमार ठाकुर, प्रेमला ठाकुर, खुशबू ज्योति ठाकुर, ग्राम चौराद बार नवापारा, ज़िला बदौला बाज़ार छत्तीसगढ़ से। ये हैं आरवी सिंह और आप हैं साथ ही हमें लिख रहे हैं गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी, साथ में हैं जगदीश जौहरी और ये साथ ही हमें लिख रहे हैं, ये अपनी अनुरोध भेज रहे हैं हमें अरुण कुमार मालवीय एवं समस्त मालवीय परिवार।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मनरोत गीत आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, और आप सुनवाने जा रहे हैं आपको दिल फिल्म से गीत, इसे गाया है उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने। इस गीत के लिए अनुरोध पत्र मिला है करनाल से ज्ञान शर्मा जी का, सोमनाथ कालिया जी का, और ये हैं कोटुबा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। और आप हैं निकट बिजली घर मीरगंज से भाई कल्लू मिस्त्री, मोहम्मद नई, मोहम्मद फ़हीम, मोहम्मद नसीम एडवोकेट, दानिश अंजुम और अनाबिया फातिमा, साथ में है बावर अजीम। और ये हैं नरियावल से तुकैल अहमद अंसारी, नाजमा अंसारी, जोरा शर्मा, मस्ताना कश्यप और साथ में है अनिता देवी। और इसी गीत के लिए ये हम कुछ नाम शामिल कर रहे हैं, आप हैं आसिफ अली खान, मोमिनाज खान, मुस्कान आसिफ, सारिक अली खान और सादिक अली खान, ये हम लिख रहे हैं कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत से यूपी से लिख रहे हैं। और ये हैं साथी हमारे मोहतला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और ओम प्रकाश सुरलकर। आप हैं साथी कल्याण मुंबई से किशोर हेवराले, सुजाता हेवराले और प्रतीक हेवराले। आप हैं जिला खरगोन सनावद एमपी से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बुडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी रोहित ऋतु मुकेश जगताप। और ये हैं भोला कॉलोनी घरौंडा जिला करना हरियाणा से साथी लिख रहे हैं विजेंद्र कुमार जैनाज, कांतारानी, गुंजन साहिल और वाणी जैनाज। आप हैं साथी हमारे लिख रहे हैं जनमंदिर बाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौसरीन अंसारी, आसमा अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। तो सुनवाते हैं आपको ये।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत कार्यक्रम और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है सफर, बोल है एमवी के, संगीत है कल्याण जानन जी का, से गाया है लता मंगेशकर ने। और अनुरोध है आप सभी का, आप हैं साथी हमारे खुर्जा से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी, और इसी गीत के लिए ये खत मिला है पीर बहुड़ा बरेली से, आज़ाद खां, दिलशाद खां, मुस्तकीम तबस्सुम और मोहल्ला तलैया वाला जागीर से हैं फजुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई और राम प्रसाद शर्मा। ये पत्र है मोहल्ला हलवाइयां शेरकोट बिजनौर से, मोहम्मद बकर फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीन परवीन, रोजी परवीन, विट्टू भैया, शारदा रानी और हिना कौसर का। ये हैं सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, अदीबा।

पापा बहरी कॉलोनी कॉलोनी से हैं, परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वाली डोम, कुमारी डब्ल्यू डोम, जेल रोड मथुरा से हैं, वसीम आसमा वेलदार, अकरम आसमा वेलदार और उल्ला आसमा वेलदार। आप हैं कटरा चंद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से। स्वाति मौर्य, अरोही मौर्य, खुशबू, सुनील, कैलाश, बेदराम, कपिल, रिंकी, प्रकाश, सुंदर देवी और अनुखलाल मौर्य। आप हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश कौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। लिख रहे हैं वैष्णव कॉलोनी सनाबत से। फूलबाग लछावनी बरेली से हैं विष्णुदत्त भारद्वाज, गंगादत्त भारद्वाज, शिवदत्त भारद्वाज, विक्की भारद्वाज, वर्षा, कविता, कल्पना, यीशु, भावना, आदित्य, देवकी देवी भारद्वाज, शिप्रा, नीलम भारद्वाज, मुनि देवी भारद्वाज और श्री राम राठौर। और इसी गीत के लिए ये अनुरोध हमें मिला है। आप हैं साथी हमारे इस गीत को जिन्होंने अपना अनुरोध भेजा है, रजनी, उदय भान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और पूरा परिवार लिख रहा है रजौनी, बिजला, महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से। ये हैं सुरेंद्र खुराना न्यू मुल्तान दिल्ली से। और आप हैं आमिन अली, लिख रहे हैं चंदौसी संभल से। और ये हैं संगीता सालूजा और सालूजा पूरा परिवार, इनका हमें ये अनुरोध भेज रहा है। और आप हैं साथी बंडू लोहार पोपलगढ़ से, माया चंद्रकला पोपलगढ़, देवीदास पोपलगढ़ और हरिभाऊ। तो सुन पाते हैं आप सभी को ये गीत।

इस वक्त आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम आकाशवाणी बरेली। अब सुनवाने जा रहे हैं आपको फिल्म का नाम है हस्ती, और इस गीत को सुनने के लिए हमें अनुरोध पत्र भेजा है। आप हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, और ये साथी हैं टीडी मल्होत्रा और इनके सभी साथी। आप हैं परी महल कासगंज से आवाद खान, नवील खान, आरफा खान, इल्मा खान, आफरीन खान और जमीर खान, और शीशगढ़ बरेली से इलियास भाई, नाजरा इदरीसी, नईम इदरीसी, नदीम इदरीसी और अक्सद बाबू। ये हैं आसू चौक, आशु और गोविंद, टोनी गोविंद, सभी साथी हमें लिख रहे हैं। आप हैं रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, और ये साथी हमें लिख रहे हैं राम प्रताप शर्मा, जशी देवी, वंदना, मनोरमा देवी, अजय और फजुद्दीन भाई लिख रहे हैं छावनी अशरफ खां पर्यटक के पास होली चौक बरेली से।

जी हाँ, इसी गीत के लिए हमें ये अनुरोध पत्र मिला है। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से हैं सुभाष चंद्र बजाज और बिट्टा बजाज और साहिल बजाज।

0: कार्यक्रम का विषय है बिजली की कितने घंटे आपको सप्लाई मिलती है आपके क्षेत्र में।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि आज मुझे हंसी आ रही है क्योंकि ऐसा विषय है, बहुत ही अच्छा विषय है
0: जी।
1: क्योंकि इस वक्त हमारे शहर बरेली में, क्योंकि मेरे गांव में ही नहीं, मेरा गांव भी बरेली शहर में ही आता है, बरेली
0: जी,
1: मैं पूरे शहर बरेली की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त लाइट की बड़ी दिक्कत हो रही है हमारे शहर बरेली में। लाइट बिल्कुल नहीं मिल पा रही है, बहुत ही कम। और मैं अपने गांव की बात करूं तो मेरे गांव में तो ऐसा होता है, हर 5 मिनट बाद लाइट जा रही है और हर 5 मिनट बाद लाइट आ रही है, और इससे गर्मी भरे मौसम में हमें बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर इतनी भयंकर जो गर्मी अभी पड़ रही है उसमें बिजली ना मिले, और आज की अगर बात की जाए तो आधुनिक दौर में हमारे घर की, हमारे दैनिक जीवन की हर चीज बिजली से ही जुड़ी हुई है, तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है।
1: बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा है, क्योंकि दिन तो हम काट ही देते हैं अपने काम में व्यस्त होके, मगर जब रात को हम अपने चैन से नींद लेना चाहते हैं तो सुकून हमें नहीं मिल पाता है। और छोटे बच्चों को बड़ी दिक्कत हो रही है इस वक्त, क्योंकि मेरे घर में खुद एक मेरी छोटी बेटी है, तो उसको मैं पूरी पूरी रात ऐसे ही हवा करते हुए कट जाती
0: है। बिल्कुल,
1: क्योंकि इन्वर्टर है घर में, वो भी लोड नहीं ले पाता है, कितना चलेगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि कुछ घंटों तक ही इन्वर्टर साथ दे सकता है, उसके बाद तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा साथ छोड़ देता है। और लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं ये भी वजह है कि कई बार ये भी देखा जाता है कि बिजली की चोरी कर रहे हैं लोग, और साथ ही साथ वेस्टेज बहुत करते हैं कई घरों में, देखा जाता है ये, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे निशा?
1: हाँ,
0: जी
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमें बचत करना चाहिए, क्योंकि हमारी उसमें खुद हमारा फायदा होगा अगर हम बचत करेंगे, और सरकार का भी फायदा होगा, और दूसरे लोगों को भी परेशानी ना होगी जब लाइट की हम बचत करेंगे। मैंने देखा है कि लोग फालतू में अपने घर में लाइट दिन में भी जलाते रहते हैं, जरूरत नहीं होती है, अगर जरूरत पंखे की जरूरत नहीं है वहां भी पंखा चल रहा है, कोई मतलब ही नहीं है उन्हें। इससे जो छोटी छोटी बचत है, हमारी भी जेब खर्च भी बचेगा और हमारे सरकार का भी उसमें फायदा होगा।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि अगर हम वेस्टेज नहीं करेंगे तो हमें बिजली की आपूर्ति भी ज्यादा मात्रा में मिलेगी, साथ ही साथ हमारे खुद के जो मेहनत से कमाया हुआ धन है उसकी भी बचत होगी। तो निसार जी, आज आपने कॉल की, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: आज गीत है, मुझे फिल्म का नाम तो फिलहाल याद नहीं, गीत के बोल बता रहा हूँ कि बिजली चली जाए अंधेरा ही अंधेरा हो, हम तुम पिक्चर देख रहे हैं किसी थिएटर के अंदर।
0: चलिए, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने बिजली की जो परिस्थितियाँ है उस पर चुना है, और हम भेज रहे हैं आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पे। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

और आइए श्रोताओं, अब चलते हैं हमारे फेसबुक कमेंट्स की ओर जो आप हमें लिखकर भेजते हैं। तो इसी विषय पर पहला कमेंट जो हमें लिखकर भेजा है गंगा सिंह रावत जी ने रामपुर रोड हल्द्वानी से, ये लिखते हैं कि मेरे शहर में बिजली अक्सर रहती है, कभी कभी थोड़ी देर के लिए चली जाती है मगर फिर आ जाती है। आज सुबह 8 बजे गई थी, करीब 1 घंटे बाद आ गई। इतनी भीषण गर्मी में बिजली की आपूर्ति 24/7 बनी हुई है, इसके लिए ये सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। और अगला कमेंट जो हमें भेजा है, ये भेजा है राम कुमार रेवाड़ जी ने सादुल शहर राजस्थान से, साथ में है चंद्रकला रेवाड़ जी। लिखते हैं कि सौर ऊर्जा की वजह से लाइट में कुछ सुधार हुआ है। पहले हमारे क्षेत्र में लाइट लगभग 18 घंटे रहती थी लेकिन अब भी लगभग 22 घंटे लाइट रहती है। सौर ऊर्जा का विकास बहुत ही बढ़िया है जिससे लाइट की आपूर्ति बढ़ी है, वैसे गर्मी के मौसम में लाइट की खपत अधिक होती है। वैसे कह सकते हैं कि गर्मी की वजह से लाइट का करंट जो बिलों में लग कर आता है वो खतरनाक है। अगला कमेंट हमें भेजा है भेरूलाल वाक्तारिया जी धाकड़ ने उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से, ये लिखते हैं कि आज का सवाल बड़ा रोचक है। कहने को तो हमारे यहाँ शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे और सिंचाई हेतु 10 घंटे बिजली रहती है पर बीच बीच में किन्हीं कारणों की वजह से चली भी जाती है। हवा आंधी या फिर पानी आने पर बिजली सप्लाई रुक जाती है। कई बार मेंटेनेंस के नाम पर 4 से 6 घंटे तक बिजली की कटौती कर दी जाती है जिसकी सूचना एक दिन पहले से दे दी जाती है। कभी कभी बिजली नहीं आती, जब नहीं आती है तो निर्बाध रूप से उसके बाद में निर्बाध रूप से चलती भी रहती है। अगला कमेंट है प्रवीण चौहान जी का, ये लिखते हैं कि हमारे क्षेत्र में बिजली 24/7 रहती है, बहुत कम ही होता है कि बिजली चली जाए। हाँ, तेज बरसात होने पर ये चली जाती है। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं कि हमारे क्षेत्र में बिजली भी आ रही है और सही आ रही है, बीच बीच में बिजली चली जाती है, कोई बात नहीं, इतना तो सहना पड़ता है, बिजली को भी आराम की जरूरत होती है। आज से कुछ वर्ष पूर्व बिजली का ये हाल था कि 24 घंटे बिजली नहीं आती थी, बिजली आ भी गई तो वोल्टेज इतना कम आता था कि बस पूछो ही मत, लोड उठ ही नहीं पाता था और बल्ब ऐसे जलते थे जैसे मोमबत्ती जल रही हो। हाँ, पंखा जो था वो ऐसे चलता था कि हाथ से पंखा जो हम करते हैं उसके बराबर हवा आती थी। वॉशिंग मशीन बस शोपीस की तरह घर में रखी रहती थी। टीवी और वॉशिंग मशीन की इन्होंने बात की है, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आज की तारीख में बिजली बिल्कुल सही आ रही है। और अगला कमेंट भेजा है विनेश कुमार जी ने निकट बैंक सेंटर चनेटी बरेली से, ये लिखते हैं कि हमारे चनेटी क्षेत्र में बिजली तभी जाती है जब आंधी पानी में कोई फॉल्ट हो जाता है। सब स्टेशन का स्टाफ कड़ी मेहनत करके फॉल्ट को बहुत जल्दी ठीक भी करने की कोशिश करता है और उसमें वो सफल भी हो जाता है। जब पेड़ों के बीच में से 1,32,000 की लाइन आई हुई है तो जाहिर है आंधी पानी में फॉल्ट की संभावना होती ही होगी, इसमें स्टाफ का क्या दोष है। वैसे भी समय समय पर स्टाफ पेड़ों की छटाई करता रहता है ताकि फॉल्ट ना हो सके और बिजली बराबर मात्रा में मिलती रहे। कुछ घंटे कटौती के अलावा बिजली बराबर मिलती रहती है और बाकी भी कई लोगों ने अपने नाम लिखे हैं लेकिन इन्होंने सिर्फ अपने नाम लिखकर भेजे हैं। राजेश कुमार वर्मा जी हैं, जमुना प्रसाद वर्मा जी हैं कटाचान खासे, आरवी सिंह जी हैं और इनके अलावा जो हमारे कुछ श्रोता हैं जिन्होंने अपने नाम लिखकर भेजे हैं वो हैं मोहन सिंह रावत जी और बाकी सभी साथी। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं ये गीत।

और श्रोताओं, हमारे एक और श्रोता ने भी कमेंट करके बताया है कि उनके क्षेत्र में कितने घंटे बिजली रहती है। इनका नाम है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी जी, और साथ में है लालू मिस्त्री अंसारी। ये लिखते हैं कि आप आज का जो विषय है वो बहुत ही अच्छा है, आपके क्षेत्र में कितने घंटे बिजली रहती है। तो ये लिखते हैं कि हमारे गांव करेली में 16 घंटे बिजली निर्धारित है, मगर इस समय 12 घंटे ही मिल जाए तो गनीमत है। एक और नाम रह गया है, ये है मुकेश कश्यप जी। हालांकि इन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन हमारे श्रोता है, नाम तो शामिल होगा ही। तो इसी के साथ कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ से अमृता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में बजने वाले हैं शाम के 5। तो लीजिए श्रोताओं, बज चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 5 और समय है कार्यक्रम विवरण का। अब से कुछ ही देर में शाम 5:30 पर आप सभी सुनेंगे कार्यक्रम मन भावन श्रोता मंच। ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे शाम 5:45 पर। युवा साथियों का प्रिय कार्यक्रम युववाणी आप सुन सकेंगे शाम 6 बजे से, जिसमें होगा आज का सवाल कुछ खास है आज उबी और हेलो फ्रेंड्स। कार्यक्रम ग्राम जगत आप सुनेंगे शाम 6:30 पर, जिसमें चर्चा का विषय रहेगा ऊर्जा संरक्षण का महत्व। साथ ही सुनिएगा भेंट वार्ता, घर की जिम्मेदारी के साथ खेती एवं पशुपालन कर किस तरह से किया जाए। वार्ताकार होंगी श्रीमती पूनम, बात करेंगे श्रीमती पूनम जी और इनसे बातचीत करेंगे सुरेंद्र पाल। होगा लोक मंजरी, क्षेत्र संकलित कार्यक्रम कानूनी सलाह, ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे शाम 7 बजे से। शाम 7:31 का समय रहेगा कार्यक्रम जनमंच का, जिसमें होगी परिचर्चा संयुक्त परिवार की अवधारणा। आज के परिपेक्ष में प्रतिभागी होंगे सरहा मैयम और परमीना महनाज, संचालन करेंगे मिथिले श्रीवास्तव जी। मुझे याद है जरा जरा, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे और 8:15 से आपको जोड़ेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले कार्यक्रमों से। श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज की शेष सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हमारी कल की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होगी कल प्रातः 8:15 पर, जिसमें कल सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्ते बरेली। 8:45 पर आप आनंद लेंगे लोकगीतों का प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की पाठशाला, आप सुनेंगे सुबह 9 बजे से। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा। सुबह 9:15 पर आपको जोड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से। 9:30 का समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है का, विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल। आकाशवाणी के दीवाने, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 10 बजे। आपकी पसंद सोशल मीडिया पर आधारित, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल सुबह 10:05 पर। सुबह 11 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम सब रंग का। 11:30 पर आपको जोड़ेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से FM रेनबो के कार्यक्रमों से। अनुरोध गीत, ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे दोपहर 1 बजे से। दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रस रंग। 3:30 से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। आकाशवाणी के दीवाने, ये कार्यक्रम एक बार पुनः आप सुनेंगे शाम 4 बजे से। आपकी बात आकाशवाणी के साथ आप सुन सकेंगे कल शाम 4:05 पर। भजन संध्या आपको सुनवाएंगे कल शाम 5:05 पर। महिला साथियों का प्रिय कार्यक्रम नारी संसार आपको सुनवाएंगे कल शाम 5:30 पर, जिसमें होगी चर्चा घर को बनाएं प्लास्टिक मुक्त। साथ ही सुनिएगा भेंट वार्ता, अंशी ठाकुर से अनुप्रीता सिंह की बातचीत। युववाणी का समय रहेगा कल शाम 6 बजे का। कार्यक्रम ग्राम जगत प्रसारित किया जाएगा कल शाम 6:30 पर। शाम 7 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम अक्षय वट का, जिसमें आप सुनेंगे समन अफरोज से शमा सक्सेना की बातचीत। शाम 7:31 का समय रहेगा कार्यक्रम अनुरोध गीत का और रात्रि 8 बजे से आपको जोड़ेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले कार्यक्रमों से। श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज की शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी आवश्यक सूचना सुनिए।

स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में मंगलवार दिनांक 9 जून 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है समय से पूर्व पैदा हुए अथवा प्री टर्म बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे सोमवार दिनांक 8 जून 2026 को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर से सुन लें। विषय है समय से पूर्व पैदा हुए अथवा प्री टर्म बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, सोमवार दिनांक 8 जून 2026 को शाम 4 बजे से, और हमारा टेलीफोन नंबर है 2517200। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं शाम के 5:05 और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम का पहला भजन आप सुनेंगे हरिओम सरन के स्वर में।

104.4 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे हरिओम सरन के स्वर में ही ये भजन।

104.4 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भजन संध्या, और कार्यक्रम में अब आपको सुना रहे हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भजन।

आप सुन रहे हैं भजन संध्या 100.4 FM पर। अब समय है कार्यक्रम के अंतिम भजन का। आवाज है अनूप जलोटा की।

आप सुन रहे हैं भजन संध्या 100.4 FM पर। अब समय है कार्यक्रम के अंतिम भजन का। आवाज है अनूप जलोटा की।

0: अभी आप सुन रहे थे भजन संध्या। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं शाम के ठीक 5:30। इसी के साथ समय होता है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मन भावन का। कार्यक्रम मन भावन में हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मन भावन यानी ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप हमें अपने दिल की बातें अपनी शब्दावली लिखकर भेजते हैं और एक अपने पसंद का गीत भी। तो आइए चलते हैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज के कार्यक्रम का जो पहला पत्र है जो हमने लिया है वो है नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी और महजबी निसार अंसारी का। ये लिखते हैं कि आज मेरी शादी को पूरे 6 साल हो गए। जब तुम मिले थे तो लगा था कि उसकी मंजिल मिल गई। तुम्हारे साथ चलते चलते हर मुश्किल आसान लगने लगी। तुमने सिर्फ प्यार ही नहीं दिया बल्कि हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। जब मैं टूटा तुमने हौसला दिया, जब मैं हारा तुमने संभाला मुझे। आज हमारी सालगिरह पर बस यही दुआ है, हम यूं ही एक दूसरे का हाथ थामे रहें, हर खुशी हर गम में साथ रहें। तुम साथ हो तो जिंदगी खूबसूरत है, तुम ही हो जिससे मेरा हर लम्हा मुकम्मल है। तो नाज रेडियो क्लब से निसार जी, बहुत बहुत आपको बधाई हो। और आइए अब आपको सुनवाते हैं इतनी प्यारी शब्दावली पर ये गीत।
1: तुमसा कोई दूसरा इस समी पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी।

100.4 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन। और आइए अब चलते हैं अगले पत्र की ओर। ये पत्र हमें लिखकर भेजा है एडवोकेट वारिस अली खान और साथ में है इनकी बहन शहनाज खान, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। तो आइए अब चलते हैं इनकी लिखी हुई प्यारी सी शब्दावली की ओर। गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिरों की तरह, यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं रुके रास्तों की तरह, एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती हैं, पर वह उम्र फिर उम्र नहीं आती। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सी लाइनें आपने लिख के भेजी हैं एडवोकेट वारिस अली जी और आपकी परिवार के लोगों ने। और आइए आपकी इस खूबसूरत सी शब्दावली पर आपको सुना रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हमारा भी जमाना था।
1: सौदशमलव चार एफएम पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन, आपकी शब्दावली पर आधारित। और अब समय है कार्यक्रम के अंतिम पत्र का और अंतिम शब्दावली को पढ़ने का। ये पत्र है कुंज निवास राधा कुंज इज्जत नगर बरेली से। लिखने वाले हैं वीके जौहरी, विनोद, अर्चना जौहरी, अर्पित जौहरी, आदर्श, मंजू, अनुपम, मीनू, सोनी, अरुण, मनोज और प्रमोद जौहरी और शायना भी। चलिए, इतने सारे नामों के बाद आगे बढ़ते हैं आपके लिखी हुई शब्दावली की ओर। रोटी खाने से अधिक समय रोटी बनाने में लगता है, उससे अधिक समय रोटी कमाने में लगता है, रोटी कमाने से अधिक समय रोटी उगाने में लगता है, इसलिए रोटी हमेशा खुश होकर खाएं। अन्न का एक भी दाना बेकार न जाने दें और खाकर धन्यवाद जरूर करें रोटी कमाने वाले का, बनाने वाले का और उसे उगाने वाले का भी। गेहूं की फसल धूप में जलती है, किसान खेतों में तपता है, पिता बाजार में खपता है और माँ चूल्हे में जलती है, तब जाकर रोटी हमारी थाली में पहुंचती है। नहीं हुआ अभी सवेरा पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ जाता है किसान। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सी आपने जो शब्दावली लिख कर भेजी है, जो पंक्तियाँ लिखी हैं, एक तरह से कहा जाए तो जीवन का सार आपने लिख दिया है इस खत में। हम सभी जीवन इसीलिए जीते हैं क्योंकि रोटी हमारी सभी की आवश्यकता है। सुबह उठते हैं, काम करते हैं ताकि हमारी जो थाली है उसमें भरपेट भरपूर भोजन आ सके। इसीलिए उस भोजन का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिनकी वजह से वो रोटी हमें नसीब हुई है। और आइए अब आपको सुनाते हैं आपकी खूबसूरत सी पंक्तियों पर ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे मन भावन। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:45 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रोता मंच।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम श्रोता मंच में आप सभी सुनने वाले लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम अपने नए मेहमान को आमंत्रित करते हैं, तो आज हमारे साथ हैं ग्राम करेली जनपद बरेली से हमारे बहुत ही पुराने लिसनर लाल मोहम्मद अंसारी जी। लाल मोहम्मद अंसारी जी, कार्यक्रम श्रोता मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है।
2: साथ अगर दोगे तो निभाएंगे जरूर, साथ अगर दोगे तो निभाएंगे जरूर, प्यार अगर दोगे तो मुस्कुराएंगे जरूर, राह में कितने भी कांटे क्यों ना हो, आवाज अगर दोगे तो आएंगे जरूर। परवेज भाई, आपको और आपके सभी सुनने वालों को मेरी जानिब से बहुत बहुत आदाब और नमस्कार। मैं लाल मोहम्मद अंसारी ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से उपस्थित हुआ हूँ।
1: क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम श्रोता मंच में। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि आप हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं, तो लगभग कितना वक्त हो गया आपको आकाशवाणी बरेली से जुड़े हुए?
2: जी, आकाशवाणी बरेली से तो मैं लगभग जब से इसकी स्थापना हुई है 1993 से, जब इसे कार्यक्रमों को सुन रहा हूँ। और रेडियो का सुनना जो मेरा है वो बरेली से पहले भी सुनता था, क्योंकि मैं बहुत छोटा सा था तब से मुझे ये रेडियो सुनने का शौक चढ़ा हुआ है, क्योंकि मेरी उम्र 40 के करीब है। तो मैंने सारे काम बरेली में होते हुए देखे हैं, तो मेरा रेडियो सुनना बरेली को मैं बिल्कुल शुरू से ही सुनना हूँ, जब से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। पहले इस कार्यक्रम को ज्यादातर विविध भारती के कार्यक्रम रेले किए जाते थे, कुछ लखनऊ के कार्यक्रम रेले किए जाते थे और कुछ स्थानीय कार्यक्रम हुआ करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था और बहुत भरमार थी उस समय रेडियो की, गली गली कूचो कूचो, हर हाथ में जिस तरीके से आज मोबाइल है उस तरीके से हर हाथ में उस समय रेडियो हुआ करता था। अगर हमें कहीं जाने की जरूरत पड़ जाती थी 100-200 मीटर के चलने की, तो हमें ये महसूस नहीं होता था कि हमें कहीं पे प्रोग्रामों का गैप हो गया, क्योंकि एक रेडियो की आवाज मध्यम पर थी, दूसरे की तेज हो जाती थी। तो ये क्रम जारी रहा, मतलब रेडियो से जुड़ने का और रेडियो से सुनने का। सर,
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि काफी समय से आप, जब से रेडियो की शुरुआत हुई बरेली आकाशवाणी की, तभी से आप FM बरेली सुन रहे हैं। और रही बात इनके कार्यक्रमों की, तो कार्यक्रम

0: तो सभी सुनते होंगे आप
1: जी कार्यक्रम आपके, तो बिल्कुल सभी सुबह से शाम तक जितने भी कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं, क्योंकि अब तो वक्त थोड़ा कम है। कभी इस कार्य एमएल इस केंद्र के तीनों सभाएं हुआ करती थी, सुबह 5:53 पर जब इस कार्यक्रम इस यहाँ की आगाज हुआ करती थी, और 11:20 तक इसका प्रसारण चलता था। वो सारे कार्यक्रमों को मैं सुनता था और आज भी सुनता हूँ मैं।
0: क्या बात, रात में 11:10 तक
1: नहीं 20 मिनट तक चलता था, क्योंकि 10 मिनट का हिंदी समाचार और 10 मिनट का फिर अंग्रेजी समाचार होता था।
0: अच्छा अच्छा, चलिए बड़ा अच्छी बात आपने बताई। इसका मतलब आप रेडियो के शुरुआती दिनों के ही साथी रहे हैं, और जिस वजह से आपको बड़ा बारीक से मतलब इसकी सारी ही जानकारियां हैं। हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए लाल मोहम्मद अंसारी जी, कि आप रेडियो कैसे सुन पाते हैं और क्या काम करते हैं जो आप रेडियो को बड़ी आसानी से सुन पाते हैं?
1: जी सर, आपको बताऊं, क्योंकि अब तो मोबाइल का जमाना है तो ऐप के जरिए कार्यक्रम चलते हैं, तो मेरी दुकान पे एक मतलब एम्पलीफायर लगा हुआ है और काफी बड़ा स्पीकर लगा हुआ है जो कि बैटरी से बजता है। लाइट होती है तो लाइट का इस्तेमाल होता है, वरना बैटरी से दिन भर बजता है, मतलब कहीं भी गैप नहीं होता है 5 मिनट का भी कि आपका प्रसारण कहीं भी बाधित हुआ या बंद हुआ। तो उस समय जब मैं सुनता था तो मेरे पास 2-3-4 रेडियो हुआ करते थे, और मैं अन्य केंद्रों के अलावा बरेली को भी सुनता था, क्योंकि बरेली की आवाज उस समय बहुत मतलब जबरदस्त तरीके से हुआ करती थी और जो केंद्र थे वो थोड़े मध्यम बोलते थे। तो मैं एक साथ 2 रेडियो सुनने का मेरा क्रम पहले भी जारी था, और आज भी मैं 2 कार्यक्रमों को लगातार सुनता हूँ। एम्पलीफायर पर FM बरेली रेगुलर चलती है, और मोबाइल पे अगर कहीं जरूरत पड़ जाए तो अन्य केंद्र को मैं सुनता रहता हूँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही। लाल मोहम्मद अंसारी जी, जैसे कि हम देखते हैं कि पहले रेडियो चला करते थे।
1: जी सर,
0: रेडियो पर ही FM बजता था, लेकिन आज रेडियो बहुत ही आसान हो गया है।
1: जी सर,
0: न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से हम ऑनलाइन पूरी दुनिया में कहीं पर भी हम हो, अब जैसे हमारी इच्छा हो रही है कि हम शहर से कहीं बाहर आए,
1: जी सर,
0: दूर प्रदेश में है, और वहां पर अगर हम रेडियो सुनना चाहें तो न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से इसको
1: आसानी से सुन सकते हैं।
0: बहुत पुराने लिसनर हैं आप और काफी तजुर्बा है आपका, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे लाल मोहम्मद अंसारी जी कि आपको हमारे केंद्र से प्रसारित कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं?
1: जी कार्यक्रम तो आपके देखिए, कार्यक्रम सभी अच्छे हैं, किसी एक कार्यक्रम की तुलना की जाएगी तो दूसरे कार्यक्रम के साथ थोड़ा सा अन्याय हो जाएगा, क्योंकि देखिए बच्चों का कार्यक्रम भी होता है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां आप लोग देते हैं और बच्चों का भरपूर मनोरंजन होता है। इसी तरीके से महिलाओं का कार्यक्रम होता है, तो महिलाओं की जिस तरीके से आधी दुनिया कहा जाता है तो बाकी आधी दुनिया है वो, और उस कार्यक्रम के माध्यम से जितनी भी जानकारी होती है, चाहे वो खरीदारी की हो, बच्चों को देखभाल की हो, बच्चों के पालन पोषण की हो, ये बहुत अहम जानकारियां होती है महिलाओं के कार्यक्रम। हमारे घर में भी महिलाएं हैं, वो सुनती हैं और उससे लाभ उठाती हैं। कभी कभी ऐसे व्यंजन उनको बनाना नहीं आते तो वो आकाशवाणी बरेली से नारी संसार कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी प्राप्त करती हैं और उस व्यंजन को बनाने का प्रयास करती हैं। किसानों का कार्यक्रम भी होता है, मैंने कृषि जगत के कार्यक्रम बहुत सुना है और आज भी सुनता हूं, क्योंकि आप थोड़ा सा इसका लुक कम हुआ है, ग्राम जगत नाम से होता है, पहले किसानों के लिए कार्यक्रम होता था, फिर कृषि जगत कार्यक्रम हुआ, और आज भी इसके माध्यम से जो खासतौर से मंगल का कार्यक्रम होता है उसमें हेलो कृष्णमन कार्यक्रम होता है, तो किसी विशेष को बुलाते हैं और आप उसमें अच्छी अच्छी जानकारियां दिलवाते हैं, चाहे वो फसल सुरक्षा के बारे में हो, चाहे वो तिलहनी फसलों के बारे में हो, चाहे वो दलहनी फसलों के बारे में हो, या पशुपालन, मुर्गी पालन या बकरी पालन, बत्तख पालन, कोई भी विषय पर अगर आप जानकारी देते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत लाभदायक साबित होती है। तो इसी तरीके से ये कार्यक्रम भी अपने आप में बहुत ही अच्छा है, और हेलो बरेली कार्यक्रम भी एक अच्छा कार्यक्रम है, मनोरंजन भरा कार्यक्रम है, और ये कार्यक्रम आपके यहाँ से हो रहा है आजकल 4 बजे आकाशवाणी के बाद आपके साथ। तो ये कार्यक्रम में भी आप एक विषय को लेते हैं और उस विषय पे तमाम मुद्दे उठते हैं और तमाम लोगों के विचार जानने को मिलते हैं और उसमें गीत भी सुनने को मिलता है, तो ये कार्यक्रम भी किसी से कम नहीं है
0: जी।
1: और बाकी वार्ताओं के कार्यक्रम होते हैं आपके यहाँ, जो शेर नशीद कार्यक्रम होता है, कभी गोष्ठी कार्यक्रम होती है, या हमारे मेहमान कार्यक्रम होता है, रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम होता है, ये सारे कार्यक्रमों को मैं सुनता हूँ और भरपूर इनसे मनोरंजन करता हूँ और फायदा उठाता हूँ।
0: क्या बात है, साथ साथ अगर हम बात करें स्वास्थ्य की,
1: जी सर,
0: कहते हैं ना कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है,
1: जी सर,
0: तो स्वास्थ्य से संबंधित भी हमारे यहाँ से बहुत सारे कार्यक्रम जाते हैं,
1: जी
0: चाहे वो आप जान है जहान है प्रायोजित कार्यक्रम ले लीजिए, या इसके अलावा हम बात करें रेडियो हेल्पलाइन की, तो रेडियो हेल्पलाइन में हमारे यहाँ नए नए विशेषज्ञ आते हैं, चाहे बच्चों से संबंधित हो या और तरह तरह की बीमारियां उससे संबंधित स्पेशलिस्ट आते रहते हैं, उससे भी आपको क्या लाभ मिलता है हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: जी सर, लाभ जैसे अगर मान लीजिए अगर हल्का फुल्का मतलब हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो वो जानकारियां यहाँ से जो प्रसारित होती है हम उन पे अमल करते हैं। जैसे एक बार मैंने डॉक्टर साहब से यहाँ पे प्रश्न किया था, आज बताऊँ आपको, तो मैंने उनसे ये कहा था कि दोपहर में खाना खाने के बाद कितने घंटे सोना चाहिए। तो उन्होंने कहा घंटे सोना नहीं चाहिए बल्कि हमको 30 मिनट आराम करना चाहिए और 30 मिनट के बाद चाहे आपको नींद लगे या ना लगे आप उठें अपने मुंह को धो लें और अपने काम में बिजी हो जाए तो आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। और मैंने इस अमल को अपने जीवन में उतारा और उससे मुझे काफी लाभ हुआ। तो ये सारी जानकारियां हम अपने जीवन में उतारते हैं, उनसे फायदा उठाते हैं और कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई कार्यक्रम कहीं ना कहीं हमारे लिए कोई ना कोई प्रेरणा जरूर

0: जरूर देता है सर।
1: क्या बात है। अगर हम बात करें, बहुत सारी बातें हो गई आपसे, अगर हम बात करें पिछले एक हफ्ते की, तो एक हफ्ते में हमारे आकाशवाणी बरेली से जो प्रसारण गया है,
0: जी सर,
1: कौन कौन से कार्यक्रम, क्योंकि आप प्रत्येक दिन सुनते हैं, कौन कौन से कार्यक्रम का अगर हम चाहें आपसे पूछना कि आपको कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगे या कौन कौन से कार्यक्रम आपने सुने,
0: जी
1: तो हम चाहेंगे जो भी श्रोता इस वक्त हमें रेडियो पर सुन रहे हैं वो लाल मोहम्मद अंसारी के मुखारबिंदु से वो सारी बातें सुने।
0: सर, देखिए सबसे पहला कार्यक्रम मैंने सुना था पिछले संडे को, आपका पत्र मिला।
1: क्या बात है।
0: ये एक बहुत ही आकाशवाणी का एक आईना है, इसमें सारी बातें साफ हो जाती हैं, किसी के गिले होते हैं, किसी के शिकवे होते हैं। तो मिथिलेश श्रीवास्तव जी और गजेंद्र जी ने इस कार्यक्रम को पेश किया था, बहुत ही
1: जी
0: उम्दा तरीके से उन्होंने खतों को पढ़ा और जवाब दिया। ये कार्यक्रम मैंने सुना था,
1: जी
0: मनभावन कार्यक्रम में भी सुना था, क्योंकि मनभावन का समय थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन फिर भी उसमें अच्छी शब्दावलियां शामिल की गई थी और वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसी तरीके से कृषि जगत कार्यक्रम में जो एक महिला विशेषज्ञ आई थी, उन्होंने मतलब पर्यावरण के बारे में या मतलब सब्जियों के बारे में जानकारी दी थी, वो भी मैंने सुनी थी और वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक कार्यक्रम मैंने सुना था आप यंग बरेली, और उसके बाद आपकी पसंद जो कार्यक्रम हुआ था उसकी विशेषता ये रही कि बीच बीच में जो यहाँ पे मुशायरा हुआ था उसके अंश सुनवाए गए थे, मतलब तो वो काबिल तारीफ और बहुत ही एक अच्छा अलग तरीका था कार्यक्रम प्रसारित करने का, ये भी कार्यक्रम मैंने सुना था। तो इसी तरीके से मैंने अंकुर कार्यक्रम भी सुना था मैंने, और लकी थ्री कार्यक्रम अभी जो देवेंद्र रावत जी ने प्रस्तुत किया था वो भी मैंने सुना था। और आप जो आकाशवाणी की बात आपके साथ होती है, ये तो मैं परमानेंट रोज ही सुनता हूँ, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं, सबका नाम में अगर लूंगा तो समय ज्यादा हो जाएगा। हर विषय अपने आप में कामयाब काबिल और बहुत ही उम्दा विषय के साथ इस कार्यक्रम को प्रसारित किया गया, ये सारे कार्यक्रम मैंने इस हफ्ते में सुने।
1: या हम यूं कहें कि आपको इस सप्ताह जो भी कार्यक्रम प्रसारित हुए वो सारे कार्यक्रम अच्छे लगे।
0: जी
1: लाल मोहम्मद अंसारी जी, आज हमने आपसे बातचीत की और साथ साथ आपसे जो हमने बातचीत की कि इस सप्ताह आपको हमारे केंद्र से कार्यक्रम कैसे लगे उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को आपने बताया। अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो आपकी नजर में ठीक ठाक चल रहे हैं, क्या
0: जी
1: इसमें कोई परिवर्तन या सुझाव देना चाहें तो हमारे श्रोताओं को दे सकते हैं आप।
0: वैसे तो कार्यक्रम बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं, ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक राय या मशवरा सुझाव वो जरूर इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा। जैसा कि जो 4 बजे वाला आपका कार्यक्रम चल रहा है आकाशवाणी की बात आपके साथ,
1: जी
0: तो इसमें थोड़ा सा अगर आप दिन में जो 1 बजे कार्यक्रम आपकी अनुरोध की देते हैं, अगर विषय को उसमें एक दो बार बता दिया जाए तो उन लोगों के लिए आसानी हो जाएगी जिनके पास बड़े मोबाइल नहीं है, वो सिर्फ रेडियो पर सुनना चाहते हैं। क्योंकि आज भी बहुत सारे गांव में लोग ऐसे हैं जिनके पास बड़ा मोबाइल नहीं, छोटे मोबाइल से, तो अगर उनको इस विषय के बारे में या आपकी पसंद कार्यक्रम होता है उसके कार्यक्रम के माध्यम से एक दो बार कार्यक्रम का विषय अगर उसको दोहरा दिया जाए, बता दिया जाए फेसबुक के अलावा, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। वैसे तो ठीक ठाक चल ही रहा है, उसमें ये होगा काफी लोगों को आसानी हो जाएगी और सहूलियत भी हो जाएगी।
1: बहुत अच्छा सुझाव आपने लाल मोहम्मद अंसारी जी दिया। वैसे तो फेसबुक पर इसकी पोस्ट पढ़ी जाती है, मोस्टली लोग देख ही लेते हैं कि आज का विषय क्या है, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि इसको बीच में भी बता दें कि आज के दिन कौन सा विषय पे हम
0: जी
1: बातचीत
0: क्योंकि
1: करेंगे।
0: कभी कभी ऐसा होता है पोस्ट डालने में भी लेट हो जाते हैं और कभी कभी पोस्ट लोगों तक पहुंच नहीं पाती, बहुत सारी बातें रहती हैं, तो ये थोड़ी आसानी हो जाएगी उन लोगों के लिए जो इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं।
1: जी लाल मोहम्मद जी, आपका सुझाव सराहनीय है। चलते चलते हमारे सभी सुनने वालों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे 100.4 FM आकाशवाणी बरेली के माध्यम से।
0: बरेली के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी बरेली हमारा शहर का चैनल है, बहुत ही अच्छा हमारा मनोरंजन करता है, हर तरीके की जानकारी देता है। इस कार्यक्रम यहाँ के कार्यक्रमों को सुने, अपने जीवन में उतारें, सिर्फ फिल्मी गीतों के पीछे ना पड़े बल्कि और जानकारियां उनको प्राप्त करें, उनको अपने जीवन में उतारें, तो कहीं ना कहीं हमें उससे लाभ होगा और आकाशवाणी बरेली सुनते रहें।
1: बहुत अच्छी बात। लाल मोहम्मद अंसारी जी, आप हमारे इस प्रोग्राम श्रोता मंच में आए और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: ओके नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रोता मंच, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी आवश्यक सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में मंगलवार दिनांक 9 जून 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है समय से पूर्व पैदा हुए अथवा प्री टर्म बच्चों की गंभीर बीमारी और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे सोमवार दिनांक 8 जून 2026 को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर से सुन लें। विषय है समय से पूर्व पैदा हुए अथवा प्री टर्म बच्चों की गंभीर बीमारियों और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीन

की भूमिका। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, सोमवार दिनांक 8 जून 2026 को शाम 4 बजे से, और हमारा टेलीफोन नंबर है 2517200। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने वाले हैं।

तो लीजिए श्रोताओं, बज चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 6। प्रस्तुत है युवा साथियों का प्रिय कार्यक्रम युववाणी।

0: शुदो कहते हैं जिंदगी एक किताब की तरह होती है, हर दिन उसका एक नया पन्ना होता है। कुछ पन्ना हमें मुस्कुराना सिखाते हैं तो कुछ संघर्षों से लड़ना सिखाते हैं, लेकिन जो हर हालत में आगे बढ़ते हैं वही अपनी कहानी को यादगार बनाते हैं। हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम युवाणी में। शुदाव जून का महीना आ चुका है, आसमान से बरसती आग, तपती सड़कें और गर्म हवाओं के थपेड़े और पसीने तरबदर पड़ता ही जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच जिंदगी कभी रुकती नहीं है। खेतों में किसान अपनी मेहनत में जुटा है, छात्र अपने सपनों को साकार करने की तैयारी में लगा है और युवा अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। आप सुन रहे हैं युवाणी और कार्यक्रम युवाणी में आपसे बहुत सारी बातें होंगी और कार्यक्रम में अब आइए हम सुनते हैं कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स, लेकिन इस कॉमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी, देश के विकास में सहभागी बने।
0: श्रोताओ कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली और आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम युवाणी में अपना मनपसंद सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स, जिसमें हम श्रोताओं के बहुत करीब जाते हैं क्योंकि सीधे उनसे बातें करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे पहले श्रोता कौन है आइए जानते हैं। जी अपना नाम बताइए।
2: मैं ठाकुर मनोज कुमार सिंह कठेरिया बोल रहा हूँ।
0: अच्छा मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे पहली बार बात हो रही है मेरी। कैसे हैं आप और बताइए सब कैसा चल रहा है?
2: बढ़िया है साहब
0: जी,
2: सब ठीक है।
0: तो क्या करते हैं आप, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में।
2: खेती बाड़ी करते हैं साहब।
0: अरे वाह, तो धान की तैयारी करनी शुरू कर दी होगी आपने तो?
2: धान की तैयारी अभी पौध डाली है मैंने परसों।
0: तो मनोज जी कौन सा धान लगा रहे हैं आप इस समय?
2: सरबती और वो ताज है, लक्ष्मी ताज के नाम से जो है।
0: अच्छा सरबती और लक्ष्मी ताज, चलो
2: जी जी जी
0: बढ़िया है। तो पैदावार भी बढ़िया होती होगी और?
2: हाँ पैदावार उसकी सही है लगभग।
0: जी जी जी जी, तो चलिए ठीक है, बताइए हम फिर मनोज जी आप कौन सा गीत आप सुनेंगे आज कॉल लगी तो?
2: ये है रे बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है, फिल्म है फूल और कांटे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्यारा गीत है और ये सुनिए प्यारा सा गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका।

0: से मिलने। क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
3: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
3: तो फिर सही नंबर?
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
4: आरबीआई कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: ये प्यारा सा गीत आपने सुन लिया। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारे एक प्यारे से श्रोता इस समय कॉल लाइन पर मौजूद है। जी, कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए, कौन बात कर रहे हैं?
7: जी भैया, राम राम।
6: राम राम जी, बताइए।
7: बंटू भाई प्रजापति बोल रहे हैं, ग्राम कुकरा कला से।
6: क्या बात है बंटू भाई, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए कैसे हैं आप?
7: बढ़िया है, आप सुनाइए भैया कैसे हो?
6: सब बढ़िया है। तो जून आ चुका है, गर्मी थोड़ी सी और बढ़ने वाली है, तो बंटू भाई क्या क्या तैयारी कर ली है आपने?
7: गर्मी से बचने के लिए यही है, मतलब घर से बाहर कम से कम निकले, पानी खूब पिए, हरी सब्जी मतलब खाएं।
6: बिल्कुल।
7: जब बाहर निकले तो छाता वगैरह है और पानी अपने साथ में लेकर चले।
6: जी बिल्कुल, क्या बात है, आपने बहुत अच्छा बताया है। और शाम के समय अपना कार्यक्रम युवाणी जरूर सुने, है ना?
7: जी। और इस समय जब गर्मी पड़ रही है तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, कार्यक्रम युगवाणी के माध्यम से सभी युवाओं से, कि मतलब एक पेड़ धरती माँ के नाम अवश्य लगाएं, ताकि ये गर्मी से हमें निजात मिल सके।
6: बिल्कुल
7: बिल्कुल बचाएं।
6: बिल्कुल, क्या बात आपने कही है, चलिए बहुत बढ़िया लगा। तो कौन सा गीत आज सुनेंगे आप?
7: जी गाने के बोल हैं, जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, जब करना हो हमसे प्यार हमारी गली आ जाना।
6: ठीक है, तो आपके गली में ये प्यारा सा गीत हम भेज रहे हैं कॉल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: अपना नाम बताइए।
5: मैं जिला बनाई कुछ बताता से मोहम्मद आशिक बात कर रहे हैं।
4: क्या बात, बड़ा ही प्यारा नाम है आशिक जी, कैसे हैं आप?
5: बढ़िया हैं। और आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का परिवार कैसा है?
4: जी सब लोग बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप सभी श्रोताओं की दुआएं हैं, प्यार है, तो सब लोग बढ़िया। आप बताओ आपके घर परिवार में कैसे हैं सभी लोग?
5: सब बढ़िया हैं, बस खाली बहुत गर्मी पड़ रही है इसीलिए थोड़ा मामला ऐसा ही।
4: और गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो पड़ेगी, हमें अपना ध्यान रखना है इस समय। गर्मी के समय बाहर निकले तो थोड़ा सा पानी की बोतल लेकर साथ चलें, चेहरे को ढक लें, है ना, और हरी सब्जियां खाएं। और देखो गर्मी आती है ना आशिक जी, तो बढ़िया भी है। देखो प्यारे प्यारे अभी कितने फल मिलेंगे खाने को, आम मिलेंगे, खीरा है, ककड़ी है, तो ये सब चीजों का सेवन जरूर करें, है ना। तो बताइए आज कॉल लगी है तो कौन सा गीत आप सुनेंगे?
5: सर फिल्म का नाम है सनम बेगा और कपाली बोले अल्लाह करम करना मौला तू रहम करना।
4: ठीक है, हम ये आशिक जी आपके रेडियो सेट पे भेज रहे हैं कपाली। आपने कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, कार्यक्रम युववाणी में हम लगातार अपने श्रोताओं से बातें कर रहे हैं। ऐसी एक श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, अपना नाम बताइए।
1: हम जिला बदायूं ग्राम दूनेनगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया बोल रहे हैं।
0: जी ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे हैं आप और स्वास्थ्य कैसा है आपका अभी?
1: बहुत बढ़िया है सर
0: जी,
1: आनंद मंगल है, स्वास्थ्य भी सही है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप भी परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे।
0: हाँ हाँ, सभी लोग बढ़िया है। और बताइए, क्या चल रहा है अभी जिंदगी में?
1: इस समय तो यहाँ खेती बाड़ी का कार्य चल रहा है, गन्ने की सिंचाई हो रही है।
0: अच्छा,
1: धान के लिए नर्सरी तैयार की जा रही है।
0: अच्छा, तो बढ़िया बात है। तो ऐसी आप काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए युववाणी, है ना? तो बताइए, आप कौन सा गीत आज सुनेंगे कॉल लगी तो?
1: आज गाना संभालो फिल्म मेरा साया, गाना है बरेली के बाजार में जिनका बिरादरी।
0: बिल्कुल, ये प्यारा सा गीत हम आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं। आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद मुन्नालाल जी।
1: धन्यवाद।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की

0: सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
1: साथियों, कहते हैं जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं वहीं से कथा शुरू होती है, और जहाँ कथा बहने लगती है वहीं से मन का मैल धुलने लगता है। साथियों, आज के कार्यक्रम में हम आपको एक खास शख्स रूबरू कराएंगे जिनके द्वारा कई जो कथाएं हैं वो सुनाई जाती हैं, भागवत कथा, लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आइए हम एक बार उनका परिचय उनसे जानते हैं। अपना नाम बताइए।
2: जी, मेरा नाम विमला वर्मा है।
1: जी विमला जी, कैसे हैं आप?
2: ठीक हूँ, बढ़िया हूँ
1: जी।
2: दुआ है राधे रानी की।
1: जी, तो अच्छा लगा आपसे बात करके। विमला जी, आप बताइए, आप इस समय क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा हमें जो श्रोता सुन रहे हैं वो आपके बारे में थोड़ा परिचय जान पाएंगे एक बार?
2: जी, इस समय मेरा संगीत से प्रभाकर कोर्स चल रहा है, वो फाइनल है, और वैसे ग्रेजुएशन चल रहा है मेरा, वो भी फाइनल है।
1: अच्छा, ग्रेजुएशन भी चल रहा है, बाकी संगीत में भी आप रुचि रखते हैं? तो हमें पता चला कि आप भागवत कथा भी सुनाते हैं, और क्योंकि संगीत में आपकी रुचि भी है तो
2: ही, मैं हमेशा अपने पापा के साथ रही हूँ। पापा मेरे बचपन से ही कथावाचक हैं, पापा से ही मैंने सीखा है। और
1: तो विमला जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आप हमें अभी आपने बताया कि जो कथा आप सुनाते हैं और जो आप संगीत में भी रुचि रखते हैं, तो क्या समझते हैं इसको, ये ज्ञान भक्ति और जीवन परिवर्तन में सहायक होता है?
2: देखिए, संगीत का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। संगीत हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, अब संगीत होना चाहिए। और आजकल तो बहने संगीत में बहुत आगे जा रही हैं।
1: जी,
2: हर क्षेत्र में बहने बहुत आगे जा रही हैं, और कथा के जरिए और संगीत के जरिए ये समझाते हैं भक्तों के लिए कि भगवान के प्रति हमेशा अपना श्रद्धा भाव रखना चाहिए, क्योंकि भगवान समर्थ है, वो सब कुछ कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
2: और संस्कारों के ऊपर भी हम प्रकाश डालते हैं कथा में, क्योंकि जीवन में हमारे संस्कार बहुत जरूरी है।
1: तो इसमें हम
2: जैसे शिक्षा जरूरी है, वैसे ही संस्कार भी जरूरी है। बिना शिक्षा के संस्कार नहीं, और बिना संस्कार के शिक्षा अधूरी मानी जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो विमला जी, हम इसमें ये जानना चाह रहे थे कि महिलाओं के लिए आप कैसे देखते हैं जो संगीत है, या फिर जो आप कथा में अपना सुना रहे हैं इसको लेकर महिलाओं का जो इसमें रुचि बढ़ती जा रही है, या फिर कई महिलाएं हैं जो इस ओर आती नहीं है, संगीत की ओर उनका रुझान नहीं होता है, वो डरती है कि क्या पता वहां करियर बनेगा या नहीं बनेगा, या फिर समाज को लेकर भी उनके अंदर एक धारणा रहती है, आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्या समझते हैं इसको?
2: देखिए, वैसे तो अब तो खैर ये तो पुरानी बातें, ठीक है, महिलाओं को इधर नहीं जाने देंगे, उस क्षेत्र में नहीं जाने देंगे, लेकिन आजकल तो महिलाएं समर्थ हैं, सब कुछ कर रही हैं, क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, और संगीत में भी कथावाचिका भी बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं महिलाएं। और इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, संगीत में भी और कथावाचकी में भी और पढ़ाई शिक्षा में भी, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और बढ़ रही है माता।
1: तो आप कुछ सुनाना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को? तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे आपने शुरुआत किया?
2: इसकी प्रेरणा मुझे अपने घर परिवार से ही मिली है। मेरे पिताजी बचपन से ही कथावाचक रहे हैं, और मेरे घर में भी संगीत सभी को ही आता है, और पढ़ाई में भी मेरी भाभी और भैया ने, दोनों ने इलाहाबाद से लॉ फाइनल कर लिया है, मेरी बहन है मुझसे बड़ी, उन्होंने भी लॉ फाइनल कर लिया है, और बाकी बहन भाइयों की भी पढ़ाई चल रही है, हम 8 बहन भाई हैं सर।
1: चलिए, तो हमें बात करके अच्छा लगा विमला जी, आपने जो हमें जानकारी दी, और हम यही कामना करेंगे कि जो आपने भविष्य के लिए अपने प्लान बना रखे हैं उसमें आप बिल्कुल सफल हो, है ना? कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को चलते चलते?
2: जी जी बिल्कुल। देखिए, वैसे मेरे पापा एक कवि भी हैं, स्वयं गीतों की रचना करते हैं, अगर उन्हें कोई धुन दे दी जाए तो वो धुन पर अपना गीत बना देते हैं।
1: जी,
2: तो मेरे पिताजी हैं रामकरण आचार्य जी, रामचंद्र कथावाचक, उन्होंने एक गीत बनाया है जिस समय दुशासन द्रौपदी जी का वस्त्र हरण करता है, उस समय का एक गीत बनाया है। द्रौपदी जी भगवान श्री कृष्ण के लिए पुकार करते हैं, तो लिखा है मेरे पिताजी ने।

0: जी, इसके लिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद। ठीक है, राधे राधे।
0: राधे राधे।
2: श्रोताओं, अभी आपने जानकारी सुनी, उम्मीद करते हैं अच्छा लगी होगी। और देखिए, एक और श्रोता हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर है, तो चलते चलते उनको
3: हेलो।
2: और बात कर लेते हैं। जी हेलो फ्रेंड्स, कौन बात कर
3: हेलो
2: रहे हैं?
3: फ्रेंड से बोल रहे हैं सर। सर मैं निकट बिजली घर मीरगंज से भाई कल्लू मिस्त्री बोल रहा हूँ सर।
2: अच्छा, कैसे हैं कल्लू भाई, और बताइए क्या चल रहा है आजकल?
3: बस सर अपना वही साइकिल का कार्य है, और आपकी वाणी के सारे प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ा मन लगा करते हैं प्रोग्राम सुनते हैं।
2: अच्छा।
3: और आप भी बड़ा मन लगा करते हैं प्रोग्राम को।
2: चलिए तो बहुत अच्छी बात है। तो और घर परिवार में सब लोग बढ़िया हैं? काम कैसे चल रहा है?
3: काम बिल्कुल अच्छा चल रहा है सर, आप लोगों की दुआएं सर।
2: अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया बात है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी श्रोता खुश रहे, मस्त रहे, है ना? तो गीत बता दीजिए फिर, कौन सा सुनेंगे आप आज?
3: गीत तो सर हम तो लोग फरमाइशी गीतों में अक्सर फरमाइश सुनते रहते हैं, मगर आज हमें बड़ा खुशी हो रही है कि आज हम आपकी पसंद का गाना सुनेंगे सर।
2: चलिए तो हम भी आपको निराश नहीं करेंगे, एक प्यारा सा गीत भेजेंगे, ठीक है?
3: चलिए, कुछ नाम लेना चाहेंगे सर मैं?
2: हाँ हाँ हाँ, बोलिए।
3: सर मोहम्मद नईम, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद नसीम एडवोकेट, दानिश और हमजा और बाबर अजीम, सर ये गाना सुनना चाहते हैं सर।
2: ठीक है, सुनिए एक गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद।
3: ओके सर, ओके।

अब दोस्तों कार्यक्रम में समय नहीं रहा कि आप सभी से और बातें की जाए, ऐसे सुनते रहिए अपना कार्यक्रम युवाणी 100.4 FM आकाशवाणी बरेली पर। और हम आपको फिर अगले दिन कुछ ना कुछ नया और नया लेकर आएंगे। अब अपने दोस्त वैभव को दीजिए अनुमति, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए श्रोताओं, बाकी हम आपका ध्यान रखते रहेंगे, ऐसी ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कार्यक्रम आपके लिए लाते रहेंगे। सुनते रहिए 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। बाय बाय, नमस्कार, टाटा।

0: ग्राम जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी अपने भैया और बहनों को आपके भैया हरदोईलाल वर्मा की ओर से राम राम। कैसे हो भैया और कैसी चल रही है आपकी खेती बाड़ी? हम उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे हमारा प्रोग्राम ग्राम जगत जरूर सुन रहे होंगे। आज दिन है रविवार और इस दिन होता है हमारे भाइयों का खास प्रोग्राम यानी फरमाइशी लोक मंजरी। प्यारे प्यारे पत्र आपके हमें मिले हैं, तमाम श्रोताओं की कमेंट्स हमें मिली हैं, वो भी हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें आज कार्यक्रम में क्या क्या है। आज हमारे कार्यक्रम में भेंट वार्ता, घर की जिम्मेवारी के साथ साथ खेती एवं पशुपालन, इस विषय पे जानकारी देंगी श्रीमती पूनम और इनसे विस्तार से जानकारी जुटाएंगे सुरेंद्र पाल भैया। साथ ही साथ क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता जिसका विषय होगा बेटियां कैसे बने स्वावलंबी। सिका गंगवार और संजीव गंगवार जो ग्राम नल नगरिया तहसील मीरगंज जनपद बरेली की रहने वाली है, किस तरीके से अपना स्वरोजगार कर रही, इस विषय पर भी आपको जानकारी हम दिलवाएंगे। तो सबसे पहले आपसे बातचीत कर लेते हैं ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण का उपयोग को कम करना और उसकी बर्बादी रोकना, ये आदतों में बदलाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग के माध्यम से किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बिजली और ईंधन की बचत करके पैसे बचाना, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना और पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। जैसे हमारे भाई कहीं कमरे में लाइट जल रही है और फिजूल बिजली की बर्बादी हो रही है, फिजूल ऊर्जा की बर्बादी हो रही है। कुछ हमारे भाई अपने खेत पर ट्रैक्टर ले जाते समय हमारे किसान भाई किसी भाई से बातचीत करते हैं तो ट्रैक्टर को बंद नहीं करते हैं, ट्रैक्टर चालू रखते हैं, तो ऐसे में ऊर्जा की खपत होती है। अब हम आपको बता दें ऊर्जा संरक्षण क्यों जरूरी है। पर्यावरण सुरक्षा, ऊर्जा की कम खपत से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है जिससे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने में मदद मिलती। ऊर्जा की बचत करने से आपको मासिक बिजली और ईंधन के बिलों में भी कमी आती और साथ ही साथ आपको बता दें संसाधनों की बचत, कोला और पेट्रोलियम जैसे गैर नवीकरण संसाधन सीमित, इसलिए इन्हें बचाना भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक। तो ऊर्जा संरक्षण का मतलब किसान भाई आप समझे, ऊर्जा संरक्षण हमारे लिए करना क्यों आवश्यक है। खैर अब आपको सुनवाते हैं सबसे पहले एक भेंट वार्ता जिसका विषय है घर की जिम्मेवारी के साथ साथ खेती एवं पशुपालन। इस विषय पे जानकारी दे रही हैं श्रीमती पूनम और इनसे विस्तार से जानकारी जुटा रहे हैं हमारे भैया सुरेंद्र पाल। तो आइए सुनते हैं।
1: साथियों, ग्रामीण परिवारों में महिलाएं घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ खेतों में काम करती हैं, पशुपालन की देखभाल करती हैं और परिवार की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। आज हम जानेंगे कि महिलाएं किस प्रकार घर, खेती और पशुपालन के बीच संतुलित बनाकर परिवार और समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारा विषय है खेतीबाड़ी एवं पशुपालन में महिलाओं की भूमिका। इस विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं पूनम जी। पूनम जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी उम्र कितनी?
2: उम्र हमारी है 30 साल की।
1: पढ़ाई लिखाई करी आप? अब आप का काम?
2: अब तो हम घर पे ही रहते हैं, घर खाना वाना बनाते हैं और पशु पालते हैं, उनके भी करते हैं।
1: खाना बनाती हूँ, पशुपालन करती हूँ और खेती बाड़ी में भी काम बना। हाँ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है महिलाओं की, खासकर जिनके घर में जानवर पलते हैं, खेती बाड़ी को काम, तो काफी मेहनत करनी पड़ती हुई आगे।
2: मेहनत तो करने पड़ती है तभी तो हो पाते हैं, ना हो ही ना पाएंगे।
1: कई बजे सवेरे को सोए को उठती?
2: उठता 5 बजे, 5 बजे 4:30 बजे ऐसे उठ।
1: उसके बाद पूरे दिन की का प्रक्रिया रहती है, कैसे कैसे काम?
2: पूरे दिन सुबह को उठकर झाड़ू उड़ू लगा के फिर डंगरन की घास कूड़ा करते हैं, नान सानी करते हैं, गोबर उबर डाल कर फिर उसके बाद में खाना बनाते हैं।
1: बच्चे गए हैं आप?
2: 2 बच्चे हैं।
1: स्कूल जाते हैं बच्चे?
2: बच्चे भी स्कूल जाते हैं।
1: यानी कि इन सब कामन के संग संग बच्चों को भी स्कूल भेजती होगी आप?
2: हाँ,
1: उनके लिए खाना बनाती होगी?
2: भी खाना लेके जाते हैं, खाके भी जाते हैं।
1: काफी जिम्मेदारी है आप। जानवर में का काम?
2: जानवर में नान सानी करते हैं, सुबह को सानी करते हैं, उठ के गोबर भी इकट्ठा करते हैं, फिर उनके भी नीचे झाड़ू

0: झाड़ू लगाते हैं,
1: गोबर हटाओ, झाड़ू लगाई, सानी करी,
0: सानी करी, फिर गोबर फेंक के आते हैं।
1: अच्छा जो गोबर, अच्छा गोबर घूरे पे डालती
0: है? अभी तो घूरे पे पड़ रहा है फिलहाल में, बारिश हो रही है तो बारिश का टाइम है, थोपता है तो थोपते हैं।
1: अच्छा जैसे इस समय तो बारिश आने वाली है, शुरुआत समझो बारिश की हुई गई, तो उस समय घूरे पे डाल,
0: घूरे पे डाल रहे हैं।
1: अच्छा घूरे पे डालने का फायदा?
0: खेतों में पड़ता है फिर घूरो हमारे,
1: अच्छा
0: इकट्ठा कर लेते हैं तो खेत में पड़ जाता है।
1: अच्छा वो घूरो आपने जो रोजाना को जो जानवरों गोबर है वो गड्ढा में डालते रहे,
0: हाँ
1: वो जो घूरो बन जाता है वो खेत में डाल,
0: खेत में पड़ता है फिर। हाँ
1: अच्छा चलो इस समय तो बारिश को मौसम शुरू होने वाला हो इसलिए तुम वो गोबर को घूरे में डाल रही हो,
0: हाँ।
1: और घर को कचरा हुआ है झाड़ू पोछा को बहुत सब घूरे में डाल,
0: घूरे पे पर
1: जब मौसम सही होता है धूप ही अब से 3 महीना पहले,
0: हाँ।
1: तो गोबर कहाँ डालती?
0: तो कंडा बना रहा है, कंडा थोपते।
1: अच्छा तो कंडा थोपती,
0: हाँ।
1: फिर उन कंडन को क्या करती?
0: खाना बनाते हैं उनसे,
1: कंडन से खाना बनाती। अच्छा गैस ना मिली आपको?
0: मिली हुई है गैस।
1: अच्छा यानी कि गैस भी आपको मिली है, लेकिन गैस पे खानो आप कम
0: बनाते हैं
1: इमरजेंसी में, कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम आ जाए
0: है या बारिश हो रही है, आंधी है, तूफान है, तब बना लेते हैं।
1: नहीं तो आप खानो चूल्हे पे,
0: चूल्हे पे ही बनाते हैं।
1: तो जो कंडा आप थोपती हो तो उन कंडा थोपन के बाद कंडा सूखत होंगे?
0: हाँ सूखते भी हैं।
1: तो उन्हें इकट्ठे करके रख लेते हो?
0: इकट्ठे करके उनको बटिया भी लगाते हैं, घर लेकर आते हैं, सुखाते भी हैं, सभी काम करते हैं।
1: घर के काम के संग संग खाने को काम भी करती हूँ आप,
0: हाँ।
1: जानवरों को काम करती हूँ, फिर जानवरों को दूध मठा भी करने हैं,
0: वो भी करने।
1: खेती बाड़ी में कौन कौन से काम?
0: खेती बाड़ी में सब्जी होती नहीं है हमारे इधर,
1: हम्म,
0: जो मोटी खेती होती है मतलब गेहूं है, धान है, तो जो कटते हैं तो कटवान चले जाते हैं।
1: अच्छा धान क्यों कटते हैं तब कटवान चले जाते हैं, वैसे खेती बाड़ी में कोई काम ना?
0: वैसे कोई रोज
1: सब्जी को काम होता है तो ज्यादा मेहनत,
0: ज्यादा मेहनत होती है, रोज ही ना।
1: जो जानवरों को चारो है वो कौन लेकर आता?
0: वो तो हमारे घर में जो पुरुष हैं वो लेके आते हैं।
1: अच्छा आप वैसे खेत पे
0: वैसे
1: जाती हूँ, केवल धान या गेहूं की कटाई जब होती है
0: तब
1: जाते, तभी खेत पे जाती हूँ, हाँ। बहुत अच्छी बात है, आप वैसे ही बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है आपके ऊपर, हाँ। खानों बनाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि
0: 8 लोग हैं परिवार में हमारे, सभी लोग उनके खाना।
1: अच्छा परिवार साझे है सब?
0: सभी परिवार,
1: आपके सास ससुर?
0: सास नहीं है, ससुर है।
1: अच्छा
0: बड़े हम ही,
1: यानी कि संयुक्त परिवार है आपको, आप अपने परिवार में सबसे बड़ी हैं, जिम्मेदारी बखूबी आप निभा रही हैं, अच्छी तरीका से आप काम कर रही हैं। इस समय मौसम में काफी परिवर्तन आया, गर्मी भी काफी पड़ रही है, बरसात भी लगभग धीरे धीरे दस्तक दे चुकी
0: बढ़ रही है,
1: हाँ। तो इस समय कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको सावधानी बरतना चाहिए, चाहे जानवर के हों, चाहे घर में हों, चाहे घर में हमारे बुजुर्ग हों या बच्चे हों, पे ऐसे कौन से काम हैं जिनकी हमें सावधानी जब मौसम में रखना, जिससे हमारे घर में कोई बीमार ना हुए, हमारे जानवर बीमार ना हुए?
0: जैसे टाइम पे तो खाना पीना को भी ध्यान रखना है,
1: सबसे अच्छी बात, हाँ। आपने कही खाना पीने को ध्यान बहुत जरूरी है,
0: खासकर खाने पीने को ध्यान रखते हैं ज्यादा, क्यों ऐसे टाइम पे अगर ज्यादा वैसी चीज खाओ तो नुकसान दे जाती है,
1: नुकसान दे जाती
0: है, तली हुई चीज या वैसी चीज कोई खा लो तो,
1: क्योंकि जो मौसम आ रहा है, हाँ। वो मौसम में खान पान को विशेष, चाहे वो हमारे जानवर सही,
0: हाँ।
1: चाहे हमारे घर के सदस्य सही, अगर हम खान पान को विशेष ध्यान देंगे तो जो हमारी स्वास्थ्य है आने वाले मौसम में, हाँ, सही रहा है, क्योंकि बरसात के मौसम बहुत सारी बीमारियां
0: आती नहीं है।
1: और एक चीज और है, साफ सफाई, चाहे जानवर की हो,
0: हाँ,
1: चाहे
0: साफ सफाई तो हम अपने घर में रखते हैं, सही, जानवर के भी तरह और अपने घर में।
1: पशुपालन को काम, खेती बाड़ी में काम, सब काम का लक्ष्य है आपको बच्चन तो कहाँ तक पढ़ाने की संभावना?
0: संभावना तो बहुत कुछ करने की है, मगर बच्चे अगर देखो हमारी उम्मीद जैसी है, हमारी ऐसे बच्चे लेकर आए तो बहुत कुछ करवाने की इच्छा है बच्चन।
1: मतलब आपको जो ध्यान है सीधे सीधे,
0: हाँ।
1: जो उद्देश्य है वो बच्चन की पढ़ाई को लेकर,
0: पढ़ाई को लेकर
1: कि हमारे बच्चे अच्छी तरीका से पढ़े,
0: पढ़े।
1: मेहनत बाकी है, आप करिए रही। आज आपकी और हमारी बातचीत, बहुत सारे भैया बहन सुनोगे, क्या कहना?
0: मैं तो सभी के लिए यही कहना चाहूंगी, सब सब कोई ऐसी अपने बच्चन पर ध्यान दे और घर ही परिवार को भी लेके ऐसी चले। आज के जमाने में जो घर ही परिवार इकट्ठा रहता है तभी बढ़ते हैं सभी,
1: तभी बढ़ते,
0: कोई उन्नति पा लेते हैं, अलग अलग होके कुछ नहीं पाते।
1: यानी कि संयुक्त परिवार में रहे,
0: हाँ।
1: अलग अलग ना हो, सब लोग एक संग रहेंगे तो खेती बाड़ी में अच्छा काम हुए, घर की कमाई भी अच्छी हुई,
0: हाँ।
1: और मुनाफा भी बढ़े। पूनम जी आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य,
3: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 63

0: 4994991 पर संपर्क करें।
1: अभी हमारे भैया सुन रहे हैं ये भेंट वार्ता, घर की जिम्मेदारी के साथ साथ खेती एवं पशुपालन, इस विषय पे जानकारी दे रही श्रीमती पूनम और इनसे विस्तार से जानकारी जुटा रहे थे हमारे भैया सुरेंद्र पाल। हम समझते हैं ये जानकारी सुनकर हमारे भाई जरूर लाभान्वित होंगे। साथियों, आपका मनोरंजन तो कराएंगे लेकिन एक क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे कार्यक्रम में एक और भेंट वार्ता है जिसका विषय है बेटियां कैसे बने स्वावलंबी। इस विषय पे विस्तार से जानकारी दे रही हैं शिखा गंगवार और संजू गंगवार, जो ग्राम नल नगरिया तहसील मीरगंज जनपद बरेली की रहने वाली हैं। कैसे पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने पैरों पर खड़ी हैं और कैसे आय अर्जित कर रही हैं, आइए सुनते हैं। सभी सुनने वालों को हरद्वाई लाल वर्मा का नमस्कार। एक नई जानकारी लेकर आपके बीच फिर हाजिर हैं। किसान भाइयों, जैसा आप जानते हैं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो महिलाएं हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। वहीं बात करें बेटियों की, तो बेटियां भी अब किसी से कम नहीं है। चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे देश की रक्षा की बात करें, हर क्षेत्र में बेटियां अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। साथियों, ऐसी ही दो बेटियां हैं जो पढ़ लिख कर अपना स्वरोजगार कर रही हैं। उन्होंने अपना व्यवसाय खोला है, उससे अधिक लाभ हो रहा है और उनसे हमने बातचीत की है। आइए सबसे पहले उनका नाम जानना चाहेंगे। जी, आपका क्या नाम है?
2: संजू गंगवार।
1: संजू गंगवार जी, आपकी उम्र क्या होगी?
2: सर, ये 25 ईयर।
1: जी, पढ़ाई लिखाई की बात करें तो कहाँ तक की है?
2: सर, ग्रेजुएशन कर लिया है, प्लस जीटीआई भी कर लिया है।
1: अच्छा, आपने अच्छी शिक्षा ग्रहण की है, तो ये बताइए कहीं नौकरी का प्रयास नहीं किया?
2: नहीं सर, नौकरी का प्रयास नहीं किया।
1: तो ये बताइए, आपने नौकरी का प्रयास नहीं किया तो इस समय क्या कार्य कर रहे हो?
2: इस समय सर ब्यूटिशियन हूं मैं, अपना खुद का पार्लर खोल रखा है।
1: कहाँ खोल रखा है?
2: मीरगंज में।
1: आपने जो पार्लर खोला है ब्यूटिशियन का, आपकी शुरू से ही ये इच्छा थी कि हम अपना ब्यूटिशियन चलाएंगे?
2: हाँ सर, ये मेरा मतलब पहले से ही था, मुझे रुझान भी इसी में था मेरा। ये
1: तो ये बताइए, इसके लिए आपने कोर्स किया था क्या?
2: यस सर।
1: अच्छा,
2: मैंने पंजाब से कोर्स किया था।
1: फिर सीखने के बाद अपना जो ब्यूटी पार्लर खोल रखा है आपने, कि किस तरीके के ग्राहक आपके पास आते हैं, किस तरह की महिलाएं या बेटियां आती हैं?
2: अपने यहाँ तो सर हर टाइप का मतलब ग्राहक आता है।
1: जी जी,
2: थ्रेडिंग, ब्राइडल वगैरह ये सारे आते हैं।
1: अच्छा अच्छा
2: जी।
1: ये आते हैं, क्या क्या कार्य कराते हैं जिससे हमारे सुनने वालों को बताइए?
2: जैसे सर मेकअप हो गया, पार्टी मेकअप हो गया, ब्राइडल मेकअप हो गया, शादी के जितने भी मेकअप होते हैं वो सारे मेकअप होते हैं, हल्दी मेहंदी।
1: अच्छा अच्छा
2: जी।
1: बात करें शादी की, तो शादी में जो मेकअप कराने लड़कियां आती हैं और उनको आप दुल्हन बना के सजा के भेजती हो, तो कितना प्राइस लेती?
2: सर स्टार्टिंग मेरा 5000 से है, तो उसमें मैं कॉम्बो बना हुआ है मेरा, इसमें उसमें आपको वैक्सिंग मिलेगी, बाकी मेकअप मिलेगा।
1: अच्छा
2: जी,
1: बिल्कुल दुल्हन को सजा देती हैं आप?
2: जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको पूरा प्रॉपर तैयार करके भेजती हूँ।
1: अच्छा अच्छा, यदि कोई लड़की उसका रंग काला है तो उसको कैसा बना देती?
2: सर स्किन टोन के अकॉर्डिंग, जैसा स्किन होता है उससे एक टोन थोड़ा सा अप करके, क्योंकि वो स्किन टोन में मर्ज होना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ मेकअप है, बट इतना नहीं है कि प्रॉपर लगना चाहिए कि ब्राइड भी है और मेकअप भी नहीं है।
1: दुल्हन आपने सजा दी, दुल्हन जब अपने ससुराल में जाती है और जयमाला पड़ती है तो अच्छी लगती है, और दुल्हन पता चली वहाँ ससुराल में जाके काली लगी, फिर इसमें कितना इफेक्ट पड़ता है? वो तो ये कहते होंगे कि ब्यूटी पार्लर वालों ने दुल्हन को सजा दी।
2: नहीं एक्चुअली सर, वो तो पहले ही देख लेते हैं ना ब्राइड को अपनी उसमें क्या
1: इतना फायदा हो जाता है पर डे?
2: पर डे का सर यही समझो 1200-1300 रुपए समथिंग।
1: अच्छा,
2: अभी स्टार्टिंग में।
1: तो नौकरी से अच्छी है?
2: यस, नौकरी से बेस्ट, अपना काम सबसे ज्यादा अच्छा रहता है।
1: अच्छा, अब चलिए बात करते हैं शिखा गंगवार जी से। थोड़ा मुस्कुरा रही हैं, सोच रही हैं हमसे बात नहीं कर रहे हैं भैया जी। आपका नाम क्या है?
3: जी मेरा नाम शिखा गंगवार है।
1: शिखा गंगवार जी, ये बताइए कि आप छोटी हैं या बड़ी?
3: मैं मतलब जो सिस्टर है, हम सारी सिस्टर हैं, उसमें सबसे छोटी हूँ।
1: अच्छा, लेकिन आपने जी बताइए कौन सी चक्की का आटा खाया है?
3: आर के आटा, चक्की का आटा खाया है मैंने, तभी सबसे बड़ी हूँ, मोटी दिखती हूँ।
1: तो आप बिल्कुल स्ट्रांग हैं, अच्छी लग रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है?
3: जी मैंने BSc एंड BEd किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद में अपना काम डाला है सिलाई का।
1: अच्छा, नौकरी की तलाश नहीं की आपने?
3: अब जैसा कि सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया जॉब के लिए लगी है, अगर पूरी दुनिया जॉब लेने पे लग जाएगी तो अपना काम कौन करेगा, फिर जॉब देने वाला कौन बनेगा?
1: जी, जी, जी।
3: तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि कोई हम किसी को जॉब दे सके, ज्यादा बेहतर है।
1: जी, इस समय क्या कार्य कर रहे हो?
3: इस टाइम पे मेरा फैशन डिजाइनिंग किया हुआ है मैंने, अपना सिलाई का बुटीक खोला हुआ है, तो वहाँ मैं भी करती हूँ और प्लस स्टाफ भी है, कुछ बच्चे सीखने भी आ रहे हैं।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो आपने बताया फैशन डिजाइन का कोर्स किया है, कहाँ किया था आपने?
3: जी ये लुधियाने से किया था।
1: कितने दिनों का ये कोर्स?

0: है?
1: ये कोर्स तो वैसे 3 साल का होता है, बट मैंने जहाँ से किया था वहाँ 2 साल में मेरा हो गया था।
0: अच्छा, तो कोर्स आपने जो किया 2 साल का, कितने पैसे खर्च हुए आपके?
1: वहाँ लगभग से ऐसे 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा आ गया।
0: 2.5 से 3 लाख? अच्छा, तो आप बिल्कुल सीख के तब आपने ये खोला है?
1: जी, प्रॉपर सीख के मैंने।
0: अच्छा, कहाँ पर खोला है आपने?
1: ये मीरगंज में पड़ता है अपना, थाना रोड, RR पब्लिक स्कूल के पास।
0: अच्छा, तो ये बताइए, संजू गंगवार जो आपकी बहन है, शिखर, संजू ने मिलके खोला है ये?
1: हाँ जी, दोनों ने, हमने मिलके खोला है ये।
0: अच्छा,
1: दोनों काम हमारे जो है पास में है, मिलके हैं
0: दोनों बहनें आमने सामने।
1: हाँ जी सर। हाँ जी,
0: आप दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत मोहब्बत करती हैं।
1: बिल्कुल, फुल सपोर्ट भी मिलता है एक दूसरे का। अगर अकेले होता है बंदा तो इतना सपोर्ट नहीं मिलता।
0: अच्छा,
1: थोड़ा कहीं ना कहीं वीक पड़ जाता है, अगर दो बंदे हैं तो पूरा सपोर्ट मिलता
0: है। अच्छा, आपने की फैशन डिजाइन, तो फैशन डिजाइन में कौन कौन से आभूषण बनाती है, क्या क्या बनाती है?
1: फैशन डिजाइनिंग में मेरे पास सारा कुछ, अभी ट्रेंडिंग कॉट सेट चल रहे हैं, बायर कॉट सेट, अनारकली हो गया और गाउन हो गए और रनिंग साड़ी वगैरह सारा कुछ बनता है।
0: अच्छा, तो इस तरह के आप वस्त्र बनाती हैं?
1: जी हाँ जी। सारा
0: और कोई नया आपके फैशन आता जहन में?
1: बिल्कुल,
0: जैसे
1: जिस टाइप से आप नेट से सर्च करके बनवाना चाहें वो बन जाता है, या फिर जो हम ड्रॉ करके खुद बनाना चाहें वो भी बन जाता है।
0: अच्छा, यानी नेट से आप सर्च करके जैसे वो चाहता है?
1: हाँ जी, प्रॉपर वही ड्रेस बन जाती है जैसे।
0: ये तो मीरगंज के लिए बहुत अच्छी जानकारी है, ये जानकारी दे रही है। समझते हैं कि ये जानकारी सुनकर आपके पास और भी लोग आए।
1: जी।
0: अच्छा, ये आपकी मशीन है, ये आप इस समय सिलाई कर रहे हैं?
1: हाँ जी।
0: आपने बात कही कि नौकरी की हर इंसान को जरूरत है, लेकिन आपने तो 4-5 और स्टाफ लगा रख, नौकरी की वजह और लोगों को नौकरी दे रही है।
1: वही सबसे ज्यादा इजी है, अगर हम कुछ काम करते तो अकेले तो होना है नहीं, क्योंकि इतना काम हो जाता है, कोई भी अगर ढंग का काम कर रहा है बंदा, काम इतना हो जाता है, स्टाफ रखना ही पड़ता है। तो किसी न किसी को अगर हम देते हैं जॉब, अगर उसका घर हमारी वजह से चलता है तो बहुत बेहतर है।
0: तो संजू जी, ये बताइए, काम अच्छा चल रहा है?
2: यस, काम बहुत अच्छा
0: चल रहा है। संजू का का सही काम चल रहा
2: है? दोनों का ही अच्छा चल रहा है।
0: इस समय हमारी आपकी बात को बहुत सारे भैया बहन सुन रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहूँगा?
2: उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अपना खुद का व्यवसाय ज्यादा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और खुद भी करें और प्लस जॉब भी खुद ही दें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा।
0: शिखा जी, आपका क्या मानना है?
1: मेरा मानना यही है, अगर देखा जाए जिस हिसाब से पूरी दुनिया गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ी हुई है, किसी को मिल रही है, किसी की पूरी लाइफ निकल जा रही है फिर भी जॉब नहीं मिल पा रही है, तो उस हिसाब से अगर आपका रुझान किसी काम में है तो वो काम डालना ज्यादा बेहतर है। जॉब के पीछे भागने से ज्यादा बेहतर है, ज्यादा फोर्स होता है बच्चों को सिर्फ पढ़ो पढ़ो, उनका रुझान भी देखना चाहिए एक्चुअल में है क्या, वो चाहते क्या है।
0: नौकरी में फाउंडेशन में होते हैं
1: थोड़ा, ये भी रहता है कि जॉब अगर हम कर रहे हैं, हमारी फैमिली को इस वक्त हमारी जरूरत है, उस टाइम पे हम उनको टाइम नहीं दे पाए तो फिर ऐसे पैसा भी कोई फायदे नहीं चलता है उससे। अगर हमारा अपना काम है, अगर फैमिली में कोई मेंबर बीमार पड़ा है, जैसे कि मान लो हमारे भाई लोग नहीं है, अगर मम्मा बीमार पड़ी है तो हमको जाना है, अपना काम हम साइड लगा के जा सकते हैं, किसी को छोड़ के उस पे जा सकते हैं, और वही अगर हम जॉब कर रहे हैं तो नहीं जा सकते, उनको टाइम नहीं दे सकते, थोड़ा ये रहे।
0: तो बेटियां अब हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।
2: जी सर।
0: अगर उनके अंदर जज्बात हो तब?
2: जी बिल्कुल।
0: अपना कार्य वो खुद कर सकती हैं?
2: जी सर बिल्कुल, अपना कार्य वो खुद कर सकती हैं।
0: जैसे किस किस क्षेत्र में बेटियां या लड़कियां जा सकती?
2: सर आज के टाइम में तो सभी क्षेत्र में जा सकती हैं, उड़ान तो लड़कियों ने भरी दी है ना, तो हर जगह जा सकती हैं लड़कियां।
0: शिखा जी बहुत खुश हैं अपना कार्य कर, संजू जी बहुत खुश हैं अपना कार्य कर रही हैं ब्यूटिशियन का, और तमाम ग्राहक भी इस समय बैठे हैं और ग्राहकों को रोक कर हमसे वो बात कर रही हैं। शिखा जी, आपके जहन में कोई और सवाल आता?
1: नहीं।
0: लोग कपड़ा सिलाने भी आते होंगे?
1: हाँ हाँ, कई तरह से लोग आते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि कई चीजें उन्हें हम ग्राहक हमें नई चीज सिखा जाता है कि उसको नया डिजाइन लेकर आ रहा है, वो पहले से हमें नहीं पता है, फिर भी कोशिश करके उसको किया जाता है तो हो जाता है सारा।
0: अच्छा, अच्छा। कोई ग्राहक आपसे रूठा तो नहीं आज?
1: नहीं, अभी तक तो देखा जाए कोई ग्राहक रूठ कर नहीं जाता है, जो भी आता है खुश।
0: एक वस्त्र बनाने में कितने पैसे लेते?
1: वो कपड़े के अकॉर्डिंग चीजें होती हैं, अगर नॉर्मल चीजें बनवा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग होती है, अगर जिस टाइप का वो कपड़ा बनवाता है उसके अकॉर्डिंग पैसे लगते हैं। चार्ज।
0: दोनों बहन आप कार्य कर रही हैं, हमें बहुत खुशी हुई। अगर आप ही की तरह, यानी संजू और शिखा की तरह, और भी बेटियां पढ़ लिख कर जो घर बैठी हैं और माँ बाप पर बोझ बन जाती हैं, कार्य करें अपना, तो आय दोगुनी हो सकती है, घर का खर्चा ठीक ठाक चल सकता है। शिखा जी, और कोई सवाल आता हो तो हमारे सुनने वालों को बताइए।
1: सवाल यही है, अगर बेटियां घर में बैठी हैं तो उससे बेहतर है अगर उनका रुझान किसी भी चीज में है तो उसमें अपनी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाएं, और कोई भी काम अगर वो करती हैं तो किसी काम को हम छोटा या बड़ा नहीं कह सकते, हर काम छोटे से स्टार्ट होता है बड़े तक पहुंचता है, तो घर में खाली बैठना तो बेकार ही है, देखा जाए तो कुछ ना कुछ बंदे को करना ही चाहिए।
0: जी, तो शिखा जी और संजू जी, आपने हमारे सुनने वालों को बहुत ही

0: महत्वपूर्ण जानकारी दी। और श्रोता, हमारी आपकी बात को, आज का जो विषय था बेटियां कैसे बने स्वावलंबी, इस विषय पे आपने बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखी और श्रोता हमारी आपकी बात को बहुत ही गौर से सुन पाए। आपने जो जानकारी दी इसके लिए आपको बहुत बहुत
1: धन्यवाद।
0: देखा किसान भाई, सिका गंगवार और संजू गंगवार जो कि ग्राम नलनगरिया तहसील मीरगंज जनपद बरेली की रहने वाली थी, किस तरीके से पढ़ लिख कर अपना स्वरोजगार कर रही हैं और अपनी एक नई गाथा लिख रही हैं। आज का जो विषय था बेटियां कैसे बने स्वावलंबी, हम समझते हैं इनकी बात सुनकर हमारे जो युवा हैं, युवतियां हैं, जरूर लाभान्वित होंगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोक मंजरी। प्यारे से लोकगीत सुनने के लिए फरमाइश लिखकर भेजिए आप सभी श्रोताओं ने। छावनी अशरफ खां पानी की टंकी के पास होली चौक बरेली से राम प्रसाद शर्मा, वंदना शर्मा, मनोरमा शर्मा, अजय शर्मा, वंशका शर्मा, राम प्रसाद शर्मा और इनके तमाम साथी। कस्बा मीरगंज बरेली से कल्लू भाई मिस्त्री, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद दानिश, बाबर अजीम, अनाविया फातिमा, वाहिद हुसैन, मास्टर मोविन खान। सात में है आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, इस्पाल दिवाकर, ओमिंद्र पुरी गोस्वामी, राजीव पुरी गोस्वामी और इनके तमाम साथी। जिला बदायूं ग्राम दूने नगर से ठाकुर मन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार कठेरिया, सत्येंद्र कुमार कठेरिया, गुड्डू विशाल, संगम वैभव, आदर्श आदित्य, अमित रेणु, कुमकुम निव्या सरता अंतिम और इनके तमाम साथी। बहेड़ी से अंजुम भाई, खालदा बेगम, कैकसा दानिश, आदिल सफक, मोहल्ला वक्कार फरीदी, मोहल्ला हलवाइन शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौशल और इनके तमाम साथी। मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही, स्वाति मौर्य, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुवेद अब्बासी और इनके तमाम साथी। रेगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा, लेबई से गुलाबदास मानकपुरी, लक्ष्मणपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू और इनके बहुत सारे साथी। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर जिला पीलीभीत से विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके परिवार के सभी साथी। कस्बा शीशगढ़ वरेली, इलियाज इदरीसी, नईम इदरीसी, नदीम इदरीसी, असद बाबू और इनके तमाम साथी। ग्राम नितोई औला वरेली से अच्छू बाबू लोधी, फूलन देवी, सूरज, मुकेश, हेमा लोधी, संतोषी देवी। ग्राम रंपरा के सनान मजरा सिमरिया तहसील मीरगंज बरेली से राम कुमार वर्मा, भगवान दास वर्मा, रविन्द्र वर्मा, शशि कुमार वर्मा, तेज प्रकाश वर्मा, नथुलाल वर्मा, ननके सिंह वर्मा, खेमा देवी वर्मा, प्रीति वर्मा, सोमपाल वर्मा, छोटी सी बिबिक और हिमांशी वर्मा। ग्राम नल नगरिया तहसील मीरगंज जनपद बरेली से शिका गंगवार, संजू गंगवार, शीतल शिवा, मीना देवी गंगवार, हर्षरूप गंगवार। आप सभी लोगों ने सुनना चाहा है एक प्यारा सा लोकगीत जो आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: अभी आप सुन रहे थे अपनी पसंद के लोकगीत। साथियों, अब समय ना है आपसे और बातचीत करें, और जानकारी दिलवाएं और आपका मनोरंजन कराएं। अगले कार्यक्रम में नई जानकारियों के साथ इसी समय कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हरद्वारी लाल वर्मा को दीजिए अनुमति। भैया बहनों, राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत हरद्वारी लाल वर्मा के साथ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने वाले हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कानूनी सलाह।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं मिथिलेश श्रीवास्तव और आज हमारे कार्यक्रम का विषय है मुआवजे संबंधित कानून। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एडवोकेट शैलेंद्र अग्रवाल जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: जी सर नमस्कार। सबसे पहले सरकार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने मंच पर आमंत्रित किया है।

0: के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार।
1: जी, तो सबसे पहला जो सवाल हमारे श्रोताओं के मन में उभर रहा होगा कि मुआवजे की जब हम बात करते हैं
0: जी,
1: तो किन किन क्षेत्रों में, किन किन बिंदुओं पे, किन किन क्षेत्रों में मुआवजा मिल सकता है कानूनन, कानून के हिसाब से जो है।
0: आपके प्रश्न में सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मुआवजा होता क्या है।
1: जी जी,
0: देखिए कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि घर का मुखिया किसी ऐसी दुर्घटना में मान लीजिए खत्म हो जाता है, जैसे आपदा होती है या मोटर दुर्घटना होती है या किसान होता है, किसान को सांप काट लेता है या सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें घर का मुखिया कमाने वाला चला जाता है। तो उसकी प्रतिपूर्ति हम लोग पैसे से तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन आर्थिक संकट ना आए इसके चलते हम उसको एक मुआवजा देते हैं, एक क्षतिपूर्ति देते हैं जिससे खुद कुछ हद तक उसमें सुधार लाया जा सके।
1: अच्छा,
0: कुछ तो ये मुआवजा होता है। अब आपके द्वारा पूछा गया कि मुआवजा संबंधित कानून कौन कौन से हैं।
1: उससे पहले हम ये भी जानना चाहेंगे कि फिर मुआवजे और बीमा में क्या अंतर है।
0: देखिए मुआवजा जो है वह सरकार की तरफ से दिया जाता है, बीमा जो होता है जो प्राइवेट कंपनी है या फिर नेशनल कंपनी है उनके द्वारा दिया जाता है। मुआवजा जो होता है वो बिना किसी पैसे के, आपसे कोई भी मतलब प्रतिफल नहीं लिया गया होता है, तब वो मुआवजा दिया जाता है,
1: कोई बिना प्रीमियम के, बस वो
0: जी, जी,
1: सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सामाजिक सुरक्षा जिसको कहा जाता है उसके तहत।
0: हाँ, और यही बीमा होता है, उसमें आपसे पहले प्रीमियम लिया जाता है, तब आपका रिस्क कवर दिया जाता है, तब बीमा कंपनी आपको पैसा देती है।
1: जी जी, अब किन किन क्षेत्रों में ये मुआवजा का कानून लागू होता है?
0: जी देखिए, अगर आप क्षेत्रों की बात करें तो इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। तो एक तो आपका आपदा का क्षेत्र हो गया, दूसरा मोटर दुर्घटना अधिनियम होते हैं। मोटर दुर्घटना में जैसे सड़क चलते आप देखते होंगे, आए दिन आप लोगों ने देखा होगा कि अखबारों में निकल के आता है कि दो गाड़ियां आपस में भिड़ गई, 10 लोग खत्म हो गए, 12 लोग खत्म हो गए, ड्राइवर की नेग्लिजेंस से खत्म हो गए। तो यहां पर भी आपको जो है मुआवजा मिलता है, इस क्षेत्र में भी होता है, कंज्यूमर में भी होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू है, वहां पर भी आपको मुआवजा मिलता है। तो कई सारे ऐसे विस्तृत क्षेत्र हैं जहां पर आपको पैसा मुआवजे के तौर पर दिया जाता है।
1: तो बात अब उसी क्रम में, जैसा आपने बताया उसी क्रम में करते हैं कि आपदा की बात करें
0: जी।
1: तो जैसे बाढ़ है, भूकंप है, इन सब चीजों में जो जान माल की हानि होती
0: जी,
1: है
0: जी, जी।
1: तो उसका मुआवजा जो है सरकार देती है। तो इससे संबंधित क्या कानून बने हुए हैं और कानून क्या कहता है?
0: देखिए इससे संबंधित कानून बना हुआ है, सन 2005 में बनाया गया था, आपदा प्रबंधन अधिनियम।
1: अच्छा,
0: इसमें प्रत्येक जिले में जिला आपदा कोष बनाया गया है, राज्य आपदा कोष बनाया गया है और नेशनल स्तर पर राष्ट्रीय आपदा कोष बनाया गया है।
1: अच्छा,
0: अगर आप देखेंगे तो हर जिले में एक आपदा प्रबंधन कार्यालय बना हुआ होता है। जब कभी कोई भी आपदा होती है तो आपको वहां पे आवेदन करना होता है। मोस्टली आप देखेंगे तो डीएम कार्यालय में वो इनके मुखिया होते हैं, आपको वहां आवेदन करना होता है, प्रार्थना पत्र देना होता है।
1: अच्छा,
0: आपके साथ अगर और कभी कभी मौके पे खुद सरकार के लोग या फिर डीएम या फिर आपदा प्रबंधन कार्यालय के कर्मचारी भी पहुंचते हैं और आपकी जो संभव हो सकती है वो मदद करते हैं।
1: तो इसमें एप्लीकेशन देने के साथ साथ कुछ कागजात को भी जरूरत?
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: तो क्या क्या उसमें लगाते हैं?
0: इसमें आपको जो खत्म हुआ है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र देना होता है।
1: अच्छा,
0: आप उनके बारे से यह साबित करने के लिए आपको बारिसान प्रमाण पत्र देना होता है, आपको बैंक खाता देना होता है। अगर परिवार में 10 लोग हैं तो 10 लोग अगर पैसा नहीं चाहते हैं तो बाकी लोगों का नो ऑब्जेक्शन दिया जाता है कि हमारा पैसा इस बंदे को दे दिया जाए।
1: अच्छा अच्छा, लेकिन जी जो आपने बात की डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र,
0: जी जी,
1: तो क्या आपदा में ही मृत्यु हुई है ये भी उसमें?
0: हाँ जी, हाँ जी, वो इससे ऐसे दिखाया जा सकता है पंचनामा और पोस्टमार्टम के द्वारा।
1: अच्छा,
0: जब कभी पोस्टमार्टम होता है तो उसमें कॉज ऑफ डेथ लिख के आता है कि इनकी मृत्यु आगजनी के कारण हुई है या बाढ़ में पानी डूबने के कारण हुई है या सांप काटने के द्वारा हुई है। ये सारी चीजें जो है पोस्टमार्टम में आती है, ये एक नेसेसरी कागज है कि ये आपको देना ही देना है जिससे साबित हो सके इनकी मृत्यु इस चीज में हुई है।
1: हुई है। अच्छा, इसमें अब जैसे आप एडवोकेट हैं
0: जी,
1: तो इसमें एडवोकेसी का भी कुछ रोल है, किसी एडवोकेट का की सहायता लेनी पड़ेगी?
0: हाँ जी, हाँ जी, ऐसा होता है कि जब कभी ऐसी कोई घटना हो जाती है, देखिए कि सभी लोग तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कुछ ऐसे समाज के भी हैं जहाँ पढ़े लिखे नहीं, उनको जानकारी नहीं है। तो हमारा भी प्रयास ये रहता है एज अ एडवोकेट कि निस्वार्थ भाव से या एज अ वकील समझ लीजिए कि हम उनकी मदद करें। तो हम भी उनको बताते हैं कि देखिए आपके घर में ये मुखिया आपका चला गया है, आपको सरकार द्वारा 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए जो जिस स्कीम में पैसा होता है आपको मिल सकता है। हम उन्हें दिशा निर्देश दे देते हैं कि आप ऐसा ऐसा कर लीजिए और हम आपका प्रयास करेंगे, हर संभव आपकी मदद भी करेंगे,
1: मदद कर सकते हैं। जी जी, तो इसमें क्या जैसे बाढ़ है, भूकंप है या कहीं आग लग जाए, तो इन सब में समान कानून है या कुछ अलग है?
0: देखिए कानून तो हर राज्य के अलग अलग हैं।
1: नहीं नहीं, हर आपदा के लिए
0: एक आपदा के लिए समान कानून है,
1: चाहे किसी भी तरह
0: जी जी किसी भी
1: बाढ़ हो, आग हो, कुछ भी।
0: हाँ, लेकिन एक चीज मैं इसमें बीच में आपको बताना चाहूंगा, ये ऐसा होता है कि जैसे कि सांप काटने का

0: कि मैं बताऊं, सबसे पहले हर राज्य सरकार को एक पावर दी गई है कि वो किस चीज को आपदा घोषित करें।
1: अच्छा,
0: देखिए जैसे कि अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में, COVID-19 में, तो उन्होंने कोविड को आपदा घोषित किया। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सांप से काटने वाले लोगों के, जो किसानों की मृत्यु हो रही है, उसे भी आपदा घोषित किया। उस कंडीशन में 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, और किसी और तरीके से होती है तो क्षति का आकलन किया जाता है कि इसको कितनी क्षति हुई है, कितनी सांपत्तिक क्षति हुई है, उसके आधार पर पैसा दिया जाता है। कोई पैसा फिक्स नहीं है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया, कुछ डेथ्स ऐसी हैं जिनमें पैसा फिक्स कर रखा है।
1: अच्छा, तो ये क्या ये आय वर्ग के हिसाब से भी अलग अलग होगा या सबके लिए बराबर है?
0: नहीं देखिए, वो सबके लिए बराबर है। जब सरकार अगर पैसा देती है तो सबको इक्वल देखते हुए देती है। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है या कोई अच्छी जॉब करता है तो उसको ज्यादा पैसा दे, कोई गरीब है तो उसको कम दे। अगर आपदा समान किसी घटना में, एक घटना में आपदा हुई है, तो पैसा सबको ही इक्वल दिया जाएगा,
1: सबको बराबर दिया
0: जी।
1: जाएगा। और ये क्लेम करने के लिए डीएम ऑफिस या आपदा राहत
0: कार्यालय
1: कार्यालय
0: में
1: है,
0: जी
1: वहां
0: जी
1: जाना होगा। और मेरे ख्याल से जिला स्तर पे आपदा राहत अधिकारी भी होते हैं।
0: जी जी जी
1: ठीक। अब बात आती है दूसरा पॉइंट जो आपने कहा कि
0: जी
1: सड़क दुर्घटनाओं में
0: जी
1: जो होता है,
0: जी
1: मृत्यु हो जाती
0: हाँ
1: है
0: जी
1: या विकलांगता हो जाती है,
0: हाँ जी हाँ
1: तो
0: जी
1: ऐसी स्थिति में कानून क्या कहता है?
0: ऐसी स्थिति में मोटर अधिनियम बनाया गया, अभी हाल ही में 2019 में उसको संशोधन किया गया है, जिसमें दो कानून के बारे में मैं मुख्यतः चर्चा करना चाहूंगा। इसमें दो प्रावधान दिए गए हैं, एक 163 और एक 166। अगर मैं सरल शब्दों में समझाऊं तो 163 में यह कहा गया है कि उसमें सामने वाले की गलती, यानी कि अगर किसी वाहन ने हमें टक्कर मारी है तो हमें उसकी गलती साबित नहीं करनी होती है, केवल हमें यह बताना होता है कि इस गाड़ी ने हमें टक्कर मारी है। तो वहां पे प्रावधान है 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए आपको मिलते हैं। एक प्रावधान है 166।
1: ये जो 5 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, या मृत्यु की स्थिति में है या केवल टक्कर मार देने भर से ही?
0: ये सर मृत्यु की स्थिति में है
1: मृत्यु की स्थिति
0: जी।
1: में जी
0: और
1: जी
0: दूसरा प्रावधान
1: विकलांगता आदि में नहीं, इतना
0: नहीं,
1: नहीं
0: नहीं
1: है।
0: विकलांगता में नहीं है, विकलांगता के लिए दूसरा प्रावधान है 166।
1: अच्छा,
0: वहां मरने वाले की या विकलांग व्यक्ति की उसकी इनकम कैपेसिटी देखी जाती है कि उसकी अर्निंग क्या थी और इस विकलांगता से उसको क्या क्षति हुई है,
1: अच्छा
0: क्या भविष्य में वो कितना कमा सकता था, अब वो नहीं कमा पाएगा इस विकलांगता की वजह से, या मृत्यु हुई है, वो मृत्यु में किसको कितनी हानि हुई है, इसकी इनकम क्या थी और फ्यूचर में ये क्या कमा सकता था, उसके अकॉर्डिंग 166 में जो सामने वाला वाहन जो टक्कर मारता है उसकी बीमा कंपनी से हमको पैसा दिलाना होता है और बीमा कंपनी ही पैसा देती है।
1: अच्छा,
0: अगर बीमा नहीं है तो गाड़ी का मालिक भी देता है।
1: देता है, उसके लिए हमें क्लेम करना होगा या कोर्ट में जाना होगा?
0: हाँ, उसके लिए हमको मोटर दावा अधिकरण न्यायालय बना हुआ है, वहां पे
1: अच्छा
0: क्लेम करना होता है
1: अच्छा,
0: जी।
1: मतलब उसमें क्या FIR होती है या क्या?
0: हाँ जी, सबसे पहले आपको FIR करानी होगी, FIR के साथ में ही आपको पंचनामा पोस्टमार्टम कराना होगा, उसके बाद में आपको मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण हर जिले में बना हुआ है, पहले आपके डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में या न्यायपालिका में ही होता था, अब हर जिले में बना हुआ है, ये एक अलग ट्रिब्यूनल गठित कर दिया है, अब इसको हम ट्रिब्यूनल कहेंगे, ट्रिब्यूनल गठित कर दिया है, वहां पे आपको आवेदन करना होता है। वहां आप आवेदन करते हैं कि मेरे फला फला व्यक्ति की इसकी ये एज थी, इसकी इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है और इसकी ये इनकम थी, ये काम करता था, हमको इतना मुआवजा चाहिए। तो एक इंक्वायरी सेटअप होती है, इंक्वायरी को अगर समझे तो मजिस्ट्रेट जो होते हैं वह इस पर जांच करते हैं, एविडेंस होती है, एविडेंस देते हैं, हम उनकी इनकम प्रूफ कराते हैं, उसके आधार पर डिसाइडेड होता है कि हाँ इनकी ये इनकम थी, इनको इतना पैसा दिया जाना चाहिए,
1: दिया जाना चाहिए। अब बात आती है कि दो प्रमुख हमने बिंदु पे चर्चा कर ली है, और एक पहला हमने आपदा की बात की, दूसरा जो है सड़क दुर्घटना की बात की। इस पे जानकारी दे रहे हैं शैलेंद्र अग्रवाल जी, एडवोकेट हैं, और इसके अलावा जो अन्य मुद्दे हैं उनके बारे में बताइए कि कौन कौन से और मुद्दे हैं जिन पे मुआवजा लागू होता है और किस तरह उसमें काम करता है।
0: हाँ, एक 5 लाख रुपए किसान बीमा में मिलता है,
1: किसान बीमा,
0: किसान बीमा जिसको हम कहें
1: अच्छा,
0: किसान बीमा,
1: जैसे
0: उसकी
1: उसकी फसल बारिश, ज्यादा बारिश हो गई कभी तो खराब हो गई, इस तरह से
0: हाँ
1: कुछ?
0: वो तो आपदा का है। अगर आप मान लीजिए वो उसको हम आपदा में काउंट करेंगे, अगर किसी की फसल ज्यादा बारिश से खराब हो गई है तो उसको हम आपदा में काउंट करेंगे।
1: अच्छा, कीड़े वगैरह से?
0: हाँ, उसमें क्या है, दो तरीके होते हैं, एक तो सरकार द्वारा भी राहत मिलती है और किसी किसान ने अपने बीमा का, हाँ, फसल का बीमा करा रखा है तो उसका भी पैसा मिलता है।
1: अच्छा, ये बात है, कानूनन ये है कि फसल अगर खराब हो गई तो उसमें मुआवजा मिलेगा।
0: जी जी जी
1: जी और इसके अलावा?
0: इसके अलावा आप अब खाते पे जा सकते हैं, आप खाते खोलते हैं, खाते में 12 रुपए का एक इंश्योरेंस हो रहा है, 12 से 20 रुपए कर दिया गया है
1: जी, जी, जी, जी।
0: उसमें भी किसान को जैसे लोग जागरूक नहीं है, लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे खाते से 12 या 20 रुपए कट रहे हैं, घर का मुखिया चला गया, उन्हें मालूम ही नहीं है। एटीएम का भी बीमा होता है, एटीएम का भी आपके पैसे कटते हैं, उसमें भी आपका इंश्योरेंस रहता है। अगर आप चाहें, आपको अगर

0: आपकी जानकारी है।
1: हाँ, लेकिन ये तो इंश्योरेंस होगा नहीं, मुआवजा है या इंश्योरेंस है
0: ये? सर अगर आप 12 रुपए की बात करें तो उसे हम मुआवजा ही कहेंगे, जो 12 रुपए कट रहे हैं उसे हम मुआवजा ही करेंगे। हालांकि सरकार का इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप रहता है,
1: जी जी जी,
0: तो उसमें 12 रुपए आ चुके आपके कटे हैं, तो वहाँ क्लेम आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी।
1: हाँ।
0: द्वारा सरकार।
1: अच्छा, वो मुआवजा ही है।
0: हाँ, हाँ, यानी कि बैंक और उनका सबका आपस में ज्वाइंट वर्क चलता है, आपको डायरेक्ट कंपनी नहीं देगी, पूरा प्रॉपर वर्क चलता है तब आपको मिलता है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, और इसके अलावा कुछ जो अलग डिफिकल्ट एरियाज हैं,
0: हाँ,
1: क्या उनमें भी कुछ ऐसा होता है?
0: आप जैसे हजार्डियस को ले सकते हैं, हजार्डियस मतलब खतरनाक वस्तुएं, जैसे आप फैक्ट्रीज देखते हैं, फैक्ट्री से गैसों का रिसाव होता है, या पेट्रोल का परिवहन हो रहा है, या कुछ खतरनाक वस्तुएं गाड़ियों में जा रही हैं, उसके लिए भी लोक दायित्व बीमा अधिनियम बना हुआ है, वो भी डीएम के क्षेत्र अधिकार में आता है। कोई भी ऐसी हजार्डियस वस्तु जिससे कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो उसमें भी मुआवजा का प्रावधान है, उसके लिए आपको डीएम के यहाँ आवेदन करना होता है, ऐसी परिस्थिति में भी आपको मुआवजा मिलता है।
1: अच्छा, उसमें मान लीजिए कर्मचारी का या वर्कर का
0: जी जी
1: बीमा नहीं है, जो आमतौर पे जो प्राइवेट कंपनियों से होता है, बीमा नहीं है, तब भी जो कानून के तहत है वो बीमा मिलेगा?
0: हाँ जी, उनको बिल्कुल मिलेगा, मुआवजा मिलेगा उनका। अगर बीमा नहीं भी कराया गया है तो ये ऑनर ऑफ गुड्स या हैजार्डियस व्हीकल का जो ऑनर है उसकी जिम्मेदारी थी कि वह उनका बीमा कराता, अगर उन्होंने इस चीज में नेग्लिजेंट की है, बीमा नहीं कराया है, तो ये दायित्व उनके ऊपर आएगा।
1: तो उसमें डीएम के पास जाएंगे तो क्या जो उनको मुआवजा मिलेगा सरकार की तरफ से मिलेगा या जो कंपनी के मालिक होंगे उनसे वसूल के दिया जाएगा?
0: दोनों स्थितियां हैं।
1: जी जी,
0: एक स्थिति ऐसी है कि मान लीजिए कोई सरकारी उपक्रम चल रहा है, तो उस कंडीशन में अगर कोई दुर्घटना घटित हो रही है तो वहां तो आपको मुआवजा डीएम सरकार के थ्रू आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट तौर पे देखें, जैसे पेट्रोल का परिवहन हो रहा है, तो वो तो कोई प्राइवेट व्यक्ति ही कर रहा है, प्राइवेट गाड़ी से ही हो रहा है,
1: बिल्कुल।
0: तो अगर उस कंडीशन में आप समझे कि पेट्रोल का रिसाव हो गया और आग लग गई, तो वहां पे उसकी जिम्मेदारी गाड़ी मालिक पे, इंश्योरेंस पे, डीएम साहब ये तय करेंगे कि किसकी नेग्लिजेंस रही है, किस वजह से ये कार्य हुआ है, कैसे ये दुर्घटना घटित हुई है। नेग्लिजेंस निकल के आती है कि हाँ ये ऑनर की नेग्लिजेंस थी, तो चूंकि अगर इंश्योरेंस होगा तो ऑनर के बिहाफ पे इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी उस चीज को,
1: कंपनी पे करेगी। इसके अलावा जो आम तौर पे सड़कों पे चलते हैं ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर खास तौर पे, क्या उनके लिए भी कुछ मुआवजे का प्रावधान है?
0: हाँ जी बिल्कुल है
1: जी।
0: अगर ट्रक ड्राइवर, चूंकि वो ऑन ड्यूटी है, किसी ना किसी का वो एम्प्लॉई है, तो मालिक की ये जिम्मेदारी रहती है कि वो अपने एम्प्लॉई की रक्षा करे, उसके हितों का ध्यान रखे, उसका बीमा करा के रखे, क्योंकि रोड पे चल रहे हैं, कब उनके साथ कौन सी घटना हो जाए कुछ नहीं पता, तो ये हमारी भी या मालिक की जिम्मेदारी है कि वो अपने सभी एम्प्लॉयों का हमेशा इंश्योरेंस करा के जरूर रखें। तो जैसे कि आपके द्वारा पूछा गया है कि क्या ड्राइवर का भी कुछ रहता है, तो ऐसी कंडीशंस में ड्राइवर के लिए हम अगर बात करें तो ड्राइवर के लिए लेबर कोड बना हुआ है।
1: अच्छा,
0: लेबर कोड बना है, वहां पे भी ये प्रावधान दिया हुआ है कि अगर किसी एक्सीडेंट में ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है, या ड्राइवर की जगह अगर हम कोई भी एम्प्लॉय समझ लें, अगर वो कर्मचारी की श्रेणी में है, तो वह भी अपने मालिक से, अगर उसकी ऑन ड्यूटी मृत्यु होती है, तो वह भी अपने मालिक से क्लेम लेने के लिए लेबर कोर्ट में आवेदन कर सकता है।
1: अच्छा अच्छा, मालिक से क्लेम करने के लिए लेबर कोर्ट में आवेदन कर सकता है, और सरकार जो है न्यायालय आदेश करेगा कि हाँ भाई इनको इतना मुआवजा दिया
0: जाए। हाँ जी, क्योंकि हम उनके एम्प्लॉय थे और वो उनकी जिम्मेदारी थी हमारा इंश्योरेंस कराने की, अगर चूंकि उन्होंने इंश्योरेंस नहीं कराया है तो अब भी पैसा उनको ही देना पड़ेगा, मालिक को
1: देना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये सब थी मुआवजे की कई सारे जो कानूनी पहलू हैं, कौन कौन से मुआवजे होते हैं जो कानूनी तौर से लागू हैं, और किसी भी स्थिति में जहां पर नुकसान हो रहा है जान और माल का, वहां पे ये क्लेम करके मुआवजे का फायदा उठाया जा सकता है, यही बता रहे थे एडवोकेट शैलेंद्र अग्रवाल जी। हम उम्मीद करते हैं कि सभी सुनने वाले इससे जरूर लाभान्वित होंगे। एडवोकेट शैलेंद्र अग्रवाल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी जी, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानूनी सलाह, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर।

श्रोताओं, खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में आवश्यक सूचना सुनिए। सुगनी पत्नी सत्यवीर, निवासी धमदीपट्टी नगरिया खनु, थाना हजरतपुर जनपद बदायूं, आयु लगभग 22 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ, चेहरा गोल, आंख नाक कान औसत हैं, काले बाल हैं व इकहरा मजबूत जिस्म है। इन्होंने लाल फैंसी चप्पल और साड़ी पहनी हुई है। ये 8 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनके विषय में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर कृपया संपर्क करें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं।

0: श्रोताओं, खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक और आवश्यक सूचना सुनिए। पार्वती पुत्री मेवाराम, निवासी पक्काबाग थाना कोतवाली जनपद बदायूं, आयु लगभग 14 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ, आंख नाक कान औसत हैं, बाल काले हैं व इकहरा मजबूत जिस्म है। इन्होंने नीली टी शर्ट पहनी हुई है व पैरों में चप्पल पहनी हुई है। ये 5 मार्च 2026 से लापता हैं। इनके विषय में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर कृपया संपर्क करें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी आवश्यक सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में मंगलवार दिनांक 9 जून 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है समय से पूर्व पैदा हुए अथवा प्री टर्म बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे सोमवार दिनांक 8 जून 2026 को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर से सुन लें। समय से पूर्व पैदा हुए अथवा प्री टर्म बच्चों की गंभीर बीमारियों और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, सोमवार दिनांक 8 जून 2026 को शाम 4 बजे से, और हमारा टेलीफोन नंबर है 2517200। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:18 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: मैं बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता हूं।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
5: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
6: सुगंध, क्या हो रहा है?
5: बिल हो रहा है।
6: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
7: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूर्ख व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में विकास कार्यों की सराहना की। कहा, रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है राजधानी। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए कल से 10 जून तक आयोजित होगी भर्ती परीक्षा। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच चलाई 2 विशेष ट्रेनें। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए है दृढ़ संकल्पित। और मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में अगले 2 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की जताई आशंका। बुंदेलखंड में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र के मंडलेक में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लखनऊ निरंतर विकास की राह पर अग्रसर है। रिंग रोड के निर्माण से जहां यातायात व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, वहीं कानून व्यवस्था भी दुरुस्त हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कानपुर देहात के अकबरपुर में प्रबुद्ध वर्ग से संवाद किया और केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक कर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी संवाद किया और संगठन से मजबूती के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। श्री चौधरी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंडल स्तर तक योग शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
1: भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव काम करता रहता है, 365 दिन काम करता है, चुनाव हो या चुनाव ना हो। यह सही है कि चुनाव जब आता है तो थोड़ा सा और रणनीति चेंज करनी पड़ती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और जो 12 साल तक प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और जो 10 साल तक योगी जी ने काम किया है, उन दोनों कार्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश में 2017 से भी बड़ा बहुमत लेकर के हम चुनाव जीतेंगे।
0: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने वाराणसी में पत्रकार वार्ता में कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक मामले पर सख्त कार्रवाई कर रही है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व सबको साथ में ले जाने वाला नेतृत्व है, देश के विकास का नेतृत्व है। किसान है, गरीब है, महिला है, युवा है, सबको न्याय देने वाला उनका नेतृत्व है। उनके पास मेजोरिटी है और नीट एग्जाम में जो भी मतलब गड़बड़ हुई है, नीट घोटाले में या नीट पेपर भुट्टी में जो भी लोग है, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में जन संवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने ग्राम पंचायत नौहा के लखौली गांव में नल से जल योजना के तहत जलापूर्ति न होने के मामले को गंभीरता से लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए कल से 10 जून तक 75 जिलों में 1180 केंद्रों पर 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया है कि ये परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी।

0: पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: भर्ती परीक्षा में 32,000 से अधिक पदों के लिए 30 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की भागीदारी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच 2 विशेष अनारक्षित ट्रेनें चलाने का फैसला

0: दो विशेष अनारक्षित ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। अभ्यर्थी बिना टिकट बुकिंग के आसानी से यात्रा कर सकेंगे। वहीं परिवहन निगम रियायती दरों पर परीक्षार्थियों को सेवा उपलब्ध कराएगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केंद्र और प्रदेश सरकार इसे मजबूत बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने आज आगरा में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन में कहा कि देश की जनता के आशीर्वाद से 10 जून को सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त होगा।
2: 10 जून को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार हमारी चल रही है, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने का गौरव देश की जनता की आशीर्वाद से उनको प्राप्त हुआ है। मैं इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और यह देश के लिए गौरव की बात है। और अभी हम मानते हैं कि 2029 तक ही नहीं, आगे भी अभी कई चुनावों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हम सबका नेतृत्व करेंगे और देश को विकसित बनाएंगे। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश।
1: प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने आज मऊ में मधुबन क्षेत्र स्थित इंदिरा गांधी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में एडीप और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत 2500 से अधिक दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क ट्राई साइकिल और अन्य सहायक उपकरण का वितरण किया। देवरिया में केंद्र सरकार के सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने खनुआ नदी में बृहद स्वच्छता एवं सफाई अभियान चलाया। इस दौरान नदी से शैवाल जलकुंभी अवशेष पदार्थ को नाव जेसीबी की मदद से साफ किया गया। कृषि मंत्री ने वृक्षारोपण भी किया। अभियान में SDRF और PSC 26वीं वाहिनी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल ने भाग लिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
3: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और LPG की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू LPG उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। लखनऊ में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 979.50 रुपए हो गई है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने कल से अगले दो दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की आशंका जताई है। इस दौरान बुंदेलखंड और प्रयागराज में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी जिलों में 10 जून से कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 जून से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में विकास कार्यों की सराहना की। कहा, रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है राजधानी। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए कल से 10 जून तक आयोजित होगी भर्ती परीक्षा। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच चलाई दो विशेष ट्रेनें। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत

0: तो बनाए रखने के लिए है दृढ़ संकल्प। और मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में अगले दो दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की जताई आशंका। बुंदेलखंड में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: Hey guys,
2: hi, congratulations.
1: आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क
4: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जनमंच। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे परिचर्चा। संयुक्त परिवार की अवधारणा आज के परिपेक्ष में प्रतिभागी होंगी सरा मरियम, फहमीना और मेहनाज। संचालन है मिथिलेश श्रीवास्तव का।
5: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं मिथिलेश योगेंद्र और जनमंच कार्यक्रम में जैसा कि आपको पता है हर बार किसी न किसी खास विषय पे हम आपके बीच से ही कुछ लोगों को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके विचार जानते हैं, अनुभव जानते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे स्टूडियो में 3 नारी शक्तियां हैं, तो आइए जानते हैं उनका परिचय, कौन है और क्या करती हैं। तो सबसे पहले आप बताइए अपने बारे में कुछ।
6: मेरा नाम सारा मरियम है।
5: और क्या करती हैं आप?
6: मैं एक हाउसवाइफ हूँ।
5: हाउसवाइफ हैं
6: जी।
5: ठीक ठीक, और आप बताइए।
7: मेरा नाम मेहनाज अब्बास है और मैं हॉस्पिटल में आयुष्मान का काम करती हूँ।
5: हॉस्पिटल में आयुष्मान का?
7: जी।
5: अच्छा, मतलब जो जितने मरीज आते हैं उनकी हेल्प करती हैं, आयुष्मान कार्ड में जो भी डिटेल्स होती हैं,
7: अप्रूवल उनका
5: जी। क्या बात है। और आप?
8: मेरा नाम फहमीना हुसैन, मैं नर्सिंग करती हूँ।
5: नर्सिंग करती
8: जी
5: है?
8: और स्टूडेंट भी हूँ, स्टडी भी चल रही है
5: नर्सिंग की ही।
8: जी।
5: अच्छा अच्छा, क्या बात है। हमारे पास 3 बेहद खास मेहमान हैं और एक तरह से आप हाउसवाइफ हैं और आप दो लोग हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, नर्सिंग। और इंटरेस्टिंग तो खैर आपका भी है, आयुष्मान की बात की आपने, तो पहले तो हमारे श्रोताओं को आप खुद आयुष्मान के बारे में कुछ बता दीजिए। आयुष्मान कार्ड कैसा है, आयुष्मान भारत योजना क्या है?
7: आयुष्मान एक बहुत अच्छी स्कीम सरकार की तरफ से चली है जो गरीबों की भी मदद करती है, जिसमें फ्री इलाज होता है, सारी सुविधाएं फ्री होती हैं।
5: तो क्या ये सरकारी अस्पताल में ही होता है या प्राइवेट में भी?
7: प्राइवेट में भी होता है, जो हॉस्पिटल स्कीम ले ले।
5: जो स्कीम ले ले
7: जी।
5: तो उसमें मान लीजिए किसी को फायदा उठाना है तो क्या करना होगा, कैसे क्या करना होगा, एकदम शुरू से बता दिए ताकि हमारे बहुत सारे श्रोता हैं। आयुष्मान आजकल के समय में बहुत लोगों के पास होगा भी, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते होंगे ये क्या है, तो एकदम शुरू से बताइएगा।
7: आयुष्मान के लिए सबसे पहले हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, आयुष्मान ऑपरेशन कराने के लिए आयुष्मान कार्ड होना चाहिए।
5: कार्ड होना चाहिए, तो वो और कार्ड कैसे बनेगा?
7: वो कार्ड डिस्ट्रिक्ट में बनता है।
5: और उसके लिए क्या चाहिए होगा?
7: उसको डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड होना चाहिए, उसका आधार कार्ड और राशन कार्ड।
5: राशन कार्ड भी होना चाहिए।
7: राशन कार्ड तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
5: अच्छा अच्छा, ये होने पे फिर आय की भी सीमा है?
7: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
5: अच्छा, किसी भी आय वर्ग के लोग आयुष्मान कार्ड में बन सकता है।
7: जी, बन सकता
5: है। चलिए, अब बात आती है कि जैसे हॉस्पिटल में कोई गया और आयुष्मान कार्ड के जरिए ही उसको इलाज करवाना है तो कैसे क्या करना होगा?
7: तो सबसे पहले उसको अपना आयुष्मान कार्ड देना है, जिसे PMJ लेटर भी कहते हैं।
5: PMJ लेटर
7: जी। और राशन कार्ड देना है और आधार कार्ड, ये तीनों चीजें मिलने से उसका फिंगरप्रिंट लिया जाता है।
5: अच्छा,
7: सबसे पहले ये होता है।
5: हुँ।
7: फिर उसको मतलब फिर हो गया जी, रजिस्ट्रेशन हो गया, वो किसी और हॉस्पिटल में नहीं जा सकता।
5: अच्छा, उसी हॉस्पिटल में
7: जी, मतलब वो उस टाइम के लिए इसमें हो गया।
5: ठीक है।
7: फिर उसके बाद अप्रूवल, जब ऑपरेशन का टाइम आता है तो उसको अप्रूवल दिलाने के लिए उसके सारे नोट्स चाहिए होते हैं।
5: अच्छा।
7: क्लिनिकल नोट्स।
5: हाँ,
7: वगैरह
5: तो एक
7: जी जी, वो सारे उसमें डॉक्यूमेंट
5: कराया
7: जी जी।
5: ठीक है, उसके बाद फिर उनको
7: जैसे गवर्नमेंट अप्रूवल वो कर देती है, अप्रूव कर देती है, वैसे उनका ऑपरेशन होता है स्टार्ट।
5: तो क्या इनके आयुष्मान कार्ड के धारकों के लिए हॉस्पिटल में बेड आरक्षित होते हैं या फिर जो भी पहले आए उसको मिल जाएगा ऐसा कुछ?

0: नहीं आरक्षित होते
1: आरक्षित
0: हैं
1: होते हैं, कुछ
0: जी,
1: कुछ जो है बेड्स उन्हीं के लिए होते हैं।
0: नहीं कोई
1: हाँ
0: भी बेड है, मतलब जैसे
1: कोई भी
0: नॉर्मल,
1: बेड, कोई भी बेड उनको
0: जी
1: मिल
0: जी
1: जाएगा,
0: नॉर्मल जैसे हर पेशेंट आते हैं वैसे उनको मिल
1: वैसे ही
0: जाएगा
1: मिल जाएगा।
0: जी।
1: ठीक। चलिए ये बात तो रही, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना भी दे दी तमाम श्रोताओं को। और बात आते हैं, जैसे आप तीनों हमारे स्टूडियो में आई हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और उसके बाद हम बात करते हैं जैसे इस समय महिलाओं की स्थिति किस तरह से देखती हैं आप समाज में। सबसे पहले आप मरियम जी, आप बताएं, खासतौर पे एक हाउसवाइफ के रूप समाज में महिलाओं की कैसी स्थिति है।
2: समाज में इस टाइम महिलाओं की स्थिति ये है कि थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए काम के लिए अपना, जो
1: हाँ
2: हाउस वाइफ है तो वो काम भी कर सकती है,
1: काम भी कर
2: काम भी
1: सकती
2: कर
1: है,
2: घर का भी करे और इंडिपेंडेंटली जॉब भी कर सके,
1: जॉब
2: वो
1: भी कर सकती
2: जॉब
1: है,
2: भी कर सकती
1: थोड़ी
2: है।
1: छूट मिले।
2: जी
1: जैसे
2: जी छूट
1: अपनी बात करें, आपके बारे में बात की जाए,
2: जी
1: तो कई बार होता है कि घर के कामकाज से ही समय नहीं मिल
2: जी
1: पाता है,
2: जी
1: आपको
2: जी
1: भी समय नहीं मिल
2: जी
1: पाता
2: जी
1: होगा,
2: जी
1: तो क्या आप सोचती हैं कि हाँ मैं बाहर भी कुछ काम करती,
2: जी अभी फिलहाल मैं सोचती हूँ
1: सोचती
2: और
1: हैं
2: जी
1: लेकिन समय ही नहीं मिल
2: समय
1: पाता।
2: नहीं मिलते क्योंकि अभी फिलहाल भी मेरी शादी हुई है,
1: अच्छा
2: ज़्यादा
1: अच्छा
2: टाइम नहीं हुआ है
1: ज्यादा
2: मेरी,
1: टाइम नहीं हुआ,
2: ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 ईयर ही हुआ है मेरी
1: 1 ईयर
2: शादी,
1: हुआ
2: वन
1: है,
2: ईयर हुआ है।
1: तो मतलब उस
2: तो
1: कुछ समय बाद आप
2: जी जी जी फिलहाल
1: सोचेंगी, तो
2: फिलहाल
1: फिर
2: आगे
1: आपने
2: मैं
1: पढ़ाई
2: सोचूँ,
1: पढ़ाई क्या की है,
2: मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया
1: फैशन
2: है
1: डिजाइनिंग की है, क्या
2: जी,
1: बात है, तो इसके बारे में कुछ बताइए, कहाँ से किया आपने,
2: मैंने दिल्ली से फैशन डिज़ाइनिंग किया है।
1: जो निफ्ट है वहां से
2: नहीं
1: किया,
2: नहीं नहीं
1: अच्छा किसी और से किया,
2: किसी और से
1: चलिए
2: जी
1: कोई नहीं। तो फैशन डिजाइनिंग के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए क्या है और इसमें करके फिर क्या कर सकते हैं लोग।
2: फैशन डिज़ाइनिंग भी ये है कि आप अपने अलग अलग डिज़ाइंस बना के
1: हाँ
2: उनको शोज शो पर रैंप उतार सकते हैं, आगे जाके डिज़ाइंस
1: हाँ
2: बनाना, अपना अलग अलग तरह के अपना यूनिट खोल सकते हैं, आगे जाके अपना थोड़ा सा अपना ये एस्टेब्लिश हो सकता है। उसमें यह है कि आप अपना अलग से कुछ भी कर सकते हैं,
1: जैसे
2: डिज़ाइन
1: बुटीक,
2: जैसे जैसे बुटीक खोल सकते हैं अपना, किसी भी एरिया में जाके स्टिचिंग का अलग से अपना ये हो सकता
1: ये
2: है
1: हो सकता है,
2: जी।
1: तो क्या ऐसा सोच रही हैं करने का,
2: जी जी मैंने सोचा है अपना अलग से यूनिट खोलने का
1: तो इसमें कैसे क्या किया जा सकता है, जैसे आपने आप एकदम
2: जी।
1: शुरुआत कर रही हैं तो आपने क्या प्लान किया है, कैसे, पहले तो सबसे पहली चीज होती है कि पैसा जो
2: सबसे
1: भी
2: पहले
1: कुछ
2: जी जी जी
1: व्यवस्था।
2: जैसे इन्होंने अभी पहना बुरखा पहना हुआ है तो हम इस टाइप के देखेंगे कि ये
1: हाँ
2: किस तरह के कपड़े पहनती हैं, ये हमें ये भी देखना होता है उसमें। अब ये भी है जैसे कि थोड़ा सा वो खड़ी हुई है जैसे वो एंकर हैं, तो एंकर हमें हमें बता देखना वगैरह कि एंकर किस तरह के कपड़े पहनती है,
1: किस
2: अब
1: तरह,
2: बैकग्राउंड कैसा है पीछे का,
1: अच्छा
2: क्या चीज़ है, हेयर
1: तो
2: कैसे होने चाहिए, मेकअप कैसा होना चाहिए उसका,
1: ये सब कुछ
2: ये
1: फैशन
2: सब उस
1: टेक्नोलॉजी में
2: फैशन
1: होता
2: में आता है, ये
1: है,
2: सब
1: अच्छा मतलब सिर्फ कपड़ों तक सीमित
2: कपड़ों
1: नहीं,
2: तब से
1: सीमित
2: नहीं है,
1: नहीं
2: हर
1: है,
2: चीज़ एक एक
1: पूरी
2: चीज़
1: टेक्नोलॉजी
2: पूरी
1: है।
2: टेक्नोलॉजी
1: जी,
2: जी
1: अब इसमें जैसे अब आप बिजनेस शुरू करेंगी
2: जी
1: तो कितने पैसे लगने की इसमें उम्मीद है,
2: इसमें कम से
1: कम से कम
2: कम आप 1 लाख
1: 1 लाख चाहिए
2: जी
1: उसमें,
2: जी जी वन
1: उससे
2: लाख
1: आप शुरुआत कर
2: वन
1: सकते हैं।
2: लाख एक तो होना चाहिए आप ही के हाथों हैंड में होना चाहिए,
1: हाँ
2: एक
1: हाँ
2: होना चाहिए पीछे
1: हाँ अच्छा
2: आपके स्पैर में होना चाहिए
1: हाँ हाँ
2: 1 लाख रुपीज़ की, कि एटलीस्ट अब कुछ हमें कुछ प्रॉब्लम हो गई या कुछ ऐसा हो गया तो हमारे पास होनी चाहिए
1: सही बात है,
2: जी
1: तो बिल्कुल ये व्यवसाय
2: जी जी
1: आप शुरू करने की मंशा भी रखती
2: जी
1: हैं, तो इससे बहुत सारे हमारे श्रोताओं को एक उम्मीद भी जगी।
2: जी
1: आपने
2: जी
1: शुरू में
2: जी
1: बताया कि आप हाउसवाइफ हैं, तो
2: जी
1: यही बात है, हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनमें छुपी हुई प्रतिभा है,
2: जी
1: उसको जाहिर, जैसे आपने इस मंच पे आके भी जाहिर नहीं किया, पहली बार में जाहिर नहीं किया,
2: जी जी
1: तो आप क्या मानती हैं, आप जैसे आप बता रही थी आप भी हॉस्पिटल में काम करती नर्सिंग,
2: जी
1: तो उसके अपने प्रोफेशन के बारे में कुछ बताइए, कैसे आपने कहाँ से पढ़ाई की और कैसे आपने ये जॉब हासिल की।
0: बेसिकली बचपन से ही मुझे डॉक्टर बनने का शौक था,
1: अच्छा
0: लेकिन थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मेरी स्टडी वैसे हो नहीं पाई।
1: अच्छा हाँ MBBS वगैरह नहीं हो
0: जी
1: पाई,
0: जी तो
1: ठीक है,
0: अभी थोड़े टाइम पहले मतलब मैंने अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करी, थोड़ा मेडिकल लाइन में गई,
1: अच्छा
0: सीखा वहाँ से थोड़ा काम, 2 साल हो गए मुझे मेरी इंटर्नशिप करते हुए।
1: अच्छा
0: अब
1: अच्छा
0: उसके बाद मैंने अब BAMS में एडमिशन लिया है
1: अच्छा अच्छा
0: जी, अब मेरी पढ़ाई कंटिन्यू हो गई फिर से
1: कंटिन्यू हो गई, मतलब
0: जी।
1: BAMS आयुर्वेदिक वाला,
0: BAMS मेडिकल लाइन वाला, गायनी
1: अच्छा
0: गायनेकोलॉजिस्ट
1: गायनी वाला, अच्छा
0: जी
1: ये बात है, और आप नर्सिंग का काम भी कर रही हैं,
0: जी
1: तो वो
0: उसको दो
1: आपने
0: साल हो
1: उसके
0: गए,
1: लिए कोई कोर्स आपने किया या फिर कहीं से
0: उसके
1: सीखा
0: लिए
1: है।
0: मैंने BSc करी थी, उसी के थ्रू हो गया
1: BSc इन
0: था।
1: नर्सिंग,
0: नहीं, नॉर्मल BSc
1: नॉर्मल
0: ऑनर्स की
1: BSc,
0: थी
1: अच्छा,
0: जी
1: तो फिर नर्सिंग में बेसिकली देखा जाए तो हर कोई जानता है कि हाँ भाई नर्स वो होती है ना, लेकिन बेसिकली नर्सेज की

0: क्या चैलेंजेस हैं ये बताइए।
1: बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, अक्सर पेशेंट आते हैं, पेशेंट को हैंडल करते हैं अपने तरीके से, अपना 100% देते हैं, लेकिन जो पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं वो सोचते हैं कि जैसे हम उनकी केयर ढंग से नहीं कर पा रहे
0: नहीं
1: हैं,
0: कर रहे।
1: अक्सर वो लड़ते हैं, एग्रेसिव हो
0: हाँ
1: जाते हैं, तो हमें पेशेंस रखना पड़ती है बहुत ज़्यादा,
0: हाँ
1: समझाना उनको, एक्सप्लेन करना एक एक चीज़ उनको, हम बताते हैं कि आपके पेशेंट अभी सेंसिटिव है, उससे दूर रहना है, वो उस
0: हाँ
1: चीज़ को गलत वे में लेके जाते हैं,
0: जी जी
1: तो अक्सर उनकी ट्यून भी चेंज होती है, अक्सर फाइट भी होने के चांसेस रहते
0: सही
1: हैं, तो उसको
0: बात
1: बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ता है, बहुत ज्यादा पेशेंस रखने पड़ते हैं।
0: सही बात है। तो हम अपने सभी श्रोताओं को बता दें जिन्होंने देर से रेडियो ट्यून किया है, कार्यक्रम चल रहा है जनमंच, और हम बात कर रहे हैं तीन नारी शक्तियों से। हमारे बीच तीन लोग हैं, एक फैशन डिजाइनर हैं कहा जाए तो, और एक जो है हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड धारकों को हेल्प करती हैं, उनकी उनको सेवाएं देती हैं, हॉस्पिटल फील्ड से जुड़ी हैं। तीसरी जो शख्सियत हैं वो भी वो नर्सिंग से जुड़ी हैं और साथ में अभी मेडिकल की पढ़ाई भी कर रही हैं। अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे जो हॉस्पिटल में आप काम करती हैं, हॉस्पिटल में महिलाओं के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं इस समय? क्या महिलाएं इस फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में आसानी से जा सकती हैं, अपना करियर बना सकती हैं,
1: इजिली
0: क्या कोई
1: बना
0: चुनौतियां
1: सकती
0: हैं?
1: हैं, चुनौतियां तो हर एक काम में है,
0: हाँ, महिलाओं के लिए तो हर जगह
1: महिलाओं के लिए तो हर जगह है, क्योंकि उन्हें ये कहा जाता है तुम नहीं कर
0: तुम
1: सकती,
0: नहीं
1: तुम
0: सकती,
1: ये नहीं कर सकती,
0: आपको भी फेस करना पड़ा है,
1: जी करना पड़ता है,
0: करना
1: पर
0: पड़ता है, मतलब अभी भी करना पड़ रहा है।
1: अभी मेरी स्टार्टिंग ही है,
0: अच्छा,
1: 1 month हुआ है, मेरे दोस्त ने ही मुझे बुलाया है, जी
0: ठीक। और बात की जाए घर से पांव बाहर रख के कुछ अर्निंग के लिए, जॉब करने के लिए, ये जो फैमिली से चुनौती भी सामना करना पड़ता है, ऐसा कुछ
1: नहीं,
0: है?
1: मुझे ऐसा
0: फैमिली
1: कोई
0: सपोर्ट
1: भी,
0: है पूरा,
1: फैमिली को कोई प्रॉब्लम
0: पूरे
1: नहीं, आप
0: ध्यान।
1: जॉब करिए मत करिए,
0: हाँ,
1: जैसे आप मतलब मेरी जैसे लाइफ है मैं वैसे
0: वैसे
1: वेक
0: जी सकती
1: जी
0: हैं,
1: मैं वैसे जी
0: सोसाइटी
1: सकती,
0: को
1: सोसाइटी से मुझे मतलब नहीं है,
0: मतलब नहीं है। हाँ, समाज वाले चाहे जो करें मैं वही
1: जी
0: करूंगी, तो
1: मेरी
0: मुझे अच्छा
1: फैमिली बस
0: लगता है,
1: सपोर्टिव
0: फैमिली
1: है,
0: सपोर्टिव है बस।
1: जी
0: चलिए, आपने यही फील्ड क्यों चुना?
1: मुझे इंटर्नशिप आई उसमें करनी थी डाइटिशियन में, मैंने क्योंकि एमएससी
0: डाइटिशियन,
1: डाइटिशियन करा है, फूड
0: एमएससी
1: एंड न्यूट्रिशन,
0: डाइटिशियन किया आपने,
1: जी फूड एंड न्यूट्रिशन से, लेकिन बरेली में इसका बहुत कम वो है,
0: स्कोप कम है।
1: स्कोप बहुत कम है,
0: हाँ,
1: लखनऊ में मैंने ट्राई करा है और दिल्ली में भी करा, लखनऊ में भी मेरी बात चल रही है,
0: अच्छा,
1: लेकिन वही है कि कल लौट के तो मुझे बरेली आना है, तो
0: हाँ,
1: यहाँ पे उसका कोई स्कोप नहीं है,
0: सही बात है।
1: इसलिए
0: तो डाइटिशियन का आपने, एमएससी डाइटिशियन किया
1: जी
0: आपने,
1: फूड एंड न्यूट्रिशन से
0: तो कुछ आप इसके बारे में बताइए, क्या है, कैसे हम लोगों को क्या डाइट रखनी चाहिए?
1: बैलेंस डाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में, जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ऐसा फूड लेना चाहिए जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उनके बैलेंस डाइट में होना चाहिए नॉर्मली, तो ये तो सबसे ज़्यादा एग में होता है प्रोटीन
0: प्रोटीन
1: नॉर्मल,
0: एक
1: और
0: में।
1: एग तो हम लोग को डेली ही लेना चाहिए, ये तो नॉर्मली
0: हाँ,
1: इंसान
0: लेकिन
1: में
0: कई
1: होता
0: सारे
1: है,
0: लोग जो है नॉनवेज नहीं खाते हैं, एग को नहीं
1: हाँ
0: मानते हैं या
1: जी
0: नॉनवेज,
1: जी
0: तो अगर कोई
1: उसके
0: वेज मतलब
1: अलावा
0: वेजिटेरियन हो तो
1: डेरी प्रोडक्ट्स हैं,
0: डेरी प्रोडक्ट।
1: डेरी प्रोडक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं,
0: दूध और
1: जी
0: दूध से बनी चीजें
1: जूं
0: ज्यादा से
1: दूध से
0: ज्यादा
1: बनी,
0: यूज करनी चाहिए।
1: जी
0: बाकी कहा जाता है शाम के बाद कम खाओ या ना खाओ, तो ये भी है
1: जी
0: आपके बारे
1: बिल्कुल
0: में?
1: ऐसा है, 6 बजे के बाद कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन आजकल लोग इतनी लेट सो रहे हैं कि वो खाते हैं, दो
0: खाते
1: दो
0: ही
1: बजे
0: हैं,
1: खाते
0: बिल्कुल
1: हैं,
0: बिल्कुल सही
1: पिज्ज़ा चाउमिन ये सब खाते हैं रात में, तो
0: सही बात
1: इसलिए वैसे तो रात में दूध पी के ही खाली सोना चाहिए, और दूध पीना तो रात में ही चाहिए,
0: है, रात में पीना
1: जी
0: चाहिए। गर्म दूध या ठंडा दूध?
1: नॉर्मल, ना गर्म ना ठंडा,
0: अच्छा,
1: नॉर्मल, और ना चीनी भी ना डाले,
0: चीनी नहीं डालें
1: हाँ
0: क्योंकि
1: चीनी,
0: उसमें नेचुरल मिठास होती
1: जी
0: है।
1: जी इसलिए,
0: और आपने नाइट वाली बात की है ना, कि
1: जी
0: रात में बहुत देर तक जगते हैं लोग, तो ये भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है।
1: बहुत है, हमारा ब्रेन अंदर से धीरे धीरे खत्म होता जाता है, खोखला होता जाता है
0: खोखला हो जाता
1: दिमाग हमारा,
0: है, उसकी वजह से कुछ चिड़चिड़ापन वगैरह भी हो
1: जी
0: जाता है।
1: बिल्कुल, और ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, बहुत जिंदगी में बहुत चेंजेस आ जाते हैं, सुस्ती आ जाती है, काम में आलस आता है, ये सब चीजें लाइफ में बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है,
0: हाँ, हॉस्पिटल में आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा जो इस तरह के केसेस कभी आए?
1: ये मेरे टाइम पे तो अभी मतलब
0: नहीं
1: जैसे
0: आए
1: नहीं
0: हैं
1: आई
0: अभी,
1: है, जी
0: कोई बात नहीं। आम तौर पे अगर किसी के आसपास कुछ ऐसी घटना हुई हो, कुछ बताना चाहें आप?
1: हाँ, इसकी वजह से माइग्रेन का दर्द भी होता है, जो मेरे साथ भी कभी कभी, पहले मैं नहीं उठती थी, जब से जॉब स्टार्ट करी है तो मैं टाइम से उठने
0: टाइम
1: लगी हूँ,
0: सुबह टाइम से उठती
1: जी जी अब उठने लगी
0: हैं
1: हूँ, मैं भी बहुत लेट उठती थी, जिसकी वजह से माइग्रेन अभी भी मुझे होता है,
0: क्या बात
1: माइग्रेन
0: है।
1: और सर्वाइकल का पेन रहता है मेरे,
0: अच्छा,
1: जी
0: वो तो अब धीरे धीरे आपने आदत बदली है तो ठीक हो
1: जी जी अब धीरे
0: जाएगा।
1: धीरे आदत
0: जी
1: बदली
0: जी
1: है, तो
0: आप कुछ बताइए मरियम जी, कि जैसे आप फिलहाल तो हाउस वाइफ हैं,
1: जी

0: रूटीन रखती हैं घर के सभी लोगों का? आपका अपना तो एकदम स्ट्रिक्ट रहता ही होगा,
1: जी
0: घर के सभी लोगों का सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, ये सब रहता
1: जी
0: है?
1: जी सुबह जैसे सुबह मॉर्निंग में उठ जाती हूँ मैं 8 o'clock।
0: अच्छा,
1: जी, उसके बाद अपने और काम करना घर के। एक
0: हम्म।
1: छोटा बेबी भी है मेरा 2 months का।
0: 2 month का?
1: जी
0: अच्छा, तो बहुत मुश्किलें आती होंगी।
1: जी जी जी नहीं, मेरी मदर लॉ बहुत सपोर्टिव है।
0: अच्छा,
1: जी
0: ये
1: जी
0: तो एक कहा जाए तो उपलब्धि है आज के जमाने में,
1: जी
0: क्योंकि ज्यादातर कुछ तो चुटकुले सास बहू के
1: जी जी
0: मिलते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: कुछ तो कहानियां मिलती हैं।
1: जी जी नहीं, मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं और
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: सपोर्टिव हैं।
0: हाँ, अब सही, जाहिर सी बात है, आप यहाँ बैठी हैं, दो
1: जी
0: महीने का
1: जी वो
0: बेबी
1: भी
0: है
1: है।
0: तो घर पे वो संभाल रही होगी, तभी तो,
1: जी जी
0: ये
1: जी
0: बहुत ही अच्छी बात है।
1: जी
0: तो अभी कैसे सब कुछ मैनेज कर पा रही हैं, 2 महीने के बेबी को भी संभालना और हस्बैंड भी होंगे उनको भी?
1: जी जी बस ये है कि थोड़ा सा मैरिज, क्योंकि मेरी ज्वाइंट फैमिली है।
0: अच्छा, ये
1: जी ज्वाइंट
0: चीज
1: फैमिली है तो उसमें हो जाता है।
0: हो जाता है।
1: जी
0: आप क्या मानती हैं, ज्वाइंट फैमिली बेहतर होती है या न्यूक्लियर फैमिली?
1: जी ज्वाइंट फैमिली
0: ज्वाइंट
1: ज़्यादा,
0: फैमिली
1: जी
0: ज्यादा
1: जी
0: अच्छी,
1: क्योंकि उसमें
0: सपोर्टिव,
1: ज़्यादा सपोर्ट मिलता है हम
0: सपोर्ट
1: लोगों को
0: मिलता
1: हर
0: है।
1: चीज़ का। जैसे जैसे
0: हाँ
1: मैं बेबी को संभाल रही हूँ तो किचन में और कोई, जैसे मेरी वो है सास, वो है जेठानी है, या और वो है मदर इन लॉ है मेरी, वो थोड़ा काम कर लेती है। अब जैसे ये है, मैं जैसे बेबी को वो संभाल लेती है, मैं किचन में काम कर लेती हूँ, और भी जैसे न्यूक्लियर,
0: मैं नहीं हो
1: जी
0: पाता
1: जी
0: है।
1: न्यूक्लियर में नहीं हो पाता है
0: आप
1: इतना
0: क्या मानती
1: ज्वाइंट
0: हैं,
1: फैमिली में।
2: ज्वाइंट फैमिली बेस्ट रहती है,
0: ज्वाइंट
2: क्योंकि
0: फैमिली
2: अक्सर
0: अच्छी?
2: ऐसा होता है कि स्टडी के लिए बाहर जाना है या जॉब के लिए बाहर जाना है, तो उसके पीछे में अगर जैसे हमारे भाई बहन हैं या हम अपने पेरेंट्स हैं तो उनके ऊपर छोड़ के सारी चीज़ें जा सकते
0: नहीं,
2: हैं।
0: भाई बहन और पेरेंट्स तो है ही, लेकिन ज्वाइंट फैमिली मतलब पेरेंट्स के भी भाई बहन साथ में रहते हैं,
2: सब लोग
0: यही
2: साथ में,
0: सब
2: हाँ
0: लोग साथ में ज्यादा
2: चाचा
0: अच्छा
2: ताया
0: है,
2: सारे लोग
0: ये सब लोग साथ में रहना ज्यादा अच्छा है। आपका भी यही मानना है या कुछ डिफर करती हैं आप?
2: अलग ही है। मतलब कि फायदे भी हैं इसके, नुकसान भी
0: हाँ,
2: हैं,
0: क्या
2: दोनों ही
0: मानती हैं,
2: हैं।
0: क्या फायदे क्या नुकसान है?
2: फायदा ये है कि साथ में रहते हैं तो सब एक दूसरे के दुख दर्द में काम आते हैं,
0: हाँ,
2: सब फाइनेंशियल सपोर्ट भी सब करते हैं, और बहुत जैसे कि कोई बीमार है या सब किचन में एक साथ खाना बन गया, ये घूमना फिरना एक साथ। और नुकसान ये है कि बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई में जो है नुकसान होता है, शोर शराबा होता है,
0: शोर
2: प्राइवेसी नहीं
0: शराब,
2: होती है, और फिर अगर कोई एक कमाने वाला है तो एक पे ही
0: उसके कई
2: सारा
0: सारे
2: बोझ,
0: हिस्से बन
2: हाँ
0: जाते।
2: एक ही को सारा बोझ उठाना पड़ता है।
0: आप क्या मानती हैं, ये कमी है?
1: ये थोड़ी सी कमी है।
0: और किचन में भी तो मुश्किल आती
1: जी
0: होंगी,
1: जी थोड़ी
0: किसी को
1: सी,
0: कुछ खाना है, किसी को कुछ खाना है,
1: जी
0: दिन
1: जी
0: भर किचन में ही
1: दिन
0: लगे
1: भर
0: रहना
1: किचन
0: होता
1: मेला हो जाता है ऐसे ही। जी
0: है। आप क्या इत्तेफाक रखती हैं इस बात से?
2: जी बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं। और इसके साथ साथ पॉइंट ये भी है कि अगर हमें कोई सजेशन चाहिए तो हमें पहले सबसे डिस्कस करना पड़ेगा कोई भी फैसला लेने से पहले। और अगर कोई अर्जेंट काम है और अगर सबकी राय नहीं हो पा रही है, वहाँ पे सब सीमित नहीं है, तो फिर उस काम का भी लॉस हो जाता है अक्सर,
0: काम का भी लॉस हो जाता है।
2: अगर सबकी एडवाइस नहीं मिल रही है एक साथ और आपको अकेले कुछ फैसला लेना है तो।
0: लेकिन जब आपसे पूछेंगे कि जब न्यूक्लियर हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, तो अब जैसे आप जो है मैडम यहाँ पे बैठी हैं, 2 महीने का बच्चा बेबी घर पे है, क्या वो बैठ सकती थी अगर न्यूक्लियर होती थी तो? नहीं,
2: नहीं बैठ सकती
0: नहीं बैठ
2: थी,
0: सकती
2: वही
0: थी।
2: तो प्रॉफिट लॉस दोनों है, हर एक काम का, हर एक चीज का प्रॉफिट और लॉस होता है।
0: हाँ, बिल्कुल। तो इसके ये प्रॉफिट और लॉस हैं
2: जी
0: कहे जाएंगे तो।
1: जी
0: तो अच्छा, आगे जैसे आपकी शादी हो गई?
2: नहीं,
0: नहीं हुई, तो आप आने वाले वक्त में क्या प्रिफर करेंगी, न्यूक्लियर या फिर ज्वाइंट?
2: मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं
0: अभी
2: है।
0: सोचा नहीं है,
2: जी
0: अभी आप पूरी तरह करियर पे कंसंट्रेट कर रही
2: जी
0: हैं, तो आगे आने वाले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं?
2: उतना टाइम तो घर वाले रुकेंगे नहीं, शादी कर
0: बहुत जेन्युइन सा
2: देंगे।
0: जवाब है और बहुत स्वाभाविक और कहा जाए तो डाउन टू अर्थ जवाब है,
1: जी
0: बिल्कुल। और हम अपने जो श्रोता अभी बाद में जुड़े होंगे उनके लिए बता दें कि कार्यक्रम चल रहा है जनमंच, और हमारे स्टूडियो में 3 नारी शक्तियां हैं इस समय, जिनसे हम बात कर रहे हैं उनके जीवन के तमाम पहलुओं पे, वो क्या करती हैं और समाज के भी पहलुओं पे। अभी हमने बात की कि न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली, और इसमें बात आती है कि जैसे हम न्यूक्लियर और ज्वाइंट फैमिली में तो हैं, इसमें कमियां भी हैं नुकसान भी हैं, लेकिन दूसरी बात आती है शिक्षा की। जैसे आप दोनों लोग शिक्षित हैं और आगे भी पढ़ाई कर ही रही हैं, क्या हम शिक्षा के लिए हमें दूर जाना, शहर से दूर जाके पढ़ना ये जरूरी है? आप तो जाना चाहेंगे पहले।
2: जी बिल्कुल जरूरी है, अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है और आपको वो चीजें यहाँ नहीं मिल पा रही हैं तो आप बिल्कुल बाहर जा सकते हैं,
0: बाहर जाना चाहिए।
2: हाँ, सोसाइटी के

0: कभी नहीं जाना चाहिए। अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है तो फिर सोसाइटी के ऊपर ध्यान ही नहीं देना है।
1: और अगर फैमिली सपोर्ट ना करे तो?
0: फैमिली सपोर्ट ना करे तो चीजें अलग हो जाती हैं, फिर फैमिली की मानना पड़ेगी। लेकिन कई बार अपनी बात हम रख सकते हैं।
1: लेकिन अब जैसे आज का जो समय है, अभी भी जमाना उतना खुला नहीं है महिलाओं के।
0: जी,
1: तो आप क्या मानती हैं, और खुलना चाहिए, महिलाओं को और आजादी मिलनी चाहिए?
0: बिल्कुल, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको अभी भी सिर्फ यही समझा जाता है कि वो घर में ही रहना चाहिए, मतलब मैरिड भी अनमैरिड भी। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनको पढ़ने नहीं दिया जाता, सोच उनकी फैमिली की इतनी अच्छी नहीं है, और कुछ मैरिज के बाद भी बहुत सारा स्ट्रगल करती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब अगर उनका मन है जॉब करने का, लाइफ में कुछ करने का, तो उनको कर देना चाहिए, क्योंकि इससे फैमिली में ही सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि फिर दो सैलरी घर में आएंगी तो
1: बेहतर
0: रहेगा, और आने वाला फ्यूचर उनके बच्चों का भी अच्छा होगा, उनका करियर भी सेट हो सकता है।
1: जी जी जी, आप क्या कहेंगी मरियम साहिब?
2: मैं भी यही कहना चाहूंगी कि
1: घर से दूर
2: जाना चाहिए, और थोड़ी फ्रीडम मिलनी चाहिए।
1: फ्रीडम
2: मिलनी चाहिए,
1: थोड़ी फ्रीडम या पूरी फ्रीडम?
2: पूरी फ्रीडम
1: मिलनी चाहिए। जो इच्छा हो वो करने देना
2: चाहिए। जो जो करना चाहती है वो करना देना चाहिए,
1: करने देना चाहिए। आपका भी यही ख्याल है, लेकिन क्या उस फ्रीडम की एक लिमिट भी होनी चाहिए?
3: बिल्कुल होनी चाहिए। उसका गलत, जब फैमिली हमें भरोसा करके भेज रही है तो उसका कोई भी गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। कि मतलब भेज रही है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जॉब पे जा रही हूँ तो मैं जॉब से हटके कहीं घूमने चली गई अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ये उनके
1: वो झूठ बोल के
3: तो धोखा हुआ। तो ये फ्रीडम का एक तरीके से गलत फायदा भी हुआ। घर वाले तो फ्रीडम दे रहे हैं कि आज के जमाने में लड़की को देना चाहिए, वो इसलिए दे रहे हैं कि हमारी बच्ची कुछ सीख रही है, लेकिन हम अगर कहीं और जा रहे हैं तो इसका गलत फायदा उठाना हुआ एक तरीके से।
1: गलत फायदा उठाना हुआ उस चीज का। और इस फ्रीडम के बाद कुछ दुर्घटनाएं भी होती हैं,
3: बहुत सी होती हैं। लड़कियों को तो बहुत चीजें फेस करनी पड़ती हैं।
1: और क्या क्या फेस करनी पड़ती हैं?
3: फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी जा रही है तो लड़कों की निगाहें हमेशा टिकी रहती हैं कि एक लड़की घर से निकली और सब उसे देखे जा रहे हैं, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है, इसलिए वो खुद ब खुद अपने आप को रोकती है हर चीज के लिए। तो इतना तो मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट को इतना करना चाहिए कि है, वैसे गवर्नमेंट करती है कि एक लड़का देख रहा है तो उसको मतलब देख रहा है तो वो अपनी बात चेंज कर देगा वैसे तो, कि मैं तो नॉर्मली देख रहा था, लेकिन उसका वे ऑफ टॉक अलग था, वे ऑफ सीइंग मतलब देखने का तरीका अलग था, तो इस पे हमें कुछ कर नहीं पाते हैं, तो ये थोड़ा अजीब सा लगता है।
1: लेकिन इसमें ये देखिए, समाज है और नारी, यही तो है नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, सशक्त होना है
3: जी।
1: क्योंकि जो कोई भी अगर कुछ गलत भी कर रहा है तो एक तो उसे टोकना है और उसे ऐसा सबक देना है कि दोबारा वो गलती ना कर सके,
3: और लोग बोलते भी नहीं है इधर उधर वाले,
1: या पुरुष हो कोई भी।
3: जी जी बिल्कुल, बहुत सी महिला, आज का तो माहौल बहुत ही वो चल रहा है।
1: आप क्या कहेंगी इस बारे में?
0: मैं भी यही कहूंगी कि मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं सोसाइटी में जिनको हम फेस करके इग्नोर करके भी निकल सकते हैं,
1: इग्नोर करके,
0: क्योंकि हर चीज का जवाब देना हर जगह पे सीमित नहीं रहता। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर जवाब ऐसा दो कि वो दोबारा अगर आप उसके सामने पढ़ो या कोई भी लड़की सामने पढ़े तो वो उसको देखने से पहले या कोई भी कमेंट पास करने से पहले सोचे।
1: आप क्या कहेंगे? आप तो अब शादीशुदा भी हैं।
2: जी जी, मैं मैरिड हूँ, लेकिन उससे पहले भी ये है कि तो अनमैरिड नहीं थी मैं, इससे पहले भी देखा है मैंने कि लड़कियां लड़के देखते हैं अच्छी नजर से नहीं देखते हैं, और थोड़ा सा
1: लेकिन पहले के मुकाबले समाज
2: जी जी
1: थोड़ा बदला है,
2: थोड़ा बदल चुका
1: है, पॉजिटिव है।
2: जी जी जी पॉजिटिव हो जाए, लेकिन उस चीज का जवाब देना चाहिए
1: बिल्कुल, महिलाओं को करना चाहिए
2: थोड़ा सा अपने आप को एस्टेब्लिश इतना बनाओ कि हम कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे अंदर कि हम उस चीज का जवाब दे सके उसी टाइम।
1: बिल्कुल, ये सब समाज की चुनौतियां हैं और कहीं ना कहीं विडंबनाएं भी हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती हैं
2: इस टाइम पे।
1: क्या सड़क के अलावा परिवार में भी कभी कभार देखने को मिलता है?
2: अभी तक तो नहीं मिला।
1: प्रोग्राम आखिर जैसे जैसे आगे बढ़ता है मेरे सवाल और खतरनाक होते जाते हैं, इसीलिए अगर आप बताना चाहें आप।
3: बिल्कुल ऐसा होता है घर में कि चाचा है या कोई अपनी मतलब भतीजी पे मतलब फैमिली ज्वाइंट फैमिली में भी लोग सेव नहीं है आज के जमाने में, इसलिए ज्वाइंट फैमिली का एक ये भी नुकसान है, ये भी नुकसान है कि फ्रीडम नहीं है कि अगर लड़की घर में नॉर्मली कपड़े पहन के नहीं रह सकती जैसे फ्री हो गया।
1: बात आपने की है तो अब कपड़ों की बात कर लें, कैसे कपड़े पहनने चाहिए महिलाओं को, आप लोग खुद क्या सोचती हैं? स्वतंत्रता पूरी होनी चाहिए
3: मेरे हिसाब से।

0: खुद को सेफ करना चाहिए,
1: हाँ
0: क्योंकि लड़की तो एक सोने के मानिंद है, सोने को तिजोरी में रखा जाता है, वैसे लड़की को भी मोबाइल को, एक छोटे से मोबाइल को हम कवर में रखते हैं कि गिर जाएगा टूट जाएगा, और सोने को अलमारी में रखते हैं, तो हम लोग तो सोना है, इसलिए हमें कवर रहना चाहिए मेरे हिसाब से,
1: आपके हिसाब से।
0: यही मेरा भी मानना है। हम जब ऐसे कपड़े वेयर करेंगे तो सामने वाले को मौका मिलेगा, इसलिए उसको वो चांस ही नहीं देना चाहिए।
1: आप क्या मानते
2: मैं ये मानती हूँ कि बस नजर, नजरिए का तरीका है,
1: नजरिए का
2: नजरिए
1: तरीका,
2: का तरीका, कपड़े चाहे जैसे भी पहने,
1: बिल्कुल
2: नजरिए का तरीका है, वो
1: नजरिए का तरीका
2: नजरिका
1: है
2: का तरीका है अपना,
1: और सलीके के होने
2: जी
1: चाहिए।
2: सलीका होना चाहिए एक तरह।
1: हाँ, तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी आप लोगों से बातचीत हुई, कई सारे ऐसे भी बहुत हमने पहलुओं को छुआ जो
2: जी
1: समाज में अभी भी, वक्त हालांकि बदला है, पहले से आधुनिक हुआ है माहौल, और बहुत सारी महिलाओं को आज़ादी भी मिली है, कदम से कदम मिला के चलने
0: बिल्कुल
1: की भी
0: जी
1: मिली है, और आप सब के सामने के रूप में हमारे पास एग्जाम्पल्स भी हैं। लेकिन अभी भी बहुत ज़रूरत है, और उसके लिए सबसे ज़रूरत है कि महिलाएं खुद सशक्त हों,
2: जी
1: यही मुझे लगता है आप लोगों
2: जी
1: का भी
2: जी जी
1: यही
2: जी
1: कहना है। तो इस प्रोग्राम में, इस परिचर्चा में हमने आप लोगों से बात करके यही एक तरह से कंक्लूजन निकाला कि सबसे पहले अगर महिला खुद सशक्त हैं और आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से अडिग हैं, पूरे ताकत से तैयार हैं, तो कोई रोक नहीं
2: कोई नहीं रोक
1: सकता।
2: सकता।
0: बिल्कुल
2: बिल्कुल
1: जी, बिल्कुल। आप लोग हमारे स्टूडियो में आई और हम लोगों से बातें की, हमारे तमाम श्रोताओं को अपने विचार साझा किए, आपने अपने अनुभव बताए, वो भी ऐसे ज्वलंत मुद्दों पे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू
0: थैंक यू।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम जनमंच, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104 FM पर।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
0: आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 8 बजने वाले हैं। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा।

0: तो लीजिए श्रोताओं, बज चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में शाम के रात के ठीक 8। प्रस्तुत है कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा।
1: सुनिए
2: मुझे याद है जरा जरा।
3: नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कार्यक्रम मुझे

0: याद है जरा जरा में। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको अपने किसी पुराने श्रोता, किसी पुराने चाहने वाले से मिलवाते हैं। आज इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं एक सैन्य पृष्ठभूमि की महिला, जो कि पेशे से एक स्कूल की संचालिका भी रही हैं और वर्तमान में एक कुशल गृहिणी की भूमिका निभा रही हैं। पूर्णिमा शर्मा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और पूर्णिमा जी, आपसे सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आपने किस उम्र से रेडियो सुनना शुरू किया?
1: नमस्कार, मैं पूर्णिमा शर्मा। मैं बचपन से ही अपने फादर के साथ सुनती थी प्रोग्राम, और इसी तरह से बड़े होके भी मेरे मन में रेडियो के प्रति जिज्ञासा बनी रही और मैं लगातार सुनती हूँ। और इधर जब मैं शादी होके आई तो मेरे फादर इन लॉ भी रेडियो को लेके चलते थे साथ में, तो बड़ा अच्छा लगता था। उसमें कई प्रोग्राम आते थे, आज शाम, पसंद जवानों की, युगवाणी, साथ ही साथ गाने वगैरह जो हैं, और बाकी काफी मतलब मैसेज हमें मिलते थे ज्ञानवर्धक, तो अच्छा लगता था। उसी से मेरा रुझान बना हुआ है आज तक।
0: जैसा कि आपने बताया कि आपने पिताजी को देखकर या आपके घर में कुछ और बड़े बुजुर्ग थे जो ये रेडियो सुना करते थे, और उनको देखकर ही आपको ये रेडियो के प्रति एक रुझान जागा और रुचि पैदा हुई, आपने सुनना शुरू किया। जैसा कि आपने हमें पहले बताया है कि आपकी जो पृष्ठभूमि है वो सेना की रही है, तो आप अपने पिताजी के साथ कई भिन्न भिन्न जगहों पर रही होंगी। निश्चित तौर पर ट्रांसफरेबल जॉब रहती है, आप बॉर्डर के आसपास भी रही होंगी, तो वहां पे किस तरह से आप इस चीज को सुन पाती थी?
1: वहाँ सुनते थे जी। मेरे फादर चलाते थे, अगर वो नहीं होते थे, वो ऑफिस टाइम अपना गए हैं, तो हम लोग चला के सुनते थे। और हमें काफी समाचार, ये सब बहुत से न्यूज मिलती थी इससे। मैं ये आपका नारी संसार है, सखी सहेली है, और आपका अंकुर प्रोग्राम है, कई सारे प्रोग्राम है जो मैं, और मैं सुबह उठते ही ऑन कर देती हूँ। मेरी एक कमजोरी कही है, मेरा रिश्ता कही है आकाशवाणी से ऐसा गहरा है कि मैं शाम तक चलता ही रहता है मेरा।
0: आज एक आप एक कुशल गृहिणी की भूमिका में हैं और आपके पास निश्चित तौर पर समय बहुत कम बचता होगा बहुत सारी जिम्मेदारियों के बाद, तो ऐसे में आप किस तरह से रेडियो के प्रति जो अपने जो शौक है, आपकी जो रुचि है, वो किस तरह से पूरा करती हैं, कैसे समय निकाल पाती हैं?
1: अपने रेडियो सेट को मैंने किचन में ही रखा है और मैं वहाँ पे काम भी करती हूँ और सुनती रहती हूँ प्रोग्राम लगातार। और एक मैंने अपने ड्राइंग रूम में रखा है, जब मैं फ्री होती हूँ मैं वहाँ बैठती हूँ तो मैं वहाँ चला लेती हूँ।
0: आजकल के जो कार्यक्रम आ रहे हैं और आपने बचपन से सुनती आई हैं, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है समय के साथ साथ, कार्यक्रमों में भी, समय में भी, तो आपको क्या लगता है कि क्या परिवर्तन आया है उस दौर में और आज के दौर से अगर हम तुलना करें तो?
1: हाँ, उस दौर से और आज के दौर में आज तो काफी प्रोग्राम है, कृषि से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है, और साथ ही साथ देश के हमें जानकारी मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। सभी ज्ञान हमें मिलते हैं आकाशवाणी से।
0: आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे घर में मेरे हस्बैंड हैं
0: और बच्चे वगैरह, कितने बच्चे?
1: एक ही बच्चे।
0: अच्छा, तो बच्चे तो आजकल सोशल मीडिया की तरफ उनका ज्यादा रुझान रहता है, तो बच्चों को नहीं लगता है कि आप ये क्या कर रही हैं?
1: वो तो बाहर है खैर, लेकिन मैं अपना चला के सुनती हूँ और अच्छा, मेरा पूरा टाइम इसी में रहता है। अभी तक मेरे फादर मेरे साथ थे जी, वो दोनों लास्ट ईयर थोड़ा एक्सपायर हो गए, तो बस उनके साथ पहले मेरा ज्यादा टाइम स्पेंड होता था आज, और फिर भी मैं रेडियो सुनती थी।
0: आप अकेले ही सुनती हैं कि आपके पति भी?
1: हाँ,
0: सुनते हैं?
1: हाँ, हाँ।
0: दोनों लोग साथ साथ?
1: जी जी जी।
0: अच्छा, तो आज ऐसा सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे थोड़ा सा उसकी ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, थोड़ा आकर्षक लग रहा है उन्हें जैसा कि सोशल मीडिया, उसके हालांकि अपने लाभ और नुकसान हो सकते हैं, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगी कि आज का जो दौर है उसमें रेडियो कितना प्रासंगिक हो सकता है?
1: ये तो रहा है, रहेगा
0: जी,
1: आज भी है, तो इसका दौर तो खत्म नहीं हो सकता। और जो हमें ज्ञान और ये सब बातें हमें जो मिलती हैं सोशल मीडिया से, हम नहीं समझते कि उतनी अच्छी बातें, कुछ अच्छी है ठीक है आप उसे लीजिए, लेकिन आजकल बच्चे जो हैं वो ज्यादातर उसी तरफ जा रहे हैं, जो कि मैं चाहती हूँ कि बच्चे इस तरफ थोड़ा अपना रुझान रखें आकाशवाणी के प्रति।
0: तो इसके लिए आप किस रूप में अपने बच्चे को प्रेरित कर सकती है?
1: उनको समझाते हैं कि बेटा इसको सुनो, प्रोग्राम है ये, अच्छे अच्छे आते हैं समाचार के माध्यम से, ये सब बातें हैं ना, तो जो हम नहीं जानते हैं वो बातें हम सीख जाते हैं इन चीजों से।
0: बिल्कुल।
1: और जो अंकुर प्रोग्राम है उसमें बच्चों के साथ साथ हम लोग भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, बहुत सी बातें हैं जो हमें नहीं पता है तो हम सुनते हैं।
0: एक बात आती है फिल्टर की, कि कौन से कार्यक्रम हम देखें और कौन से ना देखें, या बच्चे कौन से कार्यक्रम देखें और कौन से ना देखें। इस अगर रूप में हम बात करें तो रेडियो काफी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है कि रेडियो के पास मनोरंजन होता है, ज्ञानवर्धक बातें होती है।

0: होती हैं, ऐसी बहुत सी बातें हम लोग शेयर करते हैं जिससे हमारे श्रोताओं को अपने निजी जीवन में फायदा होता है। और सबसे बड़ी बात रेडियो की ये है जो उसे बाकी से अलग बनाती है कि रेडियो को हम अपने परिवार के साथ कभी भी देख सकते हैं। इसमें हमें ये नहीं सोचना होता है कि आगे क्या कंटेंट आएगा, क्या ऐसा है जो बच्चे सुन सकते हैं नहीं सुन सकते। एक हेल्दी इंटरटेनमेंट की अगर हम बात करें तो आज भी रेडियो का कोई दूसरा विकल्प नहीं नजर आता है कि उतना ज्यादा संतुलित और जो भी प्रामाणिक खबरें हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और वही मनोरंजन के साथ भी है कि वही मनोरंजन हम श्रोताओं तक पहुंचाएं जो कि समाज के हित में कोई वृद्धि कर पाए।
1: सही कहा आपने।
0: और दूसरी चीज यह है कि आजकल एक इंटरनेट की दुनिया है और आप रेडियो को कैसे सुनना पसंद करती हैं? रेडियो को जैसे आप किस रूप में सुनती हैं? एक ऐप हम लोगों का है न्यूज ऑन AIRF जो कि हमारे यहाँ लॉन्च किया गया है। अब हम लोग मोबाइल पर भी इस ऐप के माध्यम से अपने कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। इस वजह से अब जो आकाशवाणी का जो दायरा है वो काफी विस्तृत हो चुका है। अब आप सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी अगर किसी देश में है और हमेशा आपके पास मोबाइल चुकी रहता है, कभी भी आप उसको ट्यून करके इसको सुन सकते हैं। आप बहुत दिनों से जुड़ी हैं। एक और होता है कि हमारे कार्यक्रम चलते हैं हेलो फोन इन कार्यक्रम।
1: हाँ जी।
0: और एक कार्यक्रम आता है आपका पत्र मिला, श्रोताओं के पत्र हमारे पास आते हैं, तो आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं कि आपने कभी कॉल लगाया हो या कभी चिट्ठी भेजी?
1: हाँ, मेरे कॉल के माध्यम से मैंने रिकॉर्डिंग भी कराई है आपके आकाशवाणी में जी। और मैंने पत्र तो नहीं लिखा है बट मैं सुनती हूँ वो प्रोग्राम आप लोगों के, जब पत्र आते हैं और जब पत्र वाला प्रोग्राम आता है मैं सुनती हूँ श्रोताओं के क्या क्या विचार हैं, उनके क्या प्रोग्राम उन्हें अच्छा लगा, क्या बात बता रहे हैं, तो वो मैं सुनती जरूर हूँ। हाँ, मैंने पत्र जरूर नहीं लिखा है।
0: अच्छा, फोन किए हैं?
1: फोन के माध्यम से आपकी रिकॉर्डिंग भी कराई है नारी संसार के प्रोग्राम में।
0: जी जी जी।
1: और वैसे भी मैंने रिकॉर्डिंग कराई।
0: अच्छा, तो कई बार होता है जैसे हमारा जो हेलो फोन इन कार्यक्रम है बहुत सारे श्रोता हमें कॉल करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कॉल लग जाती है, कभी कभी ये भी होता है कि कॉल नहीं लगती है।
1: जी,
0: तो ऐसी स्थिति में आपके मन में क्या विचार आता है दोबारा कोशिश करने का कि एक फ्रस्ट्रेशन की, अरे मेरा क्यों नहीं लग रहा?
1: नहीं नहीं नहीं, तो कोशिश तो करते रहना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन करके तो हम नहीं काम चला सकते, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। एक बार नहीं, दो बार, तीन बार लगेगा तो कभी तो लगेगा।
0: आप एक पुरानी श्रोता रही हैं, काफी समय से आप रेडियो से जुड़ी रही हैं, आपने जीवन के बहुत सारे पड़ाव देखे हैं, तो आपको क्या लगता है आपने रेडियो ने आपकी लाइफ को किस तरह से एनरिच किया है? क्या आपको अच्छा लगा कि रेडियो ने आपके जीवन को किन रूप में बदला है?
1: नहीं नहीं, हमने बहुत सी ज्ञानवर्धक बातें इनसे ली हैं और प्रोग्राम सुनते हैं। कभी मन अगर अशांत है तो उससे हमें सुन के, कभी कभी ऐसे प्रोग्राम इसमें आते हैं जो हमें बताया जाता है कि इस तरह से हमें करना चाहिए। सखी सहेली जैसे एक प्रोग्राम आता है, बहुत अच्छा है, उसमें महिलाओं के लिए बहुत अच्छा बताया जाता है और उसको यहाँ तक कि पुरुष भी सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं का ही है वो प्रोग्राम। जैसे बच्चे हमारे होते हैं तो हमें उनको किस रूप में कुछ बात बतानी है तो वो इसमें बताया जाता है कि आपके बच्चे अगर ऐसे हैं तो उनको इस तरह से डील करिए, उनको ये बताइए जिससे वो सही राह पे चले। तो ये बहुत सी बातें हमें मिलती हैं जिससे हम सीख सकते हैं और अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। जैसे आजकल इंटरनेट की दुनिया है तो हम उनको समझाएंगे कि बेटा थोड़ा इससे दूरी बना के रखो, पढ़ाई पे ध्यान दो। और आकाशवाणी में तो जो हमें जो ज्ञान मिलता है मैं बता नहीं सकती, उसको बहुत ही सुंदर लगता है।
0: अच्छा, आज ये मनोरंजन के कई और साधन हो चुके हैं, सोशल मीडिया आ गया है, TV है, मोबाइल है, बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आप कहाँ तक देखती हैं इसकी यात्रा को, कहाँ तक देखती हैं रेडियो की यात्रा की अगर हम बात करें तो?
1: रेडियो की यात्रा तो अनंत है, चल रही है, चलती रहेगी। आकाशवाणी जो है वो आप उससे बंधे भी रहते हैं और दूर भी रहते हैं, आप जहाँ भी हैं सुन सकते हैं, कहीं भी यात्रा के दौरान कहीं भी स्टेशन पे आप अपने साथ रख सकते हैं, सुन सकते हैं। और TV जो है वो हमें बांध देता है एक तरह से, लेकिन आकाशवाणी के साथ हम लोग बंधे नहीं है और बंधे भी हैं। हम जहां चाहें जब चाहें हर प्रोग्राम सुन सकते हैं, तो इसलिए इसकी यात्रा तो अच्छी बहुत लंबी है। आगे खूब अच्छे हम इसी तरह से प्रोग्राम सुनते रहें और हमारे श्रोता।
0: जी बिल्कुल, आकाशवाणी के बारे में यही है कि जो सबसे अलग यही है कि चूंकि समय बहुत कम बचा है लोगों के पास, अब व्यस्तताएं बहुत बढ़ गई हैं, इसके बावजूद इसकी प्रासंगिकता इसलिए भी बनी हुई है कि एक तो ये हमें सार्थक मनोरंजन उपलब्ध कराता है, दूसरी चीज ये है कि ये 24 घंटे आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। आप घर में कोई काम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, अगर आपके पास अब मोबाइल है और ऐप है उसमें न्यूज ऑन AIRF, तो आप उसे कभी भी ऑन करके सुन सकते हैं और अपना मनोरंजन कर सकते हैं या अपने मतलब की कोई भी ज्ञान की बात उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस रूप में अगर देखें तो ये अभी भी मनोरंजन का एक काफी बेहतर

0: माध्यम है और आपको इसमें समय की बर्बादी नहीं करनी है। आप जिस काम में भी व्यस्त हैं उसमें आप लगे रहिए और अपना काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है, आजकल अफवाहों का दौर है, आप बहुत सारे मीडिया चैनल्स हो गए हैं जो कि अथेंटिक नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, लेकिन कोई कुछ भी बोल रहा है। सोशल मीडिया के चक्कर में फेक न्यूज का भी एक कंटेंट आता है, तो ये अभी भी इस बात का वो एक वो रहता है, प्रमाण है कि जो रेडियो पर बताया गया है अथेंटिक होगा, प्रामाणिक होगा। हम लोग अगर कोई घटना दुर्घटना होती है देश में दुनिया में तो आज भी हम यही भरोसा करते हैं कि पहले हम यही सुनना चाहते हैं कि रेडियो पर क्या बोला गया, उसके बाद ही हम किसी से कहना चाहते हैं कि हाँ ये घटना सही है या हुई है या नहीं भी हुई है। तो उसकी जो प्रामाणिकता है वो रेडियो को आज भी और भविष्य के लिए भी प्रासंगिक बनाती है।
1: सही कहा आपने।
0: जी। और अगर हम ये बात करें कि आप ये क्या देखते हैं, कितना परिवर्तन आया है कार्यक्रमों के दौरान, ये जैसे जो आप बचपन में कार्यक्रम सुनती हैं और आज जो कार्यक्रम आते हैं, इसमें कंटेंट में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में किस तरह के परिवर्तन अभी दिख रहे हैं, क्या क्या आया है?
1: एफएम में सबसे बड़ी ये है कि हमें बिल्कुल साफ आवाज मिलती है, और पहले जैसे रेडियो में कभी सिग्नल्स नहीं आ रहे या कभी खड़खड़ाहट बारिश वगैरह की वजह से कभी कुछ हो जाता था डिस्टर्ब, बट अभी एफएम हमें पूरी साफ आवाज देता है और सुंदर प्रोग्राम देता है।
0: बिल्कुल, तकनीक के विकास के साथ साथ हमारी क्वालिटी भी बहुत बेहतर हुई है और अब वो उस तरह के व्यवधान नहीं आते हैं सुनने में
1: जी।
0: तो इस तरह की चीजें रहती हैं। और आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, आपका इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गुजारिश है कि आप एक अच्छे श्रोता के रूप में हमारे साथ लगातार जुड़ी रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: सुनिए,
3: मुझे याद है जरा जरा।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, आइए अब आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले कार्यक्रमों से।

सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं शोभित के गाए भजन। लीजिए अब सुनिए उनकी आवाज में तुलसीदास की रचना।

अभी आप प्रताप नारायण मिश्र की भक्ति रचना शोभित की आवाज में सुन रहे थे। अब आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी लखनऊ से लीजिए आप सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। आज के कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज में बेखुदी फिल्म के गीत से। इस गीत को लिखा है अनवर सागर ने, जिसकी तर्ज बनाई है नदीम श्रवण।

चित्रपट से कार्यक्रम का अगला नगमा आप सुनेंगे सर फिल्म से। ये गीत लिखा है कतील शिफाई ने, जिसकी धुन बनाई है अन्नू मलिक ने। इस गीत को आवाज दी है कुमार सानू के साथ कविता कृष्णमूर्ति।

कुमार सानू और अलका याग्निक के गाए आंदोलन फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल

0: काल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन, पुरुष फ्री स्टाइल
1: में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन, पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
3: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा

0: बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मॉनसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मॉनसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश

0: हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मॉनसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
1: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चालिन्स्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

रोशनी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना कैसा ये इश्क है

0: मामला लिखता है, मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसी अभिनेत्री की बातें जिनकी शोखी, चंचलता और मासूमियत के लोग दीवाने रहे हैं।

अमृता राव मुंबई में ही पैदा हुई और यहीं पर पली बढ़ी। आरंभिक शिक्षा दीक्षा अंधेरी के एक स्कूल में हुई और फिर साइकोलॉजी में कॉलेज की पढ़ाई के लिए मुंबई के सोफाया कॉलेज में एडमिशन तो लिया, पर यह पढ़ाई अधूरी छूट गई क्योंकि अमृता राव के कदम बढ़ चले मॉडलिंग की दुनिया में। मॉडलिंग की चमकीली दुनिया अमृता राव के लिए थी या नहीं थी ये उन्हें भी नहीं पता था। परिवार बहुत ही पारंपरिक कोंकणी भाषा बोलने वाला परिवार था और यहां परंपराओं और संस्कृति का सम्मान किया जाता था। अमृता राव ने अपने परिवार की इस परंपरा का सम्मान किया और मॉडलिंग की दुनिया में हौले हौले अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। शुरुआती तौर पर उन्हें कई विज्ञापनों में काम मिला और टेलीविजन

पर वो नजर आने लगी। पर अमृता राव को ख्याति तब मिली जब जानी मानी पॉप गायिका अलीशा चिनॉय के एक एल्बम के गाने वो प्यार मेरा में वो नजर आई, और बस ये लगा कि शायद रुपहले पर्दे पर नजर आना ही अमृता राव का प्यार है। इंतजार था फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम बढ़ाने का, और ये मौका साल 2002 में आया। निर्देशक राज कंवर ने बनाई फिल्म अब के बरस। इस फिल्म में आर्या बब्बर भी रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रख रहे थे, जो जाने माने अभिनेता राज बब्बर के बेटे हैं। तो आर्या बब्बर और अमृता राव के अभिनय वाली फिल्म अब के बरस आई, जो एक बहुत ही अलग तरह की कहानी पर बनी फिल्म थी। इस फिल्म में अमृता राव ने अमेरिका से लौटी एक लड़की की भूमिका निभाई और लोगों की नजर उन पर गई।

इसके बाद आई राजकुमार संतोषी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। इस फिल्म में अजय देवगन ने भगत सिंह का किरदार निभाया था और अमृता राव पर आई थी जिम्मेदारी भगत सिंह की प्रेमिका मन्ने वाली का किरदार निभाने की, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और चारों तरफ उनकी प्रशंसा हुई।

साल 2003 कैन घोष ने प्यार मोहब्बत की चाशनी में डूबी एक फिल्म बनाई इश्क विश्क। इस फिल्म के जरिए एक चॉकलेटी सितारे ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। जाने माने अभिनेता पंकज कपूर के बेटे

साल 2004 आया और लाया मस्ती। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल बेटा और राजा जैसी फिल्में बनाने वाले जाने माने कमर्शियल निर्देशक इंद्र कुमार की फिल्म की। साल 2004 में आई फिल्मी सितारों से सजी हुई फिल्म मस्ती। इस फिल्म के कलाकार थे अजय देवगन, लारा दत्ता, रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी, अमृता राव, तारा शर्मा और जेनेलिया देशमुख। फिल्म मस्ती में अमृता राव एक चंचल शोख लड़की की भूमिका में थीं। इसके बाद फराह खान ने अमृता राव को कास्ट किया जायद खान के अगेंस्ट। शाहरुख खान और सुष्मिता सेन के अभिनय वाली ये चर्चित फिल्म थी मैं हूं ना, और इस फिल्म में अमृता राव पर फिल्माया गया था ये गाना।

जाने माने निर्देशक मिलन लुथरिया ने अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और अक्षय खन्ना जैसे अभिनेताओं को लेकर एक फिल्म बनाई दीवार। जाहिर है कि लोगों को यश चोपड़ा की दीवार जरूर याद आई होगी, पर ये नए जमाने की दीवार थी। इसमें भी अमिताभ बच्चन थे, पर कहानी बिल्कुल अलग थी और इस फिल्म में भी थी अमृता राव।

साल 2005 में आई फिल्म वाह लाइफ हो तो ऐसी, निर्देशक थे महेश मांजरेकर। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे शाहिद कपूर और संजय दत्त। फिल्म सरफरोश बनाने वाले निर्देशक जॉन मैथ्यू माथन लेकर आए फिल्म शिखर। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे अजय देवगन, बिपाशा बसु और शाहिद कपूर।

साल 2006, एक बार फिर इंद्र कुमार लेकर आए फिल्म प्यारे मोहन, जो हॉलीवुड की आर्थर मिलर की निर्देशित फिल्म सी नो इवल हियर नो इवल पर आधारित थी। इस फिल्म में फरदीन खान और विवेक ओबेरॉय थे, ईशा देओल और अमृता राव थी।

साल 2006 राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म आई विवाह। इस फिल्म में अमृता राव के दूल्हे बने थे शाहिद कपूर।

यहाँ तक आते आते अमृता राव की यात्रा ने एक कमाल का मोड़ लिया और वो चली गई तेलुगु सिनेमा की तरफ। उन्होंने महेश बाबू के साथ एक फिल्म की अतिथि। इस फिल्म में महेश बाबू और अमृता राव की जोड़ी की काफी प्रशंसा हुई और फिल्म खूब चली भी। साल 2008 फिल्म आई माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस। और इसी बरस श्याम बेनेगल की एक फिल्म में अमृता राव ने काम किया जिसका नाम था वेलकम टू सज्जनपुर। भीनी भीनी।

अमृता राव एक सादगी और गरिमा वाली अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया, इसलिए उन्होंने ज्यादा फिल्में नहीं की और रुपहले पर्दे पर उनकी पारी भी बहुत लंबी नहीं रही, पर उनके चाहने वाले उनकी फिल्मों का इंतजार करते रहे। इस बीच अमृता राव फिल्म शौर्य में बतौर अतिथि कलाकार नजर आईं। 2009 में हरमन बवीजा के साथ वो नजर आईं फिल्म विक्ट्री में। इसी बरस आई नीरज वोरा की फिल्म शॉर्टकट। इसके प्रोड्यूसर थे अनिल कपूर और इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे अक्षय खन्ना।

साल 2011 में राजश्री प्रोडक्शंस की एक और फिल्म अमृता राव ने की, जिसका नाम था लव यू मिस्टर कलाकार। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे तुषार कपूर।

बीबी लाइफ पार्टनर और जाने कहां से आई है। साल 2013 में अरशद वारसी के साथ वो नजर आई सुभाष कपूर की फिल्म जॉली एलएलबी में। फिर आई अनिल शर्मा की फिल्म सिंह साब द ग्रेट जिसमें थे सनी देओल। साल 2013 प्रकाश झा की फिल्मी सितारों से सजी फिल्म सत्याग्रह में नजर आई अमृता राव। अमृता राव ने कुछ टेलीविजन सीरियल भी किए हैं जैसे मेरी आवाज ही पहचान है। साल 2019 में अभिजीत फंसे की फिल्म ठाकरे में अमृता राव ने मीना ताई ठाकरे की भूमिका निभाई थी। अमृता राव ने आरजे अनमोल से विवाह किया है।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री अमृता राव पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री।

0: आकाशवाणी है। नमस्कार, रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है विद्वान श्री M.S.N. मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। Tonight we present a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri M.S.N. Murthy.
0: Sri M.V. Subbarayudu aur Srimati M. Jalajakshi ke putra Sri M.S.N. Murthy sangeet ke parivesh mein hi pale bade hain. Aapki mata Srimati M. Jalajakshi swayam ek sangeet kalakar rahi hain. Aapne sangeet ki shiksha sangeet sahitya kala nidhi गुरु श्री NCH कृष्णमाचार्युलु के पास प्राप्त की। बाल कलाकार के रूप में ही आपने अनेक मंचों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्वान श्री M.S.N. मूर्ति ने कई प्रतिष्ठित संगीतज्ञों के साथ विभिन्न मंचों पर वायलिन संगत किया। इतना ही नहीं, आपके वायलिन एकल प्रदर्शन के लिए आपको समालोचक प्रशंसा भी प्राप्त है। आपने राष्ट्रीय एकता संगीत कार्यक्रमों के तहत हिंदुस्तानी संगीत कलाकारों के साथ जुगलबंदी कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। कई प्रतिष्ठात्मक संस्थानों ने आपकी कला को निदर्शनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन माना है।

0: आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के पैनलबद्ध कलाकार भी हैं। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आकाशवाणी के स्टाफ कलाकार रह चुके श्री MSN मूर्ति को वायोलिन में टॉप ग्रेड, कर्नाटक गायन और वायोला वादन में ए ग्रेड प्राप्त है। आपको कई प्रतिष्ठित मंचों द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आज के कार्यक्रम में श्री MSN मूर्ति की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायला वेंकट रमण मूर्ति, गटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू और सहायक वायलिन पर श्री साकेत पंतुला।
1: श्री MSN मूर्ति's exposure to music began early. His mother, Srimati M. Jalajakshi, is a veteran vocalist. Recognized as a child prodigy, Sri MSN Murthy trained under the guidance of Sangeet Sahitya Kalanidhi, Sri N.C.H. Krishnamacharilu. He served Akashvani Vishakhapatnam as a staff artist for 2 decades. A versatile musician, Sri MSN Murthy has the rare distinction of having top grade in violin, A grade in vocal and an A grade in viola of Akashvani and Doordarshan. Sri MSN Murthy's music is recognized for its amazing and silky smooth yet crisp and pure tonal quality, fine aesthetic sense and for the artist's total command over the instrument. He has performed Jugalbandi concerts in collaboration with Hindustani classical musicians and has accompanied almost all veteran Vidwans of yesteryears and most of the leading contemporary artists. An empaneled artist of Indian Council for Cultural Relations, Sri MSN Murthy has performed extensively in the country and abroad in various prestigious centers of art and culture and many reputed organizations and universities across the globe. He has been the recipient of several prestigious awards for his contribution in the field of music. In tonight's performance, Vidwan Sri MSN Murthy is accompanied by Vidwan Dr. Vankayala Venkata Ramana Murthy on the Mridangam, Vidwan Sri M. Haribabu on the Ghatam, and supporting violin is being provided by Sri Saket Pantula.
0: Vidwan Sri MSN Murthy aaj ke karyakram ka aarambh kar rahe hain. अठाणा राग में पुरंदर दास की रचना सकल ग्रह बल नीने से, जो कि खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: श्री MSN मूर्ति बिगिंस दिस इवनिंग्स कॉन्सर्ट विद अ कृति ऑफ पुरंदर दास। इट इज एन अठाणा रागम खंड चापू तालम।

0: श्री एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है अमृत वर्षिणी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना आनंद अमृत आकर्षिणी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री एमएसएन मूर्ति नाउ प्रेजेंट्स अ कृति ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार इन अमृत वर्षिणी रागम।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू और सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला। कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्री एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है हर हर प्रिय राग में संत त्यागराज की रचना चक्कनि राज मार्गमु, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन टुनाइट रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा यू हैव बीन लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति। ही इज अकंपनीड बाय विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति ऑन द मृदंगम एंड विद्वान श्री एम हरिबाबू ऑन द घटम। वायलिन सपोर्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड by Sri Saket Pantula. Continuing this evening's concert, Vidwan Sri MSN Murthy will now present Chakkani Raja Margamu. It is in Kharhara Priya Ragam Aditalam and is a composition of Saint Tyagaraja.

0: यह था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति ने और घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है खमास राग में धर्मपुरी सुब्बा रायर द्वारा रचित जावली मरुबारी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Taniyavartanam on the Mridangam by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy and on the Ghatam.

0: अभी तक आप रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू, सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतला। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, wherein we presented a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri MSN Murthy. He was accompanied by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy on the Mridangam and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Violin support was given by Sri Saket Pantula. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम

पीएमएस का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: sector reforms and achievements. The interviewer is Niharika Bhuvania.
1: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। आज सुनिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
2: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण हुए भारत सरकार के 12 साल के कार्यकाल की, और इस कार्यकाल के दौरान हर उस सफलता की जिसने लगातार भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज की ये चर्चा स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत की वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय आपने हमारे लिए निकाला, हम इसके आभारी हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और सबसे पहले बात करते हैं कि 12 साल के इस कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने किस तरह के बदलाव, किस तरह के परिवर्तन देखे, और इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है?
3: देखिए, किसी भी देश के नागरिक को अगर समय से किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल जाती है तो उस नागरिक की क्षमता और उसके सामर्थ्य का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो सकता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकता उसके नागरिकों का स्वास्थ्य ही होना चाहिए, और भारत आज एक बहुत बड़े विजन के

0: आगे बढ़ रहा है। आज हमने अपनी सरकार के 12 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन 2047 तक भारत कैसे एक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो, ये हमारा सपना है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है एक स्वस्थ भारत। और भारत की आबादी आप जानते हैं 146 करोड़ है। 146 करोड़ नागरिकों को स्वस्थ रखना ये कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये हमारा संकल्प, यानी हर नागरिक को हमें एक्सेसिबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करनी है। तो हमने अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव किया है, और मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने स्वास्थ्य को आज केवल बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो सबसे जरूरी कदम है कि हम बीमारियों की रोकथाम कर सकें, और इसीलिए आज अगर आप देखें तो हमारी जो सबसे प्राथमिक इकाई है, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसमें आज हम जो गैर संचारी रोग हैं, जैसे कि डायबिटीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, इसकी हम जांच कर रहे हैं ताकि समय रहते पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जा सके। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से मोटापे के खिलाफ अभियान चलाते हैं, या आम जनमानस को 10% तेल कम करने की अपील करते हैं, और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय ईट राइट इंडिया के तहत कहता है कि आप स्वच्छ खाएं, पौष्टिक खाएं, संतुलित खाएं, तेल, चीनी, नमक इन सब का सेवन कम करें, तो ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में बढ़े हुए कदम है। तो भारत आज इस पद्धति पर चल चुका है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ढांचा प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों स्तर पे हम इसको, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रहे हैं। कैसे एक आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला खर्च कम हो, इसकी चिंता हमने की है, और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आज कम हुए हैं, जिसमें आज मैं जन औषधि केंद्रों की चर्चा भी करूंगी, अमृत फार्मेसी का उल्लेख भी करूंगी। आज इन केंद्रों पर जो दवाएं हैं वो बाजार मूल्य से 50-90% तक कम दामों पर देश के आम नागरिक को उपलब्ध हैं। आप एक जिला अस्पताल में जाकर देखेंगी तो राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत एक आम आदमी को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। हम आज बड़े पैमाने पर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ई संजीवनी के माध्यम से आज दूर दराज के गांव में बैठे हुए एक सामान्य नागरिक को एक विशेषज्ञ चिकित्सक का निशुल्क परामर्श मिल रहा है। मेडिकल ड्रोन्स जैसे जो हमारे प्रयोग हैं, आज दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में क्रांति ला रहे हैं। तो भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य इन 12 वर्षों में बहुत तेजी से बदल चुका है।
1: अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, शायद हम उसी राह पर चल रहे हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हमारी ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं आज बखूबी काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की बात करते हैं और आयुष्मान डिजिटल मिशन की अब बात करते हैं। आयुष्मान भारत जो है उसे ना केवल भारत बल्कि विश्व भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया गया है, तो आपके हिसाब से इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, पहली बात, और दूसरी बात, हर वर्ग के परिवार को इस मिशन ने, इस इनिशिएटिव ने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप
0: देखिए। भारत आज एक ऐसा देश है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने में अग्रणी है, और हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसी पहल है जिसके तहत हम देश के अंदर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो आज मुझे कहते हो खुशी है कि भारत के हर नागरिक के लिए हम एक यूनिक डिजिटल आईडी क्रिएट कर रहे हैं, जिसे हम आभा आईडी कहते हैं, और देश के अंदर आज 90 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनका हमने ये यूनिक आभा आईडी क्रिएट कर दिया है। ये उनकी एक डिजिटल पहचान है, और 100 करोड़ से ज्यादा जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो इन अकाउंट्स के साथ लिंक अप हो चुके हैं। अब एक आम नागरिक को इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है, इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगी। कभी भी हमें किसी डॉक्टर का परामर्श लेना है तो हम क्या करते हैं, आमतौर पे एक फाइल होती है, एक फोल्डर होता है, बहुत सारे उसमें दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे कागजात होते हैं, हमारे लैब रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे तमाम प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, और वो समय के साथ फोल्डर मोटा होता जाता है, बहुत सारे मेडिकल के कागजात का बंडल बन जाता है। और जीवन में जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो एक आम नागरिक क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह उस बड़े से फोल्डर को लेकर घूमता रहता है हर डॉक्टर के पास,
1: शायद कागज खो भी जाते हैं, मिलते नहीं,
0: और

0: डॉक्टर्स के लिए बड़ी कठिनाई होती है, मरीज के लिए भी कठिनाई होती है। जब हम इस डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं, तो जो भी हमारे ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपना एक आईडी बना लिया और उसके साथ अपने रिकॉर्ड्स को लिंकअप कर दिया, अब ऐसे नागरिक को वो पूरा पुलिंदा लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो देश के किसी भी कोने में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, वो सिर्फ डॉक्टर को अपनी सहमति प्रदान करेगा, डॉक्टर उसके अकाउंट से उसके जितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शंस, दवाएं, सब कुछ उसको एक्सेस करेगा, उसके आधार पे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को समझेगा और पेशेंट को अपना परामर्श दे सकता है। ई संजीवनी का जो नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, उसमें भी एक सामान्य गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिस डॉक्टर से बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर परामर्श कर रहा है, वो भी उस डॉक्टर को बताएगा कि ये मेरा आभा आईडी है, उसे अपनी कंसेंट देगा, अपनी सहमति देगा और डॉक्टर के सामने उस पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हुई है, सुविधा हुई है। और आज हमने जो ओपीडी है उसे भी क्यूआर कोड बेस्ड बना दिया है। यानी बड़े बड़े अस्पतालों में अगर आपको ओपीडी सर्विसेज लेनी है तो क्या होता था कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में घंटे खड़ा होना पड़ता था। आज ये करने की जरूरत नहीं है, आपको स्कैन एंड शेयर की एक सुविधा दे दी गई है। आप क्यूआर कोड स्कैन करिए, सेकंड्स में आपका जो टोकन नंबर होगा वो जेनरेट हो जाएगा और आप आसानी से डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम नागरिकों के रिकॉर्ड्स तो बना ही रहे हैं, हमारी कोशिश है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी भी रजिस्ट्री हम तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें आम नागरिक के लिए और यहाँ तक कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सुविधाजनक और टाइम सेविंग होने जा रहा है।
1: यानी कि अब कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड का खो जाना नामुमकिन हो गया है और जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य सेवा हर तरीके से पहुंच पा रही है, परिपूर्ण हो पा रही है।
0: बिल्कुल।
1: और इसमें मेरा ख्याल है एआई की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है आगे आने वाले समय में। तो एआई और हेल्थ केयर का आज के टाइम में, आज के दौर में क्या रोल है?
0: देखिए, आजकल हम हर जगह एक शब्द सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सामान्य व्यक्ति सोचता है कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अभी कुछ समय पहले फरवरी में हमने देखा, हमारे देश ने एक बहुत बड़ा एआई इंडिया इंपैक्ट समिट किया और दुनिया के तमाम देशों से लोग आए, बहुत सारे प्रतिभागी आए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन से लेकर हर जगह हो रहा है। लेकिन हेल्थ केयर में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और भारत जैसे देश में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारे देश की आबादी 146 करोड़ है और इतनी बड़ी आबादी में हमें ये भी देखना है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे दुर्गम आदिवासी दूर दराज के इलाके हैं जहां पहुंचने में बहुत कठिनाई है, जहां शायद हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या अन्य जो हमारा मेडिकल स्टाफ होता है उसकी शॉर्टेज है। और इसके साथ हमारे पास एक दोहरा भार है, यानी हमारे पास एक तरफ डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग जैसी तमाम गैर संचारी बीमारियां भी हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ टीबी, मलेरिया, इस तरीके के रोग भी हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच में अगर हम कहते हैं कि हमने तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य तय कर दिया, यानी देश के हर एक नागरिक के पास किफायती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच होनी चाहिए, तो उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स यूज किए, जैसे हमने कोविड पैंडेमिक आया तो हमने कोविन का ऐप बना दिया, या आज हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं तो यूविन पोर्टल है हमारा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम उपयोग आज कर रहे हैं। तो हेल्थ का जो पूरा कॉन्टिन्यूम है, यानी आज बीमारियों की निगरानी करने से लेकर डिजीजेस के डिटेक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक, क्योर तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है।
1: सर्जरीज में भी इसकी काफी
0: बिल्कुल
1: उपलब्धि है
0: और डॉक्टर्स को ये काफी हद तक मदद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल इमेजेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिनको एनालाइज करने में एआई टूल्स का उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, अभी हमने सघन टीबी अभियान चलाया अपने देश के अंदर, 2024 में हमने दिसंबर अंत में शुरू किया स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पर देश के अंदर की। उसमें हमने एआई ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरेस का उपयोग किया, उसका लाभ हमें ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो शायद समाज में छिपे रह जाते कि जिनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया है लेकिन लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, हमने बड़े पैमाने पर ऐसे केसेस की पहचान की। तो

0: एआई सपोर्टेड एआई ड्रिवन हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का आज हम उपयोग कर रहे हैं, जिससे बड़ी तेजी से हम मरीजों की स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क है ई संजीवनी, अब ई संजीवनी पे आप समझिए कि एक मरीज डॉक्टर से वर्चुअल परामर्श कर रहा है। अब अगर डॉक्टर ऐसे तमाम पेशेंट से, हर एक पेशेंट से बैठकर पूछेगा कि आप अपने ये सिम्टम बताओ, ये बताओ, तो ये एक रेपिटेटिव एक्सरसाइज होगी, डॉक्टर को भी कठिनाई होगी। अब यहाँ पे एआई कैसे मदद करता है कि एआई टूल्स के माध्यम से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठाया है, उसके पास कोई रोगी आता है, वो उसका एक स्टैंडर्डाइज पेशेंट फॉर्म भरवा देता है, पेशेंट के सारे लक्षण उसमें कैद हो जाते हैं, एआई टूल्स की मदद से पेशेंट की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकल के आ जाती है, पेशेंट को किस स्पेशलिस्ट को रेफर करना है इसके रिकमेंडेशंस आ जाते हैं। तो अगर एक सीएचओ को यह तय करना है कि इस समय हमारे पास 4-5 स्पेशलिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं लाइव, तो क्या एआई की रिकमेंडेशन आती है कि पेशेंट को के लक्षण के आधार पे इस स्पेशलिस्ट से कनेक्ट किया जाए, तो पेशेंट को तुरंत कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर का समय बचता है, मरीज का समय बचता है, और हमारा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा लोगों को केटर कर पाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बहुत तेजी से उपयोग देश में हो रहा है, और जिम्मेदारी के साथ हो रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा है, जवाबदेही के साथ हो रहा है।
1: यानी एआई के माध्यम से आपके पास समय के बचत के अलावा सही गाइडेंस, अप्रोप्रिएट गाइडेंस भी मौजूद है, जो कि हेल्थ केयर के मिशन को और आगे लेकर जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: आज जो है भारत में 1,70,000 से ज्यादा आरोग्य मंदिर मौजूद हैं। जमीनी स्तर पर ये क्या बदलाव ला रहे हैं?
0: अब इनकी संख्या बढ़ गई है, 1,82,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को कैसे बदल कर रखा जाता है, ये कोई हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मॉडल को देखकर समझ सकता है। एक समय था कि हमारे देश में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो थे, यहाँ पे केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आज हमने ये तय किया कि बड़े अस्पतालों पर हमें भीड़ कैसे कम करनी है, और एक सामान्य नागरिक को उसके घर के नजदीक ही तमाम जरूरी सेवाएं कैसे देनी है। तो इसके लिए हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां पे आज हम 12 सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं। यानी आज व्यक्ति को अगर ईएनटी की जांच चाहिए तो वो भी वहां मिलेगी प्रारंभिक, उसको मौखिक जांच ओरल केयर के लिए चाहिए तो वहां मिलेगी, उसको न्यूट्रिशन वेलनेस की काउंसलिंग चाहिए, पोषण के संबंधित गाइडेंस चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, फर्स्ट लेवल इमरजेंसी ट्रॉमा केयर चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, मेंटल हेल्थ को लेकर जो प्रारंभिक एक स्क्रीनिंग होती है उसकी सुविधा भी वहां मिलेगी, और एनसीडी की स्क्रीनिंग जो आपको मैंने बताया कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे 30 वर्ष की उम्र से अधिक हर व्यक्ति की निशुल्क जांच हो रही है, कैंसर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए। तो ये सारी 12 सर्विसेज आज उसे मिल रही हैं। तो एक आम व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियों के लिए किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ता, और बड़े अस्पतालों पर भी बोझ कम होता है। और सुनकर आप खुश होंगे कि 540 करोड़ से ज्यादा जो फुटफॉल है वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हो चुका है, यानी लोगों का अब भरोसा भी बढ़ रहा है कि घर के नजदीक इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आयुष्मान आरोग्य मंदिर ला रहे हैं।
1: जब स्वास्थ्य की बात आती है तो शायद शुल्क जो है वो एक तनाव का कारण बन जाता है, लेकिन आज मेरे हिसाब से आरोग्य मंदिर उस तनाव को कम करने में भी काफी सक्षम और सफल हो रहे हैं।
0: बिल्कुल, हमारी सरकार जब आई तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, देश के अंदर आम नागरिक के स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च होता है, जो उसकी जेब से होने वाला खर्च है
1: जी,
0: वो जीडीपी का 64% हुआ करता था। हमने उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, सरकार के खर्च को बढ़ाया, आज स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का जो खर्च है बजट का 1,06,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है, और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मैंने आपको बताया जन औषधि केंद्र से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लेकर तमाम ऐसे प्रयास है जिनके कारण ये जो 64% हुआ करता था आज घटकर 39% पर आ गया है। तो बहुत बड़ी राहत जनता को उसके जेब से होने वाले खर्च पर मिली है।
1: पिछले कुछ उत्तरों में बात करते वक्त आपने टीबी और कोविड-19 का भी जिक्र किया, तो आज टीबी के केस

0: को कम करने में और मृत्यु दर कम करने में हम कितने सफल रहे हैं, और क्या इस क्षेत्र में ऐसी कोई चुनौती है जो अभी भी हमारे सामने खड़ी हो?
1: देखिए, टीबी के संबंध में मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया हवा से फैलता है, एयरबॉर्न है। यानी कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित है टीबी के बैक्टीरिया से, तो उसके बातचीत करने से, खांसने से, छींकने से, बोलने से, ये जो बैक्टीरिया होता है, ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हवा में प्रवेश कर जाता है। और दूसरा, कोई भी व्यक्ति यदि उसे इनहेल कर रहे, तो वो बैक्टीरिया उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो टीबी में सबसे बड़ा संकट ये है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है, और भारत देश की आबादी बहुत ज्यादा है, सघन है। ऐसे में टीबी मुक्त भारत एक बहुत कठिन संकल्प है, लेकिन सरकार ने

0: टीबी मुक्त भारत एक बहुत कठिन संकल्प है, लेकिन सरकार ने ये तय किया है कि हम टीबी की रोकथाम से लेकर टीबी की जांच से लेकर टीबी के उपचार तक हर काम करेंगे, और इसके लिए लगातार हम सघन अभियान भी चला रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हम जागरूकता फैला रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और जांच के जरिए बहुत सारे जो एसिम्प्टोमैटिक केसेस हैं, जो सिम्टोमैटिक है उनके साथ साथ जो बिना लक्षण वाले हैं, लक्षण वाले दोनों की पहचान भी हो रही है। टीबी के जांच के लिए हमने अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को भी अब स्ट्रेंथन किया है, सुदृढ़ किया है। राज्यों को हम टीबी की स्क्रीनिंग के लिए जो तमाम डिवाइसेस की, इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं, और इसके साथ साथ टीबी में जो उपचार के लिए दवाओं की जरूरत है वो भी आज तमाम हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर उपलब्ध है। दवा के साथ साथ, जांच के साथ साथ एक जरूरी पक्ष ये भी है कि टीबी के रोगी में पोषण का अभाव होता है, इसलिए सरकार ने हर टीबी के मरीज को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी प्रक्रिया प्रारंभ की है उसके पोषण के लिए। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे जन भागीदारी के माध्यम से निक्षय मित्र बन रहे हैं जो टीबी के रोगियों को गोद ले रहे हैं और उन्हें जो पोषण पोटली है वो निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। हमने टीबी पेशेंट्स के साथ साथ दायरा बढ़ाकर जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे उनके परिवारजन या उनके साथ रोज काम करने वाले लोग, जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी अब प्रिवेंटिव टीबी ट्रीटमेंट देना शुरू किया है। उन्हें भी हम न्यूट्रिशन बास्केट दे रहे हैं कि उनमें कहीं पोषण की कमी के कारण उन्हें ये टीबी का बैक्टीरिया ग्रसित ना कर ले। और चुनौती की जब आप बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी चुनौती अभी भी सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि टीबी के बारे में लोग आज बात करने से या किसी को हो जाता है तो एक झिझक रहती है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को यह भी अपील करना चाहूंगी कि टीबी एक ऐसा रोग है जिसको हराया जा सकता है, जिसका उपचार संभव है, और बहुत सारे ऐसे आज टीबी चैंपियंस हैं, टीबी विजेता हैं, जो हमारे तमाम कार्यक्रमों के मंच पे आके लोगों को बता रहे हैं कि कैसे वो टीबी से लड़कर जीते हैं। सरकार की तरफ से हर किस्म का सहयोग, पोषण से लेकर दवा से लेकर जांच तक सब कुछ निशुल्क उपलब्ध है। तो यदि किसी भी प्रकार की आपको शंका है तो आप जांच जरूर कराएं और उपचार का लाभ उठाएं।
1: बहुत खूब। और इसी के साथ साथ COVID-19 की भी चर्चा करते हैं। COVID-19 एक ऐसी महामारी थी जिसने दुनिया की काया बिल्कुल बदल दी, और उसी वक्त भारत ने अपने बुनियादी ढांचों को, खासकर हेल्थ केयर के क्षेत्र में, काफी मजबूत किया था। उस वक्त हमने क्या कदम उठाए थे जो आज भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो आज भी हमें इस राह पर, हमें अपने हेल्थ केयर गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं?
0: देखिए, COVID-19 पैंडेमिक पूरे दुनिया के लिए एक शॉक था और पूरी दुनिया के लिए एक अहम सबक भी लेकर आया कि हमें अब अपने सिस्टम्स को, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, उन्हें रेजिलियंट बनाने की जरूरत है। यानी भविष्य की किसी भी ऐसी महामारी से, आपदा से निपटने के लिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स तैयार हों। तो भारत ने ये तय किया कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम जिला स्तर पे हैं या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे कहीं भी जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं, हम उनको फिक्सअप करेंगे। और इसके लिए हमने शुरुआत की नीचे से, यानी हमारे ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनको सुदृढ़ करते हुए हमने उसमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए। ये 64,000 करोड़ का पूरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हम लेके आए, और इसके तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हमने इसलिए बनाए कि कोई भी गंभीर रोगी है तो उसे तुरंत उसके जिले में ही ये सुविधा मिल सके इलाज की। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी सेटअप किए ताकि जांच की जो सुविधा, जिसके लिए लोग परेशान हुए कोविड के दौरान, भविष्य में ऐसी कोई परिस्थितियां ना हो, जितने भी जांच होनी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होने हैं, वो सुविधा जिले में मौजूद हो। इसके साथ ही बीमारियों की निगरानी करना जरूरी है तो डिजीज के सर्वेलेंस सिस्टम्स को भी हमने सुदृढ़ किया। और एक बहुत बड़ी तैयारी हमारी वन हेल्थ मिशन के रूप में है, जहां हम ये मानते हैं कि मानव का स्वास्थ्य हो, पर्यावरण का स्वास्थ्य हो, पशु पक्षियों का स्वास्थ्य हो, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय हैं जो एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं ताकि हम पूरी तरीके से ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसको मजबूत रख सकें और आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हों।
1: जब कोविड-19 की शंकाएं उठ रही थी, मेरा ख्याल है तभी हम पूरी तरह से तैयार थे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि हम उस आपदा से

0: लड़ पाए और उससे बाहर निकल पाए।
1: देखिए, निश्चित रूप से कोविड-19 के दौरान भारत ने न केवल अपने नागरिकों का ख्याल रखा, बल्कि दुनिया की भी चिंता की।
0: जी
1: ऐसे कठिन समय में हमने अपने दो स्वदेशी वैक्सीन बनाकर तैयार किए, हमने अपने करोड़ों नागरिकों को डबल डोज दिया, बूस्टर डोज दिया, 220 करोड़ टीकाकरण। ये आसान बात नहीं है,
0: बिल्कुल भी
1: आसान
0: नहीं
1: लक्ष्य नहीं है।
0: जी।
1: और यहां तक कि जब दुनिया के तमाम विकसित देश भी इसका डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, तो कोरोना वैक्सीनेशन का हमने अपने नागरिकों को डिजिटल
0: डिजिटल
1: सर्टिफिकेट भी दिया। और इसके साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की जो हमारी पहल थी, 100 से अधिक देशों के नागरिकों को भी हमने जरूरी जो दवाएं थी या इक्विपमेंट्स थे या टीके थे, ये हमने तमाम देशों के नागरिकों को भी पहुंचाए। तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना के तहत दुनिया की चिंता करता है। और इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण हमने कोविड जैसी महामारी बहुत बड़े संकट के बीच में प्रस्तुत किया।
0: भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भी जाना जाता है, और क्यों ना हो, आयुर्वेद की भूमि है। तो उस संदर्भ में, उस विषय में, आज भारत की वैश्विक स्थिति कैसे मजबूत हो रही है?
1: देखिए, जहां तक फार्मा क्षेत्र की बात है, तो भारत अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो हम तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो हम 14वें नंबर पे हैं। और दुनिया में भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है कि हम अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन जो हैं वो 200 से अधिक देशों को सप्लाई करते आए हैं। यूएस हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, तमाम देशों में हमारी जेनेरिक दवाइयां पहुंचती हैं, जिनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है और दाम भी बहुत कम है। इसके साथ ही WHO की 70% जो वैक्सीन की मांग है, उसकी आपूर्ति भी भारत का फार्मा सेक्टर करता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन इसके साथ ही हम आगे की जो नेक्स्ट फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल लीडरशिप है, उसके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि आज दुनिया में, जैसे मैंने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, डायबिटीज है, कैंसर है या ऑटो इम्यून डिजीजेस है, आज बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। एनसीडीज का बर्डन दुनिया के तमाम देशों पे बहुत बड़ा बर्डन है। तो केवल जेनेरिक दवाओं में जो हमारी लीडरशिप है, अब हमें उस तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है। क्योंकि आने वाले समय में दुनिया के अंदर, अगर हम 2031 तक बात करें, तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होंगे उसमें 60% जेनेरिक की मांग हो सकती है, लेकिन 40% जो मांग होगी वो बायोलॉजिक्स की होगी, बायोसिमिलर्स की होगी। तो अब हमें स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग से लार्ज मॉलिक्यूल इनोवेशंस की तरफ बढ़ना है, यानी जो हमारे वॉल्यूम लेड जेनेरिक्स हैं उनसे आगे बढ़ के अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए हमें जो वैल्यू लेड बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हैं उसको बनाने का काम करना है। और इस दिशा में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ के बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की बजट में, और उसके तहत आज फार्मा सेक्टर में हमारी जो कंपनीज हैं वो कैसे जेनेरिक से आगे बढ़कर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, ये जो नए इनोवेशन ड्रग्स हैं, इसका जो एक नया मार्केट उभर रहा है और इसकी जो मांग बढ़ रही है, इस दिशा में आगे बढ़े, ऐसा प्रोत्साहन हम दे रहे हैं।
0: चर्चा तो और भी की जा सकती है, लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा। तो जाते जाते आपसे बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2030 तक हेल्थ केयर के एरिया में ऐसे कौन से गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और आखिर में भारत के नागरिकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: देखिए, भारत तेजी से काम कर रहा है, टीबी मुक्त भारत बनाना है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे, अगर आप देखिए तो वैश्विक स्तर पे जो मैटर्नल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, या जो इन्फेंट मोर्टैलिटी, अंडर 5 मोर्टैलिटी या नियोनेटल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, उससे कहीं ज्यादा तेज गिरावट भारत के अंदर है। तो हमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य पे और बेहतर काम करना है। इसके साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है, गैर संचारी रोगों का, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी तेजी से चल रही है। और आगे की भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ मिशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के मॉडल्स को भारत एक्सप्लोर कर रहा है। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें हम प्राप्त करें, इसमें हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी श्रोता आज हमें सुन रहे हैं, उन सभी को मैं कहूंगी कि भारत सरकार को जो प्रयास करना है, राज्य सरकारों को जो प्रयास करना है, हम पूरी तरह कर रहे हैं। लेकिन हर नागरिक को माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी बनाना है। और इसके लिए जरूरी है साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखें, हमारी हवा साफ,

0: हो, हमारा पानी साफ हो, हम संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार लें, मौसमी आहार लें, तेल नमक चीनी का सेवन कम रहें, और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ से, नशे के सेवन से अपने आप को, तंबाकू हो, सिगरेट हो, पान बीड़ी मसाला शराब, इन सब से हम दूर रहें। योग व्यायाम किसी भी प्रकार के खेल कूद को अपने जीवन का अंग बनाएं, और सबसे बड़ी बात कि हम नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। मुझे लगता है कि सभी नागरिक यदि इस प्रकार के जीवन शैली का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 का सपना जरूर पूरा होगा।
1: आज के दिन हमारे जीवन में योग एक अहम भूमिका निभा रहा है, और जैसा आपने बताया आरोग्य मंदिरों में भी योगा की शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो योग के माध्यम से इंटरनेशनल योगा डे के रिलेशन में आप हमारी ऑडियंस को, आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब बहुत निकट है। 21 जून को देश में करोड़ों लोगों को हम योग करते हुए देखेंगे, और मुझे गर्व होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक बार पुनर्जीवित किया है। न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिक आज योग के फैन हो चुके हैं। मैंने भी कई देशों की यात्रा की है और हर जगह मैंने देखा है कि योग को लेकर लोगों का एक जबरदस्त क्रेज है। और हमारे देश के सभी नागरिकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि बीमारियों से मुक्त रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, इसके साथ साथ अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें तो जरूरी है कि योग का हम पालन करें, क्योंकि योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहता है। बहुत सारे तनाव जो आजकल के दौड़ते भागते जीवन में है उनसे हमें मुक्त रखता है, और मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से योग हमें एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए, और जीवन के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए वो हमें योग के माध्यम से मिल सकती है। तो अधिक से अधिक लोग योग करें, और योग आपको निरोग भी रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा।
1: स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है योग करना, और साथ ही साथ पौष्टिक आहार,
0: बिना खर्च का तरीका है योग।
1: व्यायाम और पौष्टिक आहार हमारी जरूर मदद कर सकता है स्वस्थ रहने में और खुश रहने में, और पहले स्वास्थ्य फिर कुछ और। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी, आज हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे श्रोताओं और दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाजत और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।
2: इन स्पेशल सीरीज 12 ईयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट You were listening to an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer was Niharika Bhuvania. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:45 हुए हैं। अब हमारी आज की यह सभा यहीं समाप्त होती है। अगली सभा के कार्यक्रमों के साथ प्रातः 5:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।